आखिरकार हमने उसे और उसके घर को जमीन में धसा दिया, फिर कोई उसके हामियों का ग्रोह न था जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद को आता, और न वो खुद अपनी मदद आप कर सका। अब वही लोग जो कल उसकी मंजिलत की तमन्ना कर रहे थे कहने लगे, अफसोस, हम भूल गए थे कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसका रिज्क चाहता है कुशादा करता है और जिसे चाहता है नपातुला देता है। अगर अल्लाह ने हम पर एहसान न किया होता तो हमें भी जमीन में धसा देता। अफसोस, हमको याद न रहा कि काफिर फलाह नहीं पाया करते। वो आखिरत का घर तो हम उन लोगों के लिए मखसूस कर देंगे जो जमीन में अपनी बड़ाई नहीं चाहते और न फसाद करना चाहते हैं, और अंजाम की भलाई मुत्तकीन ही के लिए है। जो कोई भलाई लेकर आएगा उसके लिए उससे बेहतर भलाई है, और जो बुराई लेकर आए तो बुराइयां करने वालों को वैसा ही बदला मिलेगा जैसे अमल वो करते थे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन जानो कि जिसने ये कुरान तुम पर फर्ज किया है वो तुम्हें एक बेहतरीन अंजाम को पहुंचाने वाला है। इन लोगों से कह दो कि मेरा रब खूब जानता है कि हिदायत लेकर कौन आया है और खुली गुमराही में कौन मुब्तला है। तुम इस बात के हरगिज उम्मीदवार न थे कि तुम पर किताब नाजिल की जाएगी, ये तो महज तुम्हारे रब की मेहरबानी से तुम पर नाजिल हुई है। बस तुम काफिरों के मददगार न बनो, और ऐसा कभी ना होने पाए कि अल्लाह की आयात जब तुम पर नाजिल हो तो कुफार तुम्हें उनसे बाज रखे। अपने रब की तरफ दावत दो और हरगिज मुशरिकों में शामिल ना हो, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को न पुकारो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। हर चीज हलाल

ऑनलाइन ये बात तुमने सुना दो शायद कि वो राह रास्त पा लें। सामीन मौलाना इदरीस अबकर साहब दुआगो हैं अल्लाह ताला के हुजूर। आइए हम भी इन दुआओं में शरीक हो जाएं। ऐ अल्लाह तू हमारी सब दुआएं कबूल फरमा ले।

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت

0: जिनके पास लग्जरी होती है भाई, लेकिन वक्त नहीं होता उस लग्जरी को एंजॉय करने को, और जिनके पास पैसा होता है लेकिन खुद के लिए जगह होती ही नहीं। तो भाई आज मनी नेविगेटर के इस एपिसोड में हम ये सवाल नहीं पूछ रहे कि और पैसा कैसे कमाया जाए। आज हम कुछ ज्यादा जरूरी सवाल पूछ रहे हैं। पैसा असल में कौन से मसले हल करता है, और कौन से मसले ऐसे हैं जहां पैसा आगे नहीं बढ़ पाता। वो कौन सा पॉइंट होता है भाई जहां पैसा मदद करना छोड़ देता है, और उसके बाद वो क्या चीज है जो असल में वेल्थ को डिफाइन करती है। क्योंकि वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं होता साथियों, वेल्थ सिर्फ सैलरी स्लिप्स का नाम नहीं होता, वेल्थ सिर्फ महंगी चीजों को कलेक्ट करने का नाम नहीं होता। देखें भाई, वेल्थ का ताल्लुक आपके वक्त से होता है, आपकी सेहत से होता है, आपके रिश्तों से होता है, और सबसे बढ़कर आपके सुकून से होता है। देखें, ये एपिसोड फाइनेंस के बारे में है ये मैं आपको कह दूं, लेकिन सिर्फ फाइनेंस तक महदूद नहीं है, ये एपिसोड लाइफ डिजाइन के बारे में है। इस बात के बारे में है कि हम अपनी जिंदगी को किस तरह डिजाइन कर सकते हैं, इस बात के बारे में है कि हम अपनी जिंदगी को किस तरह डिजाइन कर रहे हैं, किस चीज को प्रायोरिटी बनाना चाहिए और किस चीज के लिए हम खुद को रोज थका रहे हैं। देखिए, मनी नेविगेटर आपको ये नहीं कहता कि एम्बिशन गलत होते हैं। सवाल हमारा बिल्कुल छोटा सा है, मासूमाना सा, कि क्या पैसा हमारी जिंदगी सर्व कर रहा है या हम पैसे को सर्व कर रहे हैं। आज का एपिसोड आपको ये सोचने का मौका देगा कि इनफ का मतलब आपके लिए क्या है, और क्या आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वो वाकई आपको जिंदगी दे रही है जिसका आपने ख्वाब देखा था। अगर आप अपनी राय शेयर करना चाहते हैं ना साथियों, या इस सवाल पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहते हैं, तो हमें फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिसका हैंडल है FM 107 Qatar। और भाई, अगर सीधे सीधा रब्ता करना चाह रहे हैं तो आप हमारे नंबर पे मैसेजेस भी कर सकते हैं, जो कि है 666-22-107। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं मनी नेविगेटर, जहां हम पैसे से आगे सोचते हैं भाई, क्योंकि असल दौलत सिर्फ कमाई में नहीं होती, समझ में होती है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं एक ऐसी हकीकत से जिसे आप सुनने वालों में से अक्सर लोग फौरन पहचान लेंगे। जिंदगी का इब्तदाई दौर, वो फेज जहां ख्वाब बहुत होते हैं लेकिन पैसा बहुत कम होता है। साथियों, कहीं मत जाइएगा, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं मनी नेविगेटर ऑन FM 107।
1: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर। बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ। सुनिए प्रोग्राम मनी नेविगेटर।
0: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ मनी नेविगेटर ऑन FM 107। देखिए भाई, शायद आपने अभी अपनी तालीम मुकम्मल की हो, शायद आपने अपनी पहली जॉब शुरू की हो, या शायद आपने अपना मुल्क छोड़कर कतर जैसे नई जगह का रुख किया हो, और वो भी सिर्फ एक बेहतर मौके की तलाश में। देखिए, इस स्टेज पर जिंदगी महंगी महसूस होती है, हर तरफ खर्चे ही खर्चे होते हैं और हर खर्चा जरूरी लगता है। भाई, आपकी कुछ लिस्ट होती है, आप चाहते हैं कि आपकी अपनी गाड़ी हो क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर वक्त कन्वीनियंट नहीं लगता, आप ट्रैवल करना चाहते हैं क्योंकि दुनिया आपको बुला रही होती है, आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, एक बेहतर फोन रखना चाहते हैं, और एक ऐसे लाइफस्टाइल चाहते हैं जो आपको सेटल्ड महसूस करवाए। लेकिन जो सैलरी आ रही होती है ना, वो काफी नहीं होती साथी, और फिर जहन में एक ख्याल जन्म लेता है, और वो होता है कि अगर मेरी सैलरी थोड़ी सी ज्यादा होती तो जिंदगी बहुत बेहतर होती। इस स्टेज पर ये सोच बिल्कुल गलत नहीं होती भाई, मैं कहती हूँ बिल्कुल भी गलत नहीं है, बल्कि ये सोच बिल्कुल ठीक होती है। जब पैसा कम होता है तो पैसा जिंदगी में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करता है साथियों। कतर में बहुत से लोग अपनी शुरुआत शेयर्ड अकोमोडेशन से शुरू करते हैं, कमरे शेयर होते हैं, किचन शेयर होते हैं, कभी कभी तो बेड्स तक शेयर होते हैं। इसलिए नहीं कि लोग ऐसा पसंद करते हैं, इसीलिए कि लोगों के पास और कोई चॉइस ही नहीं होती। इस स्टेज पर पैसा लग्जरी का

सिंबल नहीं होता साथियों, इस स्टेज पर पैसा इज्जत का सिंबल होता है। साथियों जब इनकम बढ़ती है तो पहले स्टूडियो अपार्टमेंट मिलता है, फिर वन बेडरूम मिलता है, फिर फैमिली होम मिलता है। हर स्टेप वाकई जिंदगी को बेहतर करता है साथियों, मैं ये बात मानती हूँ। हर स्टेप डिग्निटी को रिस्टोर करता है। भाई इसीलिए बात बिल्कुल वाजे होनी चाहिए कि जब पैसा नहीं होता, पैसा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्ट्रगल को रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए साथियों, गुर्बत को ग्लोरिफाई नहीं करना चाहिए। हर इंसान को एक मरहला क्रॉस करना ही होता है, जिसे मैं कहती हूँ हर्डल ऑफ पॉवर्टी। जब तक आप इस हर्डल से नीचे रहते हैं ना, बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती और खुशी कहीं दूर किसी किनारे पे खड़ी हुई आपको टाटा बाय बाय कर रही होती है। इस स्टेज को क्रॉस करना जरूरी होता है। इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। फिर भाई दरमियाने सफर का वक्त आता है, यानी कि कंफर्ट और ग्रोथ का। अब भाई आगे का मरहला आता है, वो फेज जहां जिंदगी स्टेबल हो चुकी होती है, रेंट वक्त पर पे हो रहा होता है, खाना सिक्योर होता है, हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी होती है, बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं। यहां अब भी अहमियत रखता है पैसा, लेकिन अब उसका रोल थोड़ा बदल सा जाता है। भाई देखिए, एक्स्ट्रा पैसा आपको देता है बेहतर एजुकेशन के ऑप्शंस, ज्यादा महफूज नेबरहुड्स, थोड़ी ज्यादा कंफर्ट, बेहतर मेडिकल केयर और कभी कभी छोटी सी इंडल्जेंस भी। इस स्टेज पर पैसा अब भी खुशी लगता है, लेकिन भाई उसकी स्पीड कम हो जाती है। पहले 1000 रियाल जिंदगी बदल देते थे, अब 1000 रियाल सिर्फ कन्वीनियंस देते हैं। देखिए भाई, आप प्रोग्रेस महसूस करते हैं, ग्रोथ नजर आ रही होती है। ठीक है भाई, इंसान एलिवेट हो गया, कहां से शुरू किया था कहां तक आ गया, आपको अपने ऊपर फखर हो रहा होता है। ये फेज पॉवर्टी और एक्सेस के दरमियान का सफर, यानी कि अक्सर जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। आप डिप्रीव नहीं होते, लेकिन अभी भूख बाकी होती है। एम्बिशन जिंदा होता है, एफर्ट की कदर होती है, लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन यहाँ एक खामोश गलत फहमी जन्म ले लेती है। लोग ये मान लेते हैं that if money helped me till now, more money will help me forever. और ये सोच गलत होती है भाई। देखिए, अब हम एक बहुत नाजुक स्टेज पर पहुंच चुके हैं साथियों। यहाँ पर लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि पैसा मुझे यहाँ तक लाया है तो पैसा आगे भी मुझे लेकर जाएगा। यहीं से मसले शुरू होते हैं। अब हम उन लोगों को देखते हैं जिनके पास सिर्फ कंफर्ट नहीं बल्कि एबंडेंस होती है। और भाई यहाँ एक अजीब सी बात सामने आ जाती है, कुछ अमीर लोग बहुत खुश होते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं। देखिए भाई, अगर सिर्फ पैसा खुशी का सोर्स होता ना, तो नतीजा सबके लिए एक जैसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। हमने ये देखा है पास्ट में भी कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, टूटे हुए रिश्ते, बेमकसदी और गहरी तन्हाई, ये पैसे वालों के पास भी होती है। हम देखते हैं कि कुछ वेल्दी फैमिलीज में बच्चे डायरेक्शंस खो देते हैं, एफर्ट की जगह एंटाइटलमेंट आ जाती है, ह्यूमैनिटी की जगह ईगो आ जाता है। तो फिर सवाल उठता है, अगर पैसा काफी नहीं तो भाई कमी किस चीज की है। देखिए, अक्सर लोग इस बात को नहीं मानना चाहते, लेकिन सच यही है, पैसा अगर हद से ज्यादा हो और हिकमत के बगैर हो तो मसले पैदा करता है साथियों। ज्यादा पैसा ला सकता है गुरूर, ज्यादा पैसा ला सकता है एथिकल शॉर्टकट्स, ज्यादा पैसा ला सकता है पावर का गलत इस्तेमाल करना, जज्बाती डिस्कनेक्शन और मकसद का लॉस। देखिए, कुछ घरों में पैसा रिश्ते जोड़ने के बजाय तोड़ देता है, कुछ जिंदगियों में पैसा सिक्योरिटी देने के बजाय मोटिवेशन छीन लेता है। यहाँ भाई ये वाजे हो जाता है कि पैसा मसला हल नहीं करता, कभी कभी ये नए मसले भी पैदा कर देता है अगर उसे समझकर हैंडल ना किया जाए। इसीलिए हमें वेल्थ को दोबारा डिफाइन करना पड़ता है। देखिए, वेल्थ को समझने के लिए जिंदगी को एक गहरी समझ चाहिए। हर गाड़ी को एक स्ट्रॉन्ग चेसी चाहिए होती है, जिंदगी में वो चेसी पैसा है। पैसा ना हो तो जिंदगी हिचकोले खाती गुजरती है, फैसले मजबूर हो जाते हैं और डर डोमिनेट करता है। लेकिन सिर्फ चेसी से गाड़ी थोड़ी ना चलती है, चलने के लिए तो व्हील्स भी चाहिए होते हैं। देखिए, व्हील नंबर 1 होता है आपकी सेहत। एक सीरियस हेल्थ क्राइसिस सारी खुशी एक लम्हे में मिटा सकता है। पैसा सेहत को रिप्लेस नहीं करता साथियों, सिर्फ सपोर्ट करता है।

0: और इसी गाड़ी का दूसरा वी होता है वक्त। अगर वक्त नहीं तो पैसा और सेहत दोनों बेकार हो जाते हैं। वक्त ही वेल्थ को महसूस करने का जरिया होता है। और तीसरा व्हील है खर्च करने की सलाहियत। अगर पैसा खर्च करना दर्द बन जाए तो पैसा आपका मालिक बन चुका होता है। वेल्थ को सर्कुलेट करना जरूरी होता है। और चौथा और आखिरी पहिया होता है रिश्ते। इंसान सोशल बीइंग है। अगर सक्सेस तन्हा कर दे तो वेल्थ खोखली हो जाती है साथियों। कहीं मत जाइएगा, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं मनी नेविगेटर ऑन FM 107।
1: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर। बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ। सुनिए प्रोग्राम मनी नेविगेटर।
0: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सपा के साथ मनी नेविगेटर ऑन FM 107। देखें, असल वेल्थ वो होती है जब पैसा स्टेबिलिटी देता हो, सेहत एनर्जी देती हो, वक्त आजादी देता हो, खर्च खुशी देता हो और रिश्ते मकसद देते हो। एक भी व्हील मिसिंग हो ना तो सिस्टम गिर जाता है, गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी हो जाती है। बैलेंस ऑटोमेटिक नहीं होता साथियों, इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट चाहिए होते हैं। देखिए, जिंदगी ना, जिंदगी को ऐसे ले लें जैसे एक फिल्म की तरह है। तो ये क्लाइमेक्स सिर्फ कुछ मिनट्स का होता है, मगर यादगार सफर होता है। लोग जब कहते हैं ना आखिर में जाकर कि मैंने एक अच्छी जिंदगी गुजारी, तो वो बैंक बैलेंस याद नहीं कर रहे होते, वो सफर याद कर रहे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट द जर्नी। जिंदगी दो हर्डल्स के दरमियान का सफर है साथियों। पहला हर्डल ऑफ पॉवर्टी, हर किसी को क्रॉस करना होता है भाई ये। दूसरा होता है हर्डल ऑफ प्लेंटी, कम लोग जानते हैं कि इसे कैसे हैंडल करना है। दूसरे हर्डल के बाद पैसा विजडम मांगता है। याद रखिए, पैसा जरूरी है, पैसा पावरफुल है, लेकिन पैसा काफी नहीं है। असल दौलत बैलेंस है भाई, और बैलेंस एक स्किल है, और ये स्किल सीखी जा सकती है। पता है कहाँ से? एक शो से जिसका नाम है मनी नेविगेटर। साथियों, अब तक हमने पैसे, खुशी और वेल्थ के बारे में बात की है, ठीक है? अब वक्त आ गया है कि इस सोच को एक्शन में थोड़ा सा बदला जाए, क्योंकि सिर्फ समझना काफी नहीं होता ना, असल फर्क पड़ता है उन फैसलों से जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में लेते हैं, खामोशी से अपनी जिंदगी में। ये है मनी नेविगेटर के 5 प्रैक्टिकल मनी मूव्स, जो पैसे को सिर्फ कमाई नहीं बल्कि बेहतर जिंदगी का टूल बना देते हैं भाई। देखें, मनी मूव नंबर 1, पर्पस के बगैर पैसे के पीछे ना भागें। अक्सर हम एक ही चीज के पीछे भागते रहते हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा पैसा, ज्यादा पैसा, यही होता है ना। लेकिन हम खुद से ये नहीं पूछते कि भाई आखिर चाहिए क्यों इतना ज्यादा पैसा? क्या ज्यादा पैसा आपको ज्यादा वक्त देगा या सिर्फ ज्यादा जिम्मेदारी देगा? क्या ये पैसा आपके स्ट्रेस को कम करेगा या एक्सपेक्टेशंस को और ज्यादा बढ़ा देगा? देखिए भाई, पैसा पर्पस के बगैर ना बहुत डेंजरस होता है, सिर्फ नंबर्स का गेम बन जाता है ये, और नंबर्स का गेम कभी खत्म नहीं होता साथियों, इनफिनिट होता है। जब आपको अपने इस वाय का जवाब पता होता है ना, तो भाई पैसा डायरेक्शन पाता है, वरना पैसा सिर्फ आपको एक टारगेट से दूसरे टारगेट तक घसीटता रहता है। भाई, अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि मैं और पैसा क्यों चाहता हूँ? इस सवाल का जवाब ही आपकी फाइनेंशियल जिंदगी का कंपास बनता है। और फिर भाई मनी मूव नंबर 2 आती है, यानी कि हर सेविंग प्लान के साथ स्पेंडिंग प्लान भी बनाएं। ज्यादातर लोग सेविंग को वर्च्यू समझते हैं साथियों, और अक्सर ठीक भी समझते हैं, लेकिन सेविंग अगर बेमकसद हो ना तो वो वेल्थ नहीं होती, वो सिर्फ हॉर्डिंग होती है। अगर आप पैसा सिर्फ इसलिए जमा कर रहे हैं कि नंबर बढ़ाने हैं, लेकिन उसका कोई प्लान नहीं है खर्च करने का, कोई भी प्लान नहीं है कि ये पैसा किस चीज के लिए है आखिर, तो पैसा आप पर कंट्रोल करने लगता है। देखें, हेल्दी वेल्थ का रूल ये है कि जहाँ सेविंग का प्लान हो ना, वहीं स्पेंडिंग का भी प्लान हो। क्या आप फ्यूचर ट्रैवल के लिए सेव कर रहे हैं? क्या आप फैमिली के लिए सिक्योरिटी चाहते हैं? क्या रिटायरमेंट को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं? जब पैसा किसी खुशी या किसी मकसद से रिलेटेड हो जाता है ना, या किसी वैल्यू से जोड़ता है।

आपको, तभी वो वेल्थ बनता है, वरना बैंक बैलेंस बना रह जाता है, जिंदगी नहीं बनाता वो। देखिए भाई, तीसरा मनी मूव है सेहत में उतनी ही सीरियसनेस रखना जितनी आप इन्वेस्टमेंट में रखते हैं। देखिए भाई, इस बात को हम सब अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम इन्वेस्टमेंट एप्स रोज चेक कर लेते हैं और पोर्टफोलियोज की वैल्यू पर नजर रहती ही रहती है हमारी, मार्केट न्यूज फॉलो करते रहते हैं, लेकिन जब बात आती है ना अपने सेहत के अकाउंट की, अक्सर नेगेटिव में जा रहे होते हैं हम और हम इसको इग्नोर कर देते हैं बड़ी ही मजे से। ये बात याद रखें साथियों कि मेडिकल बिल्स जिम मेंबरशिप से बहुत ज्यादा महंगी होती है। भाई सेहत कोई लग्जरी नहीं है, सेहत कोई बाद में वाली चीज नहीं है, सेहत वेल्थ का बुनियादी व्हील है। अगर आप अपने जिस्म, अपनी नींद, अपनी मेंटल हेल्थ को निग्लेक्ट कर रहे हैं ना सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो आप असल में अपनी वेल्थ को कमजोर कर रहे हैं। हेल्थ में इन्वेस्ट करना सीखें साथियों, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, ये लाइफस्टाइल डिसीजंस हैं, बाउंड्रीज हैं, और ये मान लेना है कि पैसा कमाया जा सकता है लेकिन सेहत वापस लाना हमेशा मुमकिन नहीं होता। भाई हमारे चौथे मूव के बारे में बात करें तो वो है वेल्थ बनाते हुए रिश्ते महफूज रखें। देखिए सक्सेस का एक खामोश साइड इफेक्ट भी होता है, आइसोलेशन, ज्यादा काम, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आहिस्ता आहिस्ता लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप कामयाबी सेलिब्रेट करना चाहते हैं ना, तो आपको लोग चाहिए होते हैं, सिर्फ अचीवमेंट्स का कोई मजा नहीं होता। अगर आपका लाइफस्टाइल आपको अपने पेरेंट्स से दूर कर देता है, आपके बच्चों से दूर कर देता है, या आपके दोस्तों को आपसे अजनबी बना देता है, तो ये सक्सेस नहीं है भाई, ये एक्सचेंज है। वेल्थ का काम रिश्ते स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, उन्हें रिप्लेस करना नहीं होता। इसीलिए पैसा कमाते हुए ये सवाल जरूर पूछें भाई, दिमाग में रखें अपने सवाल, मैं किसके साथ ये जिंदगी शेयर कर रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और भाई अब बात आती है मनी मूव नंबर 5 की, ये समझना कि मोर हमेशा बेटर नहीं होता। देखिए लालच बुरी बला, ये तो हम सबको सिखाया गया है। जिंदगी का एक पॉइंट होता है जहाँ इनकम बढ़ने के बाद खुशी की ग्रोथ रुक जाती है। इस पॉइंट के बाद फर्क पैसे का नहीं, विजडम का होता है। अगर आप हर चीज को सिर्फ और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा के लेंस से देखते हैं ना, तो कभी भी इनफ महसूस नहीं करेंगे। विजडम ये समझने का नाम है कि कब रुकना है, कब एंजॉय करना है, और कब पैसे को पीछे बैठने देना है। भाई असल अमीर वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाए, बल्कि वो है जो ये जाने कि कब काफी हो गया है। भाई देखिए भाई, आप कहेंगे कि सफा तुम फिलॉसफी बहुत झाड़ती हो, मामला पता है क्या है? मामला ये कि फिलॉसफी तब काम करती है जब वो जिंदगी में उतर आए। देखिए मैं सच बता रही हूँ, ये 5 मनी मूव्स ना सिर्फ पैसे को मैनेज करने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी को बैलेंस करने के लिए है। क्योंकि आखिर में पैसा एक टूल है, और टूल का काम होता है जिंदगी को बेहतर बनाना, ना कि उसे कंट्रोल करना। तो भाई आज का शॉर्ट और पावरफुल रिमाइंडर ये है कि जो पैसा खर्च नहीं होता, यूज नहीं होता और शेयर नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी में अपनी वैल्यू खो देता है। आपके आखिरी दिन में जो पैसा पीछे रह जाता है ना, असल में वो पैसा कभी आपका था ही नहीं। क्योंकि पैसा सिर्फ रखने से वेल्थ नहीं बनता, वेल्थ एक्युमुलेशन का नाम नहीं होती साथियों। वेल्थ का मतलब है मीनिंग के साथ यूटिलाइजेशन। जब पैसा आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है, जब वो किसी की मदद करता है, जब वो आपको वक्त, सेहत और सुकून देता है, तब वो पैसा आपका होता है। देखो मेरे मुताबिक अगर पूछे ना, तो जिंदगी ऐसी है जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि जिंदगी 2 हर्डल्स के दरमियान का सफर है। पहला हर्डल है पॉवर्टी का हर्डल, जहाँ से हर इंसान को गुजरना ही पड़ता है। ये स्ट्रगल सिखाता है, मेहनत सिखाता है और कदर करना सिखाता है। लेकिन दूसरा ये जो हर्डल है ना, अक्सर नजर से ओझल रहता है, ये है प्लेंटी का हर्डल, जहाँ एक्सेस खुद एक चैलेंज बन जाता है, जहाँ ज्यादा होना भी कंफ्यूजन पैदा करता है, जहाँ पैसा मसला हल करने के बजाय नए मसले क्रिएट कर देता है। इस दूसरे हर्डल को क्रॉस करना पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल होता है साथियों। इसके लिए चाहिए होता है विजडम, थोड़ी सी ह्यूमैनिटी और बहुत सारा बैलेंस। इसीलिए डियर लिसनर्स, आज का एपिसोड सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था।

ये जिंदगी के डिजाइन के बारे में था भाई। भाई मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस एपिसोड में ना आपने पैसे को सिर्फ एक इनकम या सेविंग के तौर पे नहीं देखा होगा, बल्कि एक लार्जर लाइफ सिस्टम का हिस्सा समझा होगा। अगर आप पैसे को अपनी सेहत के साथ बैलेंस कर सकते हैं, अपने वक्त के साथ अलाइन कर सकते हैं, अपनी स्पेंडिंग को अपनी वैल्यूज से जोड़ सकते हैं और अपने रिश्ते सेक्रीफाइस किए बगैर ग्रो कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप जिंदगी के हर स्टेज पर वेल्दी हैं। देखिए भाई, वेल्थ कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता, वेल्थ एक स्टेट ऑफ बैलेंस है। बस ये बात याद रखने की जरूरत है। तो भाई मैं हूँ सफा, साइनिंग ऑफ फ्रॉम मनी नेविगेटर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अर्न वाइजली, लिव फुली एंड स्टे बैलेंस्ड। मुझे दीजिए मनी नेविगेटर से इजाजत। आप सुन रहे थे सफा के साथ ऑन FM 107 मनी नेविगेटर। अल्लाह हाफिज़।

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने किराम प्रोग्राम कुरान के मोती के आज के सफर में आपका खैर मकदम है। आज हम गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी पिछले हलके से, और इसका ताल्लुक है इंसानी ख़ताओं के हवाले से कि हमसे लग्जिश होती है, कोताही होती है, गुनाह सरजद होते हैं, लेकिन हम सब अल्लाह के पर्दा सतर के मोहताज हैं। हम में से कौन है जो अपने आमाल के हर गोशे को खोल कर देखे और अपने आप को बिल्कुल यानी पाक पाए। कितनी कमजोरियां ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ने लोगों से छुपा रखा है, कितने गुनाह ऐसे हैं जिन पर उसने फौरन गिरफ्त नहीं की, कितनी लग्जिशों के बावजूद उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया। इसीलिए शरीयत हमें बार बार बताता है कि अगर गुनाह हो जाए तो वापसी का रास्ता क्या है। इस्तग़फ़ार करो, तौबा, बुराई के बाद नेकी का काम करो। कुरान कहता है इदफा बिल्लती ही अहसन, बुराई को उस तरीके से दफा करो जो सबसे बेहतर है, और फरमाए इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। समीने किराम, हम सब खता करते हैं, हम सब कभी ना कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं, सब बराबर नहीं। एक शख्स वो है जो गुनाह में उतरता है फिर उसमें रहने का फ़ैसला कर लेता है, न शर्मिंदगी, न वापसी, न तौबा, और दूसरा वो है जो फिसलता ज़रूर है मगर उसी वक्त उसे अपने रब का मकाम याद आ जाता है। कुरान ऐसे लोगों की तस्वीरियों खींचता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون। जब वो किसी भी हयाई का इर्तिकाब कर बैठते हैं

0: FM 107 Time Check.
1: गुड मॉर्निंग, 6:01 और आज हमारे सर्कस में आपका स्वागत है। आइए आज आप दिखाएंगे शेर कैसे आग की ऊपर से कूदता हुआ निकलता है। 666-2107 पर सब मैसेज करें और जो मैसेज नहीं करेंगे उन्हें हम शेर से रिप्लेस कर देंगे, फिर आपको आग के शोलों में से कूदना होगा। चॉइस आपकी है। आइए आइए, 150 150 150 150
2: सीधा रेडियो पे धुआं, बातें हैं फायर, ख्यालों का कुआं, भेजे के कसरत और बोली से सुनवा, कंपटीशन को

0: गुड मॉर्निंग 6:02 अस्सलाम वालेकुम, मैं दूहा वाला कबीर FM 107 पे आपका एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है। सर जी लिफ्ट गार्ड देंगे भाई साहब, मौसम बना देंगे मौसम। और बताओ क्या हाल है। पता मैं आज आपको चीज बताऊंगा, सबसे पहले तो मैं आपसे पहले दरख्वास्त करूंगा, ये लो मेरी सिफारिश नहीं, क्या कहते हैं उसे, गुजारिश। 6:62 पे आप आ जाइए। आज जो है ना भाई साहब, म्यूजिक रुको, बहुत जरूरी बात करनी है, ऐसे वैसे नहीं, हल्की बात नहीं है। आज मैं आपको सिर्फ स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, आज आप मूवी देखने वाले हैं। अभी समझ लीजिए, आप मेरे मुझे सुनने के बाद आपको पिक्चर दिखाई देने लग जाएगी, गारंटी है इस बात की। आज जो लोग लाइव सुनने वाले हैं ना, यूं समझ लीजिए कि आपने फ्री में थिएटर में पिक्चर देखने का कर लिया है इन हिसाब किताब अपना, क्योंकि आज जो कहानी है दिस इज़ द लॉन्गेस्ट स्टोरी आज की, मतलब इससे बड़ी कहानी मैंने कभी नहीं सुनाई होगी पूरी फिल्म है भाई। ये पहली कहानी ऐसी है जिसने मुझे सोने नहीं दिया चैन से भाई, मैं सही बता रहा हूँ। एक तो कल इसकी तैयारी मैंने लेट करी और मैं इतना दुखी हो गया, मैंने और कितनी है लिखते लिखते लिखते लिखते भाई मेरी जान आधी हो गई है। और ये आई नो इट्स अ रिस्क, क्या होता है ना कि कई मरतबा लोग कहते हैं लंबी कहानी, तो भाई जिन्हें वो लंबी कहानी नहीं सुननी है प्लीज़ भाई पहले ही आप जरा साइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है और उसके बाद मैं ये पढ़ूँ कि बहुत लंबी थी तो यार अच्छा नहीं लगेगा, आज मेरा दिल दुख जाएगा। अमूमन मैं क्रिटिसिज्म ले लेता हूँ, आज वाला नहीं ले पाऊँगा मैं। तो अगर आप लंबी कहानी सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, आज प्रॉबेबली सबसे लंबी कहानी होने वाली है और पूरी पूरी फिल्म है भाई, फिल्म खींच देंगे आज। अब जरा व्हाट्सएप मैसेज देख लूँ मैं। फरद भाई कह रहे हैं सलाम अलैकुम कबीर भाई, खैरियत से, आज का क्या है, कल तो काफ़ी रायता फैल गया था और भाई पॉसिबल टू विश हर बर्थडे, नो नीड टू विश, ओके ओके। तो फरद भाई कहाँ विश करना है, अभी इधर विश करूँ कि आपको अलग से विश कर दूँ। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आज दुग्गल साहब सर्कस मास्टर है जी सुभाष भाई। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम दद्दू, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, लिखते हैं टिकट कटवा लो सबसे आज भाई टिकट। देखिए मैं आपको बताऊँ, आसिफ आलम साहब मज़ा आने वाले हैं आज आपको। एक मैसेज है अजहर भाई फ्रॉम अलखोर का, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कैसे हैं आप। अजहर भाई क्या चल रहा है अलखोर में, कैसा मौसम है। जब बारिश हो ना अजहर भाई मेरे को टेक्स्ट भी, गाड़ी निकाल के तुरंत भागूंगा। मोहसिन भाई वालेकुम अस्सलाम, रोल नंबर 2 है मोहसिन भाई का, आ चुके हैं। इनके बाद एक फोटो भेजा भाई ने अपना, ग्रुप फोटो, गुड मॉर्निंग। और भाई कल कुछ बच्चों का हिंदी का एग्जाम था, तो जितने बच्चे हैं जिनके कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम्स हो तो बताएं ना कैसा लगा। सो 6:62 वो भी है, और तमाम माँ बाप को और बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं अभी स्कूल और ऑफिस की, या माँ बाप ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम, बहुत बहुत सारा प्यार खुली बाहों से। एंड सुबह के अधिकार के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बट रिमेंबर आज की कहानी फिल्म है भाई, पूरी की पूरी प्योर सिनेमा। आज तक मतलब 5 सालों में मैंने ऐसी कहानी नहीं सुनाई है आपको, मैं क्लेम कर रहा हूँ, खुला क्लेम, समझ रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। सो 6:62 नंबर है, आ जाइएगा, आई होप आप आ जाएं, क्योंकि आज कहानी भी मैं 7:30 की जगह 7:20 पे शुरू करूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह के अधिकार के बाद, तरह भाई की आवाज़ में मुलाकात होती है 10:33 के बाद। जाना आप रहे नहीं, सबसे बेस्ट जगह पर हैं आप, स्टे ट्यून्ड।
1: एक पुरसकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है, इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله.

आ रहे हैं फरद भाई, कैसे फरद भाई को बहुत सारा प्यार। एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग अंकल कबीर फ्रॉम दनीन एंड रतवा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज दोनों बहुत तैयार लग रही हैं। मतलब आज लग रहा है कि बहुत ही कुछ खास होने वाला है। टुडे वी आर गोइंग विद मॉमी एंड वी आर हैप्पी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो आज मम्मा के ड्रॉप करने की वजह क्या है, हमारी बहन बताइए। बहन आज कुछ खास है, मतलब मुझे लग रहा है कि आज दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं या डेली कैसा रहता है। आई वॉन्ट टू नो। एक और मैसेज है भाई, अच्छा ओ ओके फरद भाई, आई विल लेट यू नो। मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन भाई बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन चूज़ किया आपने, ऑप्शन टू इज़ अ बेटर ऑप्शन मेरे भाई। ओके तो एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम शहजादा सलीम। वालेकुम अस्सलाम शेखू, क्या हाल है तुम्हारी। हाँ तो मैं ये कह रहा था आपसे कि आज की जो कहानी है, है ना, ऐसी कहानी मैंने कभी नहीं सुनाई आपको, 5 सालों में नहीं सुनाई है ना। आई एम क्लेमिंग दिस राइट नाउ, आपने नहीं सुनी होगी ऐसी कहानी और ना मैंने कभी अटेम्प्ट करी इतनी लंबी कहानी। तो आज जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये बहुत ही अलग है, मैं सही बता रहा हूँ। मुझे खुद ऐसा लगा आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम कि मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है। मैं इतनी तैयारी कर चुका हूँ ना इसकी, मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि अभी मेरा एग्ज़ाम होने वाला है कुछ देर में। मैं सच बता रहा हूँ, वही वाली फीलिंग है मेरी। और मैं जितना एक्साइटेड हूँ उतना ही नर्वस भी हूँ आपको सुनाने के लिए, बिकॉज आई डोंट नो कितने लोग इसको पूरी तरह से सुनेंगे। पर जिन लोगों को लंबी कहानी नहीं पसंद है भाई, मैं पहले ही बता दूँ लंबी कहानी है। जिनको पसंद है यू विल डेफिनेटली सी अ मूवी। मैं सही बता रहा हूँ, सुन के आपको पिक्चर नजर आएगी, जिस बात का पूरा पूरा वादा है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, ये फिलजा खान जी ने मैसेज किया। एक मैसेज है, डिफरेंस द ब्रेकफास्ट लेट अनफॉर्चुनेटली, बस चली गई। अरे रे रे, अच्छा दनीन और रद्वा की बस ही निकल गई, देसी पीपल थिंग। मैन आई एम विद यू ऑन दिस, बहुत बढ़िया। बट क्या धनीन और रद्वा को बस की याद आ रही है? मतलब आई एम प्रिटी श्योर आती तो होगी, उन्हें पसंद कितना है ये रेशियो जो है ना बच्चों से पूछना चाहिए। क्योंकि हमें लगता था माँ बाप छोड़ने जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं बस में जाने दो। वैसे हमारी बस की जरूरत नहीं थी, हमारे तो मोहल्ले में ही था, बट फिर भी। सुम्बुल भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, वांट टू नो अबाउट यस्टरडे, क्या किया आपने अप्रिसिएशन डे पे? मुझे क्या करना है अप्रिसिएशन डे पे, पूरा शो करके घर गया मैं? कोई आसान हल्की बात है ये है? एक मैसेज है अलीना की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम कबीर अंकल, हाउ आर यू? अलीना मैं एकदम बढ़िया, बच्चे आपके क्या हाल है, हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स? एक मैसेज है खलील फराचा साहब का, कबीर भाई सेंड मी स्टोरी प्लीज। भाई मैं अभी आया हूँ, चाय का एक घूंट तक नहीं पिया है भाई। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, डिस्क्लेमर की जरूरत नहीं है, आपका नरेशन हमेशा ऐसे ही रहता है कि पिक्चर अपने आप पेंट हो जाती है लिसनर्स के लिए। ये तो आपकी मोहब्बत है हिदायत भाई, लेकिन हिदायत भाई आज की जो स्टोरी है ना भाई, अगर आपने सुन ली, ईदर यू विल से कि ये बेस्ट था या फिर आप बोलेंगे लंबी हो गई। मतलब मैं इसी बात को लेकर थोड़ा सा डर रहा हूँ आज। आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 5 सालों में मुझे डर लग रहा है कहानी सुनाते हुए, मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा मैं सवाल पे आता हूँ, बिकॉज आज का सवाल ही बड़ा ज़रूरी है। मेरे घर पे ना 2-3 चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जो मैं बहुत दिल से लेके आया हूँ, पर मैंने उनको कोई इस्तेमाल नहीं किया, अभी भी ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई हैं, इट्स दे जस्ट एग्जिस्ट। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर में भी कुछ ऐसी चीज़ है जो आप बड़े दिल से लेके आए थे, वो बड़ी ही यूज़फुल आपको लगी उस टाइम पर, लेकिन मोमेंटरी लगी, आज की तारीख में उसका कोई काम नहीं है या फिर आप उसका इस्तेमाल करते ही नहीं है? मैं शुरुआत करता हूँ, मैं लेट मी स्टार्ट। ओके तो मैंने बाकायदा अच्छे खासे रियाल खर्च करके मैंने एक पूरा अपना नाम का जलता हुआ लोगो जो है, लाइट से जलता हुआ लोगो जो है वो मंगाया, ठीक है भाई। वो आज भी मेरे सोफे के पीछे पड़ा हुआ है वो। क्योंकि उसे लगाने में मेहनत, मैंने कहा अरे ये तो मेहनत लगेगी, इसे तो ड्रिल करना पड़ेगा, वो इतना बढ़िया है ना, मैं लगा दूँ तो बहुत अच्छा लगेगा, पर वो अभी भी मेरे सोफे के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे बहुत रिग्रेट है भाई, मैंने उस पर 700 रियाल खर्च किए, दिल लगा के सही बता रहा हूँ मैं। वो कबीर लिखा हुआ है बड़ी प्यारी राइटिंग में, और वो अगर दीवार पर चिपक जाए तो वो बहुत प्यारा लगेगा, पर वो रखा हुआ है घर में। डेली सोचता हूँ आज तो पक्का दीवार पर लगाऊंगा, लेकिन मैं हमेशा भूल जाता हूँ, या यूँ कह लीजिए कि आउट ऑफ आलस नहीं कर पाता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके घर पे भी कुछ ऐसा है जो बस आप ले तो आए घर पे, लेकिन उसका कोई काम धाम नहीं है, पड़ा हुआ है वो घर पे, एंड यू काइंड ऑफ रिग्रेट की रिग्रेट इतनी तो पता नहीं, ये है कि यार ये ला के तो रख दिया। एक मैसेज है, सुबह सुबह चोरी करनी पड़ी। बहन वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये चोरी आपने कहाँ से करी सुम्बुल बहन, मुझे ज़रूर बताइएगा। एक मैसेज है, कबीर भाई फ्रेश दूध की चाय पीनी हो अलखोर आ जाओ। बहुत बढ़िया आपका सजेशन है, तो मैं गाने वाने चला के अलखोर निकल जाऊँ फिर। भाई बहुत सारा प्यार नौशाद भाई, बहुत बहुत बहुत सारा प्यार आपको। यासिर भाई आपका नाम क्या है, मैं कन्फ्यूज हूँ, क्योंकि आपने जो है जो अपना नाम व्हाट्सएप पर लिखा हुआ है वो, अच्छा अबू यासिर लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी मैं समझ गया।

0: नजीर भाई मैं आपके साथ हूँ। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैसेज क्या है भाई ने, अजीज भाई ने, अजीज भाई क्या हाल है भाई, अजीज भाई। एक और मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपके ने नाम नहीं मेंशन किया, इमरान नाम है आपका, नॉट श्योर। आपने तीन चार नाम लिखे हुए हैं तो इमरान भाई लिखते हैं कि कबीर भाई मैंने एक चाइनीज़ वेबसाइट से चार शर्ट मंगाई थी, लाल हरे पीले और काले रंग की, अभी तक नहीं पहनी। ये लाल हरे पीले रंग की क्यों मंगाई थी? अरे यार देखा, एयर फ्रायर की एक और कहानी आई भाई। जकी भाई भी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं इनके घर भी एयर फ्रायर रखा हुआ, अभी भी यूज नहीं हुआ। बाय बाय बाय बाय बाय बाय। मैं आपके साथ, ये घर घर की कहानी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हर घर एयर फ्रायर आता है क्योंकि वो कई मरतबा ऑफर में दिख जाता है और लोग उठा लेते हैं उसे और घर ले जाके सोचते हैं भाई इसमें क्या मस्त ऑमलेट बनेगा, इसमें क्या, मैंने एक बार वीडियो में देखा था क्या मस्त चिकन बनता है भाई, एकदम हेल्दी। कुछ नहीं बनता उसमें, घर जाके कोई नहीं बना रहा उसमें, वो पड़ा रहता है बेचारा, कोई पूछ नहीं रहा। जकी साहब बाद में लाइए। अस्सलाम वालेकुम। एक मैसेज है, जूसर मशीन 2 साल पास हो गए, नेवर यूज्ड। मोहम्मद दिलशाद भाई यू डिजर्व्ड इट। क्या बात है भाई, मैं बताता हूँ जूसर मिक्सर मशीन का हमारा क्या हाल है। मेरे घर पे भी रखी हुई भाई वो मशीन। उसका पता क्या काम है, उसके साथ हर हफ्ते हम वादे करते हैं उस मशीन के साथ। हर हफ्ते वीकेंड पे मैं उसकी तरफ देखता हूँ और हम जो घर वाले हैं वादे करते हैं, आज यार इसमें ना एक ऑरेंज जूस निकालते हैं यार, देखते हैं क्या होगा, शाम को बनाएंगे पक्का। शाम आ जाती है, रात हो जाती है, अगला दिन आ जाता है, सैटरडे आ जाता है, उसे कोई टच नहीं करता भाई। एंड ऑफ द डे बाहर से आ रहा होता है ऑरेंज जूस। तो ये जो जूसर की कहानी है ना भाई, जूसर मशीन वाली, आपकी जूसर मशीन को 2 साल हो गए, मेरे वाले जूसर मशीन को हो गए 1.5 साल, और उसने बिचारी ने एक मरतबा, आपके तो सील पैक्ड है, आप तो और महान है, मुझसे आगे की चीज़ें आप, मैंने उसमें एक मरतबा कम से कम जूस तो निकाला है। भाई एक मरतबा तो इस्तेमाल कर लो अल्लाह के बंदे। एक और मैसेज है, मैंने सी है क्या साफ करने के लिए, सी साफ करने वाली चीज लाई थी बस एक बार, क्या साफ करने वाली चीज लाई थी आप। एक मैसेज है, मैंने आयरन मंगाई थी, आज तक यूज नहीं की, अभी तक पैक्ड है। तो ये कौन से अजीज भाई, कौन से मोमेंट पे आपको लगा कि ये प्रेस मैं कभी इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं? वाई सलीम साहब कहते हैं कबीर भाई 2019 में 17 की तरफ से टी शर्ट मिली थी, टी शर्ट अभी तक मेरे पास है, लास्ट वीक फ्राइडे जब लिसनर के साथ मिला तब पहनी, जब भी पहनी वहाँ नहीं लगती, अभी भी है मेरे पास, नहीं तो आपने यूज़ कर ली ना। कमालुद्दीन शेख साहब वालेकुम अस्सलाम भाई। और एक मैसेज है, मीत भाई लिखते हैं गुड मॉर्निंग भाई, मेरी वाइफ ने इंटरनेट से देख कर मेरे को कन्विंस करके एक छोटा सब गोल इलेक्ट्रिक रोटी मेकर मंगवा लिया, कभी रोटी नहीं बनी उसमें, डेली रोटी मेकर घर पर देख के मेरा बीपी बढ़ जाता है, फिर मैंने उठा के क्लीनर को दे दिया। ये मेरा भाई, एक कॉल आ रही, रुक जाओ। अरे रे रे रे, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम भाई, आवाज ऐसे कट रही है आपकी। हेलो हेलो।
1: देख देख के वो, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, बस वही हाल है।
0: क्या क्या क्या आपकी आवाज कट गई थी, क्या क्या मंगाया आपने, क्या है आपके पास?
1: बहुत से ऐसे सामान हम लोग मार्केट में देखते हैं और इतने
0: नेटवर्क के क्षेत्र से आप बाहर हैं, मेन मुद्दे की बात नहीं आ पा रही इनकी, बाकी सब
1: जबरदस्त, ना तेल की जरूरत ना उसकी जरूरत, और इतना जबरदस्त, ये तो बिल्कुल समझ लो कि हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है, लेकिन जब लेके आते हैं और उसको बनाने के लिए ये करते हैं ना, तो फिर समझ में नहीं आता कि यार उससे अच्छा तेल डालो और उसके अंदर उठा के छना नाना फ्राई कर लो, वो सबसे
0: ये पता, जितनी चटोरी जुबान वाले ना वो सिर्फ अपने आप से बात करते, भाई आज तो आपका भाई बादाम का आएगा भाई बढ़िया करके, वो पड़े रहते हूं। समझ रहा हूं मैं,
1: तो ये हाल है, तो हाँ वो हाला बेहतर है, लोग जो मतलब ये जो इसको मतलब फ्राई करने वाला जो आइटम आया हुआ है मेरे ख्याल से बेहतर है, लेकिन
0: फिर से आपकी आवाज चली गई है, अफसोस। आप पता नहीं कौन से सेंटेंस पे भाई की आवाज,
1: खरीद के ले आते हैं लेकिन वो रखा रहता है बेचारा, उसका महीनों तक नंबर नहीं आता पहनने के लिए
0: भाई, महीनों तक या सालों तक बात चल रही है भाई, 2-2 साल तक, मतलब बिल्कुल
1: बिल्कुल बिल्कुल एग्री है, मैं बहुत ज्यादा नहीं ओवर नहीं किया बस ऐसा भी मेरे।
0: फिर आपकी आवाज जा चुकी है भाई, का नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होने की आदत जो है अभी बनी हुई है।

0: दुकानों के कि वो भाई महंगे ले लेते हैं, फिर वो डैमेज नहीं होता तो मेरा आदत है कि उसको फेंकने का, ऐसा ये करने का, या तो किसी को दे दिए किसी के लायक है तो, नहीं तो फिर वो देख के पैसा उस पे लगा रहता है तो फिर देख के लगता है कि यार इसको ये ऐसा इधर करके फायदा नहीं है।
1: सुधर जाओ फिर भाई, भाई आपको भी मौका आ गया, सुधर जाओ सारी पब्लिक सुधर जाओ, अभी भी मौका है।
0: नहीं बहुत से हम लोग ग्रोसरी मार्केट में भी जाते हैं, बहुत से ऐसे सब्जी, बहुत से ऐसे सामान को जो कि बाद में फिर फेंकना ही पड़ता है, रखा ही रह गया उसके नीचे।
1: अरे यार आप
0: उसके नीचे, तो ये सब चीजें हमें ख्याल करना चाहिए।
1: आज मुझे अपने ही घर की तलाशी लेनी पड़ेगी आपके चक्कर में भाई, आपने ऐसा मुझे गिल्ट फील करा दिया ना।
0: बस वही हाल है कि बंदे को जब मार्केट में घुसते ना तो इस तरीके से बंदे के, और ये जो 99 रियाल वाला जो ये एक रियाल,
1: हाँ मैं समझ रहा हूँ 99 और 89 रियाल वाले जो आइटम है, समझ रहा हूँ।
0: ये जो मतलब 50 से 1 रियाल कमती करके 49 वाला ना, तो वो बंदे को इतना कम लग रहा है कि जैसे कि 1 रियाल उसके लिए कितना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है।
1: यही तो स्ट्रेटेजी है मेरे जान, यही तो स्ट्रेटेजी है। मगर बहुत बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने कॉल करके बताई हमें। आज आपके चक्कर में बहुत सारे लोग गिल्ट ट्रिप में गए, इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ, देखते हैं क्या होता है। और बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ठीक है भाई, ख्याल रखिए। ओके मेरा भाई,
0: सुन के अच्छा लगा,
1: थैंक यू भाई।
0: ये सब कहानी जो बता रहे थे आप, और आपके लिए मैंने एक ये रखा था कि उसने कहा कि मैंने आज डॉक्टर को दिखाया, बोला हाँ दिखाया, बोला क्या,
1: जोक चला गया भाई आपका। हेलो,
0: हाँ तो बोला रहा हूँ कि दूसरे डॉक्टर को दिखा लूँ
1: भाई। आप आपकी
0: नहीं
1: क्योंकि आपकी आवाज कट गई भाई बीच में, आपका जो लैंड ही नहीं हुआ, जहाज तो उड़ा लेकिन लैंड नहीं हुआ, आवाज कट रही है आपकी बहुत ज्यादा।
0: अच्छा
1: मुझे लिख के भेज देना मेरा भाई। और लेवन की कॉल ही कट गई। अच्छा कुछ मैसेजेस है मेरे पास, मैं पढ़ देता हूँ। एक मैसेज आया, कुछ साल पहले रोलर स्केटिंग का भूत चढ़ा था, ये मुझे भी चढ़ा था, ये लो, यू डिजर्व्ड इट भाई। लिखते दो तीन साल गिरना हुआ, अभी वो स्केट जो है घर में किसी कोने में पड़ा हुआ है भाई, मैंने छुपा के रखा है, अगर दिख गया ना घर वाले छोड़ेंगे नहीं मुझे। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, डंबल सेट लाके सोफे के पास रखा है, कल से उसे यूज करेंगे, कल करके अभी तक वो कल नहीं आया भाई। आशिक मलिक भाई, ये जिम वाली डिजर्व्ड, वेल डिजर्व्ड हॉन भाई। एक मैसेज है, घर में रख कर भूल गया, मैं भी एक कार खरीदा हूँ उसको, कोई कार खरीदी आपने, क्या मतलब है आपका कार खरीदी और घर में रखी है, खिलौने वाली ना, क्या कहना चाह रहे हो। तब उससे मैंने लिख दिया, अस्सलाम वालेकुम भाई, एयर फ्रायर हमने भी लिया था, 2 साल में 2 बार यूज किया है, लास्ट वीकेंड मेरे हस्बैंड ने बोला इसको सेल कर देते हैं, मैंने बोला नहीं, उसमें खाना बनेगा तो तेल कम यूज होगा, इट्स जस्ट सिटिंग इन द कॉर्नर लिसनिंग आवर गॉसिप्स। और एक इलेक्ट्रिक फुट मसाजर भी मंगाया था, वो अभी तक यूज नहीं किया है। मैन यू डिजर्व्ड इट, आई विल टेल यू व्हाई, आई टेल यू व्हाई। तो सबसे पहली कहानी जो आपने बोली ना, ये कोने पड़ रहा था, एक शख्स दोनों पार्टनर में से बोलता है इसे बेच देते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, इतना बुरा लगता है ना उस एयर फ्रायर को, आपने कभी सोचा है उस एयर फ्रायर के बारे में, वो सोच रहा होगा मालकिन जाने दो मुझे किसी और के घर, प्लीज मुझे जाने दो, मालकिन कह रही नहीं यहीं बैठो कोने में, सुनो हमारी बातों को, किधर जाना है तुम्हें। तो ये एयर फ्रायर बेचारा, आई थिंक दिस इज द ओनली अप्लायंस जो सबसे ज़्यादा भुगतता है इस चीज़ को। और जो आपने फुट मसाजर की बात करी है, मैंने एक मसाजर मंगाया था, बढ़िया क्यूट सा दिखता था, वो आज भी पड़ा हुआ है, उसे मैं देख के डेली सोचता हूँ, डेली कि क्या करूँ इसका, मैं इसे इस्तेमाल करूँ, बस ये कहकर रुक जाता हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम, एक मैसेज है भाई, अभी तक कोई मोटिव नहीं मिला। बाकी एक मैसेज आया है आयशा की तरफ से, मेरी मम्मा के पास एक पूरे कैबिनेट कप्स के लिए रखी है। अच्छा, मेरी मम्मा ने एक पूरा कैबिनेट कप्स के लिए रखी है, एक कप तो मैंने 4 साल पहले लिया था, अभी तक वहीं का वहीं रखा हुआ है। वेल डिजर्व, वेल डिजर्व, वेल डिजर्व। ये जो माओ की शिकायत कर रहे हैं बच्चे, मैं समझ सकता हूँ, एंड आई कंप्लीटली एग्री, ये हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी। अच्छा कुडोस टू यू, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, कभी तो काम आएगा। एक मैसेज और है, अस्सलाम वालेकुम, हेलो ब्रो, मैंने अपने छोटे साइज वाली टी शर्ट परचेज की थी 2 साल पहले, ये सोचा था कि वेट लूज करके पहनूंगा, बट आज तक वैसी पड़ी है, एंड एक्सरसाइज साइकिल भी खरीदी थी वो भी ऐसी ही पड़ी है, अभी कपड़े सूखते हैं उस पर भाई। वेल डिजर्व्ड, क्या पब्लिक है भाई, माशाल्लाह क्या पब्लिक है भाई। भाई ने फ्यूचर का सोचा,

आगे आने वाले वक्त में मैं पतला हो जाऊं। ये क्यों, ये तो आप भाई बहुत आगे निकल गए यार, आप छोटी मोटी चीज नहीं है भाई, आप बहुत आगे की चीज है। तो सवाल मेरा ये है, ये कौन सी ऐसी चीज है जो आपके घर में पड़ी हुई है, जो आपने ली थी ये सोच करके भाई ये तो मैं यूज करूंगा भाई बहुत यूजफुल चीज है, लेकिन घर पे कोने में पड़ रही है, सड़ रही है। जैसे मेरे घर पे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से एक एयर फ्रायर है, अभी तक वैसे का वैसे ही पड़ा है, 2 साल पहले बेचारे की फौत भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, उसकी रूह वहीं बैठी हुई है सोचकर कि कभी ना कभी कबीर साहब बोलेंगे कि मुझे आज एयर फ्रायर में खाना है। वो दिन ना कभी आया है, सैडली ना कभी आएगा, बट और मेरे नाम का बड़ा सा लोगो रखा हुआ है दीवार पर चिपकने के लिए, वो बेचारा नज़रों के सामने रहता था, मैंने गिल्ट में आके उसे सोफे के पीछे छुपा दिया है। कितना बुरा हूँ यार मैं, आज मुझे अंदाजा हो रहा है। नहीं नहीं आज आज उसे दीवार पे चिपका के रहूंगा मैं फोटो भेजूंगा आपको, आप लोगों, मैं गारंटी।

0: अस्सलाम वालेकुम कबीर जानी, गुड मॉर्निंग। ट्रेड में लिया था 6 महीने पहले, अभी कपड़े सुखाने के काम आता है। ये हर घिसी के घर कपड़े ही सूख रहे हैं ट्रेड मिल पे भाई। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। और जनाब खैरियत से हैं?
0: बस जी खैरियत से, हमें कौन छू सकता है ये बताओ।
1: क्या भाई, तुमने उसके फ्रायर के फातिया वगैरह नहीं पढ़वाई?
0: भाई वही चल रहा है भाई, मैं तो क्या बोलूं। आप बताइए क्या सीन है जैसे भाई, आपके पास क्या है ऐसा भाई?
1: भाई दो ब्रांड के जो है ना हेयर जेल लेकर आया था, मैं उनका यूज करूंगा।
0: हेयर जेल लेके आए थे? वाह वाह वाह वाह वाह।
1: और वो ऐसी के ऐसी रखे, आज तक उनको हाथ लगा के नहीं देखा।
0: क्यों भाई? एक तो मुझे बताओ, हेयर जेल ला के कौन यार ऐसे रखे रहता है यार? कोई तो मकसद होगा आपका लाने का कि मैं कल से पहनूं। ये तो लगाने वाली चीज है भाई।
1: भाई वही तो चीज है ना, मैं सोचता हूँ लेकर आया ब्रांड है अच्छे वाले, कोई ऐसे वैसे नहीं है, ठीक है, नॉर्मल ही है, इतने हाई फाई भी नहीं होंगे। रखे हैं मैंने, कल को लगाएंगे, कल वो साला कल ही नहीं आ रहा भाई।
0: वेरी नाइस यार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार। ये मैं पहली मरतबा सुन रहा हूँ कोई बंदा जेल लेके आया और नहीं लगा रहा यार। ये तो मतलब भाई आप डिजर्व करते हैं भाई।
1: बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं लेके क्यों आया था।
0: जैस भाई आपके लिए पहली बार भाई, वेल डिजर्व्ड यार, वेल डिजर्व्ड। ये मैंने नहीं सोचा था भाई, आप पहले बनते भाई।
1: अच्छा दूसरी बात ये भी है ना भाई, फेंके नहीं है, एसी के एसी रखे हैं
0: यार।
1: 3 साल होने वाले,
0: 3 साल होने वाले हैं
1: एसी के एसी रखे, फेंके भी नहीं
0: भाई। कहीं बढ़िया सी गीली मिट्टी देख के थोड़ा खुदाई करके उसके अंदर छुपा दो भाई, ये क्या कर रहे
1: हैं? सेमेट्री मेरे पास में ही है भाई।
0: हाँ तो दफना दो भाई उसको घर पे, क्या मतलब उस पर कुछ कैंडल वेंडल लगाओगी कि ये कौन सा रोमांटिक बना है जेल के साथ भाई। हद हो गई यार, 3 साल में तो क्या बन गया होगा बेचारे का है क्या?
1: हमारी अधूरी कहानी।
0: हाँ ये अच्छा तो, पता है आपकी वजह से मैं सोचने मजबूर हो गया हूँ कि जेल के पीछे भी कहीं पे साइड में एक्सपायरी डेट होती होगी कि नहीं भाई। ये तो मतलब आपने मुझे सोच में डाल दिया यार।
1: एक्सपायर तो हो गए होंगे भाई, 3 साल होने वाले हैं।
0: हाँ
1: ऐसे कैसे रखे हैं भाई साहब? बिल्कुल
0: भाई, मैंने
1: अभी तक उसमें से ये नहीं है, ये भी नहीं था, मैं टेस्ट करके देख लूँ, उसमें लगा के देख लूँ कि कैसा है कैसा नहीं।
0: वो भी दो दो लेके आए
1: मीडियम में, दो दो भाई।
0: कितने रियाल फूके आपने इस पे?
1: वो मैं पर्सनली बता दूंगा भाई।
0: हाँ ज्यादा ही,
1: समझ
0: गया भाई, मैं ज्यादा ही फूके भाई। सलूट है सर आपको, आप तो हम सबसे आगे हैं भाई, बहुत आगे की चीजें आप, आपकी जरूरत है देश को। भाई आपकी जरूरत है देश को, आप अपना टाइम खोटी कर रहे हैं आप। अलग लेवल की चीज है भाई, वेरी नाइस जस भाई, आई एम सो प्राउड ऑफ यू भाई। और बिटिया को कल क्या गिफ्ट दिया आपने बर्थडे पे? क्या गिफ्ट हुआ फिर, क्या हुआ कल? चलो बहुत अच्छी बात है।
1: मेरे जो है ना भाई, मेरे जो है ना सारे के सारे जितने भी बर्थडे हैं, एनिवर्सरी है ना, सब इसी महीने में आते हैं।
0: वेरी नाइस, एक ही महीने का खर्चा है सारा का सारा
1: भाई। हाँ 7 तारीख से स्टार्ट होकर 14 तारीख में एंड हो जाता है।
0: वेरी गुड भाई, ये बहुत अच्छी चीज है, बताए ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत बढ़िया जस भाई।
1: मैडम का बर्थडे 7 में, बेटी का बर्थडे 24 उसमें 20 में, और एनिवर्सरी हमारी 24 में भाई साहब आ रही है।
0: क्या यार प्लानिंग में मास्टर है भाई, मैं कहता हूँ आपकी जरूरत देश को है मेरे भाई। निकल जाइए वापस, क्या बात है जैस भाई, सो प्राउड ऑफ यू भाई, थैंक यू भाई,
1: थैंक यू भाई।
0: जेल के बारे में बताना मुझे, मैसेज करके, ठीक है? आई वांट टू नो।
1: बिल्कुल
0: ओके ओके जैस भाई, ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज। तो जैस भाई की बात, कुछ मैसेज है भाई, ये सब छोड़ो, जो बिल्ली गुम गई है 1 लाख रियाल का इनाम ना, ये ढूंढो भाई, ये ढूंढो, मैं सही बता रहा हूँ, उसको तो ढूंढो। एक मैसेज इरफान भाई लिखते हैं, यार आई बॉट अच्छा ये सोच के कि यूरोप ट्रिप पे जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा, वीजा ही रिजेक्ट हो गया। इरफान भाई के लिए वेरी नाइस वेरी नाइस। एक मैसेज है, पुराने कपड़े लोग रखते हैं कि पतले होने के बाद यूज करेंगे, लेकिन पहले से ही छोटे साइज का कपड़ा कौन लेता है? ये तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है भाई की। और तब उस समय लिखते हैं, ब्रिलियंटली ह्यूमरस शो कबीर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह थैंकफुल दैट आई गॉट टू स्ट्रेच फेस मसल्स विद लाफ एवरी मॉर्निंग इन द शो। हेयर जेल से याद आया, सम लेडीज विल रिलेट, 7,000 नेपाली रुपीज की स्किन केयर लेकर आई थी लास्ट ईयर, अभी तक आधी बॉटल भी खत्म नहीं हुई। वेल डिजर्विंग, शानदार बहन। क्यों तो आपकी सखी सहेलियों को आपने इस राज के बारे में बताया कि आपके पास है ये चीज, एंड यू आर नॉट एक्चुअली एक्सपेडाइटिंग। माज भाई कहते हैं बीवी के कपड़े उसके बाद कहते

0: होती है, पहनने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा है, मोना बहन सुन रही हैं आपको, अपने जीवन से ज़्यादा प्यार है नहीं। माजू बेटे सुधर जाओ, लाइन पे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो
1: हेलो सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम भाई, आपका नाम?
1: हाँ कबीर भाई, कैसा है?
0: बढ़िया भाई, एकदम शानदार। मेरा जान, आपका नाम क्या है, नाम बताओ।
1: मेरा नाम नूरुल इस्लाम है।
0: नूरुल भाई बताओ,
1: आज से 3-4 दिन पहले आपका क्वेश्चन था, किसको डर लगता है इस बात में, सही है?
0: नहीं नहीं, आज उस बारे में बात नहीं करनी। ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना
1: नहीं नहीं नहीं, उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है हमारा कबीर भाई है ना, FAI है, हर चीज का जानकारी कबीर भाई के पास है।
0: थैंक यू भाई।
1: तो मुझे डर लगता था उसी बात का, जो ATM में कार्ड डालता है ना, ATM में, ATM का मशीन का अंदर, तो वो कभी कभी फंस जाता है, वीडियो में देखते हैं। तो मेरा अक्सर जिंदगी में नहीं हुआ, लेकिन कल में शायद पहली बार डाला हुआ है अंदर। मैं आजकल बाहर से स्कैन करता हूँ तो हो जाते, लेकिन कल क्या किया, अंदर डाला और फिर से मारा, पिन सब कुछ सही है, पैसा का रिसीट आया, लेकिन कार्ड बाहर नहीं आया, पैसा भी नहीं आया, कार्ड भी नहीं आया। अभी बोलता है सिक्योरिटी, बोलता है भाई तुम्हारा कार्ड गया, नहीं आएगा बाहर।
0: अरे भाई साहब,
1: इसके लिए इतना मगजमारी किया है, फोन किया है, फोन किया है, मेरा कार्ड था HSBC का,
0: मिल जाएगा। मेरे साथ हो चुका है भाई, मेरे साथ दो बार हो चुका है।
1: नहीं अभी कैसे मिलेगा, मतलब मेरा QNB का नहीं है, HSB का है
0: भाई। ये सारी बातें मैं ऑनियर में ऑनियर नहीं कर पाऊंगा, ये सारी बातें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रांड्स के नाम है। आप मैसेज पे जाना, मैं समझा दूंगा नूरुल भाई, ठीक है? मैं इधर नहीं कर पाऊंगा।
1: मैसेज का नंबर क्या है?
0: 666-22107 666-22107 उस पर जाओ, ठीक है? लिखो 666-22107
1: मैं करके
0: अरे भाई इतने सर्कस मत करो भाई, तुम फोन काटो। और ये
1: 666-22107
0: ठीक है,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नहीं नहीं नहीं, तुम इधर बात मत बढ़ाओ। अरे मेरी बात सुनो नूरुल भाई, इस बारे में मैसेज पे आओ यार, टॉपिक मत खराब करो हमारा, कुछ और चल रहा है, ठीक है? आओ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो अस्सलाम वालेकुम मिस्टर आसिफ। हेलो,
2: सलाम वालेकुम भाई।
0: वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं तो किसी को छोड़ता नहीं आसिफ।
2: सुबह सुबह
0: डाका
2: सुनना पड़ता
0: हूँ। बस भाई तो नौकरी पेशा है मेरा
2: भाई, वो बंदा इतनी उम्मीद लेके आया तुम्हारे पास।
0: अरे तो मैं उम्मीद मदद करूंगा मैं भाई की, ऐसी बात नहीं है, मैसेज में मदद कर दूंगा उसकी।
2: भाई गले पड़ गया भाई, नहीं भाई रुको।
0: मैं थोड़ी बैंक का टेलर हूँ भाई। झगड़ा ले लिया इसी वजह से भाई, बहुत लोग मुझसे चिढ़ते हैं, बट इट इज ओके, फाइन, एज लॉन्ग एज चल रही है सब कुछ सही है
2: भाई। बहुत मतलब सुबह सुबह ये बंदे ने हंसा के चले गया, कुछ भी बोलो भाई, तुम्हारे
0: कुछ अलग एनर्जी। एनीवे आसिफ भाई, आपके पास ऐसा क्या है भाई जो रखा हुआ है और आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं भाई?
2: अरे भाई हम गरीबों के पास कुछ नहीं मिलेगा, सब्जी ला के रखे अभी तक, सोचे बनाएंगे मगर बनाए नहीं, 4 दिन हो गया।
0: तो उसको सड़ा के बनाओगे क्या, कुछ हो सकता है आपका अलग प्रोसेस हो
2: गया? बाहर फेंकने का भाई,
0: फेंक दो भाई, अल्लाह के बंदे मत करो ऐसा यार।
2: तो भाई मेरे पास एक है यार भाई, वो बाल सुखाने वाली मशीन, ला के भाई कम से कम उसको 6-7 महीना हो गया है।
0: तो अभी
2: एक दिन भी मैंने उसको यूज नहीं किया, एक दिन भी।
0: तो उससे बातें बातें करते हो, क्या करते हो मतलब?
2: नहीं भाई, मैं सोचा बाल बड़े करूंगा, पहले मैं सोचा बाल बड़े करूंगा, बाल नहीं बड़े किया, फिर छोटे फिर कटवा दिया। बाल क्या फायदा नहीं ना, बाल तो छोटे हो गए ना, फिर तो तुवाल जिंदा बाद अपना।
0: ठीक है भाई, अब तो मतलब आप सबके सब फ्यूचर का जो सोच रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, वो तो बेच दो भाई, फिर मुझे लगता नहीं है कभी वो हेयर ड्रायर आप यूज करने वाले, छोड़ दो
2: भाई। आपको याद होगी एक मूवी निकली थी शाहरुख खान भाई की, उसने एक टी-शर्ट, सबको टी-शर्ट मिल रही थी, आज तक वो टी-शर्ट वैसी की वैसी रखी है भाई।
0: तो भाई आप
2: मेरा नहीं आज तक का
0: भाई, आपकी आपको लेके मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सब भेज दो, सब भेज दो। और सब्जी ध्यान से फेंक देना बस भाई, इतनी मेरी इल्तिजा है, जी नहीं पाओगे वरना।
2: बिल्कुल बिल्कुल भाई, और बाकी सब खैरियत भाई?
0: सब बढ़िया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह।

0: अजी भाई सब शानदार एकदम, आप सुनाओ क्या चल रहा है।
1: मैं तो भाई इसीलिए फोन लगाया था, वो बंदा भाई आपका फोन नहीं काटा था ना, बीच में फोन लगाया था, क्या पता मेरा फोन उठा ले।
0: नहीं नहीं भाई, मैं तो बोल देता हूँ भाई खुला, आपको तो पता ही है, मैं तो नूरुल भाई को मैंने सीधा बोल दिया, नूरुल भाई देखो टॉपिक पे बात करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, मैसेज पे आ जाओ वरना, तो नूरुल भाई जब मैसेज करेंगे उनका मैटर मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है।
1: ओके मेरा भाई,
0: ठीक है अजी भाई, बहुत बहुत
1: शुक्रिया।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। और आसिफ भाई के बाद एक और कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपका नाम मेरे भाई?
2: उसामा।
0: उसामा भाई, आज सुबह सुबह मिला उसामा भाई ने चाय नहीं पी। उसामा भाई क्या हाल है भाई के?
2: ठीक है, आप बताइए।
0: बढ़िया भाई, एकदम शानदार। उसामा
2: भाई आपका लैंप पड़ा है ना पीछे सोफे के,
0: हाँ
2: इस तरह बहुत सी चीजें घर में पड़ी हैं, क्या क्या लिस्ट बताओ, बोलो लिस्ट बना दूंगा।
0: वो एक चीज जो भाई चुभती है आप वो बता दो यार, भाई कौन सी चीज चुभती है भाई जो घर में पड़ी हुई ऐसी है?
2: यार बहुत सी चीजें हैं, ट्रेडमिल हो गया, होम जिम हो गया।
0: होम जिम
2: नाम है यार, वो एक छोटा सा जिम आता है जिसमें आपके सारे यानी के सब स्क्वाट्स वगैरह सब कुछ आपको एक उसमें मिल जाते हैं, वो बस।
0: अच्छा तो
2: कभी व्हाट्सएप पे फोटो भेजूंगा।
0: तो कभी कभार मतलब शर्म वर्म आती है?
2: नहीं, वो उसमें मम्मी बस कपड़े सुखाती हैं बस।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह,
2: हम ये देसी फैमिलीज में उससे कपड़े टंगते हैं।
0: तो शर्म कब आएगी आखिर उसमें भाई, शर्म कब आएगी आपको और मुझे?
2: ऑर्गेनाइजर
0: जी, आपको और मुझे शर्म कब आएगी? ये सब चीजें हम बता तो रहे हैं, कब करेंगे उनको कुछ?
2: ये मालूम नहीं यार,
0: मालूम नहीं ना मेरे को।
2: असल में आता है वीकेंड आता है ना, हम कहते हैं इस वीकेंड पे पक्का करेंगे, लेकिन आप जो पूरे वीक के फेड अप हुए होते हैं ना, आप कहते हैं यार थोड़ा सा इस वीकेंड पे थोड़ा रिलैक्स कर लें, अगले वीकेंड से करेंगे यार।
0: यही मेरी कहानी है भाई। नहीं मुझे अब बहुत गिल्टी गिल्टी फील हो रहा है अपने लिए भाई, मैं बता रहा हूँ इस वीकेंड तो करके रहूंगा मैं कुछ ना कुछ। देखो आप,
2: हाँ ये आप मोटिवेट कर दिया,
0: मोटिवेट कर दिया ना, मुझे पता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दो रुपए का फर्क नहीं पड़ा।
2: इतने सारे ऑर्गेनाइजर, जब मार्केट जाओ भाई,
0: हाँ।
2: और ये ऑर्गेनाइजर लेना है, ये ऑर्गेनाइजर रखना है, लेकिन वो कभी यूज ही नहीं होता, यानी कि यूज होता है ऐसा नहीं है, यानी कि यूज होता है लेकिन वो बाद में थोड़े अरसे बाद साइड पे हो जाता है।
0: उसामा भाई मुझे लग रहा है कि आप थोड़े खर्चे वाले इंसान लग रहे हैं, मुझे ऐसा मुझे फीलिंग से आ रही है।
2: नहीं मैं खर्चे वाला नहीं हूँ,
0: तो
2: मैं नहीं लाता, अभी फैमिली लेके आती है, मैं ये बता रहा हूँ।
0: अच्छा ऐसा है, मतलब बंदा ऑर्गेनाइजर खरीद रहा है तो बहुत बड़ी बात है यार, उसको भी यूज नहीं कर रहे।
2: नहीं नहीं मैं तो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को कौन ना करता है।
0: वेरी गुड उसामा भाई, बट इस वीकेंड कुछ करना है भाई, इस वीकेंड उसामा भाई कुछ करना है, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, मुझे मोटिवेट करो भाई, कुछ तो करेंगे।
2: ठीक है ठीक,
0: ठीक है उसामा भाई, ख्याल रखो अपना मेरी जान। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। तो भाई मैं थोड़ी देर के लिए कॉल्स जो है रोक रहा हूँ, बिकॉज आई नीड टू रीड ऑल द मैसेजेस, बहुत सारे हैं। तला मैंने मैसेज किया है भाई, एक मंथ का खर्चा साल भर का कर्जा। मैं हंस क्यों रहा हूँ, ये तो बहुत बुरी बात। तला भाई क्यों छेड़ो यार, हमें जीने दो यार। और एक मैसेज है, कबीर भाई आज की स्टोरी सेंड कीजिएगा। अच्छा एक है, बादाम और वॉलनट लिया था भिगा के खाने के लिए, एक सर से पानी में, एक साल से पानी में डुबाना बाकी है। क्या बात कही मेरे भाई ने, वैसे सुना आपने क्या कह रहे हैं? शाह भाई कह रहे हैं भाई बादाम और लिया था वॉलनट, भिगा के खाऊंगा मैं, एक साल से उन्हें पानी में डुबाना बाकी है, एक दिन नाएगा तो यूं गाएगा। एक और मैसेज है, वन मोर थिंग, चाइनीज टाइप सॉसेस, सोया सॉस, स्वीट चिली, ऐसे यूनिक वाले सॉसेस, दे हैव अ परमानेंट प्लेस इन माय फ्रिज, लेते हैं जब ही यूज होता है, उसके बाद एक्सपायरी तक फ्रिज में रेंट पे रहता है।

और मैसेज है जैज भाई तो बोलो बाल क्यों बाल नहीं रहेंगे। हाँ जब यूज़ करोगे जब बाल नहीं रहेंगे जैज भाई सुधर जाओ यार। ये मैसेज क्या है कासिम भाई ने आपके लिए। और एक मैसेज है भाई भाई को पूछ लेना चाहिए कि जेल की डेट चली गई है सर के बाल निकल गए। मुझे जेल का सच में बुरा लगा मुदस्सिर भाई। आई कम्प्लीटली एग्री। ये जो जैज भाई ने मुझे बताया आई फेल्ट रियली बैड अबाउट इट। पता नहीं क्यों जबकि मैंने ख़रीदा भी नहीं है। और एक भाई ने मुझे अपने घर की बिल्ली भेजी बोले ये है मनी कैट। सब एक लाख रियाल पे अपनी नज़रें टिकाए हुए हैं। एक मैसेज है सैयद ख्वाजा मोहिद्दीन साहब का लिखते हैं आई हैव बॉट बुक्स टू अवॉइड मोबाइल एडिक्शन व्हेन एवर आई ओपन देम आई स्लीप। राजा भाई के लिए एक नंबर बात कह रहे हैं। मैंने किताबें खरीदी थी मोबाइल से बचूंगा किताबें खोलता हूँ सो जाता हूँ। कहानी खत्म हो जा रही है। एक मैसेज है कबीर भाई गुड मॉर्निंग मेरा एक फ्रेंड है हर बार जिम की एक साल की मेंबरशिप लेता है और कभी नहीं जाता और एक्सक्यूज देता है कि ये तो मैं जिम वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा हूँ ब्रो मैंने बुक्स मंगवाई थी पढ़ने के लिए आज तक शेल्फ पे पड़ी हैं। पर्सनल लाइब्रेरी खोलना उसकी गुरमीत भाई और फिर आपने दुनिया को कहना यार दीज आर ऑल माय बुक्स या आई रीड ऑल ऑफ देम यार द वेरी नाइस बुक्स यू हैव सीन दिस बुक्स या वेरी नाइस अच्छा लगता है इंटेलेक्चुअल फील आती है और किताबें खरीदो धनिया बोलो लोगों की ज़िंदगी में। एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम भाई आई पुट अ बाइसिकल फॉर माई सन्स बर्थडे यूज इट फॉर एग्जैक्टली 4 times इन पास्ट 3 weeks एंड नाउ इट्स बाउंड आउटसाइड माई हाउस कलेक्टिंग डस्ट एंड इंक्रीजिंग माई बीपी एंड टेस्टिंग माई पेशेंस। तनवीर भाई कह दो चोरी हो गई कह दो मऊ ले गई मऊ साइकिल गायब कर दो कह दो मऊ ले गई मऊ। अबू अहमद साहब लिखते हैं सुबह चलने के लिए जूते तो खरीद लिए लेकिन चलना आज तक नसीब नहीं ये गलती मैं करता ही नहीं भाई आई नेवर मेक फेक प्रोमिसज टू माई ओन सेल्फ। खलील भाई वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं। समीरा बहन ने मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग 2020 में ट्रेडमिल लिया था फिर बिना यूज़ के 3 साल बाद सील कर दिया। वेरी गुड बहना आगे लिखती हैं आज फिर से 2 महीने पहले ट्रेडमिल किया लिया है अब इसका टाइम आएगा पता नहीं। ये वाला भी बिकेगा बहन। जमाल भाई वालेकुम अस्सलाम और एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम जोश में एक प्रोफेशनल कोर्स लिया था ऑनलाइन कोर्स था 1 साल वैलिडिटी का एक क्लास अटेंड करी वैसे ही पढ़ाया। बाकी भाई लेट मी रिलेट टू यू स्पेनिश कोर्स लिया था भाई स्पेनिश कोर्स एडवांस कोने में पढ़ा भाई। रोज ने मैसेज किया है क्या है आदिवासी हेयर ऑयल 2 साल पहले लिया था अभी तक यूज़ नहीं हुआ। पहले कबीर भाई बाल तो लंबे हो गए लेकिन हेयर ऑयल यूज़ नहीं हुआ। ये तो आपके ऑयल की डर से अपने आप बाल बढ़ गए मत यूज़ करो से मैं ऐसे हो जाऊँगा। कबीर 500 mg इज आस्किंग हिज लिसनर्स अबाउट दोज आइटम्स दे बॉट एंड डिड नॉट यूज़ बाय द एंड ऑफ द शो ही विल अनाउंस टू ड्रॉप ऑल द आइटम्स एट FM 107 इमीडिएट पिक एंड ड्रॉप सर्विस ऑल्सो अवेलेबल। मैं ट्रक भिजवाता हूँ आप अपना सारा सामान उसमें भर दीजिएगा भाई। आई एम गोइंग टू प्रिंट माई कार्ड नाउ मुझे डर लग रहा है 666 इरफान भाई मत प्रिंट करो यार क्या क्या कर रहे हो घर पे कल्ट चला रहे हो आप ये कह रहे भाई। अरे माशाल्लाह जैस भाई ने फोटो भेजा अपनी बिटिया का। एक और मैसेज अस्सलाम वालेकुम हद से ज़्यादा बनाना दिल को मुर्दा कर देता है। मैंने बनाना के बारे में बात करी है इस जीके के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब कोई रीज़न होगा आपको बताने का मुझे बताइए आपने अचानक से मैं बड़ा दिल लगा के पढ़ता हूँ। एक मैसेज मोइन भाई का भाई घर में कुछ वेस्ट का नहीं है बट भाई कुछ है जो पड़े हैं जो है जो कहाँ बेचूँ समझ नहीं आ रहा दोस्तों के कॉन्टेक्ट नंबर जो कभी डायल नहीं हो रहे दिल का वो राज जो कभी एक हॉर्न में लेके आऊँगा जो मैं मोइन भाई के इस मैसेज के लिए बताऊँ इतना डीप नहीं जाना था भाई आप तो खामखा सुरंग में चले गए। वापिस आ जाओ मोइन भाई वापिस आओ मैसेज अच्छा ओके नूरुल भाई क्या हाउ टू गेट माय कार्ड मैं नूरुल भाई आपको अलग से बताता हूँ ठीक है कि एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई मेरा भी वही हाल है रमज़ान से फ्रिज में उनको पड़ाओ शरबत फिर रमज़ान आने वाला है हर जुमे को सोचते हैं कि इस जुमे को शरबत बनाकर पियेंगे जुमा अगर चला भी जाता ऐसा है अगले साल के रमज़ान तक वेट मत करो सरफराज भाई अगले साल तक वो शरबत किसी किस्म की दवाई बन जाएगी भाई। अच्छा हंसने के लिए भी था फिर ठीक है यासिर भाई थैंक यू सो मच। और एक मैसेज है ये क्या भाई कमाल की पब्लिक है भाई
मेरा फोन तक टकरा गया अभी माइक से, एक जरा मैं कॉल कर लूं क्योंकि बोला गया है मुझे कॉल करने के लिए, तो मैं

0: कॉल कर रहा हूँ, बट कॉल कर रहा हूँ तारा भाई, ये जिंगल के बाद मैं कॉल करूँगा आपको, फिगर नहीं। टिंग टिंग टिंग जब कॉल उठ जाएगी तब हम रिंग सुनेंगे। वैसे अस्सलाम वालेकुम भाई, दो साल पहले। अस्सलाम वालेकुम
1: कबीर भाई।
0: जी साहब, कैसे हैं आप?
1: कैसे हैं साहब? थैंक यू वेरी मच भाई, मेरी रिक्वेस्ट आपने
0: मसला ही नहीं है, रिक्वेस्ट आप हुकुम करें हम कॉल करें। कैसी बात कर दी आपने, आपको बोलना कॉल कर भाई।
1: नहीं, बहुत दिनों बाद। थैंक यू भैया, थैंक यू
0: जी। बताइए कैसे हैं?
1: बात हो रही थी पुरानी चीजों की ना।
0: नहीं, मैं ये कह रहा था कोई चीजें ना हम घर पे लाके रख देते हैं फिर उनका इस्तेमाल नहीं होता। जैसे लोग कह रहे हैं फ्रायर लाके रखा हुआ पड़ा हुआ है वो कोने में।
1: अब बस बस वही मैं भी एक शेयर करना चाह रहा था। मैं एक साइकिल लाया था।
0: अच्छा,
1: 2016 में।
0: अच्छा ओके, 10 साल पहले।
1: साइकिल होती है ना जो हम घर पे चलाते हैं।
0: जी जी जी।
1: तो वो पड़ी पड़ी बेचारी एक्सपायर हो रही थी, तो 2026 में मैंने उसको सेल ही कर दिया।
0: अच्छा, बिक गई वो, यही गनीमत है भाई। कमाल की बात है,
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: कौन सी, क्या उम्मीद करके, क्या उम्मीद करके लेके आए थे आप?
1: सोचते तो यही है कि इस दफा वीकेंड में अच्छा इसको यूज करेंगे, लेकिन वो रहते रहते 10 साल देखते देखते गुजर गए।
0: 10 साल बाद आपको ये ख्याल भी आया कि ये बिक सकती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात।
1: ख्याल तो नहीं आया था।
0: हाँ,
1: आई पुट इट आउटसाइड एक्चुअली, बाहर रखा कोर्टयार्ड में।
0: हाँ,
1: तो किसी की नजर पड़ गई।
0: अच्छा,
1: बोले भाई बेचेंगे, मैंने कहा बेचेंगे।
0: अच्छा, मुझे ये लगा कि बाहर मैंने साइकिल रखी और चोरी हो गई, मैंने ये मान लिया, मैंने बेच दी।
1: नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अर्धिंग हुई भैया, बहुत अर्धिंग हुई।
0: मटेरियली है बिचली। और कोई सामान आप ऐसा लाते हैं जो?
1: थैंक यू भैया, थैंक यू।
0: अच्छा आप जा रहे हैं, चलिए ओके, अल्लाह हाफिज़।
1: अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, मैं जॉब पे जा रहा था।
0: अच्छा जॉब पे जा रहे हैं, ठीक है
1: भाई, से बात कर लूं, लेकिन आप 5 मिनट डिले हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दैट्स अ लॉट फॉर मी। थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू भैया,
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।
1: थैंक यू, बाय बाय
0: बाय। एक मैसेज आया तला भाई का, तला भाई फ्रॉम अलखोर लिखते हैं, भाई लैपटॉप लिया था बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस के लिए, स्कूल ही खुल गए, कोविड ने इनके साथ चॉपसी कर दी। तला भाई फ्रॉम अलखोर लेके आए थे लैपटॉप, कोविड ने कहा क्यों बेटे, अभी हम जा रहे हैं। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, 2 साल पहले जूस बनाने के लिए मिक्सर लिया था, वो आज तक यूज़ नहीं हुआ, सोचते हैं जुम्मे से करेंगे। ये मेरे साथ भी है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा खासा, मैं सच बता रहा हूँ, ऑफ़र में लिया था मैंने, बहुत ही बढ़िया ऑरेंज जूस निकालने के लिए जूसर, वो एक कोने में पड़ा है भाई, वो हर जुम्मे को मेरी तरफ घूरता है, मैं उसकी तरफ घूरता हूँ, और हम दोनों में बातें होती हैं, फिर मैं नज़रें फेर लेता हूँ। एक मैसेज है, लेट मी गॉड द का, लेट मी गो लिखा भाई, लेट मी गॉड, क्या क्या हो गया ऐसे भाई? मुझे कंफ्यूज कर दिया सुबह सुबह। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम छोटे भाई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम बड़े भाई, मलिक भाई ने मैसेज किया। एक मैसेज है, आई बॉट एन एयर प्यूरीफायर फॉर माई वाइफ, डस्ट एलर्जी, शी यूज्ड इट वंस एंड सेड आई एम फाइन नाउ। आगे लिखा, आई थिंक शी बॉट द प्यूरीफायर वुड वर्क लाइक अ। आगे लिखते हैं, नाउ द प्यूरिफायर इज इन स्टोर। वाइफ भाई कह रहे हैं, वाइफ मेरी चीख रही थी, डस्ट प्रॉब्लम थी, मैं प्यूरिफायर लेके आया, बोलिया मैं ठीक हूँ। भाई वाइफ भाई, मेरे पास भी स्टोरी सुनाने के लिए, इट्स जस्ट दैट मेरे घर पे रेडियो सुना जा रहा है तो मैं नहीं बोलूंगा।

0: घड़ी के हिसाब से अब 7 दिन का वक्त आ गया है कि मैं कॉल करूं मिस्टर तलहा को. सब कुछ राइम कर गया यार, क्या बात है कबीर साहब. एक सेकंड मैं कॉल कर द तेनू सुनने लगाऊंगा, वेरी सॉरी, वरना आप पता नहीं बंद कर देंगे. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है भाई के?
1: अगर तुम उस इतना मुझे वेट कराते ना जब आते जमा था तो ब्रेकअप हो चुका हो तो अपना.
0: सरकारी दफ्तर में तो ऐसे ही चलता है भाई, वास्ता चलता है वास्ता.
1: देखा तुम मुझे बता दे तुम उससे प्यार करती है नहीं.
0: नहीं तला नहीं. अरे यार तला भाई क्या पड़ा है आप घर पे? मुझे लगता नहीं आपके घर में कोई यूजलेस सामान होगा बिकॉज एवरीथिंग इज कंज्यूम्ड बाय यू. फिर भी क्या है
1: भाई, क्या बात कर दी है?
0: नहीं आप तो दूसरों की सांस तक खींच लें तो आप चीज कहाँ छोड़ेंगे. इसलिए मैं पूछ रहा हूँ.
1: तुम अभी जिंदा हो ना?
0: अभी हम जिंदा हैं. फिर भी बताइए क्या है आपके घर पे?
1: यार अभी देख तो एक चीज ध्यान में आ रही है, मैं फुट मसाजर लेकर आया था, वो पानी वाला नहीं आता.
0: फुट मसाजर, वो भी पानी वाला? अरे भाई साहब इलोन मस्क घुटने हो रहे हैं आप.
1: मैं जर्मनी गया था तो बस वो थोड़ा ट्रैक तो यार फ्लेक्स तो करना है ना यार.
0: जर्मनी गया था? माय गॉड ऑलराइट.
1: अराउंड कोई 2018 की बात है, मैं गया तो मैं मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया ना. तो मैंने चलो मैं ले लेता हूँ बेगम के लिए भी ले लेता हूँ. भाई वो माशाल्लाह से वो एक दफा उसमें पानी भरा, मैंने कहा मछलियां डाल दो इसमें ना, पानी वानी पैर भर तो नहीं जा रहा है. तो वो एक या दो दफा इस्तेमाल हुआ. अच्छा माशाल्लाह से ना उसकी उसकी ना वो रिप्लेसमेंट चेंज होती रहती है ना.
0: अच्छा.
1: कभी उन्हें यार यहाँ अच्छे लग रहा है यहाँ रख देते, यहाँ अच्छे लग रहा है यहाँ रख देते. भाई माशाल्लाह से 2-3 मेहमान जो रेगुलर फ्रिक्वेंट फैमिली फ्रेंड्स है ना वो आते ना, चला यार पहले तो यहाँ रखा हुआ था अभी यहाँ क्यों रख दिया तुम लोगों ने? मैंने कह रहा अच्छे लग रहा था ना, हमने कहा यार क्या रख दो ना, कौन सा फील हो रहा था.
0: कोई पूछे तो बोल देना दिस इज डेकोर फ्रॉम जर्मनी, आई बॉट इट फ्रॉम जर्मनी, इट्स अ डेकोर बेसिकली.
1: असल में ये डब्बा पैक है, ये जो है ना हम रखेंगे इसको 20 साल के बाद ना इस कंपनी को ऑयल भेज देंगे. देखो तुम्हारा आएगा, हमने रनिंग कंडीशन में रखा अभी तक, तुमसे दोबारा खरीद लो.
0: हाँ ये वो कंपनी जिससे आपने खरीदा, वो कंपनी जब बंद हो जाएगी ना तो उनकी आखिरी याद आपके पास होगी.
1: हो गई.
0: वेल डन वेल डन.
1: प्लानिंग प्लानिंग स्पॉइल कर दी लोगों, कंपनी बंद कर दी हमारी.
0: नहीं वो तो मैं डर समझ सकता हूँ. तो इसको बेचने का ख्याल है
1: यार? नहीं यार मेरा बेचने का ख्याल नहीं, क्योंकि खरीदार नहीं मिलेगा यार मुझे. 2-3 साल में मैं क्या बेचूंगा यार?
0: ये बिल्कुल वैसा है कि मैं इसको कि वो वाली बात है ना, बेचूं कैसे? इसका डिस्क्रिप्शन मेरे को पता नहीं है क्या चीज़ है. बेचूं कैसे?
1: मुझे खरीदना तो आ गया, मुझे बेचना नहीं आ रहा, बेचूं कैसे? तो नहीं आ रहा. बाकी एक आइटम तुम्हारी तुम्हारी भाभी के लिए ना एक आइटम बड़ा पड़ा हुआ है फालतू ना.
0: कौन सा?
1: वो मैं हूँ.
0: अच्छा
1: ये आदमी ऑफिस से आगे एक जगह से पड़ा रहता है, ये क्या किस काम के लिए ये आदमी? तो वो वाली कहानी है.
0: जैसे उसकी जगह चेंज हुई है ना, आपको भी एक दिन बाहर मिलेगा आउट ऑफ ऑर्डर.
1: यही महसूस हो रहा मुझे, क्योंकि वो कह रही है ये सोफा जो है ना, ये सोफे गद्दा जो है, गद्दी जो है ना, ये वाली स्पेसिफिक ये चेंज कराओ. मैंने क्यों चले दब चुकी है तुम्हारे वजन से ही. मैंने कहा यार देखो ये भी एक
0: यार व्हाट अ डार्क ह्यूमर यार,
1: एफर्ट डाला है इसमें.
0: क्या डार्क ह्यूमर है, बेहतरीन, मतलब क्या बात है यार. तो अच्छे रहने लगे
1: मेहनत
0: है
1: उस सोफे में, मेरी सालों की मेहनत है उस सोफे में, मेरे सालों की, मेरे फिंगरप्रिंट मेरे हाथ से ज्यादा उस सोफे में मिलेंगे तुम्हें.
0: वेरी
1: और
0: nice.
1: भी बहुत सारी जगहों के प्रिंट है जो वहाँ मिलेंगे.
0: वेरी nice.
1: फैमिली शो है.
0: तो सोफा समेत जाएंगे आप या अकेले जाना पसंद करेंगे? क्या क्या करा जाए आपका?
1: उससे मुझे एक लगाव है सोफे से ना.
0: अच्छा, लगाव
1: पोजीशन में मुझे लगाव है. लेकिन कर मेरे बच्चे नहीं बैठते थे, बाबा की जगह है ये, बाबा की जगह वगैरह कुछ नहीं, वो अंदर जा चुका है. इसलिए वो कहते नहीं इसमें जाके धर जाते हैं, इससे इसके अंदर जाने के बाद निकला नहीं जाता.
0: बाबा ने यहाँ बैठ बैठ के गड्ढा कर दिया.
1: बाबा यही पे दफला जाएंगे मुझे लग रहा है कि ये जो गड्ढा बना रहे ना अपने लिए बना रहे.
0: वेरी नाइस, ये तो आपने अपना घोंसला बना दिया है सोफे पे. वेरी नाइस, अलग किस्म का पंछी है भाई.
1: सही. हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो एयर फ्रायर रख के रखने वाले आदमी, जो तुम्हारा जो नाम वाला फ्रेम है ना वो कबीर वाला, उसके नीचे तस्वीर लगनी बाकी रह गई है तुम्हारी।
0: इस वीकेंड ना मैंने उसे दीवार पे चिपकाया तो बात नहीं भाई साहब।
1: मैं तुम्हें जानता हूँ, लग गई हजार हजार की लग गई शर्त।
0: थोड़ा थोड़ा कम, हजार से थोड़ा सा नीचे नहीं हो सकता का मतलब? पचास सौ की लगा, पचास सौ की
1: लगा।
0: मैंने बदल दिया है छोड़े। हाँ वो बदल चुका, दुनिया बदल रही है तेरा भाई। हाँ हाँ क्या बात करो यार, पर ठीक है देखते हैं फिर क्या होता है। थैंक यू सर। बिरादरी से बाहर
1: है ना, तुम बिरादरी से बाहर हो, तुमने सोफा चेंज कर दिया।
0: अरे भाई साहब ऐसे ही है, हम तो अचानक करते हैं, चांचक से हो जाती है चीजें।
1: चांचक से होगा, तस्वीर लगेंगी।
0: नहीं भाई साहब इस वीकेंड पूरे 25,000 की लगाओ मेरे से, इस बार तो मैं टांग ही दूंगा वो दीवार पे डेफिनेटली।
1: नहीं होगा, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, नहीं होगा। सबके सामने बोलो नहीं होगा।
0: मेरे गाड़ी में बड़े 65,000 की लगा लो। चलो चलो
1: मेरे मेरे जेब में खर्चते हुए सिक्कों की खत्म।
0: ठीक है तला, इस बार तो तला भाई आई वांट टू प्रूव यू रॉन्ग, लेट्स गो। ओके ठीक है तला भाई, देखते हैं। ओके चलो, ख्याल रखो, भी कहानी सुनना। हेलो। ओके तो तला भाई गए, इनका मैसेज आया है, इनकी तो सोफे में साथ जाएगा। ये तो है माज भाई, आपके घर पे भी एक चेयर के आपने जैसी कर रखी है, मुझे पता है। कॉल करना बनता है भाई, किसको कॉल करना बनता है फरद भाई, मैं समझा नहीं। एक मैसेज है, टॉपिक क्या है, बाबा खुद फर्नीचर, मैं खुद फर्नीचर हूँ मुना बहन, आपको तो पता ही है मेरा नेचर। एक मैसेज है, सेम हेयर, वाटर फॉर मसाजर, अब उसकी जगह हमने फिक्स की है, पहले इधर उधर रखा था, मे बी यूज 5 times in 5 years। माजिद भाई टाइम टू सेल इट। एक मैसेज है, शुक्रिया भाई। फराज भाई कह रहे हैं ये फुट मसाजर लेने वालों को पेडिक्योर करवाना चाहिए प्रिंस भाई की तरह। पंच भाई, फराज भाई यू अर्न्ड इट, क्या पंच मारा भाई ने। एक मैसेज है, आतिफ हेयर, सलाम कबीर मियां, खैरियत भाई अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं वो इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आया था, सोचा था पूरे कतर में घूमूंगा, पैसे बचाऊंगा, कोने में डस्ट खा रहा है और यूज़ नहीं हो रहा, 2000 कतरी रियाल में लिया था। अम्मा की गालियाँ सुननी पड़ती हैं, अफसोस करता हूँ। और ये आतिफ भाई के लिए, आतिफ भाई वेल डन भाई, वेल डन वेल डन, अब तो बिकेगा भी नहीं वो। एक मैसेज है, आई बॉट क्या, वाटर प्रेशर गन फॉर वॉशिंग माई कार बट इट इज़ स्टिल नॉट यूज। शेख अहमद भाई वेल डन, अलीलाल जिन्होंने मैसेज किया है, गाड़ी धोने वालों के सामान बदले के आते लोग। एक मैसेज है, एक बार यूज़ करने में उनकी वाइफ ठीक हो गई, मेरी भी हो जाए शायद। भाई मत लेके आओ ये एयर प्यूरीफायर भाई। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे पास 1997 का की अतर की बोतल पड़ी है, जो अभी यूज़ के अभी तक वैसी है, तो उसको ये बदीउलजमान साहब क्या करने वाले हैं आप, उसका मतलब उससे कुछ बुलाने वाले हैं आप दुनिया में, मतलब उसके जरिए आप किसी की आमद चाह रहे हैं कि क्या चाह कह रहे हैं आप। 1997 से अभी तक आपने उस अतर की बोतल को रखा हुआ है, क्या उसमें से कुछ निकलने वाला है कि आपका नाम मिडिल नेम अलादीन है, मतलब क्या समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या हो रहा है। एक मैसेज है, आज कॉल करो मुझे, वॉइस नोट सुन लो पहले। भाई वॉइस नोट मैं पहले नहीं सुन पाऊंगा फरद भाई। अच्छा गाने के बाद चलो, गाना चलाते हैं उसके बाद मिलते हैं। 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। एक गाना डेडिकेटेड टू मी।
2: हाय नी तेरी गल दा टोया,
0: दलजीत शर्मा,
2: रात ना सोया,
0: 7 12, गुड मॉर्निंग।

0: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਚਾਰਮਨ 7:14 ਬਾਏ ਦਾ ਕਲੋਕ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮਾਜਿਦ ਭਾਈ ਕਾ ਮਾਜਿਦ ਭਾਈ ਨੇ ਡੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੂੰ ਡੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵਾਲੇ FM 107 ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਂਗੇ ਸੋ ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਰੀਅਲੀ ਹੈਪੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾਤਾ ਹੂੰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਥਾ ਕਿ ਘਰ ਮੇਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ੇ ਪੜੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਲੇ ਕੇ ਤੋ ਆ ਗਏ ਜੋਸ਼ ਜੋਸ਼ ਮੇਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੀ ਕਾਮ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਾਈ ਕਾ ਇਸੀ ਬਾਤ ਪੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਾਈ ਲਿਖਤੇ ਹੈ ਭਾਈ ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਦਿਸ ਟੋਪਿਕ ਆਪਨੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਟ ਵਾਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਸੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਜ ਉਸਕੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਆ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤੋ ਯੇ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕੀ ਹੈ ਯੇ ਜੋ ਉਸਮੇਂ ਉਰਦੂ ਕੇ ਭਾਈ ਯੇ ਕੌਨ ਸੀ ਘੜੀ ਹੈ ਯਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਾਈ ਭਾਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਨ ਲਾਇਆ ਥਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾੜੀ ਧੋਈ ਤੋ ਥੱਕ ਗਿਆ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਸੇ ਵਕਾਸ ਇਕਬਾਲ ਕੇ ਲੀਏ कह रहा है भाई हो गया अब मैं किसी काम की नहीं है वो बस ला के रखी ये वाटर प्रेशर गन जो लोग खरीद रहे हैं जो जोश में कि अपनी गाड़ी खुद दूंगा मत क्या करो भाई एक मैसेज है भाई मेरी वाइफ वेजिटेबल खाती तो है उसने मेरे को बोला कि मुझे कटिंग सेट ला कर दो दो फ्रूट कटिंग वेजिटेबल कटिंग सेट भाई 8 साल हो गए उमर शहजाद साहब आपके लिए भाई तो आपकी हिम्मत नहीं सवाल करने की कि इसका अभी क्या होगा ये बताइए आई वुड लव टू नो भाई वाई इट इज़ नॉट इन यूज़ बाकी मैं एक कॉल करने जा रहा हूँ उसके बाद मैं बाकी कॉल लगाऊंगा भाई जो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं मेरे भाई रुक जाओ मैं आपको कॉल कर एक सेकेंड रुक जाओ मैं कॉल कर रहा हूँ डोंट वरी ये आपने लिखा है जो मैसेज किया है मुझे पता नहीं है आपका नाम क्या क्योंकि एक जगह पर नाम दूसरा लिखा है एक जगह पर नाम दूसरा लिखा है तो मैं खुद कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ बट लेट मी कॉल यू एंड सी वट यू हैव टू साई ये मैंने लगा दी है कॉल ओके Finally, Assalamu alaikum. Hello.
1: Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: हाँ जी भाई क्या हाल है?
1: ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र सभी भाई आप कैसे हैं?
0: खुर्रम भाई एकदम बढ़िया भाई बताइए भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप?
1: मैं आपका प्रोग्राम कभी कभी सुनता हूँ रेगुलर तो आपका ऑडियंस नहीं हूँ लेकिन ये कि आज फर्स्ट टाइम आपको कॉल कर रहा हूँ
0: ठीक है बहुत अच्छी बात है रेगुलर सुना करें भाई अच्छा बताइए हाँ तो
1: टॉपिक से ना मुझे एक बात याद आई
0: क्या
1: याद मेरा उत्तर टाउन में प्रीवियस में रहता था ना उधर मेरा एक दोस्त था वो फैमिली के साथ रहता था मैं तो फैमिली के साथ था
0: ठीक है
1: तो मेरी वाइफ गई उनके घर में उनके घर पे एक वो एक्सरसाइज बाइक पड़ी है बाइसिकल
0: ठीक है
1: मेरी वाइफ ने उनसे ऐसे गपशप में पूछा भाई आप लोग यूज करते नहीं करते उन्होंने कहा हम तो यूज नहीं करते आपने लेके जानी है तो ले जाए
0: हाँ.
1: मेरी वाइफ ने कहा चलो वो ले आते हैं
0: ठीक है
1: मैंने रिक्वेस्ट की अपने दोस्त से हम उसको अपने घर पे ले आए थोड़ा दिन यूज किया उसके बाद तकरीबन एक महीने के करीब यूज करने के बाद उसको अब वापस करना था दोस्त को मैंने बोला कि यार हैवी है तो आओ मेरे साथ कैरी करो और वापस ले जाओ मैं तुम्हें दे देता हूँ कहता अच्छा यार रुक जाओ एक दो दिन फिर मैं आता हूँ दो चार दिन गुजर गए वो नहीं आया
0: ठीक है
1: मैंने उसे कहा यार मैंने घर शिफ्ट करना है या कुछ और इशू है तो काइंडली तुम इसको अब ले जाओ ये ना हो कि फिर डिले हो जाए उसे कहता अच्छा ठीक है मैं आता हूँ फिर दो चार दिन गुजर के नहीं आया आखिर मैंने कहा यार मैं ऐसा करता हूँ मैंने तो बाहर कॉरिडोर में रख रहा हूँ क्योंकि कंपाउंड है तो ये तो नहीं है कि पब्लिक प्लेस है स्ट्रीट है
0: ठीक है रख देते हैं कंपाउंड में ठीक है आगे
1: तो तुम आके ले जाना कहता ठीक है

0: मैंने देखा, दो चार दिन गुजर गए, उसके बाद वो बाइक गायब हो गई, साइकिल गायब हो गई. मैंने सोचा वो ले गया हो, मैंने सोचा वो ले गया. तो मजीद कुछ दिनों के बाद ऐसे दोबारा उससे गपशप हुई, तो मैंने कहा यार वो तुम अकेले ले गए, तुम मुझे बताते वक्त तुम्हारी हेल्प कर देता. अच्छा कौन सा, मैं कब लेके गया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं.
1: तो कैसा महसूस हुआ, भला टली ऐसा महसूस हुआ या फिर क्या, मतलब दिल में क्या आया?
0: मेरे लिए तो चल गई.
1: हाँ तो वही ना, फिर तो
0: पड़ गई.
1: नहीं सही है भाई, सही है, मतलब जैसे जैसे निपटा देना आपने. पर यहाँ तो वो वाले सामान है जो निपट नहीं रहे भाई, घर में पड़े हुए हैं वो, मतलब वो हमसे ज्यादा पुराने हो गए घर में, तो ऐसा हो रहा है.
0: इससे ये कि उधर ना सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं.
1: हाँ.
0: उसे ऑप्शन दिया कि यार ऐसा करते हैं, मैनेजमेंट के पास जाते हैं, चेक करते हैं कि भाई जिसने उठाई है जाके देखे, उसे ले लेते हैं वापस. कहता हाँ ठीक है जाएंगे. फिर टाइम गुजर गया, फिर नहीं गया.
1: ये कोई नहीं चेक करता भाई, ये तो खाम खा के हवा के भाई हवाई बातें.
0: तो मतलब ये कि बला सिर्फ मेरे नहीं उसके सर से भी टली है.
1: ऑल द बेस्ट भाई, आगे के लिए ध्यान रखें कि ऐसी चीजें ना उठा के लाए जिनका दो दिन की वैलिडिटी है. ठीक है, ठीक है खुर्रम भाई, अभी आप पता नहीं सुन पाएंगे ना सुनेंगे, कहानी सुन सके जरूर सुनिएगा. थैंक यू सो मच मेरा भाई. ओके मेरा भाई, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. एक मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम, अनीस भाई जामिया वाले लिखते हैं, अभी ज्वाइन किया है. सवाल क्या है भाई, ये गैस की अच्छा लोग नज़र लगाते हैं इसलिए पहन नहीं. अरे लोगों के नज़र लगाने तो नज़र है यार, आप दिल्ली वाले हैं, पहले भी ली थी, अच्छा टूट चुकी है, नज़र की वजह से लोगों की नज़र है भाई. भाई अनीस भाई रिलैक्स करो यार, आप इतना सोचोगे ना तो कुछ नहीं पहन पाओगे. एक मैसेज है ये इरफान कासमी साहब का, लिखते हैं, कैसे हैं भाई, मैं तो लेट हो गया, शिफ्ट थोड़ी एक्सटेंड हो गई थी. आज का टॉपिक क्या है, टॉपिक ये था, मैं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कहानी जल्दी शुरू करनी है. टॉपिक ये था कि कौन सी वो चीज़ें जो आपने ला के तो रख दी घर में, किसी काम की नहीं है, वो पड़ी हुई है, आप बड़े जोश व खरोश में लेके आए थे. एक मैसेज है, एक वाटर प्रेशर गन खुद लेकर आया था, फिर रिश्तेदार ने हादिया में एक और दिया और आज तक यूज़ नहीं हुई. मेरे पास 10-12 साल पुराने कपड़े कैप्स रखे हुए हैं, वाइफ अक्सर इस पर बोलती रहती है कि तुम्हारे लिए कपड़े म्यूजियम में रखने चाहिए. हम हमारी बहन के साथ हैं भाई, ये क्या कर रखे हैं आपने. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, मलिक वकास साहब का, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, क्या हाल है, गुड मॉर्निंग. आज के टॉपिक से याद आया कि एक रिस्ट वॉच बहुत शौक से ली थी 2018 में, वो नहीं पहनी, लेकिन उसकी बैटरी जब एंड होती है चेंज करवा के रख देता हूँ बाई के लिए. कहते हैं मशीन क्या है, मशीन ख़राब हो जाए. एक ड्रिल मशीन 4 साल पहले ली थी, यकीन करो आज तक यूज. चलो ड्रिल मशीन तो ठीक है, कह रहे हमारे इलेक्ट्रिशियन को बुला के काम करवा लेते हैं ड्रिल का. मलिक वकास साहब दिस इज सो यूजलेस भाई. जकी भाई ने मैसेज किया है, आई बॉट अ वैक्यूम क्लीनर फॉर कार पैक्ड फॉर 2 ईयर, देन आई गिफ्टेड टू माई कज़न एंड स्टिल पैक्ड. ये जो है ना टहलने वाले वैक्यूम क्लीनर, ये सारी चीज़ें किसी काम नहीं आ रही होती भाई. एक मैसेज, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, ऐसे तो घर में बहुत सारी चीज़ें हैं उतना यूज़ नहीं होती, लेकिन हम एज अ ह्यूमन बीइंग दूसरों के सुदीप्तो सर आप बहुत सीरियस हो गए भाई. सुदीप्तो सर प्लीज़, इतना सीरियस नहीं होना था इस बात पे, आप ज़्यादा सीरियस हो गए भाई. मैं ऐसे मैसेज के लिए अभी हॉर्न रखना शुरू कर दूंगा. एक मैसेज, प्रिंटर ख़रीदा था कोविड के टाइम पे बच्चों के एजुकेशन के लिए, बैठा हुआ है बस वो, अब उससे प्रिंट करवाओ, कुछ ज़बरदस्ती प्रिंट करवाओ सुरेश भाई, उसकी गुद्दी मार मार के प्रिंट करवाओ. प्रिंस भाई कह रहे हैं 4 साल पहले ये बेचारे इंतजार कर दी. चलो प्रिंस भाई आज आपने घड़ी पहन तो ली, हमारे इस सवाल के जरिए ही सही कम से कम कुछ तो फ़र्क आया. आर्य वंसारी भाई कह रहे हैं जूसर मिक्सर ब्लेंडर, सॉरी जूसर ब्लेंडर लिखा है, बाकी सब मैंने खुद ही बोल दिया. एक मैसेज है, लाए था बड़े शौक से, किसी के लिए लाए थे, ये क्या क्या लाए थे, अभी तक नहीं कर पाया, चल रहा है. क्या लेकर आए थे रेजवी भाई, क्या क्या लेकर आए थे. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे पास फुट वॉशर है ऑटोमेटिक, कुछ सालों से है लेकिन कभी यूज़ नहीं हुआ, बिकवा दो. नहीं बिकेगा, तोड़ के फेंक दो उसको भाई, फेंक दो उसको, फेंक दो. फराज भाई कह रहे हैं भाई ये नज़र हमें क्यों नहीं लगती, पता नहीं भाई लगता फराज भाई, हम कुछ पहनते नज़र नहीं लगते, हम थोड़े से वैसे ही लगते हैं ना, ये बेचारे ही लगते हैं, हम रईस लगते नहीं है फराज भाई, इसलिए हमें नज़र भी नहीं लगती. हम कुछ महंगा पहने लोग बोलते हैं अरे ये बेचारा देखो तो सही, ठीक है अच्छी बात है पहन लिया माशाल्लाह. एक मैसेज, गुड मॉर्निंग भाई, मैंने ट्रेडमिल एक्सरसाइज के लिए लिया था, अब उस पर कपड़े एक्सरसाइज कर रहे हैं लटक लटक के. खान भाई वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, आई एम विद यू ऑन दिस मेरा भाई. और एक मैसेज है सैयद हमजा भाई का मैसेज था, हमजा भाई किधर गए यार आप, आपका मैसेज किधर गया? आई एम या गुड मॉर्निंग भाई को बोलें वो इतर यूज़ करें तभी ख़त्म होगा, वो 97 से अभी तक यूज़ नहीं किया, कॉल क्यों ले? जमाल शेख साहब मैंने कॉल खुद बंद करी है, अभी कॉल नहीं उठाऊंगा ना कभी अभी कॉल लगाऊंगा क्योंकि कहानी बहुत लंबी है। एक मैसेज है, हम नज़र वट्टू हैं इसलिए नज़र नहीं लगती। जकी भाई काश मैं ये बोल पाता मगर मैंने कुछ उल्टा ही बोल दिया। रिशादुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे पास 33 साल से एक चीज़ है बिल्कुल उसे यूज़ नहीं किया, वो है मेरा दिमाग। चलो भाई पैक करो, ये रिप्लाई आने लगे। एक भाई ये हमारे इरफान कासिम साहब कहते हैं मेरा राइस कुकर लिया था, राइस को जला देता है मुश्किल से। भाई ये राइस कुकर रोटी मेकर लेने वालों को सलाम सलाम सल्यूट सल्यूट सल्यूट। आर्यवन सारे भाई कहते हैं एक और चीज़ पड़ी है मेरे घर में, 23 साल से वो हूँ मैं। तो अपने आप को फोटो खींच के डाल दो, कोई तो खरीद लेगा। एक मैसेज है फरद भाई का, कॉपी समझते हैं भाई, वो है भाई, हम इतने सादे दिखते हैं ना फरद भाई, हम कुछ भी पहन लें लोग समझते हैं कॉपी होगा। अच्छा वो गलत नहीं होते, वो गलत नहीं होते होते वो सही हैं कि हमने कॉपी ही पहना है, पर समझो तो नहीं भाई, कभी कभार समझो ओरिजिनल पहना होगा भाई ने, ऐसा भी समझ लो। तो हम जो पहन रहे हैं वो सामने वाला समझ रहा है कि कॉपी है, है पर तुमको बोलना नहीं है ना, तुम्हें तो बोलना है असली पहना मत। तो बहरहाल कमिंग बैक टू दिस मेन थिंग जिसके बारे में मैं सुबह से बड़ा एक्साइटेड हूँ और बहुत डरा हुआ हूँ, आज मैं सच में डरा हूँ कहानी सुनाने के लिए। मैं बताता हूँ आपको क्यों, आज की कहानी एक तो सबसे लंबी कहानी, इतनी लंबी कहानी मैंने आज तक नहीं सुनाई है, आज तक नहीं सुनाई है। और दूसरी बात, इस कहानी पे इससे पहले कोई क्रिटिसिज्म दे बहुत लंबी थी नी, तो पहले ही साइड हो जाओ भाई, अगर लंबी कहानी नहीं सुननी है आपको सो प्लीज़ साइड में हो जाइए, क्योंकि उसके बाद आपका क्रिटिसिज्म मैं आज नहीं ले पाऊंगा, आज मेरा दिल दुख जाएगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो आज प्लीज़ जो लोग लंबी कहानी सुनने वाले हैं वो मुझे मैसेज कर दें 666-22107 पर, एक डॉट लगा दें, जस्ट लेट मी नो कि आप ट्यून्ड इन हैं, बिकॉज आज की कहानी इज़ गोना टेक सम टाइम, ठीक है। सो 666-22107 नंबर, 666-22107, एंड मिल रहे हैं महज एक गाने के बाद, ठीक है। यार कहाँ गया वो, एक सेकंड रुको मैं ज़रा जो है ओके एक गाने का मिल रहा है, 3 मिनट का गाना है, एंड देन द लॉन्गेस्ट स्टोरी एवर, 5 सालों में इतनी लंबी कहानी नहीं सुनाई है, तो ब्रो दिस इज द लॉन्गेस्ट स्टोरी। मेरे को डर लग रहा है ऐसे 3 मिनट बाद जैसे मेरा एग्जाम है। लेट मी काम माय सेल्फ डाउन, शीशे वाली चुन्नी सुन के भाई यो रानी सिंह और ग्रेग भाई,
2: दिल की धड़क रह छोरी
1: रात छोरी। गुड मॉर्निंग।

भाई जिस गाड़ी का नाम आया ना इस गाने में, छुट्टी बजा के इसी गाड़ी के साथ आपका भाई करेगा मॉडलिंग। और रात ना घुमा भी दूंगा। हाँ जी बढ़िया जा रहा है सब। 7:28 हो गए, आज थोड़ा जल्दी गाने शुरू कर रहा हूँ बिकॉज इट इज अ लॉन्ग स्टोरी। सो आई होप कि आप तैयार हैं क्योंकि ये कहानी लेगी बहुत सारा वक्त आपका। सो लॉन्ग स्टोरी नहीं सुनने वाले लोग पहले ही भाई वार्निंग है आपको, उसके बाद आप बोलिए हैं लंबी हो गई कहानी। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के जेंडर प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती है। FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता हो ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा एकदम असली है एंड आप पिक्चर देखने वाले पूरी सिनेमा। सो जस्ट बी रेडी, वॉल्यूम बढ़ा दी जाए, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, आज का जो किस्सा है ना, इसे सुनाने के लिए मैं आपको कई साल पीछे ले चलता हूं। बिल्कुल जड़ से शुरू करेंगे इस कहानी को। 1973, 28 अगस्त की तारीख, सुबह के 10 बज रहे थे। जगह थी सेंट्रल स्टॉकहोम। अभी लोग उठ रहे थे, अपने काम की तरफ जा रहे थे। ये ट्यूसडे का दिन था, ट्यूसडे मॉर्निंग। सुबह सुबह जो बाइसिकल्स थी, जो साइकिल्स लगी हुई थी वो साइड में, वो इंतज़ार कर रही थी। बच्चे वॉक करके स्कूल की तरफ जा रहे थे और लोग जो थे वो कोई, कुछ लोग मेट्रो की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे, उसमें अलग अलग किस्म की खबरें पढ़ रहे थे। मगर इसी सुबह सबकी अपने काम की तरफ तवज्जो थी, एक इंसान की तरफ किसी की नज़र नहीं जा रही थी। सुबह सुबह इसी वक्त अराउंड 10:10 ऑन द क्लॉक मॉर्निंग में, एक लंबे कद का इंसान, लंबी हाइट का, हैवी बिल्ट आदमी, उसके हाथ में कैनवस बैग था और वो वॉक करते हुए जा रहा था। वो एंटर कर रहा था स्पेयर क्रेडिट बैंक में। अब अगर कोई इसको देखता तो वो ये कहता कि भाई ये कोई नुक्कड़ नाटक करने के लिए जा रहा है, कि बड़ा एंटीक सा नजर आ रहा है, बड़ा थिएटर वाला बंदा नजर आ रहा है। क्योंकि उसने एक ग्रे जिप वाली स्वेट शर्ट पहनी हुई थी, उसने औरतों वाली विग लगाई हुई थी सर पे, और लार्ज ब्लू टिंटेड जो सनग्लासेस होते हैं वो पहने हुए थे। और उसकी जो मूछ थी वो साफ पता लग रही थी कि नकली मूछ उसने लगाई हुई है, होंठों से जबरदस्ती उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है और वो कभी भी गिर सकती है। और इतना ही नहीं, उसने अपने मुंह पर वो जो जूतों वाली शू क्रीम होती है ना, वो क्रीम लगा रखी थी ताकि उसके जो स्किन का कलर है वो अल्टर कर सके। अब समझ गए आप, आपने पेंट कर लिया अपने सामने नजर इसकी पूरा प्रोफाइलिंग। अब जाहिर सी बात है, ऐसा दिखने वाला बंदा बैंक डिपॉजिट तो नहीं करने जा रहा है। और वही हुआ जिसका डर था। इस सुबह के सुकून को एकदम से इसने तोड़ दिया। जैसे ही ये बैंक के अंदर गया, इसने अपनी स्वेट शर्ट खोली, जिप नीचे करके अंदर से निकाली एक मशीन गन, और इसने सीधा सीलिंग की तरफ, ऊपर की तरफ फायरिंग करना शुरू कर दी। और फिर सारे का सारा फ्लोर, पूरा बैंक कांप गया, मार्बल कॉलम्स पूरे हिल गए। और फिर उसने बोलना शुरू किया अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में, बोला पार्टी स्टार्ट्स नाउ डाउन ऑन द फ्लोर। उसकी अंग्रेजी बोलने का जो एक्सेंट था वो पता लग रहा था कि ये कहीं और कही है, स्वीडिश है, ये कहीं का है, समझ में नहीं आ रहा, बट डेफिनेटली कोई प्रॉपर अंग्रेज तो नहीं है। बहरहाल लॉबी में इस वक्त मौजूद सुबह के 10:15 तक जब ये एंटर कर चुका था तो 30 लोग थे, इसमें कस्टमर्स और स्टाफ के मेंबर्स भी थे। सब के सब वहीं के वहीं जम गए, हिल नहीं रहे थे। वो रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे थे कि ये सच में हो भी रहा है हमारे सामने। इतने में लोन डिपार्टमेंट, जो कि राइट हैंड साइड था लॉबी के, वहां पे एक 23 साल की लड़की थी, इसका नाम था क्रिस्टीन। क्रिस्टीन बिचारी लॉबी में आती ही नहीं थी, मगर इत्तफाकन उसका आना हुआ एक लेटर ड्रॉप करने के लिए। वो कभी नहीं निकलती अपने कैबिन से, लेकिन बिचारी इस वक्त आ गई। अब ऐसे में केओस तो बढ़ ही चुका था। कुछ लोग जो थे वो भाग रहे थे एग्जिट की तरफ, कुछ लोग भाग भी पाए, और कुछ एम्प्लॉयज ऐसे थे जो अपने अपने, जो जिन्हें जगहें पता थी बैंक की, उसके बैक रूम में जाके छुप गए। और बाकी सब जो बिल्कुल सामने थे इस लुटेरे के, वो फ्लोर पे बिल्कुल फ्लैट लेट गए, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी कर सकता है, लग रहा था कि सन की है। इन्हीं में जो फर्श पे बिल्कुल डर के मारे लेटे हुए थे, एक लड़की थी जिसका नाम था एलिजाबेथ। ये 21 साल की थी। चंद सेकंड पहले बेचारी फोन पे थी, टेलर का काम कर रही थी, काउंटर पे थी, और अभी इसकी हालत ये थी।
इसी में एक और समझदार किस्म का बंदा था, ये भी एक टेलर था बैंक में। इसने क्या किया, इसने प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना यूज करके काउंटर के नीचे छुपे साइलेंट अलार्म को दबा दिया बिना इस लुटेरे के पता लगे। हुआ क्या, पुलिस फौरन एक्शन में आ गई, फौरन रिस्पॉन्ड दिया, सायरन बज रहे हैं तेजी से बैंक के चारों तरफ और जो गाड़ियों की गिनती है वो बढ़ती चली जा रही है, सायरन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ऐसे में क्या होता है, नॉर्मल लुटेरे भाग जाते हैं, भागो भागो भागो, लेकिन यहां कुछ अलग हो रहा था। इसे कोई जल्दी नहीं थी, ना ये भागा, ना इसने कहा कि कैश भरो, कुछ नहीं, जल्दी नहीं है, एकदम चिल मोड में खड़ा हुआ है, उल्टा वेट कर रहा है इत्मीनान से, एकदम चिल। लॉबी के दूसरी तरफ एक बंदा था 31 साल का, उसको उसने कहा साइड हटो, क्योंकि उसके पीछे एक लड़की छुपी हुई थी जिसका नाम था बर्किटा, 31 साल की। ये बेचारी अपने हाथ में कस्टमर का चेक लिए बस उसको वेरीफाई करने ही जा रही थी जब ये सब हो गया, तो इसको लुटेरे ने इशारा किया, क्या नाम है तुम्हारा, उसने बोला बर्किटा, इधर आओ। वो आई, उसको बुलाया, क्रिस्टीना को बुलाया, एलिजाबेथ को बुलाया और बोला तुम तीनों साथ में खड़ी रहो, यहीं पर ही हिलना नहीं है तुम्हें, मेन गेट पर खड़ी रहो मेरे सामने। और बाहर पुलिस जो थी उसकी भीड़ लगी हुई थी पुलिस की, एक ऑफिसर जो था वो अंदर आया जोश और खरोश में कि अब तो भाई मैं सीधा धर लूंगा इसको। एक शख्स वो चिल्ला गया एकदम से, उसकी पता नहीं पुलिस को देख के कैसे चीख निकल गई और पुलिस वाला बेचारा छुप गया, उसे लगा कि लुटेरे ने उसको देखा नहीं है। पुलिस वाला देख पा रहा था कि सामने तीन लड़कियों को उसने जानबूझ के खड़ा किया है एक शील्ड बनाने की वजह से, और वो कवर लेके खड़ा हो गया लोन्स डिपार्टमेंट के बिल्कुल कि अभी बस मैं फायर करूंगा, पर इस लुटेरे ने उस पुलिस वाले को छिपते हुए देख लिया। लुटेरे ने गोली चलाई, पुलिस वाले ने अपनी गर्दन नीचे करी और पीछे जो ग्लास डोर था पूरा का पूरा टूट गया, ऑफिसर बच गया। अब इस ऑफिसर पे पूरा ध्यान था लुटेरे का और इसी वजह से दूसरी तरफ से दबे पांव चार ऑफिसर अंदर आ रहे थे। दरअसल बिल्डिंग का एक और एरिया था कनेक्टेड बिल्डिंग का, जिसकी सीढ़ियों से लोग आ सकते थे बैंक के सेकंड फ्लोर से होते हुए लॉबी तक। अब मसला ये था कि ये सीढ़ियां जो आने के लिए हैं लॉबी तक, ये बिल्कुल खुली सीढ़ियां हैं, कोई छुप छुप के नहीं आ सकता यहाँ पे। और पुलिस वाले आ रहे हैं, दबे पांव ने लग रहा कि हमें तो कोई देख ही नहीं रहा। वाई 10:00 समझ लीजिए 25-30 हो रहे होंगे, रॉबर ने नोटिस कर लिया उन्हें, जाहिर सी बात है खुली सीढ़ियां चौड़ी, हाफ वे बस वो आए ही थे इसने गोलियों की कर दी बरसात, एक के लगी भागे सारे के सारे ऊपर, पूरे के पूरे जितने चार पुलिस वाले आए थे ऊपर भागे वापस। और जब वो ऊपर भाग गए तो इस लुटेरे ने एक आदमी को बोला, सुनो जरा ऊपर जा, जहां से लोग आए वापस लेकर आए, बोल मैं बुला रहा हूं। अब ये एम्प्लॉई जो था वो ऊपर भाग के गया पुलिस वालों को लाने के लिए, लेकिन ऊपर जाके इसने सोचा भाई मैं क्यों बुलाऊं इनको, मैं ऊपर ही ठीक हूं। उसने पुलिस वालों को बोला अंकल मेरे को यहीं छुपा लो, मुझे नीचे नहीं जाना। अब ये भी ऊपर ही है। कुछ मिनटों के बाद लॉबी में केओस बढ़ता चला गया, टेंशन बढ़ रही थी, आवाजें और आने लगी कि और पुलिस गाड़ियां आ रही हैं। पुलिस ने एक और कोशिश करी, चलो एक और अटेम्प्ट करते, एक और अटेम्प्ट किया सीढ़ियों से आने का, फिर से गोली पड़ी, फिर से भाग गए। एक ऑफिसर लेकिन थोड़ा बहादुर था, ये 32 साल का था, इसका नाम था मॉर्गन रायलैंडर। इसने कहा मैं भी जाऊंगा लेकिन मैं मेरी नियत चेंज करके जाऊंगा, मैं गन वन लेके नहीं जाऊंगा, मैं नेगोशिएट करने जाऊंगा, ये लुटेरे से बात तो करूं। तो मिस्टर मॉर्गन ऑफिसर ये भी ऊपर से सीढ़ियों से नीचे की तरफ आए, पर इनके हाथ में हथियार नहीं था, ये हाथ ऊपर करे हुए थे हैंड्स अप, और नीचे आते आते सीढ़ियों पर बात कर रहे थे। बोले एक्सक्यूज मी, मैं बात करने आया हूं, देखो हम बात कर सकते हैं, जस्ट काम डाउन, ओके जस्ट काम डाउन, तो तुम्हें चाहिए क्या, हम लोग बात कर सकते हैं। और जब उसने बोला तो ये लुटेरा थोड़ा सा शांत हुआ, इसने बोला अच्छा बात करनी है, आओ सामने। इसके हाथ बिल्कुल ऊपर थे और लुटेरे ने इससे बोला ठीक है मेरी कुछ मांगे हैं ध्यान से सुनना। तो बोला हाँ हाँ बताओ। तो उसने बोला मेरी पहली मांग है 3 million स्वीडिश क्रोनर्स चाहिए मुझे, जो कि आज के 5.3 million डॉलर्स हो गए। उसने बोला मेरी दूसरी मांग है मुझे गाड़ी चाहिए भागने के लिए और मुझे एक स्पोर्ट्स कार चाहिए भागने के लिए, समझे। उसने बोला ठीक है ओके। बोला एक और डिमांड है, तीसरी और आखिरी डिमांड। बोला वो क्या है। तो बोला एक बंदा है क्लार्क ओलफसन, उसे निकाल के लेके आओ, जेल में फंसा हुआ है, समझे, उसको लेके आओ।
अब क्लार्क कौन है पहले ये जान लीजिए जिसके बारे में ये बात कर रहा है। क्लार्क एक 26 साल का बड़ा चार्मिंग हैंडसम दिखने वाला एक क्रिमिनल था जो जेल में सड़ रहा था। 6 बार पहले भाग चुका था, 7वीं मर्तबा ये भाई साहब उसे भगाने की तैयारी कर रहे थे। अब पुलिस ने कहा ठीक है, ये जो मॉर्गन साहब थे मांगे सुन रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है तुम कुछ मत करना, ठीक है मैं तुम्हारी मांगों को ऊपर तक पहुंचाता हूं। और मॉर्गन साहब ने वेरी सीरियसली इसकी मांग को ऊपर तक पहुंचाया, पहले कमांड सेंटर में पहुंचाया, कमांड सेंटर से मंत्रियों तक पहुंची और अप्रूवल भी मिल गया, फॉरन अप्रूवल मिल गया क्योंकि हॉस्टेजेस हैं अंदर। तो पुलिस अभी भी सोच रही थी यार लेकिन ये बंदा कौन है, ये मूछे लगाए हुए लुटेरा ये है कौन। फिर इनके जहन में एक नाम आया, यार ये गाय हैंसन हो सकता है क्योंकि ये क्लार्क नाम के बंदे को छुड़वाना चाह रहा है, ये उसका पार्टनर लग रहा है मुझे। अब पुलिस ने कहा भाई रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ेगा। बाहर बैंक के न्यूज वैन्स वाले, कैमरा सेटअप हो रहा है, सबके सब आ गए तमाशा देखने के लिए और पुलिस वाले बाकायदा इंटरव्यू दे रहे हैं, टीवी पे आने का मौका मिल रहा है तो वो सारी की सारी डिटेल टीवी पे दे रहे हैं, सारी डिटेल वो क्या करने वाले हैं, क्या देखा उन्होंने, क्या अगली प्लानिंग है, सब बता रहे हैं अंदर। और ये तमाशा देखने के लिए पब्लिक भी मौजूद थी, उस जमाने में फोन तो था नहीं तो पब्लिक को तो फ्री का सर्कस दिख रहा था, पब्लिक भी पहुंच रही थी मजे से। इनफैक्ट द फनी पार्ट इज ऑफ ड्यूटी पे जो ऑफिसर थे वो भी भीड़ में शामिल थे सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक लेकर के, क्या होगा भाई अब तो देखना है। और ये सब कुछ टेलीविजन के लिए बहुत बेहतरीन था क्योंकि ये बिग बॉस की तरह चल रहा था, अंदर बैंक के क्या हो रहा है बाहर क्या होगा। और अंदर दरअसल हो ही रहा था, जो बाहर पुलिस वाले बिल्कुल चौड़े में हीरो बन के इंटरव्यू दे रहे थे, अंदर ये लुटेरा रेडियो पर सब कुछ सुन रहा था, मस्त कमेंट्री की तरह सब कुछ सुनाई दे रहा था उसे और लुटेरा खूब मजे ले रहा था। उसने तुरंत कमांड फोर्स को कॉल करी, बोला सुनो सब ठीक है लेकिन क्लार्क को ना 2 बजे से पहले छोड़ाना है जेल से, ठीक है, वरना जो 3 औरतें खड़ी हुई दिख रही हैं फ्रंट गेट पे, हाँ इन्हें कर दूंगा गायब। तो फोन रखने से पहले उसने बोला सुनो सुनो सुनो एक और डिमांड है मेरी, सुनो मुझे प्यास लगी है जरा, कार्बोनेटेड पानी मंगा दो, कुछ ड्रिंक्स वगैरह मंगा दो। फिर उसने फोन रख दिया। आप पुलिस वालों ने कहा ठीक है भाई पानी वानी पहुंचा देते, उन्होंने कार्बोनेटेड पानी मंगाया, इसने पानी खोला जमीन पे फेंक दिया, वापस कॉल लगाई, बोला ऑफिसर मैंने तुम्हें क्या बोला था ढंग की कोई कोल्ड ड्रिंक मंगाने के लिए ना, मुझे पैशन फ्रूट सोडा चाहिए पानी नहीं चाहिए, दोबारा भेजाओ। आप पुलिस वाला निकला भाई फ्लेवर ढूंढने के लिए पैशन फ्रूट। फोन रखने से पहले हॉस्टेज ने भी बोल दिया इस लुटेरे से, सर सर मेरे को एक सिगरेट का डब्बा अगर मिल जाता तो मतलब काम हो जाता। लुटेरे ने उसकी तरफ देखा थोड़ी देर के लिए और इसको लगा सिगरेट मांगने वाले को ये गोली वोली ना मार दे, बोला सर प्लीज सर आप हॉस्टेज ही हो सर, मैं कहाँ भाग रहा हूँ एक बोल दो ना। तो इस लुटेरे ने लिटरली पुलिस वाले को बोला और हाँ एक सिगरेट का डब्बा ले आना, ठीक है ये ले आना बस तुम। पुलिस वाले क्या करते वो हर चीज पे हाँ भर रहे थे। दूसरी साइड क्लार्क जिसे छुड़ाने की मांग की गई थी इस लुटेरे की तरफ से, वो जेल में था सूप पी रहा था। गार्ड उसके पास आया, उसको बोला खड़े हो चलो जरा वार्डन ऑफिस में, वार्डन ऑफिस में ले गए, बताया उसको कि क्या क्या हो रहा है बाहर और उसको बोला सुनो तुम्हें यहां से निकालने का मौका दे रहे हैं निकलने का, मगर तुम्हें बैंक में जाना है और उस लुटेरे को बोलना है कि सरेंडर करे, समझ गए। बोला ठीक है साहब, गाड़ी वाड़ी मंगाई इसके लिए, जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा सबसे पहले गाड़ी भेजो, स्टॉक होम लेके गए इसको। अब ये जो सब कुछ हो रहा है ना ये सब कुछ रेडियो पे बाकायदा पुलिस वाले खुद ही बता रहे हैं और वो रेडियो अंदर बैठा हुआ सुन रहा है लुटेरा। एक मिडिल एज बंदा जो था वो जोश जोश में पब्लिक में से उठकर, उसने ब्राउन कोट पहना हुआ था और वो लग रहा था कोई मंत्री संतरी है, पुलिस वालों ने ध्यान नहीं दिया, वो बैंक में बीच पंगे में अंदर चला गया लॉबी में पहुंचा और इस बंदे ने पता नहीं कौन सा कॉन्फिडेंस इसके अंदर आया और इसने लुटेरे की तरफ बोला और देखा अरे यार ब्रो चिल कर यार कैसे भाग के जाएगा, बाहर देखिए कितनी पुलिस है, ब्रो छोड़ ना ये साहब, थोड़ा जितना अमाउंट हो लेके निकल जा, नहीं बच पाएगा भाई। लुटेरे ने

आदमी की तरफ देखा, फिर पुलिस वाले की तरफ देखा, बोला ये तुम्हारा आदमी है, अंडरकवर है ये। पुलिस वाले ने बोला नहीं नहीं मम, मैं जानता इसको। तो लुटेरे ने बोला फिर इसको बाहर फेंकवाओ, ये अंदर आया कैसे। और खुद ऑफिसर मॉर्गन ने पकड़ के उसे बाहर फेंका। ये पता नहीं कौन से कॉन्फिडेंस में अंदर आ गया था लुटेरे से बात करने के लिए, और उसे लुटेरे ने फेंकवा दिया। अब दूसरी तरफ कैश का इंतजाम हो रहा था। पुलिस ने कहा देखो इंस्टॉलमेंट्स में हम तुम्हें दे पाएंगे। ठीक है जल्दी भिजवाओ। इस बीच एक डॉक्टर थे, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर बेरूट, इन्होंने रीड करना शुरू किया कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो बोले इस बंदे के बारे में मुझे और डिटेल्स दो। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इधर डिटेल्स और अलग से चल रही क्योंकि डॉक्टर साहब को बताया जा रहा है क्या करना है। फिलहाल बीच में क्या हुआ, लुटेरे का मूड थोड़ा लाइट हुआ क्योंकि उसकी सुनी जा रही। तो उसने 5 कस्टमर्स को कहा सुनो भाई सब घर जाओ, जाओ जाओ जाओ। 5 कस्टमर्स को उसने घर भेज दिया। अब ये सब कुछ हो रहा है, बीच में 2 बजे की जो डेडलाइन थी वो आगे चली गई, ना क्लार्क आया ना पूरा अमाउंट आया, कुछ नहीं आया। अंदर इंस्पेक्टर था, वही तो गवाही देगा, वही तो बात करेगा, वो अंदर ही था। सवर टूट रहा था उसका, तो उसने मशीन गन चिपकाई उसके ऑफिसर के, बोला हाँ भाई 2 बज गए क्या बात है अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। बोला देखो मुझे नहीं पता है होगा, मतलब मैं ही हूं ना जो तुम्हारे लिए बात कर रहा हूं, मुझे क्यों मारोगे। तो बोला हाँ बात तो सही है। उसने गन हटाई और फ्लोर की तरफ कर दी, उससे कहा ठीक है कोई बात नहीं। इतने में बाहर से अंदर बैंक की कॉल आई, फोन पे क्लार्क था। क्लार्क ने सीधा इस लुटेरे से कहा ये रिकॉर्डेड लाइन है, हम कोई और बात नहीं कर सकते, बस मैं कुछ देर में अंदर आ रहा हूं, गन नीचे रखना। उसने कहा ओके फाइन। अब क्लार्क को लेते हुए सीनियर ऑफिसर्स बैंक की तरफ बढ़ रहे थे और बोला यार अंदर जाके इसको समझाओ, ये तुम्हारा जो दोस्त है तुम्हें छुड़वा रहा है, इसको बोलो ना करे ऐसा। क्लार्क ने कहा ओके, और क्लार्क अंदर आ गया। क्लार्क ने अंदर जाके इस लुटेरे के कान में कुछ तो कहा जो किसी को सुनाई नहीं दिया, मगर वो इधर उधर देखने लगा। तो समझ में आया कि क्लार्क ने अंदर जाकर इस लुटेरे को सब बता दिया कि इधर गन लेके खड़े उधर गन लेके खड़े बिल्डिंग पे खड़े सब बता दिया। ऑफिसर्स ने उल्टा चलता फिरता अखबार लुटेरे को खुद दे दिया, जिसने सब बता दिया कहां कहां पुलिस खड़ी हुई है, और एक पार्टनर अलग से दे दिया उसको खुद ही। अब ये जो तमाशा हो रहा है ये पूरी की पूरी कंट्री देख रही थी। क्लार्क पूरी की पूरी बिल्डिंग समझा रहा था कौन सा डोर बंद है कौन सा खुला है कौन सा क्या है कौन सा नहीं है। एक बंदा मिला क्लार्क को ढूंढते ढूंढते बैंक के अंदर, इसका नाम था स्वेन, ये एक जगह छुपा हुआ था, इसको पकड़ के ले गया है। अब नेगोशिएशन बढ़ नहीं रहा है, फंस गया है। इन लोगों ने कहा भाई ये मान नहीं रहे, ये लोग खिड़की से गोली वोली ना मार दें, अपन बैंक के वॉल्ट में चलते हैं। अब क्लार्क और ये लुटेरा जिसका अभी तक नाम नहीं पता, ये लोग बैंक के वॉल्ट में चले गए। ओरिजिनली जो चाहिए था अमाउंट उसे बढ़ा दिया। लुटेरे ने कॉल करी सुनो अभी ना तुम लोगों ने बहुत मेरे साथ मजाक कर लिया, अभी मुझे 3 मिलियन से पेट नहीं भरेगा मेरा, थोड़ा मेरे को और चाहिए समझे, और 2 पिस्टल भिजवाना, और सुनो जो स्पोर्ट्स कार्ड मैंने बोली थी ना मेरे को ग्रीन कलर की चाहिए हरे रंग की समझे। हाँ फिर क्लार्क जो साथ में था उसे आइडिया आया, उसने बोला हॉस्टेजेस की बात जो है ना घर पे करा देते हैं ताकि चिल हो जाएं। तो जितने लोग पकड़े हुए थे इन्होंने, जिसमें 3 लड़कियां थी क्रिस्टीन एलिजाबेथ और बर्गीट, उनसे कहा आप घर पे बात कर लो कोई दिक्कत नहीं। तीनों हॉस्टेजेस ने घर पे कॉल करके बोला हम एकदम ठीक है चिले, मैं घर आ जाऊंगी मैं घर आ जाऊंगी मैं घर आ जाऊंगी। तीनों लड़कियों ने बोल दिया मामला एकदम सेट, घर वाले एकदम चिल कर रहे हैं। समझ रहे हैं अब क्या चल रहा है। अब ये सबके सब क्योंकि बोर हो रहे थे तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें, साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। और दूसरी तरफ रेडियो ऑन था, रेडियो पर ऑफिसर्स जो भी डिस्कस कर रहे थे एक दूसरे के साथ, पूरा का पूरा रास्ता राज सब कुछ रेडियो पे अंदर ये लोग सुन रहे थे। ऑफिसर्स ने अंदर जाने की कोशिश करी, फिर से गोलियां बरसी, बाहर तक सुनाई दी इस बारी, क्योंकि ये खुद ही अपना प्लान बता रहे थे रेडियो पे बाहर मीडिया को इंटरव्यू में, और मीडिया भी पूछ रही थी। भागते रहे बेचारों को, फेलियर पे फेलियर, फेलियर पे फेलियर मिल रहा है। 7:40
बाहर गाड़ी तैयार होकर खड़ी कर दी गई, स्पोर्ट्स कार हरे रंग की, पर दोनों के दोनों लुटेरा और वो क्लार्क जानते थे कि अभी हम जाएंगे तो गाड़ी तो बैठने को नहीं मिलेगी, ये लोग गोली अलग मार देंगे। 10 घंटे बीत चुके थे, सब कर लिया पुलिस वालों ने, कुछ नहीं हो रहा। रात के 10:30 हो गए, पुलिस वालों ने कहा अंदर होस्टेजेज हैं, हम लोग खाना भिजवा देते हैं। तो उन्होंने हॉट डॉग्स, फ्रेंच फ्राइज, 6 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भिजवा दी। अब ये बहुत तेज था जो लुटेरा था, उसने कहा नहीं भाई इतने अच्छे लोग नहीं, इसने बोतल के ढक्कन को देखा जो पता लग रहा था कि पहले से खुले हुए थे, मतलब इन्होंने कुछ तो लगाया होगा। और फिर से पकड़ गए पुलिस वाले, इन्होंने बोतल को तोड़ दिया, बोले दोबारा भिजवाओ। पूरा का पूरा एक दिन निकल गया है, कुछ नहीं कर पाए और बैंक में अभी भी जारी है तमाशा। दूसरे दिन जो साइकेट्रिस्ट साहब थे, उन्होंने कहा सीनियर ऑफिसर से कि सुनो ये जो लुटेरा है ना, तुम बता रहे हो ना काय हेंसन है, इसका करीबी लेके आओ तब ये बंदा टूट जाएगा। पुलिस वालों ने कहा ठीक है। उनको पता लगा 17 साल का एक भाई है लुटेरे का, क्योंकि उनको लगता है लुटेरा काय हेंसन नाम का है, तो उसके 17 साल के भाई को स्टॉकहोम लेकर आए। नाउ द फनी पार्ट बिगिंस। अगले दिन की सुबह 6:10 पे डेन नाम का बंदा, जो 17 साल का भाई था, पुलिस वालों को लग रहा था कि लुटेरे का भाई है, उसे लॉबी में भेज दिया। वो गया, उस पर लुटेरे ने गन गोलियां बरसा दी और वो बोलता रहा कि अरे रुकिए, अरे रुकिए, अरे रुकिए, पर कोई नहीं सुन रहा उसकी। फिर उसे पुलिस वाले ने बोला भाई तू अंदर गया तो अपना नाम तो बोलता, तेरा भाई है वो नाम सुन के रुक जाएगा। तो डेन ने कहा यार तो आप लोग मरवाएंगे मुझे। डेन वापस गया और बोला काय काय, मैं हूं तुम्हारा भाई, मैं हूं तुम्हारा भाई। लुटेरे ने फिर से गोलियां बरसा दी, डेन वापस भागा और लुटेरे ने बोला भाग यहां से, कौन है तू? और ये सब कुछ टीवी पे चल रहा है। पुलिस वालों को लगा काय नाम का बंदा है लुटेरा, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि कुछ देर बाद असली काय हेंसन ने कॉल करी पुलिस वालों को, जो खुद भाग रहा था पुलिस वालों से, और उसने बोला कि सर मेरी रेपुटेशन क्यों खराब कर रहे हो, मैं नहीं हूं बैंक के अंदर, अरे मेरे से क्या मतलब। और ये कॉल करना इसकी बेवकूफी थी, क्योंकि ये भागा हुआ कैदी खुद था, इसको पुलिस ने ट्रेस करके हफ्ते बाद भर बाद पकड़ लिया। लेकिन उसने कॉल करके बताया भाई साहब वो मैं नहीं हूं, क्या कर रहे हैं आप, मेरी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं, तो अंदर कोई और है। अब जवाब जो है वो फाइल्स में छुपा है, पुलिस वालों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और पुलिस वालों को एक नाम मिला, नाम था येन एरिक ओल्सन, 31 साल का एक स्मॉल टाउन छोटा सा चोर, जेल में 3 साल बिताए थे इसने, और गुड बिहेवियर, अच्छे व्यवहार की वजह से, अखलाक की वजह से छोड़ दिया गया था। आइडेंटिटी समझ में आ गई, मगर अब पुलिस का सवाल ये था ये येन नाम के बंदे को जो लुटेरा है इसे क्लार्क क्यों चाहिए। अब नाउ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। वोल्ट में क्लार्क को येन ने बताया, क्योंकि क्लार्क ने खुद पूछा भाई तूने मुझे क्यों जेल से छुड़वाया, मैं तो जानता भी नहीं तुम कौन हो। तो येन ने बोला सर मैं आपके साथ जेल में था, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, सर बहुत बड़ा फैन हूं, सर आपका क्या क्या चार्मिंग हैंडसम आदमी हो यार, मेरे को आपकी ऐसा बनना है, मैं आपको इंप्रेस करना चाहता था इसलिए मैंने ना ये सारा कुछ किया, आप बताओ मेरे से इंप्रेस हो कि नहीं। और क्लार्क सोच रहा था कि क्या क्या क्या बोल रहे हैं। कमांड ने अंदर कॉल करी, क्लार्क बाहर आया लॉबी में, एक तरफ क्रिस्टीन वो लड़की एलिजाबेथ और ऐसे बहुत सारे और भी लोग थे, बेसिकली मेनली औरतें थी, और ये औरतें अब जो हॉस्टेज होने चाहिए, जो पुलिस इनको बचाना चाहती है, ये औरतें क्या कह रही हैं पता, ये औरतें कह रही थी प्लीज हमें भी जाने दो इन लुटेरे के साथ, आप तो हमें बचा नहीं पा रहे हो, हमें इनके साथ जाने दो। जस्ट इमेजिन ये सब कुछ टीवी पे चल रहा है इन रियल टाइम। मतलब जो हॉस्टेज है वो कह रही हमें चोरों के साथ जाने दो, एंड किसी की समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। पुलिस बाहर खड़ी कंफ्यूज है कि भाई है क्या बोली है। एंड जब ये बोल के वापस अंदर गई, जो वोल्ट है बैंक का जहां पे ये लोग छुपे हुए थे, अभी 1.5 दिन हो चुका है, वहां पे जाके फ्लोर पे वोल्ट के टिक टैक टो खेल रहे थे, पत्ते खेल रहे थे क्योंकि लेके आए थे अपने साथ में, एकदम मस्त चिल लाइफ चल रही है। और बाहर पुलिस जो है बैठी हुई थकी हुई हारी हुई, उनकी जान निकली पड़ी है, उन्हें समझ नहीं आ रहा करना क्या है। उन्होंने बोला कि भाई सुनो तुम सारे हॉस्टेजेस नहीं ले जा सकते अपने साथ, एक ही ले जा सकते हो। 5 मिनट के बाद बैंक से बाहर की तरफ कॉल आया पुलिस वालों को, और लुटेरे का नहीं, क्लार्क का नहीं, लड़की का। वो बोली क्यों साहब हम क्यों नहीं जा सकते, एक लड़की क्यों जाएगी, हम सब जाएंगे इनके साथ। और पुलिस वाला फोन पे सोच रहा है अब मैडम क्या कह रही हैं आप,
क्या कह रहे हैं आप?

मुझसे बचाओ इनको, सॉरी इनको मुझसे बचाओ, कंफ्यूजन हो रही है और बहुत भारी कंफ्यूजन है। और पुलिस वालों को हंसी भी आ रही है, पर वो आना है, वो बचना ही नहीं चाह रही, वो तो कह रही है हमें जाने दो उनके साथ। और लुटेरे कह रहे हैं मैं नहीं ले जाऊंगा इनको, ये तो स्ट्रेस दे रही है। तीसरा दिन आया, बैंक पुलिस पर्सनल बढ़ा रही थी आस, मतलब बैंक के आसपास पुलिस वाले गिनती बढ़ा रहे थे अपनी, कोई ना कोई आ जाए, कुछ तो हो जाए, कहीं से हम एंटर कर पाए। अंदर क्या हो रहा है पता है, बैंक के वोल्ट के अंदर बातें चल रही हैं। बर्गीटा जो अंदर फंसी हुई थी लोन डिपार्टमेंट वाली, वो अपने हस्बैंड को याद कर रही है, और लुटेरा जो येन है वो उसको बता रहा है यार आई अंडरस्टैंड, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में तुम पहुंच जाओगे उनके पास, चिल करो। और मीनवाइल रेडियो पे वो सब सुन रहे हैं, पुलिस वाले जो बाहर डिस्कशन कर रहे हैं वो सब कुछ ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। और पुलिस वाले उस पर बोल रहे थे कि अब हम नेगोशिएट नहीं करने वाले। 3:17 पे कॉल आई, क्लार्क ने कॉल उठाई, इस बार पुलिस वाला नहीं था, जर्नलिस्ट था, और बोला और क्लार्क भाई सब बढ़िया चल रहा है? तो बोला यार इंटरव्यू दे दो थोड़ा सा। तो क्लार्क ने कहा ठीक है बोलो। जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई आपको छुड़ाने के लिए जो येन है अंदर जो बंदा है ये आपको क्यों छुड़ाना चाहता है? तो बोला भाई मैं नहीं जानता इसको, ना मेरी ये सुनने वाला, मुझे नहीं पता कौन है ये, मुझे जेल से छुड़ा तो लिया, मैं करूं क्या, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, मैं तो खुद फंसा हुआ हूं। एंड उसने बोला कि मुझे वापस जेल में डाल दो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ। और इस बीच क्रिस्टीन और एलिजाबेथ वो कह रही थी इंटरव्यू में, जो उन्होंने इंटरव्यू बाद में दिया जर्नलिस्ट को फोन पे, उन्होंने बोला ये लुटेरे जो हैं वो एकदम बढ़िया है, पुलिस अजीब है, नेगोशिएट नहीं कर पा रही है। बोली ये लोग तो रियल जेंटलमैन हैं, इतना ख्याल रख रहे हैं हमारे जिसकी हद नहीं, ये पुलिस वाले टाइम खींच रहे हैं। ये इंटरव्यू 17 का चला लेकिन कुछ नहीं बदला, अथॉरिटीज साइलेंट रही। क्रिस्टीन को आया गुस्सा, 5:02 पे उसने जुगाड़ लगा के सीधा मिनिस्टरों को कॉल करना शुरू कर दी और भड़क गई उन पे। क्लार्क ने बोला शाबाश शाबाश, वो यहां तक कि प्रधानमंत्री तक पहुंच गई, वहां तक उसने अपनी कॉल पहुंचा दी और डिमांड रखी, बोली हमें यहां से आप निकालिए और इनके साथ निकालिए। मिनिस्टर साहब कह रहे हैं अरे ये क्या बात होती है, इनको बोलो हथियार गिराए सरेंडर करें। बोली नहीं ये क्यों सरेंडर करेंगे, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये नहीं करेंगे सरेंडर। कॉल 42 तक चली है, 42 की कॉल। एंड क्रिस्टीन ने फोन रखने से पहले बोला कि इफ यू डोंट वांट टू गिव देम व्हाट दे वांट तो फिर ठीक है आप एक काम करिए, आप हमारी जगह आ जाइए, हमें मिनिस्टर बना दीजिए। और ये कह के उसने कॉल काट दी। मिनिस्टर कंफ्यूज, पब्लिक तो उनके लिए तो बिग बॉस चल ही रहा है, और पुलिस वाले भी कंफ्यूज। कॉल के बाद पूरा ग्रुप जो ये वोल्ट के अंदर फंसा हुआ है लुटेरे और हॉस्टेजेस अपेरेंटली, ये फुल जोश में थे। न्यूज़पेपर में सब कुछ छापा गया, मीडिया में सब कुछ था, मगर सब कुछ साइलेंस। यान जो कि अंदर था उसने कहा कि मैं कॉल करता हूं जरा, तो उसने कॉल करी। जर्नलिस्ट अब बाहर पब्लिक पे प्रेशर बना रहे थे। यान ने बोला कि भाई अगर मेरी मांग नहीं पूरी हुई तो मैं हॉस्टेज में गोली चलाना शुरू कर दूंगा। पुलिस वाले को लगा चलो अब ये मामला सीरियस है, यानी हॉस्टेजेस का दोस्त नहीं है ये, गोली चला देगा। पर यान ने क्या किया, फोन काटने के बाद मुड़ा और स्वयं नाम का बंदा जो हॉस्टेज था उसको बोला भाई तू टेंशन मत ले, देख मैं तेरे को मारूंगा नहीं, हाँ मैं ना तेरी थाइस पे गोली मारूंगा, चलेगा देख मरेगा नहीं, हाँ टेंशन मत ले। तो उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, यान भाई आप मारिए गोली, कोई टेंशन नहीं है, ये ही सब हो रहा है अंदर। एंड 7:34 पे यान का दिल पिघल गया, उसने कहा नहीं यार मैं इसको नहीं मार सकता, ये बहुत प्यारा हॉस्टेज है। उसने नहीं मारा, उसने एक एक्सप्लोजिव वो लेके आया था अपने साथ बैग में, उसको उसने फेंक दिया और वो फट गया एकदम से। अब जब वो फटा तो पुलिस वालों को लगा भाई ये तो बहुत डेंजर आदमी है, इसने तो मतलब ओए क्या कर दिया। और फिर पुलिस वालों ने क्या सुना, पुलिस वालों ने सुना बैंक के अंदर गोलियों की आवाज़, वो डर गए कि भाई यान ने फाइनली फायरिंग शुरू कर दी। पर जानते हुआ क्या था, सेकेंड फ्लोर पर एक पुलिस वाला था जो जख्मी पड़ा हुआ था गोली खा के बहुत देर पहले, और उसके पास एक गन थी। जब उसने ये एक्सप्लोजन की आवाज़ सुनी तो वो गन चलाने लगा, अंधाधुन उसे समझ नहीं आया कहाँ से क्या हुआ, और दीवार में उसने गोलियां बरसा दी। और वो आवाज़ सुन के बाहर पुलिस वालों को लगा कि अरे भाई यान तो बहुत डेंजर है, और ये सब कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये मामला कभी ठंडा हो पाएगा। एक और रात बीत रही थी, अंदर वोल्ट के प्रॉपर जैसे घर में लाइट बंद करते हैं, घर में लाइट बंद करी,

और धीरे धीरे सबके सब आपस में फुसफुसा के बात कर रहे, लुटेरे और हॉस्टेजेस सब, और बाहर उल्टा पुलिस हाई अलर्ट पे। रात के 1:50 एकदम से गोलियों की आवाज से वोल्ट में सब उठे। रूफ टॉप पे छतों पे बैठे हुए स्नाइपर्स बैंक के फ्रंट डोर की तरफ गोलियां चला रहे थे। इंस्पेक्टर मॉर्गन उनमें से एक थे। इंस्पेक्टर मॉर्गन ने गुस्से में आके हवा में गोली चलाई और बोले कि क्या कर रहे हैं हम लोग, इनको इनकी मांग पूरी करके इन्हें छोड़ा क्यों नहीं लेते। इस चक्कर में उनकी नौकरी चली गई, क्योंकि उन्होंने स्नाइपर्स को ऑर्डर दिया था और खुद भी गोली चलाई थी, तो उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। डे 4 आ चुका था। डॉक्टर बैरोट जो साइकेट्रिस्ट थे, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, उन्होंने कहा कि ये जो दोस्ती गहरी हो रही है समझ के बाहर है, एक एक दो क्रिमिनल से हॉस्टेजेस की दोस्ती समझ नहीं आ रही, आप लोग एग्रेसिव हो जाएं। पुलिस वाले को बोला, देखी जाएगी। ऑफिसर्स को लगा ये कैसी बातें कर रहा है भाई, तो बोले नहीं नहीं आप एग्रेसिव हो जाएं। टोटल 3 ऑफिसर्स लॉबी तक आए, वोल्ट के पास तक, और अंदर ये लोग थे। बाहर से उन्होंने चुपके से वोल्ट को बंद किया और सीनियर ऑफिसर ने रेडियो पर बताया, मैंने बंद कर दिया है। फिर जर्नलिस्ट ने बोला, अरे उनको खाना कैसे दोगे, गेट बंद कर दिया तुम लोगों ने, खाना कैसे पहुंचेगा उन तक। फिर उन्होंने अंदर एक माइक लगा दिया, छोड़ दिया माइक बंद करने से पहले, और अंदर से हंसी ठिठोली की आवाज आ रही है। अंदर हॉस्टेजेस और लुटेरे सब मिलके कह रहे हैं, 3 और रुको, आराम से हमारे पास हो जाएगा काम, हम बहुत मजे में हैं, टेंशन मत लो। हॉस्टेजेस का मन ही नहीं है कि उन्हें कोई छुड़ाए। कमांड सेंटर वाले कंफ्यूज रहेंगे इस सिचुएशन में, हम करें तो आखिर करें क्या। एक ने बोला, खाने पीने में दवाई मिला दो। दूसरे ने बोला, पकड़े जाएंगे सर, बहुत शातिर है अंदर, अंदर मस्त पार्टी चल रही है, एक दूसरे के बाल काटे जा रहे हैं, येन अपना मेकओवर करा रहा है, बर्गीटा उसके बालों को काट रही है, अंदर एक अपने आप में कम्युनिटी बन चुकी है चोरों और हॉस्टेजेस के बीच में, येन को डर ही नहीं है किसी का। एलिजाबेथ जो है वो तो बहुत चिल है, एक नाशपाती पड़ा हुआ था बैग में, उसे नाशपाती निकाल के भी खिलाया। यानी सब कुछ वोल्ट के अंदर हो रहा है। 5 आया, 5:45 शाम के, पुलिस वालों को दिक्कत ये हो रही थी कि ये लोग क्या, इनको बाहर कैसे निकालने का समझ में नहीं आ रहा है, और अंदर डिहाइड्रेशन भी होगा, इन लोगों की जान भी जाएगी, उसका पर्चा भी हम पे ही फटने वाला है, तो करे तो क्या करें। हायर वाले बोल रहे हैं कि मनाओ मनाओ मनाओ, कैसे मनाओ। तो 9:08 पुलिस वालों ने कुछ बहुत ही बहुत ही बहुत ही अलग किया, उन्होंने जाके ड्रिलिंग करना शुरू कर दी। जब ड्रिलिंग करना शुरू करी तो वोल्ट में सबने अपने कान ढक लिए, और पुलिस वालों ने उसके जरिए एक माइक्रोफोन और अंदर इंसर्ट किया, और उन्होंने जो सुना वो अजीब था। लोग बोले, बस करो यहाँ औरतें हैं, तुम इतना शोर मचा रहे हो, ड्रिलिंग कर रहे हो। बोले, भाई वो हॉस्टेजेस हैं, तुम चोर हो, तुम क्या कर रहे हो, बाहर आ जाओ ना। तो बोले, नहीं मांगे पूरी करो। अंदर चोरों को लुटेरों को बाकी औरतों की फिक्र हो रही थी, बाकायदा उनके कान ढक रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और बाहर जो बचाने वाले लोग हैं वो अभी भी कंफ्यूज हैं कि हम विलन कब बन गए भाई। वो ड्रिलिंग करते रहे और ये मामला चलता रहा। इनफैक्ट इस बीच पैकेजेस ऑफ फूड और वाटर पहुंचवाने में पुलिस वालों को मजबूर कर दिया गया, और उन्होंने पहुंचाए भी, क्योंकि ड्रिल करने का कोई फायदा नहीं था, दे वर नॉट रेडी टू कम आउट। लेकिन फिर डॉक्टर बैरोट जो साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने प्रेशराइज किया, उन्होंने पूरे लुटेरे की पूरी प्रोफाइलिंग करी और बोला कि कुछ तो करना पड़ेगा। सिटीजन से पूछा गया, जो वहां पे शहरी लोग थे, उनसे कहा, भाई क्या करें। किसी ने बोला, भाई अंदर जो है ना सर, मधुमक्खी छोड़ दो। किसी ने बोला, सर अंदर पिंग पोंग बॉल्स डाल दो। किसी ने बोला, सर अंदर गैस छोड़ दो। और अलग अलग आइडियाज दे रहे हैं लोग कह रहे हैं, भाई सर बाहर भीड़ तो है ही, कॉन्सर्ट ही रख दो। ये सारे लिटरल अखबार में छपे हुए पब्लिक के आइडियाज हैं। 6 हो चुके थे अंदर, कुछ अभी तक लूटा नहीं गया है, पुलिस बाहर खड़ी है, अंदर चोर हैं, रूटीन लाइफ चल रही है, पुलिस पे मजाक लिखे जा रहे हैं, जोक्स बन रहे, कार्टून्स बनाए जा रहे हैं, और अंदर से जो चोर हैं वो ये कह रहे हैं, कितने दिन और खिलाओगे भाई हमें, कितने दिन और खिलाओगे। 6 और ड्रिलिंग चालू की गई, और इस बार कुछ अलग हुआ। यानी को समझ में आ गया था, ये लोग शायद गैस छोड़ सकते हैं। कमांड सेंटर पे कहा गया कि सर टीयर गैस छोड़ना सबसे सही रहेगा, उसका अग्रीमेंट मिला मिनिस्टर्स से, और
पब्लिक जो डेली आ रही थी तमाशा देखने के लिए, अब वो इंतजार कर रही थी कि आज क्या होगा। 8:55 पे ऑक्सीजन मास्क के साथ गेस्ट स्पेशलिस्ट और टेक्टिकल टीम अपनी पोजीशन पे थी। 9:05 पे कमांड दी गई कि शुरू हो जाएं, और फिर डेंस ग्रे केमिकल अंदर छोड़ दिया गया। आंखें जलने लगीं, चिल्ला रही थी हॉस्टेजेस और ये दोनों क्लार्क और येन बुरी तरह से पैनिक कर रहे थे, दम घुट रहा था। और फिर येन से रहा नहीं गया, येन ने फाइनली सरेंडर कर दिया। हॉस्टेजेस अभी भी उसका साथ दे रही थी। तीनों लड़कियों ने बोला कि सर येन को जाने दीजिए सर, वो बेकसूर है सर, उसने कुछ चोरी नहीं किया है। क्लार्क ने भी ये सब देखा और क्लार्क कंफ्यूज था कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है। और पुलिस ने एक और अजीब बेवकूफ़ी की थी, उन्होंने जो वोल्ट था वो लॉक कर दिया था, तो बेचारे अंदर 30 मिनट और फंसे रहे, इनको निकालने में आधा घंटा और लग गया। बहरहाल जैसे तैसे इनको निकाला गया, इन्वेस्टिगेटर्स ने देखा कि कुछ भी अमाउंट चोरी नहीं हुआ, एक अमाउंट चोरी हुआ है वो पता नहीं कहाँ पर है। पर हेडलाइंस जो थी वो बहुत मजाकिया थी। डॉक्टर बेरूट जो साहब थे, जिन्होंने जो साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने दुनिया को एक साइंटिफिक टर्म दिया जिसको शुरुआत में कहा गया नॉर्मल स्टॉक सिंड्रोम, जो बाद में जिसे हम आज की तारीख में जानते हैं एज स्टॉकहोम सिंड्रोम, जो जिसका मतलब ये होता है कि हॉस्टेजेस जिन पे जिनको बंदी बनाया गया है उनको प्यार हो जाए क्रिमिनल से। वेरी अजीब वे, बट इसको ये कहा जाता है। खैर, साइकोलॉजिकल बॉन्ड एक तरीके का। अब कहानी का बिल्कुल आखिर, बाहर इनकी दोस्ती हुई या नहीं नोबडी नोज, मगर क्लार्क जो था उसको भी सजा दी गई। 10 साल की सजा येन को और क्लार्क को 5 साल की। क्लार्क ने लेकिन अपने वकील को बर्खास्त करते हुए जज साहब के सामने कहा, जज साहब मैंने क्या किया, मैं तो जेल में था, मुझे तो खामखा छुड़ा के ले गए, मेरी तो कुछ ले मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो उन्होंने कहा बात तो सही है, इसको वापिस जेल भेजो। तो बोला नहीं साहब, आपके पुलिस वालों ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं साथ दूंगा तो मुझे छोड़ देंगे। तो जज ने बोला कहाँ साथ दिया भाई तूने, तू भी तो अंदर मौज ही कर रहा था, वापस डालो जेल में। और 10 साल की सजा येन को काटनी पड़ी। एंड दिस वॉज द लॉन्गेस्ट बैंक हाइस्ट एवर दैट हैपेंड, दैट नेवर हैपेंड। मगर ये 6 दिन का जो मनोरंजन स्टॉकहोम में लोगों ने देखा, ये उसका ऑडियो वर्जन था। अब ये किस्सा आपके हवाले, आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू से, पर कहिएगा जरूर 666-22107 पर, 666-22107 पर। भाई आई रियली वांट कि आप इस पे अपना फीडबैक जरूर जरूर दें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। 666-22107।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: भाई मैं सही बता रहा हूँ, गला सुखा देने वाली कहानी थी ये, बट आई होप आपको मजा आया हो, क्योंकि ये 1973 की एक ऐसी कहानी है जो इतिहास में दर्ज है फॉर फनी रीजंस, मतलब नथिंग रियली हैपेंड, किसी की जानने के कुछ नहीं हुआ, बट इट वाज सच अ वियर्ड 6 days ऑफ नथिंग। पर आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा 666-22-107 पर, 666-22-107 पर, एंड आपके मैसेज का मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि इस वाली कहानी ने बहुत मेहनत लगाई भाई। आई हैव टू लिटरली जॉक डाउन एवरी डिटेल पॉसिबल, और मुझे पता नहीं था कैसी डिलीवर हुई, बट आई होप आपको अच्छी लगी हो। एक कॉल आ रही है, उठा लेते। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई।
2: जी भाई, जी भाई बताइए भाई।
3: हाँ जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बढ़िया भाई, एकदम टनाटन। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके?
3: जी मैं ठीक हूँ, कल आ गया था मैं इंडिया से।
2: अच्छा माशाल्लाह, चलो वेलकम बैक भाई। क्या कहना चाहेंगे अमन भाई, कैसा रहा सब कुछ?
3: सब कुछ ठीक ठाक था जी, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग वाज फाइन
2: जी।
3: आपको मालूम है फैमिली में मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है।
2: वो तो आज की कहानी सुनी आपने?
3: आज की कहानी मैंने जस्ट ऑन ही किया, मैं गाड़ी में बैठा ही हूँ।
2: चलो फिर एक सुनना, फिर बात करना, क्योंकि अभी बहुत सारी कॉल आ रही है कहानी से रिलेटेड भाई, तो मुझे लगा आपने सुनी, शायद उसके लिए कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं कॉल बात करता हूँ। ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़। तो आप भी कॉल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 666-22-107 पे हम भी तैयार हैं आपकी बात सुनने के लिए। एंड कुछ मैसेजेस भी हैं मेरे पास, मैं एक एक करके पढ़ देता हूँ, लेकिन एक गाने के बाद पढ़ता हूँ, बिकॉज मुझे पानी पीना पड़ेगा भाई। तो इस कहानी को लेकर आपका जो भी कहना है, जस्ट लेट मी नो, 666-22-107 नंबर है। और मिलते हैं।

अवतार कृष्ण, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, के एस एच एम आर लिखते हैं अपना नाम ये। एनीवे तो भाई आज की गाने तो हो गई और आपने जो रिस्पॉन्स है पढ़ने के लिए तैयार हूँ। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट टायरिंग स्टोरीज एवर मेरे लिए एटलीस्ट। जो शुरू करते हैं

0: Wake up. Hey. Dohawala mein Kabir.
1: Good morning.
0: Subah subah. Wake up.
1: Aaj message kya Kabir Shah saab ne, good morning mere bhai. Baki message hai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. क्या कह रहे हैं कि खाए पे कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह नहा. एग्जैक्टली वही वाला चिंता भाई है. खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना इज द एग्जैक्ट थिंग. अफजल उस्मानी भाई थैंक यू सो मच. भाई बढ़िया कैडी डीपी लग रही है भाई एकदम. उस्मानी भाई एकदम मतलब शानदार आपने जो एडिट मारा ना इसको. अच्छा मैसेज करते हैं, एक मैसेज आया मिस यू भाई, थैंक यू सो मच भाई. पूरी स्टोरी सुनिए, लिखते हैं. देयर वाज टू मच ट्रैफिक, आई जस्ट रीच्ड किड स्कूल. कैसी लगी माजिद भाई, लिखते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी. सब हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ. हाँ एग्जैक्टली शांति एकदम भंकर देने वाली कहानी थी. एक मैसेज है प्रिंस भाई का, लिखते हैं बेस्ट कॉमेडी हाइस्ट, मजा आ गया सुन के, बाकी सब ठीक है लेकिन वो ग्रीन कार का क्या हुआ भाई, वो बाहर खड़ी रह गई. इस पर तो मूवी बननी चाहिए. ये स्टोरी सुन के ऐसा लग रहा है कि एंड ऑफ द स्टोरी हॉस्टेजेस इन दोनों को जमानत करवाएंगी. उनकी दोस्ती हुई या नहीं आई डोंट नो, समथिंग रियली हैपेंड. एक मैसेज चार्ली चैपलिन वाला रॉबरी थी यार. ये कहते हैं आसिफ भाई. एक मैसेज है ईशाम साहब का, वालेकुम अस्सलाम. ईशाम भाई ने लिखा है सुपर्ब. एंड एक भाई है, सिर्फ एक भाई जिनको समझ में नहीं आई वो इसमें कुछ भाई ऐसा साइंटिफिक कुछ नहीं था. उमर फारूक भाई मैं समझ नहीं पाया, लिखते पहले जबरदस्ती कह रहे हैं कुछ सर के ऊपर से गया. क्या सर के ऊपर से गया तो क्या जबरदस्त था. ये भाई ने आज सुबह सुबह नाश्ता पानी कुछ नहीं किया. यूसुफ भाई लिखते हैं वालेकुम अस्सलाम गुड मॉर्निंग. खादिर अब्दुल्लादी भाई लिखते हैं स्टोरी ऑफ अनसक्सेसफुल सिक्स डेज. एग्जैक्टली खादिम भाई वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग. एक मैसेज किया है हमारे भाई ने. पीयूष भाई लिखते हैं व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी टेलिंग, होल्डिंग द इंटरेस्ट फॉर सच अ लॉन्ग स्टोरी इज रियली नॉट इजी, हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट इनक्रेडिबल हाफ आवर स्टोरी. भाई बहुत बहुत सारा प्यार आपको, यही तारीफ सुनने के लिए मैं सुबह आता हूँ भाई. एंड थैंक यू सो मच भाई, इफ यू रियली लाइक द स्टोरी. तब उसको मैंने लिखा है अमेजिंगली अमेजिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी कबीर भाई, लव्ड इट, नेवर हर्ड सच अ थिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स. थैंक यू सो मच बहन. एक भाई और हैं लिखते हैं माशाल्लाह वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच. ये लिखते हैं मनी हाइस्ट का प्रोफेसर इधर होता तो बहुत मजा आता. एक्चुअली मैं इससे इंस्पायर्ड है थोड़ी बहुत मनी हाइस्ट की भी कहानी एज आई रेड अबाउट इट. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई.
1: हाँ जी प्रिंस भाई बताइए भाई क्या हाल है.
2: अरे भैया मेरे हाल तो बढ़िया है लेकिन ये जो आपने स्टोरी सुनाई है ना
1: जी
2: समझ नहीं आता है कि इसका रिएक्शन क्या दिया जाए,
1: है ना. और
2: मजा तो बहुत आया भाई,
1: थैंक यू सो मच.
2: अरे भाई नहीं मुझे वाकई में जानना था कि बाद में किसी ने उनकी जमानत करवाई है, लव स्टोरी आगे बढ़ी. मैं होता तो मैं इस पे मूवी बना के इसका पार्ट टू भी बना देता.
1: वो एक्चुअली मुझे लगता है कि बाकी चीज उन्होंने हाइड करी क्योंकि जो इन्होंने वो कॉइन किया ना स्टॉकहोम सिंड्रोम, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है तो शायद उन्होंने कुछ तो कुछ छुपाया है. बिकॉज मैंने बहुत डॉक्यूमेंट चेक किए उसमें क्लियरली कुछ
2: है ना अभी भी ये तो.
1: हाँ क्या इसकी तो बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब कि ऐसा होता है कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जो हॉस्टेजेस होती हैं उन्हें कहीं कई मर्तबा क्रिमिनली बहुत चार्मिंग लगता है तो ऐसा हो जाता है. तो ये
2: भाई वाकई में बनाना चाहिए इसके ऊपर एक मूवी, लुटेरे की लव स्टोरी.
1: लुटेरे की लव, ये अच्छा अच्छा अच्छा टाइटल है, ये अच्छा टाइटल है. पर
2: वाकई में मैं अभी कुछ होगा तभी कुछ होगा. सबसे बढ़िया चीज तो ये है ना कोई मरा ना कुछ चोरी हुआ. हाँ. और जिसने मौके का फायदा उठा लिया वो पैसे पता नहीं कहाँ चले गए.
1: हाँ वो किसी को नहीं पता वो कहाँ गए क्योंकि लोगों को पता शक है कि किसी बैंक वाले ने वो पार कर लिए बट बोले कैसे. ये वाला सीन
2: है.
1: हाँ किसी ने पार कर लिए. हाँ
2: पुलिस वालों के दिमाग की तो भाई तारीफ करनी पड़ेगी. बहुत अच्छा है कि ऐसी पुलिस कहीं और नहीं है.
1: अरे हमारी है.
2: कि आपने लाइव एकदम बिल्कुल कमेंट्री लगा रखी है फुटबॉल मैच की तरह कि अब गोल हुआ इसने इतना कर दिया है ये यहाँ पे सिर्फ मजाक है यार.
1: अरे पब्लिक को जो मजा आया है ना आप उस टाइम के पढ़ेंगे ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बोल नहीं सकता था बहुत लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स हैं पर जो मजे आए पब्लिक को टीवी पे सिर्फ यही देख रहे थे लोग बाकी सब छोड़ छाड़ गए और लोगों ने बाकायदा अपनी नौकरी से छुट्टी ली है इस इवेंट के लिए.
2: तो ये अगर दिमाग वाला बंदा होता ना तो वो तो एक पूरा यानी क्या कहते हैं कॉमिक कार्टून एक तो क्रिएट कर देता.
1: उस टाइम पे बना है लिटरली ढाई तीन साल
2: कॉमिक बुक बन जाती.
1: हाँ कॉमिक बुक बननी चाहिए लेकिन जो अखबारों में कार्टून चलते हैं वो दो साल तक बने हैं और चले हैं प्रॉपर पब्लिक ने पढ़े तो इतना ज्यादा फेमस हो गया था ये सब उस टाइम पे.
2: कमाल है यार भाई. और सुबह जो मैंने आपको जो भी भेजी थी घड़ी
1: जी
2: वाकई मैंने चार साल बाद वो आपकी बात सुन के समथिंग इज इन माय वर्ल्ड. रखा हुआ है कुछ
1: नहीं, खूबसूरत घड़ी है माशाल्लाह, उसका डायल मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत बढ़िया
2: है। थैंक यू, इट्स ऑटोमेटिक।
1: हाँ ओके,
2: मुझे वही भाई की तरह बैटरी चेंज करके रखने वाली
1: नहीं, पर ठीक है, एटलीस्ट आपने याद करके कुछ कर तो लिया, हमें भी कुछ करने की जरूरत है आज, कुछ हमें भी
2: बहुत सारी चीजें हैं भाई, क्या करें। दो साल तक तो गाड़ी खड़ी रही, जब कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था तो आखिर में उसको एज लाइक स्क्रैप बेचनी पड़ी, समथिंग ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, आप भी जानते हैं।
1: हाँ मैं समझ गया, समझ गया मैं। नहीं पर खुशी हुई मुझे कि आपको ये लंबी कहानी भी अच्छी लगी प्रिंस भाई, मींस अ लॉट टू मी, थैंक यू सो मच। इस
2: भाई आपको लगता है कि कहानी लंबी थी?
1: अच्छा ओके 37 मिनट की थी ना,
2: एंटरटेनिंग ऐसा, बस क्या कहते हैं यार उसको, समा बांधना।
1: हाँ
2: बस ऐसे कर दिया था आपने, कहीं से लगा ही नहीं कि हम लोग लंबी स्टोरी सुन रहे हैं, और अभी लग रहा था कि आगे और कुछ भी होगा।
1: नहीं, फाइनली 37 मिनट में आ गई कहानी, मैं उसी बात पे हैरान हूँ, मुझे लग रहा था ये शायद उससे ऊपर ना चली जाए, बट थैंकफुली बिल्कुल राइट मोमेंट पे,
2: मुझे ही पता नहीं, और भी लिसनर्स को शायद लगा हो कि इसके बाद भी कुछ होगा।
1: नहीं नहीं नहीं,
2: लेकिन आई डोंट नो,
1: नहीं पता
2: है, स्टोरी ऐसा लगा कि अभी पार्ट 2 आएगा, आएगा तो जरूर सुनाना।
1: दिस इज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट भाई, बहुत बहुत प्यार आपको प्रिंस भाई, थैंक यू सो मच
2: भाई, आपकी आवाज में मजे आ गए, पहली बार आपकी आवाज में एक यानी लाइव कमेंट्री के साथ में लाइव कॉमेडी भी सुनी गई।
1: थैंक यू भाई,
2: माशाल्लाह
1: बहुत प्यार,
2: दिन बना दिया भाई
1: आप, जज़ाकअल्लाह भाई, सुन के मेरा भी दिन बन गया, थैंक यू, आप भी ख्याल रखिए भाई, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और प्रिंस भाई के बाद कुछ मैसेजेस है मेरे पास, ये कहते हैं आपकी मेहनत को सलाम है यार, पहले खुद समझना और फिर हमें समझाना बहुत मेहनत वाला काम है, बट स्टिल आई एम कंफ्यूज, बेचारे को मेहनत करके कुछ नहीं मिला भाई, कुछ नहीं मिला उसको, कुछ नहीं मिला। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम।
3: सलाम, क्या हाल है कैप्टन साहब?
1: बढ़िया भाई, अब्बा जी क्या हाल है? देखो कहानी सुनी तो बताओ, जल्दी बताओ।
3: कहानी सुनी है भाई कबीर भाई, पूरी नहीं सुनी मगर।
1: अरे यार ये कोई बात होती है
3: यार, मेरा काम ही ऐसा है कबीर भाई।
1: समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
3: थोड़ा काम ही ऐसा है यार, मजबूरी है कबीर भाई,
1: कोई बात नहीं। अब्बा जी और सुनाओ क्या हाल है?
3: बस यार कबीर भाई, मगर आपका यार कहानी सुनाने का जो अंदाज है ना कबीर भाई, हम लोग ना गांव में देखा करते थे जैसे सपेरा सांप को कीलता है ना भाई बीन के ऊपर।
1: वाह ये कुछ अलग ही किस्म की तारीफ थी।
3: हाँ भाई वैसे ही यार, जिनको कहानी का शौक है ना आपके लिसनर्स को, यकीन मानिए आप पहले मिनट से लेके लास्ट मिनट तक उनको कील के रखते हो भाई।
1: थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया,
3: रियली भाई बहुत जबरदस्त स्टाइल है यार आपका सुनाने का।
1: जज़ाकअल्लाह भाई, जज़ाकअल्लाह। नहीं आज तो मुझे भी लगा था कुछ ज्यादा ही लंबी कहानी ना हो जाए, बट थैंकफुली जिनको अच्छी लगी अच्छी लगी, आई एम रियली हैप्पी कि ये काम कर गया, सो बड़ी खुशी की बात है यार। और बताइए।
3: नहीं कबीर भाई, मगर यार आपके मुंह से जब आप बोलते हो ना, अभी मेरे को भी कहानी सुनाते हुए डर लगेगा, वो यार बात हजम सी नहीं होती यार कबीर भाई।
1: नहीं भाई होता है भाई, थोड़ा तो मतलब रहता ही है ना डर थोड़ा सा, कि पता नहीं।
3: हाँ, आपको रहता है ना। हाँ, हमें हाँ। नहीं ना बात हजम होती कबीर भाई,
1: ये डर अच्छा है भाई, होना चाहिए। इसी चक्कर में तो चीज अच्छी जाती है, कुछ डर जरूरी होते हैं तो वो वाली चीज।
3: अच्छा कबीर भाई एक बात और यार
1: बोलो,
3: ये आपकी थार का मुंह पंजाब की तरफ भी होगा या नहीं?
1: भाई ये तो पूरे वहीं घुमाने के लिए ही है भाई, इस बार मैं चंडीगढ़ जाने वाला हूँ।
3: ओए होए होए होए होए,
1: पूरा सेट है भाई, काला कुर्ता गाल के और उसके ऊपर बढ़िया एकदम ब्लैक शॉल, एकदम आपका भाई टोरा काटेगा भाई।
3: नीचे जुत्ती तिल्ले वाली है।
1: हाँ भाई एकदम सेट है, इस बार फोटो शूट भी कराएंगे बढ़िया वाला एकदम।
3: ठीक है भाई, कितने दिन का प्लान है चंडीगढ़ का?
1: भाई मेरा पूरा प्लान है 20 दिन का
3: चंडीगढ़ का,
1: ना मतलब पूरा पंजाब।
3: ठीक है ठीक है, चलिए भाई याद कर लेना।
1: ठीक है भाई,
3: अगर लगा कुछ भी कबीर भाई।
1: ठीक है अब्बा जी, अपना ख्याल रखो भाई, और पूरी सुनना मैं जब भेजूंगा गाने। ठीक है
3: ठीक है भाई, लव यू, टेक केयर, लव यू मेरा
1: भाई, ख्याल रखो, ख्याल रखो,
3: ओके कबीर भाई, ओके।
1: और एक भाई हैं जिन्होंने बाकायदा जो है मेरा फोटो भेजा पुराना वाला, बोला मूवी बनेगी तो हीरो आपको बनना पड़ेगा। इसमें हीरो था कौन, मुझे पहले ये समझना पड़ेगा इसमें हीरो था कौन, दैट इज वे मोर कन्फ्यूजिंग। कौन सा मैसेज है? हाँ मोहसिन भाई लिखते हैं लाजवाब, और एक भाई है ये भाई हमारे कवाल के अरबाज भाई ने मैसेज किया, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम कारी मौलाना कबीर सर, सर माशाल्लाह कहानी तो बहुत अच्छी थी, पहली बार सुबह से आज तक पूरी कहानी सुनी है, शुरू से आखिर तक अच्छा। मैं तो ये सोच रहा था कि सर अगर ये पाकिस्तानी पुलिस का मामला होता तो शायद अब तक हॉस्टेजेस भी खत्म हो जाते और चोर भी। लगते हैं वो इतना इंतजार कहाँ करते, उन्हें बस कार्रवाई करनी होती। वो हॉस्टेजेस में मैं ही था जो डिमांड कर रहा था, मैं समझ गया था। बहुत शातिर हो रहे थे। एक मैसेज है, कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट बट जानी प्लीज़ पॉडकास्ट शुरू करें एंड ओनली यू नोबडी एल्स यू विल डू वेरी वेल। थैंक यू सो मच फॉर दिस मोटिवेशन। आतिफ भाई को बहुत सारा प्यार। आतिफ भाई थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन। एक मैसेज है, स्टिकर भेजा, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, बहुत ज़बरदस्त दिन बन गया कबीर भाई। ये गरीब साहब ने मैसेज किया है। एक मैसेज है, ये क्या है, CCD क्या है। यूसुफ भाई कहते हैं, अच्छी थी स्टोरी बैंक रॉबरी जो बस मजे के लिए गए हो। आई थिंक दिस शुड बी टोटली वेयर्ड एंड लॉन्गेस्ट रॉबरी इन द वर्ल्ड। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉबरीज इन द वर्ल्ड। और लिखते हैं वो टर्म क्या बोला, टर्म है स्टॉकहोम सिंड्रोम। सब कुछ हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ, यही तो कहानी की खासियत है। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम
1: जी कमाल भाई, कमाल हो गया आप।
4: भाई ये कहानी सुना रहे थे कि कंफ्यूज कर रहे थे यार, वो लूटने गए थे कुछ करने गए थे, ऐसा लग रहा पिकनिक मना रहे हैं उसमें बैठ के।
1: है ना, बढ़िया पिकनिक मनाई है।
4: बढ़िया पिकनिक मनाई भाई वो लोगों ने तो। अब उसको कुछ चाहिए भी नहीं था, जब जो आदमी 6-7 दिन जो है बंद होके उसमें बैंक बंद रह सकता है तो दफल जेल में भी बंद रह सकता है। उसमें कौन
1: सा बड़ी बात है, एकदम मुझे क्या, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम चिल मोड में बना है। इससे चिल रॉबर्स कभी देखे आपने?
4: वही तो कंफ्यूजिंग थी भाई। हाँ, वो भी तीन तीन जो हॉस्टेज वो भी जाने को तैयार नहीं, बोले नहीं हम रहेंगे साथ में।
1: हाँ, उनको मजा आ रहा है, बोला यार क्या होता है, तो सही है, तो बढ़िया चल रहा है।
4: नहीं, कोई कोई आदमी ऐसा कॉमेडियन मिलता है भाई।
1: हाँ,
4: क्या आदमी उसको छोड़ के जाने का दिल नहीं करता, उसको ढूंढता है।
1: हाँ,
4: और वाकई में बैंक लूटने नहीं गया था भाई, वो कॉमेडी करने गया था।
1: बताइए, और 6 दिन भाई, 6 दिन
4: 6 दिन वही तो बोल रहा हूँ,
1: पूरा एक हफ्ता निकाला उन्होंने, मस्त एकदम पिकनिक बना गया। तो आपका क्या कहना है इस पे, आपको क्या लग रहा था कहानी में क्या होगा कमल भाई?
4: कहानी में तो मेरे को लगा था कि भाई ये लोग जो है जो हिसाब से आपने बताने चले गए थे, मतलब जो है जैसे हिसाब से बता रहे थे, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है वहीं से प्लान बना के निकलेंगे, लेकिन आपने निकलने ही नहीं दिया उनको।
1: निकले ना आखिर में, बाकायदा मैंने बाइज्जत निकाला है भाई, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है।
4: नहीं तो भाई जितने निकलना चाहते थे वो लोग, भाई गाड़ी खड़ा किए थे, सब कुछ किए थे, हो सकता है गाड़ी खड़ा करके कुछ और रास्ते से निकल जाते। एक आदमी जब साइकिल से भाग सकता है बैंक रोबरी करके,
1: हाँ।
4: तो ये भी कोई प्लान बना के आया होगा।
1: कोई प्लान नहीं था वो, बस पता नहीं कि एक बंदे का फैन था, उसे लगा चलो मैं इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा कुछ बड़ा सा करता हूँ, भाई उस चक्कर में फंस गया।
4: उसको भी फंसा दिया भाई, उसने फंसा और उसके वो खुद नहीं चाहिए,
1: वो खुद कह रहा है मैंने क्या किया, मेरी तो गलती नहीं है, मैं तो चैन से खा रहा था जेल की रोटी, मुझे क्यों कूटा।
4: अच्छा खासा सूप पीते बैठा था वो, उसको भी उठा लाया। नहीं, सूप मत पी तू, आ जा पिज्जा खा यहाँ पे।
1: तो आए, चलो अच्छा लगा मुझे कहानी चली कमाल भाई, बहुत खुश हुआ।
4: लंबी नहीं है भाई कहानी, कौन बोला लंबी है?
1: नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा था बिकॉज 37 मिनट्स की। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो यस, एक मैसेज है कबीर भाई, वाओ ये क्या था, मैं तो सोच रहा हूँ कि गोली ओरिजिनल चला रहे थे या क्या। नहीं, वो तो ओरिजिनल थी, इशादुल यूसुफ साहब, यूसुफ भाई कह रहे हैं सही है, फिल्म बननी चाहिए, अच्छी कॉमेडी और हिट फिल्म होगी, अक्षय कुमार वुड बी अ फिट। ये प्रिया दर्शन को उसकी स्क्रिप्ट दे दी जाए, बहुत बढ़िया बनेगी यूसुफ भाई। मूवी नेम रॉबरी वेकेशन लव स्टोरी। हाँ, इसका टाइटल इसी के आसपास होना चाहिए। कबीर शाह भाई कह रहे हैं, भाई रणवीर रैप सुनाओ कभी, असल में वो लोग का टाइम पास नहीं हो रहा था, इसके लिए प्लान बनाया। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, बैठे हुए थे क्या करें भाई, 6 दिन क्या करें, पिकनिक कहाँ मनाएं। एक मैसेज है, एनकाउंटर फोर्स है, सबको क्या है, सबको पढ़ के देना था उन्होंने, ये समझा नहीं। एक मैसेज है, बस आपके साथ कॉफ़ी पीना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेना पड़ेगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपॉइंटमेंट क्या, मैं कोई इतना बड़ा आदमी थोड़ी भाई, आप तो मतलब क्या, मैं भी अभी क्या 6 दिन क्या बैठ जाऊँ क्या बैंक में जाके क्या। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, ये मैसेज के मोहम्मद नईमुद्दीन साहब ने, थैंक यू सो मच, लिखते हैं स्टोरी बहुत अच्छी लगी, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज, डोंट फॉरगेट, अच्छा मैं बता दूँ, स्टोरी जो है आपको आफ्टर द शो मिलेगी, आफ्टर लाइक अराउंड 10 AM के आसपास, क्योंकि कहानी ड्यूरेशन के हिसाब से थोड़ी सी लंबी है, तो मुझे उसको भाई बेचने के लिए थोड़ा सा काम धाम करना पड़ेगा, तो थोड़ा सब्र कीजिएगा, ठीक है। सो यू विल गेट इट, बट मुझे सिस्टम से भेजनी पड़ेगी, सो मुझे 10 बजे तक का टाइम दीजिएगा एंड यू विल डेफिनेटली गेट द स्टोरी, ठीक है। इतना टाइम अगर मुझे अब देंगे तो मिल जाएगी, टेंशन को नहीं भाई, ठीक है।
5: तेरा कंगना हाथ वाला छेड़दा रहंदा है मुंडिया।
1: हां जी 8:28
5: बहुत कुछ कहंदा
1: मैंज पाजी दा म्यूजिक।

गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कुछ खबरों पे जरा ध्यान दे देते हैं क्योंकि बहुत जरूरी हैं, ये सारी बातें कर लेनी चाहिए हमें। तो सबसे पहले जो खबर है कतर से जुड़ी, वो है कतर फाउंडेशन की। सो कतर फाउंडेशन के जो मेंबर है अल शकाब, उन्होंने सेट किया है, अपने आप को तैयार कर लिया है टू होस्ट द फोर्थ एडिशन ऑफ अल शकाब इंटरनेशनल अरेबियन हॉर्स शो। इसको सपोर्ट करने के लिए है द सोशल एंड स्पोर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फंड, यानी कि DAAM, और ये 4-7 नवंबर के बीच होगा एट शकाब्स आउटडोर अरीना। ये कवर करने के लिए इंशाल्लाह हम भी वहां पहुंचेंगे, तो जब ये होगा तो आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने कल भी हमारे खबरों में सुना होगा जो 9am की बुलेटिन होती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हज सीजन के लिए ओपन हो चुका है। hajj.gov.qa पे आपको जाना होगा, hajj.gov.qa। इस पे ये रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा 20 अक्टूबर तक, और इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ एंडाउमेंट्स एंड इस्लामिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ हज एंड उमरा अफेयर्स ने बोला है कि वो अप्रूवल देने के लिए अभी बिल्कुल तैयार हैं। तो जल्दी जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो आगे रहें, अप्रूवल मिल जाएगा हज ऑपरेटर्स की तरफ से। उसमें टाइमिंग सब कुछ, ऑपरेशनल प्रिकॉशंस, प्रिपरेशन सब कुछ आपको उसमें समझ में आ जाएगा, बता दिया जाएगा। बट गो फॉर इट, इन केस यू आर प्लानिंग, अल्लाह ताला हम सबको इस हज करने की तौफीक अता फरमाए। आगे बढ़ते, अगली जो बात है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन ने इंट्रोड्यूस किया है एक बहुत ज़बरदस्त प्लान। अब बच्चों के बिहेवियर, जो स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है उसको पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए एक प्लान है। एंड आई एम रियली हैप्पी दैट दे डिड इट। ये बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में एटलीस्ट, जहाँ पे लोगों के अलग अलग कंप्लेन है, अतरंगी सतरंगी कंप्लेन है। तो उसमें स्टूडेंट बिहेवियर मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें बहुत ही क्लियरली डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स और प्रिवेंशन को शामिल किया गया है। इसमें काउंसलिंग भी है और अर्ली इंटरवेंशन है, समझ जाएं कि भाई बच्चे में शुरुआत में क्या नज़र आ रहा है। एंड दिस इज़ ऑल अंडर द स्टूडेंट बिहेवियर मैनेजमेंट पॉलिसी एंड प्रिवेंटिव प्रोजेक्ट हिंस टू, और ये 2026-2027 के अकेडमिक ईयर में पूरी तरह से स्प्रेड आउट किया जाएगा। एंड इंशाल्लाह इट विल बी सक्सेसफुल, जैसे कि हर बार कतर का इनिशिएटिव रहता ही है। सो मुझे कोई शक भी नहीं है। 666-22107 नंबर है। बाकी कुछ मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं। मैसेजेस, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? सब खैरियत से? कहानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। यासिन मुल्ला साहब, नो प्रॉब्लम भाई, खुश रहें। और ये आपकी डीपी मैं देख रहा हूं, यासिन मुल्ला भाई, ये इतनी क्रिएटिव डीपी क्यों लगाई आपने, ब्लैक एंड वाइट वाली? एक सेकेंड, क्या बात है, ये ड्रॉ की भी लग रही है, अच्छी लग रही है भाई। सो 666-22107 नंबर। बाकी ट्रैफिक में कहीं आप हैं, जाम में फंसे हुए हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ लेट मी नो। और एक और भाई ने मुझे मैसेज किया है, कह रहे हैं कि कबीर भाई क्या हॉरर कब? हॉरर नहीं भाई, इस टाइम भी हॉरर सुबह सुबह की सुनिए तुम, और सुबह नहीं आएगी भाई, सुबह कोई हॉरर वॉरर नहीं आने वाली है। सब कुछ जो आएगा वो आपको सुनने के लिए वेट करना पड़ेगा। ओके, तो ज़रा सा सब्र रखें, वो जब शाम का कभी शो आएगा तब। बाकी कॉर्निश पे ट्रैफिक है, जकी भाई ने मैसेज करके बताया। जकी भाई थैंक यू सो मच। जकी भाई कैसे?

जी अस्सलाम वालेकुम, कह रहा था आपको कैसे हैं आप। नहीं सर्कस क्यों चल जाता इसे डिलीट ही करो भाई, बार बार सर्कस चला रहा हूँ सॉरी। ये साउंड इफेक्ट अमिता की के लाइब्रेरी से मैंने निकाला है। अमिता फिर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, आई एम सॉरी बट नॉट सॉरी, अब मैं अपना वाला चल देता हूँ। अच्छा तो आज कुछ दिन है इंटरनेशनली मार्क्ड, जो एक एक करके मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आज जो है ना, आज है वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे। ग्रेटिट्यूड यू शुड शो, अरे एक तो शाह सामी जुबान पड़ गई, शो सम ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स लाइफ ब्रो। शुक्र अदा करते रहना चाहिए, वक्त निकाल के अप्रिशिएट करना चाहिए। अब ये समय बोलूंगा आपको ज्ञान दूंगा चल गएगा, नहीं दे रहा मैं ज्ञान आपको। वर्ल्ड वर्ल्ड बस आज वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड ग्रेट एक तो ये वर्ल्ड वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे है आज। फाइनली बोल दिया मैंने, थैंक यू कबीर साहब। अच्छा आज चाय का दिन है, बताया आपको आज आज चाय डे है। इनकी सी डोंट नो, तो जितने भी चाय वाले हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजन। आज एक कप एक्स्ट्रा हो जाए, वैसे तो हो ही जाता है बट फ्रेश दूध वाली एक बढ़िया एकदम खोलती हुई चाय हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। आज निकलते के साथ ही मेरा भी ये प्लान है, चाय डे सेलिब्रेट करें आज, बढ़िया एक दो कप एक्स्ट्रा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है आज मिनिएचर गोल्फ डे। आई डोंट नो इफ यू हैव प्लेड मिनिएचर गोल्फ, लेकिन बड़े वाले गोल्फ की तो मेरी हैसियत के बाहर है, पर वो मैं नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन मिनिएचर गोल्फ मैंने खेला है जिंदगी में एक दो बार, मस्त लगता है, मजे तो आते हैं जो बात है। इसके अलावा आज है अर्थ विंड फायर अप्रिसिएशन डे, यानी कि धरती हवा और आग, इन तीनों को आप बोलें थैंक यू, मत बोलिएगा फालतू जी से, पर यह है कि तीनों ने तीनों जो अल्लाह ताला की तरफ से जो तोहफे हैं हमारे लिए, ये सच में अप्रिशिएट करने के लायक तो है। तो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कि तीनों चीज़ें हम इंसानों को दी हैं, वरना तो ना जाने क्या होता। इसके अलावा आज है इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल। इसके अलावा आज है सीड गैदरिंग सीज़न, कौन जमा कर रहा है बीज भाई, खैर है आज दिन। और आज है ज़ीरो एमिशन डे, हवा को साफ सुथरा रखने का दिन है। इस पर मैं ज्ञान नहीं दूंगा, वो आपको बाकी जगहों पर मिल ही जाएगा। पूरे दिन आप सुनेंगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा, ये मत करें वो मत करें ये मत करें, मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको आज, जस्ट वांट टू टेल यू ज़ीरो एमिशन डे है। इसके अलावा आज और कुछ भी है क्या, आज टिराना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ये एक और फिल्म फेस्टिवल है जिसमें से कई सारी मूवीज़ शॉर्ट मूवी स्पेशली निकल के सामने आती है। सो आई एम रियली होपिंग कि मुझ जैसी मूवी बफ को कुछ और भी ज़्यादा मूवी मिलने को मिले, देखने को मिले। एक मैसेज है, आई लव आई एम अ चाय लवर। खादिम साहब हाथ मिलाइए, अस्सलाम वालेकुम, हम भी ऐसे हैं। कह रहा है भाई दूसरों की ज़िंदगी में धनिया भी भोया जाता है फरद भाई एकदम सही जा रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग कबीर भाई। दीपेंद्र जी गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से भी भाई आपको। फरद भाई ये जो मैंने आइडिया दिया है हमारी बहन को उनके बर्थडे के मौके पर, सो उसके लिए आप मेरा शुक्रगुजार करते रहिए, डेली करना चाहिए आपको। एक मैसेज है, भाई स्टोरी सच में लंबी थी पर पता नहीं चला 40 मिनट कब गुजर गए, फिर फिर तो सबको विश करना चाहिए, फिर तो मैं लास्ट वाला समझाने का आसमिन साहब आपने क्या बोला। एक मैसेज है, ओके भाई थैंक यू, नो प्रॉब्लम मेरी जान। एक मैसेज है, कबीर भाई कहानी लाजवाब थी, थैंक यू सो मच शुएब भाई, बहुत सारा प्यार लिखते हैं, कितनी भी लंबी कहानी सुनाई बस सुनवाए बोरिंग नहीं होता, थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार आपको। एंड ट्रैफिक की अपडेट देते हुए कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया, थैंक यू सो मच। कॉर्निश पर लोग बता रहे हैं ट्रैफिक है, एंड एक भाई ने मैसेज किया है कि भाई मैं अभी काम जा रहा हूँ दोहा एक्सप्रेस वे पे, ये तो ठीक है इतना कोई ट्रैफिक थोड़ी है, तो नॉर्मल लग रहा है भाई। अच्छा फिलहाल जो ट्रैफिक मुझे नज़र आ रहा है वादिल सेल के पास अच्छा खासा ट्रैफिक लगा हुआ है एज आई कैन सी राइट नाउ। तो इस्तकाल स्ट्रीट से अगर आप होते हुए जा रहे हैं तो बढ़िया आपको आज जाम मिलेगा भाई, आज तो काफ़ी ट्रैफिक हो रहा है। मरकिया स्ट्रीट की तरफ अगर आप हैं तो यहाँ पे भी ट्रैफिक मिलेगा। कौनसी की तरफ कनेक्ट हो रहे हैं, मजलिसल तवाउन स्ट्रीट की तरफ से अगर ये दोहा कंपाउंड की तरफ से आते हुए जा रहे हैं तो हल्का फुल्का जैम है, लेकिन कॉनिश पर ट्रैफिक लगना शुरू हो चुका है एज आई कैन सी क्लियरली। इसके अलावा दीवान स्ट्रीट के पास ट्रैफिक है, मुशायरिब के कुछ एरियाज़ में हल्का फुल्का है, वादी मुशायरिब के पास ट्रैफिक है, अंडर पास से होते हुए जाएंगे तो आपको ट्रैफिक मिलेगा। इधर भी रिंग रोड के पास तो सिर्फ इंटरसेक्शन की तरफ ट्रैफिक है, तो यहाँ से कोई मामला ऐसा तकलीफ दे नहीं है। बाकी मैं देख पा रहा हूँ किधर है लाल मार्किंग और कहीं है कि नहीं, किधर है किधर है किधर है भाई, और किधर हो तो मुझे बताते रहना ट्रैफिक काल, मैं भी ढूंढ रहा हूँ आपके साथ ही। सवाल अहमद कॉरिडोर के पास, अरे भाई यहाँ तो लगा हुआ है जाम, यहाँ है भाई, तो कॉरिडोर पे जॉइन करते हो आपको ट्रैफिक में जाम लगेगा डेफिनेटली। क्या मैसेज है आपको, क्या आप हो कहाँ, मैं कहाँ हूँ, मतलब मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, मैं कहाँ हूँ मतलब मैं अच्छा मेरा ऑफिस कहाँ पर है, अच्छा बिन उमरान, बिन उमरान, बिन उमरान, मैं वहीं सोचो मैंने कहा मैं

कहा हूँ इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. सैयद हाशिम रजा साहब कहते हैं प्लीज सर मैं आपको प्लीज सर भेजता हूँ. मैं सॉरी सॉरी मैं कन्फ्यूज़ हो गया. मैं हूँ अचानक से मैंने पढ़ा ना आप कहाँ हूँ. मैं गरी बिरुमरान में हमारा ऑफिस भाई. शहजाद सलीम कहते हैं कबीर भाई आपके प्रोग्राम के बाद 9 बजे के बाद न्यूज़ का इंतज़ार रहता है. प्रोग्राम के बाद तुसी ना जाओ. क्या कह गए कबीर भाई आपके प्रोग्राम के बाद 9 बजे का न्यूज़ इंतज़ार रहता है. प्रोग्राम के बाद तुसी ना जाओ. शहजाद सलीम ये क्रिस्टोफर नोलन वाली जो बातें करते थे समझ नहीं आया ये इसका मतलब क्या है. प्लीज़ ब्रेक डाउन करके बताइए. एक मैसेज मैं वहाँ हूँ जहाँ पर हमको हमको अपनी खबर नहीं आती. मैं वहाँ हूँ जहाँ पर हमको अपनी खबर नहीं आती. क्या हो गया जकी भाई आज सब मुझे शेरो शायरी और ऐसी कन्फ्यूज बातें क्यों कर रहे हैं. वो भी मेरे ही साथ क्यों करनी. क्या हो गया है सब ठीक है. एवरीबडी ओके. आई होप सब बढ़िया चंगा सी. 666-221-07 नंबर है भाई साहब. बढ़िया चलना चाहिए. बाकी मैं तो गाना चला दूं भाई. चेक्स ये आओ जो ट्रैफिक में है 666-221-07 पे इतला जरूर कर दें. 845 शुभ दी आवाज. ये आओ शहजाद सलीम हस्ते वगैरह तुसी ना जाओ. मुझे पता कोई इमोशन नहीं है आपका मेरे साथ. ऐसी लिख दिया तुसी ना जाओ. फॉर्मेलिटी देखो तो सही.

भाई मैं सच बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक बात का वैसे तो हर बात का पर इस बात का स्पेशली बिकॉज आपके साथ सुबह से लेकर टाइम का पता लगता नहीं है कसम से. व्हेन आई रियलाइज कि अरे 3 घंटे हो गए तो लगा ओ अच्छा वरना इट डजंट रियली

भाई अपने ऑडियंस के लिए सबसे पहले तो जो लोग सुबह से जुड़े रहते हैं मेरे साथ में उनके लिए एक तो सबसे पहले ये मैं बताऊं एक चीज, मैंने ये क्यों बताया दिल से, मैं इमोशनल बात नहीं कर रहा, डोंट वरी मैं ज्ञान नहीं दूंगा आपको बट थैंक यू सो मच, आपकी वजह से ना ये नौकरी नहीं लगती, मजा आता है, ऐसा लगता है सुबह जाके मिलना है सबसे और फिर मजे करके घर आ जाना है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट फीलिंग। मुबीन बुखारी साहब को बहुत सारा प्यार। मुबीन बुखारी साहब ने जैसे मैसेज किया है, मुबीन भाई थैंक यू। अन्य मैसेज किया है, सवाल पूछने का तरीका थोड़ा बेवकूफाना था, फिर भाई सवाल का सही डिकोड करके जवाब दे दिया। भाई नहीं नहीं कोई बेवकूफा नहीं था भाई, वो मेरी गलती थी कि मैंने एकदम से पढ़ा ना, मेरा ध्यान कहीं और था तो मैं उसे गेज नहीं कर पाया। आप गलत नहीं है भाई, नो प्रॉब्लम। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, बहुत स्टोरी पूछी थी, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह। और मुबीन भाई धन्यवाद लिख के उन्होंने डांसिंग जेआई भेजा, बहुत सारे स्टिकर। ये मुबीन भाई बहुत सारे स्टिकर आप चिप, तो यार आपको चक्कर, मुझे भी स्टिकर्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। जकी साहब थैंक यू सो मच, और एक और भाई हैं उनका, थैंक यू सो मच, और नो प्रॉब्लम मेरा भाई। अच्छा तो मैं कह रहा था कुछ रिकमेंडेशन देता हूँ आपको, इनकेस आप प्लान कर रहे हैं कोई सीरीज या कुछ मूवी देखने का, तो दो तीन मैंने वो बताई थी पिछली बार भी। एक तो मैं खुद दिख रहा हूँ घर पे भी सर्वेंट, मैंने हालांकि 2019 में देख ली थी मगर अभी देखनी पड़ रही है, मज़ा भी आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको दो और बता देता हूँ, अगर आपने विडोज बे नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें, बहुत ही मस्त कॉम्प्लेक्स किस्म की सीरीज़ है। और द लॉस्ट अगर आपने नहीं देखी है तो भाई लॉस्ट ज़रूर देखें। मैं आजकल हिंदी देख नहीं रहा हूँ, तो किसी के पास हिंदी रिकमेंडेशन हो तो आप बता सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। मैं आजकल ये ज़्यादा ही देखता रहता हूँ साइकोलॉजिकल, तो वो मेरी प्रॉब्लम है, तो फिर भी मैं उसमें से आपको जो बता सकता हूँ बता देता हूँ। आई होप आपके काम आ जाए, आपको अच्छे लगे कोई सीरीज़ देखना। और एक और सीरीज़ मुझे याद आ रही है बात करते करते, एक सीरीज थी, इसका नाम था टेरर, सीज़न टू हटा दो, सीज़न वन बहुत बढ़िया है भाई, उसका बहुत शानदार है, और वो मेरे ख्याल में डब हिंदी डब में भी मौजूद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं चेक करके कल बता सकता हूँ आपको, बट फिलहाल ये। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई डीजे कबीर थैंक यू भाई सुहेल भाई, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एक वॉइस नोट है कबीर शाह साहब का, थैंक यू। आपका फेवरेट बच्चा नहीं आया आज, फेवरेट बच्चा नहीं आया आज, कौन फेवरेट बच्चा? हाँ अच्छा, हाँ अच्छा दिला आपने यार, अच्छा दिला, हिंदी का पेपर था ना उसका वो ज़्यादा ही उदास होगा आज मुझे इसलिए लगता है कॉल नहीं करी। बट खैर आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया, 8:50 हो चुके हैं ऑलरेडी, 9 आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन, इंशाल्लाह कल आपसे फवेरे फवेरे मुलाकात होगी, बट फॉर नाउ दिस इज़ दुआ वाला कबीर साइनिंग ऑफ। FM 107 कतर ही हमारे पेजेस है, FM 107 कतर, एंड दिस इज़ कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी गेम चेंजर सीजन 2।
2: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A4 अमिता के साथ AI Unlocked पर।

0: आसान बना। तो सुनिए AI Unlocked RJ A4 अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं वेक अप विद दोहा वाला कबीर, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।

0: जिसका मुकाबला करने में ज्यादा मजबूत बनाया है। कतर सेंट्रल बैंक के गवर्नर और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन शेख बंदर बिन मोहम्मद बिन सऊद अल सानी ने न्यूयॉर्क में मुनक्किद कतर इकोनॉमिक फोरम 2026 के स्पेशल एडिशन की साइडलाइंस पर द गोल्डमैन सैक ग्रुप के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेविड सोलोमन से मुलाकात की। मुलाकात में आलमी मालियत और सरमाकारी के ताज़ा तरीन रुझानत और मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। अकारत के एक्स अकाउंट पर शाया करदा डेटा के मुताबिक 2026 के 38वें हफ्ते यानी 13 सितंबर से 19 सितंबर तक रियल एस्टेट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की मजमूई कीमत 430.7 मिलियन कतरी रियाल रही। ये पिछले हफ्ते के मुकाबले में 12.3% इजाफा जाहिर करती है, जबकि सालाना बुनियाद पर 14.9% कमी रिकॉर्ड भी की गई है और इसी दौरान 120 कॉन्ट्रैक्ट्स पर अमल दरामद हुआ जो हफ्तवार बुनियाद पर 12.4% और सालाना बुनियाद पर 9.8% कम रहे। कतरी सऊदी जॉइंट बिजनेस काउंसिल का इजलास कल मुनक्किद हुआ, जिसकी मुश्तरका सदारत कतर चैंबर के चेयरमैन शेख खलीफा बिन जासिम बिन मोहम्मद अल थानी और सऊदी की जानिब से चेयरमैन हमद बिन अली अल शुवाइर ने की। इजलास में काउंसिल के कतरी और सऊदी अरकान ने शिरकत की और तजारती तआवुन के फरोग से मुतालिक उमूर पर गौर खौज किया गया। वजारत अदल के रियल इस्टेट एनालिटिकल बुलेटिन के मुताबिक अगस्त के महीने के दौरान वजारत अदल की रियल इस्टेट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में दर्ज सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के तहत रियल इस्टेट लेन देन का मजमूई हजम 1.291 बिलियन कतरी रियाल तक पहुंच गया है। और कदर स्टॉक एक्सचेंज का जनरल इंडेक्स ट्रेडिंग सेशन के अख्ताम पर 108.57 पॉइंट्स या 1.12% के साथ 9,550.44 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सेशन के दौरान तमाम शोबों में 18,947 ट्रांजेक्शंस के नतीजों में 5 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ और 43 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी आई, जबकि 6 कंपनियों ने अपनी सबका क्लोजिंग प्राइजेस को बरकरार रखा। ये थी अभी तक की बिजनेस न्यूज अपडेट्स, आइए अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज का।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस विद मोहम्मद अमीन।
2: अस्सलाम वालेकुम, स्पोर्ट्स हेडलाइंस में अब्दुल रहमान अब्दुल हामिद ने आईची नागोवा 2026 एशियन गेम्स में कतर के मेडल टैली का खाता खोल दिया है। उन्होंने कराटे के 60 किलोग्राम वेट क्लास में सिल्वर मेडल जीता। एशियन गेम्स के हॉकी कंपटीशन में इंडिया ने इंडोनेशिया को 1 के मुकाबले में 13 गोल से शिकस्त दी और वहीं पूल बी के एक मैच में पाकिस्तान ने थाईलैंड को 9-0 से हरा दिया। इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग में चैंपियंस आर्सेनल को ब्राइटन के हाथों 3-0 से शिकस्त मिली, जबकि मैनचेस्टर सिटी ने संडरलैंड को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। इंग्लैंड ने तीसरे T20 क्रिकेट मैच में श्रीलंका को हराकर सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया और इस जीत के साथ इंग्लैंड ने दोबारा वर्ल्ड रैंकिंग्स में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। और स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल में एटलेटिको मैड्रिड ने एक मुकाबले में रियल मैड्रिड को हरा दिया, जिसके बाद एटलेटिको ने अपने सिटी राइवल्स को पीछे छोड़कर टेबल में सेकंड पोजीशन पर आ गया। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही, आप सुन रहे हैं FM 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: न्यूज हेडलाइंस With Ismail Khan.
3: साहिब सुमो अमीर को उर्दन के फरमा रवा की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि कतर मुतादिद बहरानों के बावजूद हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है और मौजूदा इलाकाई कशीदगी से भी मजबूत बुनियादों के साथ निकलेगा। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा से कल न्यूयॉर्क में जम्हूरिया सियरा लियोन के सदर प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के आलमी चेयरमैन और ब्लूमबर्ग के बानी ने अलहदा अलहदा मुलाकातें की। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने दोहा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के अजरा का ऐलान किया है, जिसका मकसद कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की मुकामी सरमायाकारी को मुनज़्ज़म करना, निजी शोबे को फ़रोग देना और मईशत में तवील मुद्दती कदर पैदा करना है। रियासत कतर ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने और शहरों में शहरियों और शहरी तंसीबात को निशाना बनाने की हूसी ग्रुप की कोशिशों की शदीद तरीन अल्फाज में मुज़म्मत की है। उर्दू रेडियो FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो से तकनीकी मावू नूर और न्यूज़ स्टूडियो से मोहम्मद अमीन, सरवर मिर्ज़ा, मोहम्मद शाह और इस्माइल खान को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107, दिल से देखिए।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामिनी किराम, आज की दुआ है ज़करिया अलैहिस्सलाम की, जो उन्होंने बुढ़ापे में औलाद सालेह की तलब में की थी। ये दुआ ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मांगी जब वो उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके थे कि आम असबाब के लिहाज से औलाद की उम्मीद न रही थी, लेकिन उनका यकीन अल्लाह की कुदरत पर कायम था। उन्होंने ये दुआ की थी

दोस्तों सोचिए आप अपने क्रिकेट करियर का पहला टेस्ट मैच खेल रहे हो, सामने दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज में से एक मौजूद हो और आप अपनी सिर्फ चौथी गेंद पर इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को आउट कर दें। कुछ ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान के नौजवान फास्ट बॉलर के साथ हाल ही में एजबास्टन में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 और स्पोर्ट्स हाईलाइट के साथ, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। अपनी जबरदस्त पेस, कॉन्फिडेंस और जो रूट की इंपॉर्टेंट विकेट के बाद रजाउल्लाह, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। उन्होंने अपने टेस्ट करियर का आगाज किया और क्रिकेट फैंस के साथ साथ कमेंटेटर्स भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान के इस फास्ट बॉलर जिनका नाम शायद टेस्ट मैच से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन डेब्यू के चंद लम्हों में ही वो क्रिकेट की दुनिया में चर्चा का मरकज बन गया। रजाउल्लाह पाकिस्तान के उन प्रॉमिसिंग स्टार्स नहीं कहूंगा, प्रॉमिसिंग क्रिकेटर्स कहूंगा, जिन्हें लोग जानते भी नहीं थे, एक महीना पहले तक भी नहीं जानते थे और एजबास्टन टेस्ट से एक हफ्ता पहले तक तो दूर की बात है, नोबडी न्यू हु वाज रजाउल्लाह। हाँ, ट्रेनिंग कैंप में थे नेशनल क्रिकेट एकेडमी, लेकिन नोबडी न्यू दैट ही इज गोइंग टू ब्लॉसम इनटू अ फ्यूचर स्टार। और खास बात यह है कि रजाउल्लाह अपनी बॉलिंग के लिए पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर वकार यूनुस को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं और वो अपने इंटरव्यू में कहते भी हैं कि वो वकार यूनुस को फॉलो करते हैं और पहले से उन्हें देखते हैं और फॉलो करते करते आज इस मकाम तक वो पहुंच चुके हैं। और उनका ये कहना भी है कि वो कोशिश करेंगे कि उन्हीं की तरह वो बने और आखिर तक फॉलो वो करता रहेगा। दैट इज द सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन जो वकार यूनुस को देखने के बाद रजाउल्लाह ने अपने आप को ढाला, उस नूनी के स्टाइल में, बॉलिंग स्टाइल में उन्होंने उनको कॉपी किया, कॉपी तो नहीं कहूँगा बल्कि थोड़ा सा इनकरेज हुए, इंस्पायर्ड हुए। और ये अल्फाज बताते हैं कि पाकिस्तान के इस नौजवान फास्ट बॉलर के लिए वकार यूनुस सिर्फ एक लेजेंडरी क्रिकेटर नहीं बल्कि एक रोल मॉडल भी हैं। लेकिन रजाउल्लाह का क्रिकेट तक का जो सफ़र वो जो है ना, वो भी कम दिलचस्प नहीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि करियर के शुरुआती दिनों में उनके वालिद को भी नहीं पता था कि वो क्रिकेट खेलते हैं, छुप छुप खेलते थे। रजाउल्लाह के मुताबिक वो अपने वालिद से छुप कर क्रिकेट खेला करते थे और इस सफ़र में उनकी वालदा ने और उनके भाइयों ने उनका बहुत बहुत मदद की। यानी जिस खिलाड़ी को आज क्रिकेट फैंस एक टेस्ट डेब्यूटेंट के तौर पर देख रहे हैं, उसके पीछे सालों

की मेहनत, फैमिली का सपोर्ट और एक बड़ा ख्वाब छुपा हुआ है। लेकिन रजाउल्लाह को खुद भी शायद अंदाजा नहीं था कि उनका टेस्ट डेब्यू इतनी जल्द ही होने वाला है। उन्होंने ये भी बताया कि वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी NCA में थे, जहां स्पीड गन ट्रायल्स हो रहे थे, यानी बॉलर्स को तरबियत दी जा रही थी एंड द NCA कैंप। एक हफ्ते बाद जब वो घर वापस गए तो रात को अचानक फोन आया, उन्हें कहा गया कि फौरन NCA वापस जाओ। रजाउल्लाह को ये नहीं बताया गया था कि वो टेस्ट मैच के लिए जा रहे हैं। जब वो NCA पहुंचे तब उन्हें पता चला कि उनका सिलेक्शन टेस्ट मैच के लिए हो गया है। ये तीन मैचों की टेस्ट सीरीज जो इंग्लैंड के अगेंस्ट में हुआ था, उसका आखिरी टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 7 क्रिकेटर्स को वापस बुलाया और 7 न्यू क्रिकेटर्स को वहां भेजा गया था, जिनमें रजाउल्लाह वाज वन ऑफ देम। सोचिए, एक तरफ आप घर पर हैं और दूसरी तरफ अचानक आपको पता चलता है कि आप अब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। व्हाट अ मिनट। आई मीन दिस इज सम काइंड ऑफ एन एक्साइटमेंट दैट कुड हैपन टू एनी यंगस्टर। और फिर आया वो लम्हा जिसने रजाउल्लाह के करियर को एक यादगार शुरुआत दे दी। टेस्ट के पहले दिन रजाउल्लाह की स्पीड स्क्रीन पर 90 माइल्स पर आवर दिखाई गई। उन्होंने सोचा कि शायद वो 135 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें बताया गया कि उनकी स्पीड असल में 145 किलोमीटर पर आवर थी। और इतनी रफ्तार के साथ जब सामने इंग्लैंड के कप्तान जो रूट जैसा बल्लेबाज हो तो चैलेंज और भी बड़ा हो जाता है। रजाउल्लाह रन अप लेते हैं, क्रीज के करीब पहुंचते हैं और गेंद जो रूट की तरफ। रूट गेंद की डायरेक्शन को समझने में नाकाम रहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से अपील होती है और अंपायर की उंगली उठती है और जो रूट LBW। रजाउल्लाह ने अपने टेस्ट करियर की सिर्फ चौथी गेंद पर इंग्लैंड के कप्तान को अपना निशाना बना लिया और स्टेडियम में शोर मच गया और कमेंटेटर के अल्फाज थे, व्हाट अ स्टार्ट टू हिज करियर। और वाकई इससे बेहतर स्टार्ट का तसव्वुर करना मुश्किल है। रजाउल्लाह का कहना है कि वो जिंदगी एंजॉय करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। शायद यही सोच उनके करियर की सबसे खूबसूरत बात है। एक नौजवान बॉलर जो अपने आइडल वकार यूनुस को फॉलो करता है, जो कभी अपने वालिद से छुपकर क्रिकेट खेला करता था और जिसे अचानक टेस्ट कॉल अप मिलता है और फिर अपने डेब्यू पर 145 किलोमीटर पर आर के रफ्तार से बॉलिंग करते हुए इंग्लैंड के कप्तान जो रूट की विकेट हासिल कर लेता है। रजाउल्लाह के लिए ये सिर्फ एक विकेट नहीं थी, ये उनके इंटरनेशनल करियर के एक नए सफर का आगाज था। अब देखना यह कि पाकिस्तान का ये यंग स्पीड स्टार आने वाले वक्त में वकार यूनुस की तरह अपनी पेस और बॉलिंग से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या रजाउल्लाह पाकिस्तान का अगला पेस सेंसेशन बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं।
1: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए, वरना बेचैनी रहेगी ना।
0: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना।
2: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की, जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर ओपिनियन मैटर्स। सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर, हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 PM, आरजे नाजिया और आरजे सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू अनदर टेक अपडेट. ऑफ कोर्स जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज लॉन्च हो चुकी है, वो है एप्पल के फोन्स. वो लाइनअप जिसका इंतजार हर सितंबर में रहता है. तो जब हम शो को रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक फोन लॉन्च हो गए थे, तो वी कुडंट डू द रिव्यू ऑन टाइम. मगर अभी जिन्होंने नहीं लिया है और वो जानना चाहते हैं कि FM 107 पे ये

0: कबीर का क्या टेक है इस पे, तो मैं वो सब कुछ आपको बताऊंगा। ये चार दिन जो आने वाले हैं इनमें हम इसके बारे में खुल के बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा आईफोन के उस फ्लैगशिप फोन की जिसका जिसे देख के सब हैरान हो गए, और वो है आईफोन डुओ फोल्ड। वो भी एप्पल में ये सोचा था लेकिन पता नहीं था कि एप्पल ये करेगा। मुझे ऑनेस्टली नहीं लगा था कि एप्पल ये करने वाला है। मुझे लगा था वो शायद फोल्ड से दूर रहेगा, थोड़ा और टाइम लेगा, थोड़ा और टाइम लेके बनाएगा, लेकिन एप्पल ने कर दिया लॉन्च। अब इसमें बहुत सारी अच्छी और कुछ ऐसी बातें भी हैं, तो मैं सबसे पहले अच्छी बातों पे बात कर लेता हूँ। डेफिनेटली डिजाइन बहुत अलग है, डिजाइन बहुत खास है। बैटरी में बहुत ज्यादा इन्होंने मेहनत करी ताकि बैटरी भी टॉप नॉच रहे, कोई मसला नहीं आएगा किसी को। फोन जो है बहुत स्मूथ काम कर रहा है, जो अलग अलग विंडोज दी है काम करने के लिए वो बहुत ज्यादा स्मूथ है। अभी हैंड्स ऑन मेरे हाथ में तो नहीं है, बट जहां तक मैंने इसको अच्छे से पढ़ा है, जाना है, उतना मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ स्पेशल इस फोल्ड फोन के लिए केटर्ड ऐप जो है वो एप्पल ने डिजाइन करी है जो सिर्फ उस पर चलेंगे, और क्या बाकमाल डिजाइन है। जब इसको ओपन करो तो एक एक अलग किस्म का एक प्रीमियम रिफ्लेक्शन सामने आता है, विच इज ब्यूटिफुल। ऑफकोर्स इसके जो हिंजिस की बात आती है, जब भी हम फोल्ड की बात करते हैं तो हमें हिंजिस की प्रॉब्लम होती है कि भाई ये बीच में दरार ना पड़ जाए, तो जब तक आप उसे हाथ में लगाएंगे तब तक आपको पता भी नहीं लगेगा कि उसमें हिंजिस में कोई हिंजिस पता भी लग रही है। दे हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इस बार काम करने के लिए फोल्ड पे, एंड डेफिनेटली उन्होंने बाकी फोन्स को बहुत अच्छे से परखाया जाना है कि हिंजिस कैसे भगाए जाए, तो एप्पल ने उसमें बहुत कामयाबी हासिल करी है। ऑफकोर्स द फोन इज अराउंड $2,000 जो लॉन्च होते हमारे यहाँ आएगा, तो इंडिया में तो 3 लाख का है, तो यहाँ पे आप लगा लीजिए हिसाब तब कितने का होगा। इट इज ऑब्वियसली क्रॉसिंग ऑल द प्रीमियम फोल्ड फोन प्राइसेस, तो ये महंगा तो बहुत आने वाला है। इसके जो कुछ ड्रॉबैक्स हैं, डेफिनेटली अगर आप एक कैमरे की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको कैमरा नहीं मिलने वाला है इसमें। वो जो उन्होंने कैमरा दिए बस वो दे दिए, अब ऐसा था कि भाई अब देने ही पड़ेंगे, मजबूरी है, तो इसलिए इसमें कैमरा दे दिया है। आप उससे ये मत उम्मीद कीजिएगा कि प्रो लेवल तो होगा, भाई इतना महंगा फोन है तो कैमरा तो भाई एकदम सॉलिड होगा, ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी वेरी वेरी नॉर्मल कैमरा। यस द बैटरी लाइफ इज रियली रियली गुड, और इसमें जो इनकी उन्होंने नई चिप भी लगाई है तो वो भी डेफिनेटली इसे स्पीड अप करती है। एवरीथिंग इज नाइस अबाउट इट, बट डिजाइन में एक हल्की सी बात है और वो है इसकी जो क्या कहते हैं उसकी जो विड्थ है, क्योंकि आप एक हाथ से अगर फोन यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पूरी तरह से इसकी स्क्रीन को यूज नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ेगा, दूसरे हाथ की थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी। और इसमें जो सीरी का इंटीग्रेशन है वो भी बड़ा अजीब है, जिसका जो बटन है वो ऊपर की तरफ दिया हुआ है, विच इज वेरी हार्ड टू रीच। अगर अनटिल अनलेस सबके हाथ बहुत बड़े हैं, कानून के हाथ तो बात दूसरी है, पर बटन का जो पोजिशनिंग है वो थोड़ी सी अलग है। और जो डिजाइन है वो मुझे लगा था कि शायद थोड़ा सा लंबाई में ज्यादा होगा, लेंथ ज्यादा होगी देसी भाषा में बोलूं, बट दे कैप द विड्थ मोर। आई डोंट नो किस से इंस्पायर्ड हुए, बिकॉज ऑफकोर्स ये इंस्पिरेशन तो बहुत पहले उन्होंने कहीं ना कहीं से लिया होगा। अभी सैमसंग ने वो अपना क्यूट सा फोन लॉन्च किया था, तो रिसेंट ये इंस्पिरेशन तो नहीं है, बट डेफिनेटली प्राइस एक बहुत बड़ा बैरियर है जो आपको ये लेने से रोकेगा। दूसरी चीज है कि आप इसको जोश जोश में आगे कि मैं शोबाजी के लिए ले लूं, तो भाई शोबाजी हो पाएगी, लेकिन इसमें कैमरा नहीं है वैसा वाला जैसा आप उम्मीद करते हैं। सो इन केस आपको बहुत ज्यादा सिर्फ शो ऑफ से मतलब है, तब तो ये फोन आपके मतलब का है, अदरवाइज आई वुड नॉट रिकमेंड, क्योंकि यहाँ पे कतर में आते आते इट विल बी द कॉस्टलीस्ट फोल्ड फोन एवर, इस बात की तो पूरी पूरी गारंटी है। आई रियली होप कि दिस नॉट बिकम्स द सेकंड प्रोविजन जो एप्पल ने लॉन्च किया था, उसके आसपास ये पहुंचता मुझे नजर आ रहा है। ऐसी उम्मीद मैं करना नहीं चाहता, मगर मजबूर। रिव्यू हालांकि अच्छा है, मगर जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी खतरनाक वाले ड्रॉबैक्स हैं। दिस वॉज द रिव्यू और दिस वॉज द टेक अपडेट। Stay tuned for more. Tech update. Tech update. Cricket ho.
1: And he's hooked that away. That's 4 runs.
0: Football ho. Goal! Ya koi aur bada sporting action. Hum laate hain aap tak har angle, har story aur har highlight. Bilkul seedhe saadhe andaaz mein.
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM।
3: It's fun to see hero retreads the ball.
2: क्योंकि यहां होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स
3: की। आप सुन रहे हैं FM 107। FM
4: 107। दिल से देसी।
5: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे मैं हूं फजील और इस्तकबाल है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड से बचाने के लिए हर रोज मैं आपको अवेयर करता रहता हूं कैसे ये नए फ्रॉड्स होते हैं और साथ ही साथ किस तरह से आप बच सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं इन फ्रॉड से बचने के, उस पर भी हम बात करते हैं। और आज हम जिस फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं ये बड़े ही इमोशनल फ्रॉड भी है एक तरह से। आप बहुत ज्यादा टूट जाते हैं जब इस तरह का फ्रॉड आपके साथ होता है और इस फ्रॉड का नाम है हाउस सिटर एंड पेट सिटर, यानी कि आपके इमोशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको लेकर भी एक्चुअली में आजकल फ्रॉड होने लगा है। कई लोग अपने पेट्स को बहुत ज़्यादा करीब से चाहते हैं, जानते हैं, मानते हैं, और ऐसे ही जो हाउस सिटर होते हैं या घर की देखभाल करने वाले होते हैं या बच्ची की देखभाल करने वाले होते हैं उनके नाम पर भी स्कैम शुरू हो गए। सबसे पहले ये स्कैम होते कैसे इन पर बात करते हैं और फिर सॉल्यूशन पर भी हम नज़र डालेंगे। वेल, हाउस सिटर और पेट सिटर फ्रॉड हमारे सबसे बड़े ट्रस्ट जोन के अंदर होता है, इसलिए इसका दुख बहुत बड़ा होता है। ये स्कैम अक्सर किसी पड़ोसी, दूर के रिश्तेदार या किसी कैजुअल एक्वेंटेंसेस के जरिए किया जाता है जिसे आप एक अच्छा इंसान समझते हैं। जब आप फैमिली के साथ किसी लंबी वेकेशन या इंटरनेशनल ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं तो सबसे बड़ी फिक्र है घर की सुरक्षा, सिक्योरिटी, और पेट्स की केयर कौन करेगा। इस दौरान ये जान पहचान वाला इंसान बड़े ही मीठी बातों के साथ आपसे कहेगा कि आप फिक्र मत करें, आप घूम कर आए, आप पीछे बिल्कुल ना देखें, मैं आपके घर का या पेट्स का पूरा ध्यान रखूंगा। या कई बार आप सोशल मीडिया पे हाउस सिटर या पेट सिटर ढूंढते हैं, वो आपके कॉन्टेक्ट में आते हैं, आप उन पर भरोसा करते हैं, आप उनको कुछ पैसे भी देंगे, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर आपके साथ होता है गड़बड़ या फ्रॉड। आप उन लोगों पर जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके करीबी हैं, या फिर आपने जिनको सोशल मीडिया पर ढूंढा है, आप उन पर ट्रस्ट करके उन्हें अपने घर की मेन कीज हैंड ओवर कर देते हैं, मेन चाबियां दे देते हैं, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करने के बजाय वो इंसान इस परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का एक क्रिमिनल माइंड की तरह फायदा उठाता है। जब आप शहर के बाहर होते हैं, देश के बाहर होते हैं और घर पर पूरी तरह सन्नाटा होता है, तब वो आपके वार्डरोब्स और सेफ लॉकर को चेक करता है। वो घर में रखी कीमती गोल्ड ज्वेलरी, लॉकर में रखा कैश, महंगे ब्रांड के लैपटॉप्स और कॉस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स चुरा लेता है। स्कैमर्स इतने शातिर होते हैं कि वो आपके मेन डोर और कपबोर्ड्स की चाबियां डुप्लीकेट करवा लेते हैं ताकि आपके आने के महीनों बाद दोबारा आसानी से चोरी भी की जा सके। पर कोई शक न करे, जब आप ट्रिप से लौट कर आते हैं तब आपको धीरे धीरे चीजें गायब मिलती हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन इस तरह के फ्रॉड से बचने के तीन आसान तरीके हैं। इन तीन तरीकों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उम्मीद है कि आपके साथ इस तरह का फ्रॉड कभी नहीं होगा। हायर ओनली सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स। जब भी आप कभी देश से बाहर जाएं, घूमने फिरने के लिए जाएं, किसी बड़े ट्रिप पर जाएं, तो हमेशा एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल को ही हायर करें। अपने पीछे घर की चाबी किसी भी कैजुअल दोस्तों को, पड़ोसियों को या सोशल मीडिया से किसी रैंडम को हायर करने के बजाय आप ऐसे शख्स को हायर करें जो प्रोफेशनल हो। उनको चाबियां ना दें जिनको अभी आपने कुछ दिन पहले ही जाना पहचाना है। हमेशा सिर्फ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, बैकग्राउंड वेरीफाइड, सर्टिफाइड और इंश्योर्ड पेट सिटिंग या हाउस सिटिंग एजेंसीज को ही कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करें। इन प्रोफेशनल एजेंसीज के पास लीगल लायबिलिटी होती है, अगर कुछ खोया तो कॉम्पनसेशन मिलता है। दूसरा सॉल्यूशन है डिप्लॉय स्मार्ट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। वेकेशन पर जाने से पहले अपने घर के हर एक कॉर्नर, लिविंग रूम और एंट्री पॉइंट्स पर हाई डेफिनेशन स्मार्ट वाईफाई सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल करें। इन कैमरास का लाइव एक्सेस अपने मोबाइल फोन पर एक्टिव रखें ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने से रियल टाइम में मॉनिटर कर सकें कि घर के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है। उसके अलावा तीसरा तरीका है लॉक वैल्यूएबल्स इन बैंक वॉल्ट्स। ये तो हर शख्स को करना ही चाहिए। जब भी आप लॉन्ग ट्रेवल पर जा रहे हो तो घर के लॉकर में ज्यादा कैश या गोल्ड ज्वेलरी छोड़कर बिल्कुल ना जाएं। भले ही आपका कोई बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी शख्स क्यों ना हो साथ में, या फिर आपने किसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल को ही क्यों ना हायर किया हो, घर के लॉकर में ज्यादा कैश नहीं रखना चाहिए, ना ही ज्यादा गोल्ड ज्वेलरीज भी रखनी चाहिए। उन सारी कीमती चीजों को टेम्परेरी पीरियड

क्या है। वेल वापस आएंगे कल तो एक और नए टॉपिक के साथ, आपको समझाएंगे बताएंगे कि ये टॉपिक क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अभी तो मैं नहीं आपको बताने वाली हूँ कि कल मैं किस टॉपिक पे बात करूँगी। फिलहाल अभी के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए, थमने ना पाए। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक।

0: ऐसा नहीं होता
1: नहीं होता
0: द थिंग इज यू हैव टू वर्क फॉर इट और वो पोटेंशियल ऐसे ऐसे जाकर ही होता है
1: पॉजिटिव रहना
0: हाँ
1: मतलब एक तो ये है कि आप काम तो कर रहे हो लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हो और वो आप में 100% उस पर श्योर नहीं हो कि ये चीज मैं अचीव भी कर सकता हूँ तो वहां पे ना आप जब कंफ्यूज होके कोई चीज कर रहे हो नर्वस होके कर रहे हो तो वैसे ही गए
0: वो मुझे याद आ जाती है उसकी एक कोट नहीं था कि आई डिड नॉट फेल 1000 times आई लर्न समथिंग 1000 times तो बात ये है कि अक्सर औकात हमारे ऑफिस में भी होता है बड़ी नेगेटिव एनर्जी वाले लोग होते हैं वैसे कह रहे होंगे मैंने अभी जॉब छोड़ी मैंने कल छोड़ दी ये हम सबके ऑफिसेज में होता है इट इज अ वेरी लॉजिकल थिंग
1: कुछ नहीं होना आगे कुछ नहीं होने वाला
0: यहाँ पे बस अभी ये खत्म कर रही है निकाल रही है और वो इंसान आपको अगले 32 साल तक बैठा हुआ नजर आएगा जो आपसे ये बातें कर रहा होगा ठीक है होता ये है कि आपने अपनी कितनी इमोशनल एनर्जी उस बंदे को देनी है होता ये कि आपने कितनी उसके साथ गैदरिंग रखनी है देखो मामला यही है कि जो जैसे हम कहते हैं ना कि जमीन देखने वालों के साथ बैठोगे जमीन दिखेगी आसमान देखने वालों के साथ बैठोगे आसमान दिखेगा तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है आप ये नहीं कह सकते कि फलाने की बातों में आकर मैंने ऐसा कर दिया नो
1: मेरे साथ ऐसा है मैं मतलब इस मामले में अपने आप को मैं खुद ही कहती हूँ कि मैं कुछ मतलब सेल्फिश टाइप की या कुछ इस किस्म की बंदी हूँ या मतलब मैं अपना सोचती हूँ लेकिन मेरे लिए अपना इनर पीस और अपनी जो है ना ये एक मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं जब भी कभी इस किस्म के लोग आइडेंटिफाई कर लेती हूँ ना कि 102 दफा इन लोगों ने इस किस्म की बात की है मैं
0: झगड़ा कुछ नहीं
1: एग्जैक्टली आप लेकिन मुझे चाहिए भाई तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो तुम कितने ही स्वीट हो तुम कितने ही अच्छे हो तुम कितने ही भला सोचने वाले हो लेकिन मैं नेगेटिव मेंटालिटी वालों के साथ
0: नहीं,
1: मतलब जी ही नहीं सकती
0: नहीं
1: मेरा ये मामला है इसलिए मैं अपने घर पे भी थोड़ी सी भी कोई बात कोई शुरू करता है ना तो मेरा मतलब पारा हाई हो जाता है कि यार पॉजिटिव सोचो ऑप्टिमिस्टिक सोचो मतलब जब आप कोई पॉजिटिव एक अल्लाह ताला ने ये जब हमें बात कह दी ना कि मैं तुम्हारे लिए वो हूँ इब्ने आदम जो कि तुम मुझसे गुमान रखो मैं तुम्हारे लिए वो बन जाता हूँ तो अल्लाह ताला से आप अच्छा गुमान रखें हमेशा अच्छा गुमान रखें अक्सर लोगों का मैंने सुना है वो बोल रहे होते हैं कि जो ना बुरे वक्त के लिए हमने ये कर लिया बुरा वक्त आएगा तो हमने ये कर लिया मैं कहती हूँ यार आप क्यों सोचते हो कि बुरा वक्त आएगा
0: अच्छा मजे की बात ये वक्त तो चलता रहता है अप एंड डाउन बस वो जो जिसके बारे में आप डर कर बैठे होते हो ना वो आपको प्रोमिनेंटली नजर आता है
1: एग्जैक्टली ऐसे ही अच्छा एक कॉलर हैं बेचारे मुझे लग रहा है ये काफी पॉजिटिव बंदे हैं तो इनको हमें जरूर टाइम देना चाहिए बात करनी चाहिए हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम आपका नेगेटिव बंदा आ गया
1: नेगेटिव एनर्जी लेकर आ गए आप
0: नेगेटिव की पॉजिटिव
1: खुद ही कह रहे हैं आपका नेगेटिव बंदा आ गया
2: आपको उसको ये देना है नंबर वो आपको देना है बात क्या है आप लोगों ने बड़ा बेहतरीन टॉपिक छेड़ा है माशाल्लाह और ये चीजें बहुत आम है सपा ने भी मतलब और आपने भी इस बात को मतलब बिल्कुल ये समझ लो कि वाजे किया कि हर एक बंदे से अगर आप मशवरा लोगे और हर एक बंदे से अपनी राज को बताओगे तो तुम्हें गुमराह ही करेगा ये हर बंदे से अपनी बात को नहीं रखना चाहिए कतई नहीं रखना चाहिए और खासकर जो मुखलिस बंदे हों अपने करीब के उनसे रखो नहीं तो जो करीब का ऐसा रिश्तेदार कि हमारा ये चाचा का लड़का है हमारा मामू है हमारा खादू है या फलाना ढिकाना या मतलब मिसाल के तौर पे बंदे के अंदर हसद जो अपने खास करीब के होते हैं उनके अंदर हसद ज्यादा होती है जो थोड़ा दूर के रहेंगे ना अपने दोस्त रहेंगे वो तकरीबन हो सकता है शायद मुखलिस हो जाए तुम्हारे साथ जिसको कोई लेना देना इतना नहीं रहता कि भाई बंदा ये अगर डेवलप भी कर लेगा तो मेरा क्या नुकसान हो जाएगा मुझे कौन नीचे तो मतलब ये बंदा कितना ऊपर चला गया तुम वहीं पे रह गए मतलब उनको ये इस चीज में वो मुतनफर हो जाते हैं यार इसे मैंने अगर ये कामयाब हो गया फला चीज में बहुत आगे बढ़ गया तो फिर हम इससे नीचे में चले जाए तो उसको ऐसा सजेस्ट करके मतलब उसको घुमा फिरा के नहीं नहीं नहीं इसके करीब भी मत जाओ वो फला बर्बाद हो गया वो फला ये हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया वो तुम्हें पहले मतलब डरा के और तुम्हें तुम्हारी तुम्हारे हौसले को तोड़ देते हैं फस्ट कर देते हैं ये चीजें क्योंकि मैंने खुद देखा है कि मैं पिछले की एक कंपनी में था बड़ी सालों तक मतलब था उसमें जब तक मेरा बेहतरीन था मेरे लिए मैं रहा तो लोग ताने देते थे यार ये बंदा नहीं छोड़ने वाला है ये मतलब बिल्कुल नहीं हटने वाला सारे लोग और मैं देख रहा हूँ जो मुझे ताने दे रहे थे वो खुद उसी में पड़े हुए हैं और कितने कितने दिनों की उनकी पैसे सैलरी सब फंसे पड़े हैं और रो रहे हैं लेकिन फिर भी वहीं पे और हमें जो हमें ताने दिया करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां से निकल के और उस कंपनी के ऊपर मैंने केस इतना डराते थे कि नहीं कुछ नहीं होने वाला केस डालो कुछ नहीं मिलने वाला है ये तो उसका भी डूब गया बर्बाद लेकिन देर आए दुरुस्त आए मैंने केस भी डाला और वो मैं दूसरे कंपनी में ज्वाइन भी किया और उससे भी मैंने पैसा लिया अब लोगों अरे यार तुम्हारे लिए तो अच्छा हो गया ऐसा वैसा बाद में फिर वो ये सब चीजें मतलब आदमी को जो करीब के होते हैं ना वो तुम्हें पहले समझ लो

0: कि ये कर देते हैं कि तुम उससे डर के और हट जाओ, तुम तुम्हारे लिए समझ लो कि बर्बादी की तरफ लेके जाते हैं। ये चीजें तुम खुद जज करके अगल बगल में देखो, माहौल को देखो, ये करके खुद फैसला करो। ज्यादा जो अपने बहुत करीब के मुखलिस हो उन्हीं से राय लो, नहीं तो हर एक से अपने राय को शेयर करोगे तो शायद तुम्हें वो बर्बादी की तरफ ही लेके जाएंगे। तकरीबन मेरा मैंने खुद अपने अपने जिंदगी में देखा है। तो ये सब चीजें बहुत हर एक से शेयर नहीं करने की होती हैं। तो अपना जो फैसला करना है आप खुद, मतलब दुनिया का हालात देखो, कैसे किस लायक है बंदा, उस हिसाब से अपने फैसले को करो तो वो ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। हर एक से अपने उसको, अपनी कमजोरी को और अपने कामयाबी को शेयर नहीं करना चाहिए। मेरा तो यही है कि ना अपनी कमजोरी को शेयर करो ना अपने कामयाबी को शेयर करो, ये दोनों चीजें बड़ी अहम चीजें हैं।
1: हाँ ये बात है, ये बात मैं मानती हूँ। और बात ये भी है कि आप किसके ऊपर इतनी एनर्जी, किसको अपनी दे रहे हो कि जो आपकी बात समझे और आपसे समझाओ। आजकल का दौर ये भी हो गया कि अगर आप किसी को अपनी कोई प्राइवेट बात बता दो कि भाई ये मसला है, आपने जहाँ ये कह के दिया ना ये मसला है, तो या तो फिर लोग उसको मजाक बना देंगे या तो फिर लोग उससे जो ना वो होंगे कि अच्छा इसके साथ ये मसला है,
0: वो वक्त पे तुम्हें ऐसे ताने देंगे कि तुम वहां
1: पे वो बैकफायर कर जाती है चीज।
2: हाँ
0: वो, और वो अपने जो दूर के रहते हैं ना वो ताने देते हैं, तो बल्कि यार चलो हटो ये कहाँ जाएगा, मैं कहता हूँ उतना तकलीफ नहीं। लेकिन जो अपने करीब के होते हैं ना और वो ताने दे देते हैं तो वो ऐसा निशान छोड़ देता है ना कि जिंदगी भर नहीं मिटता है, इतना बड़ा मतलब ये चोट लगता है। तो ये हर बातें मतलब इसी से आदमी को समझना चाहिए अपने लाइफ में। और जिस तरीके से मैं कल सपा ने कहा था कि 40 साल के बाद में ही बंदे को अकल आता है, सही
1: तो हाँ ये मैंने एक जगह पढ़ी थी बात,
2: फैक्ट है ये, फैक्ट है। अच्छा मेरी अम्मी हमेशा इस मामले में बोलती थी और मैं मतलब काफ़ी डरी भी रही इस मामले में कि जो खासतौर पे दीन की अगर बात करूँ ना कि दीन की तरफ जैसे नहीं होते मोस्टली हमारे वक्त के लोग इतने ज़्यादा पक्के चीज़ों में, तो अम्मी ये कहती थी कि जो 40 तक आ गया ना आ गया, उसके बाद आ सकता है, अल्लाह ताला की रहमत किसी के ऊपर भी हो सकती है, लेकिन चांसेस कम रह जाते हैं,
1: मुश्किल
2: हो जाता है,
1: हार्ड हो जाता है।
2: तो अगर आप चाहते हो कि आप दीन के रास्ते पे मतलब चलना चाहते हो, आप अपनी आखिरत की फिक्र करते हो, तो आप 40 तक अपने आप को जितना सुधारने की कोशिश कर सकते हो अपने ऊपर काम कर लो, उसके बाद फिर थोड़ा काफी मुश्किल हो जाता है।
0: ये बात बंदे को फिर दूसरे तरफ माइंड सेट कर देता है। ये बंदा समझ लो कि अगर उस वक्त फैसला नहीं कर पाया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी भाई जवानी की इबादत अल्लाह को सबसे ज्यादा
2: प्यारी है। मैं भी यही कहने वाली थी, बिल्कुल ऐसे ही है।
0: सब चीजें बहुत अहम है, हमारे दीन ने बड़ी रहनुमाई की है। अगर हम अपने दीन से भी जुड़ के रहे ना तो हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस उनसे ज्यादा राय लेने की, सवाल करने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के मामले में, दुनियावी मामले में, अपने बाल बच्चों के मामलों में, बीबियों के मामले में, अपने खानदान अकारिब सबके बारे में रहनुमाई हमें हमारे दीन ने किया है। अगर हम इसको सही से अगर ये करें ना, मुताला करें ना, तो ज्यादा हमें मतलब रुसवाई नहीं मिलेगी और ज्यादा लोगों से हमें राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद हमें, और सब्र भी हमें आ जाएगा कि कोई चीज का अगर छोटा मोटा तकलीफ पहुंचा, अगर हम नाकाम हुए तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे असलाफ और हमारे उन लोगों के सामने, उन लोग ऐसे ऐसे मतलब वो लोग बड़े कोशिश किए और लेकिन अल्लाह ताला ने वो चीज नहीं उनके मुकद्दर में लिखा था, तो वो नहीं, तो वो देख के हमें सब्र आ जाता है कि भाई हम क्या चीज है, इतने बड़े बड़े थे लोग मतलब अपने उसमें मिशन में कहीं पे हर जगह कामयाब नहीं हुए, तो हमारी क्या हैसियत है। तो बंदे को ये सब चीजें दीन को से भी जुड़ के बहुत ज्यादा ये होके रहना चाहिए ताकि मतलब उसको उसके दिल में ज्यादा बदगुमानी और तकलीफ और तरह तरह की वो ना आए। मेरे ख्याल से ज्यादा सबसे बहुत अहम चीज है,
2: सही हो गया,
0: चीजों को भी समझ के अगर रखेगा तो उसके अंदर घबराहट और ये सब ये नहीं आएगी बिल्कुल। ये कुछ वक्त के लिए है कि वो निकल भी जाता है, वो मुख्तसर वक्त होता है, बात थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि फिर वजाहत करने लग जाओ तो फिर मैं थोड़ा तकलीफ करने में ज्यादा ये हूँ,
1: मगन हो जाते हैं।
0: नहीं नहीं बस अल्लाह माफ करे भाई, कुछ गलतियाँ हुए तो, लेकिन कोशिश करते हैं कि सामने वाले को कुछ समझ में आ जाए।
2: चले ठीक है रईस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जितने हमारे दोस्त हैं सुनने वाले, कल फोन नहीं किया हमारे जितने मिलने वाले थे, खाली इंतजार कर रहा हूँ कि कोई आए बात करें इंशाल्लाह
2: आज हम बात करें कि कैसे इस डिमांडेड वर्ल्ड में आपने अपनी एनर्जी बचा के रखनी है।
1: जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे साथ कि भाई एक काम करने निकलते हैं और मामला ये हो जाता है कि मोबाइल में बैठे बैठे बस वहीं के होके रह जाते हैं, तो बाकी सारे काम जो 36 काम पीछे पड़े होते हैं वो सब मावेश आजकल तो ये हशर हो रहा है मजाक रहा, जैसे हमारे बचपन में कहा करती ना टीचर खाना खाना भूलते हो जो होमवर्क करना भूल जाते हो। अरे भाई लोग खाना खाना भी भूल जाते हैं मोबाइलों के चक्करों में, आपकी जो एनर्जी जा रही है ना जिस तरफ आप वैसे ही बन जाते हो, फिर लॉस्ट एब्सेंट माइंड हो जाते हो। लोगों को देखा है लोग इमोशनली एम्प्टी हो गए। आपके घर में एक शख्स बैठा हुआ है आपके सामने सोफे पर, लेकिन इमोशनली इतना एब्सेंट है वो शख्स कि खासतौर पर ये मर्द हजरात से बीवियों को शिकायत होती है कि भाई ही इज ऑलवेज देयर एट होम बट ही इज नेवर देयर। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है।
2: अच्छा वाकई मतलब कहने को ना एक मतलब छोटी सी चीज है जिसने जिसका दुनिया में इजाफा हुआ है, लेकिन खा गई है दुनिया। मतलब अजीब ही मामला हो गया है।
1: अब आप अगर ये मैंने कुछ दिनों पहले मीम देखी थी इतना मजे की और वो बहुत दो टोक लगी मुझे मीम कि अगर औरतें जो हैं औरतें मतलब बेगमें और अम्मा खास तौर पे मोबाइल लेकर बैठ जाएं ऐसे जैसे बच्चे लेकर बैठे होते हैं तो ना कपड़ा धुलेगा ना खाना मिलेगा ना खाना खाया जाएगा ना खाना बनेगा कुछ भी नहीं, घर धर्म भरम होगा,
2: होता भी ऐसा
1: धर्म भरम हो जाता है।
2: लेकिन बहुत सारी जगहों पे औरतों का भी मतलब ये वाला सीन हो रहा है अब, ऐसा नहीं है,
1: इट इज अफेक्टिंग। तो ये आपकी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए और आप कहाँ उसे कंज्यूम कर रहे हो। अक्सर औकात जब हम लोग दोस्तों में या रिश्तेदारों में बैठते हैं तब भी आपने नोट किया कभी कभी क्या होता है जैसे आप रिश्तेदारों में बैठो तो आपका एनर्जी लेवल कुछ रिश्तेदारों में बैठकर बिल्कुल हाई पर चलाता है और कुछ में आपको ऐसा लगता है जैसे आप बुझ गए।
2: हाँ अभी कोई पता नहीं लगा हुआ था टीवी पे कोई प्ले वगैरह था उसमें मैं देख रही थी कि वो कुछ जैसे वायरल चीज़ें हो जाती हैं उसके ऊपर लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं, उन चीज़ों के ऊपर लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं। तो अक्सर तो भाई हमें पता ही नहीं चलती मतलब आती है चीज़ ट्रेंडिंग होती है चली जाती है वापस हमें अंदाज़ा ही नहीं होता, लेकिन ये फैक्ट है कि मतलब जो इस तरह की चीज़ें आती वाती रहती हैं उसमें जो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को तो उसके हवाले से कुछ बना हुआ था कि वो मतलब हर चीज़ के ऊपर गॉसिप्स कॉमेंट हो रहे हैं घर के अंदर बैठ के उनकी लाइफ डिस्कस हो रही है सब कुछ हो रहा है। तो वो दिखा रहे थे उस प्ले में ही दिखा रहे थे बेसिकली ये वो खाना भी नहीं पका हुआ, बेटा घर पर आता है कहता है कि क्या पकाया, तो कहती नहीं मैं पकाया नहीं है तुम लेकर आ जाओ बाहर बल्कि मुझे भी बहुत भूख लग रही है। तो ये मामला भी होने लगे हैं क्योंकि आपने अपने आप को ना इन्वेस्ट गलत जगहों पे किया हुआ है और उनकी लाइफ में उनको बुरा भला बोल रहे हैं लेकिन आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि अगर देखा जाए फैक्ट है कि जो लोग वायरल हो रहे हैं ये वो तो चलो भाई जो है सो है उसके साथ हमें हक नहीं बनता किसी के ऊपर भी कमेंट करने का, लेकिन उस चक्कर में बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को इतना ज्यादा अजीब सा बना लेते हैं कि ना उनके घर के काम हो पा रहे हैं ना कुछ है, लगे हुए बस लगे हुए बिला वजह गैर जरूरी चीजों में लगे हुए।
1: क्योंकि आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया आगे लेकर जा रहा है आपको तो आप भी सोशल मीडिया पे लगे हुए हो।
2: हाँ एग्जैक्टली जबकि आपका तो कुछ भी नहीं है, चलो वो वायरल तो हो रहा है वो वायरल तो हो रहा है आप कुछ भी आप वायरल कर रहे हो बैठ के लोगों को। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
2: जी कौन बात कर रहे हैं?
0: मोहम्मद
2: आजम। मोहम्मद आजम आपकी आवाज इतनी दूर से क्यों आ रही है?
1: चांद पे बैठे हैं, चांद पे उड़न तश्तरी। कौन से रंग की है आपकी उड़न तश्तरी? अच्छा
2: तो आपकी आवाज जो है ना हमें आई नहीं,
1: मुझे लग रहा है स्पीकर पर
0: आ रहा होगा। काफी देर से अस्सलाम वालेकुम।
1: ये सब मावेशियों से हो रहा है?
2: नहीं मेरी वजह से नहीं हो रहा, आपके अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही। अब देखिए मैंने आपको ले भी लिया फिर भी जो है ना आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा हटाएं ना उससे जो भी कनेक्ट किया हुआ ब्लूटूथ वगैरह।
1: नहीं ब्लूटूथ नहीं, मुझे लग रहा है ये ब्लूटूथ पे नहीं, ये स्पीकर पर है। हाँ ये डायरेक्ट स्पीकर पर है, तभी मुझसे स्पीकर पे बात नहीं होती, नॉर्मली भी नहीं होती मुझसे स्पीकर बात।
2: स्पीकर पे है तो स्पीकर से हटा के बात करें भाई, क्योंकि हम तो चले गुजारा कर लेंगे, लोग नहीं कर पाएंगे।
1: कह रहे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये बने में खतरों के खिलाड़ी।
2: ओके
1: क्योंकि डर के आगे जीत है ना।
0: क्या हाल है मैम दोनों
1: का? बिल्कुल ठीक ठाक है मेरे भाई, आप सुनाएं आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, फुल ऑन कितनी स्पीड पे चल रही है?
0: अल्लाह का शुक्र
2: अच्छा भाई माजरत, लेकिन हम कॉल ले नहीं पाएंगे क्योंकि ये इतनी ज्यादा कुछ लहराती हुई आवाज आ रही है, तो वो फिर मतलब ना कुछ अजीब हो जाएगा।
1: ऐसा लग रहा है, हेलो आई एम अंडर द वाटर।
2: एग्जैक्टली, तो अभी ऐसा है कि आप ऐसा करें कि या तो हमें कॉल करें आप ये स्पीकर से हटा के, ताकि हम भी सुन सकें बाकी लोग भी सुन सकें, वरना फायदा नहीं है ना, लग रहा है मक्खियां भिनभिना रही है, मतलब कुछ इस तरह का मामला हुआ है। खैर जी, तो आप कॉल कर सकते हैं हमें 4434377 पे, आप हमें बता सकते हैं कि एनर्जी को अपनी कैसे बचाना है इस डिमांडिंग वर्ल्ड में, और बताइए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। और मैं ढूंढ रही हूँ फ़ोन कहाँ है मैसेज वाला, कि मैं कुछ मैसेजेस ही पढ़ रहे हैं हम लोग, कहीं नज़र आ रहा है आपको?
1: ये जो एक अदद फ़ोन है ये क्या सर्वर भाई जेब में डाल कर ले गए क्या?
2: ऐसे ही लग रहा है।
1: नहीं, कबीर ले गया होगा, कबीर आया था पहले।
2: तो फ़ोन यहाँ पे है नहीं, जो लोग भी मैसेज करें वेट कीजिएगा प्लीज़, हम लोग जो है वो ब्रेक के बाद आपके मैसेज पढ़ेंगे। जी तो एक कॉलर आ गए, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम। ये तो वही बात है कि मैं भी अपने ऑफिस का फोन घर में डाल के ले जाता हूँ।
2: कबीर का ये रोज का सीन है, हम रोज जाके इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, कबीर पता नहीं कहाँ भी रख के चला जाता है।
3: तो ये ना डोर के ऊपर लिख दें कि भाई ये फोन ये चीजें डेस्क पे रख के जाएं आने वालों के लिए।
1: भाई मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज भेजना शुरू कर दो अब तुम लोग सबके सब। वाकई में फोन
2: नहीं है,
1: अबे कबीर भाई को मैसेज करके पूछा था, कबीर भाई फोन कहाँ रख कर गए?
2: कबीर भाई सो रहे होंगे, अब कबीर भाई आपको जवाब नहीं देते शाम से पहले। जी
3: संभाल के रख दी है, घूमना होता है।
2: नहीं, ये रोज रोज होता है, ये तकरीबन जो है ना रोज का मामला है, हम जाके ऑफिस से ढूंढ के लेकर आते हैं ये फोन। खैर जी, तो आप तो खैर अपनी बात कीजिए।
3: हाँ, तो आपका सब्जेक्ट क्या चल रहा था?
2: आज हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी हमारी जो कि इस डिमांडिंग वर्ल्ड में ना लूज हो जाती है, खो जाती है कहीं पे, कैसे बचाएं उसे।
3: अच्छा, हम लोग
2: डूब रही है
3: पर्सनल एनर्जी। पर्सनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ग्लोबल एनर्जी की बात नहीं कर रहे।
2: ग्लोबल एनर्जी की बात नहीं कर रहे,
1: ग्लोबल एनर्जी की बात कर रहे हैं।
2: पर्सनल तो सेफ हो जाए, पर्सनल तो सेफ हो जाए, फिर हम ग्लोबल मैटर्स के ऊपर आएंगे, अभी यू मैटर चल रहा है,
1: खुद को बचा नहीं पा रहे, ग्लोबल की बात कर रहे हैं हम।
3: इसमें जो है ना मेंटली पीसफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है हमारे जिस्म में सबसे ज्यादा एनर्जी हमारा दिमाग खर्च करता है।
2: हाँ बिल्कुल।
3: और वो इतना चालाक है कि वो अपने खर्च को संभाल के रखता है, बाकी भी जाए बाढ़ में अंदाजा कर लेता है।
2: सही।
3: तो इसमें आप फिक्रों के अलावा, अच्छा नींद आप पूरी लें, ये एक फिजिकल फिनोमेनन।
2: हाँ, हाँ, हाँ, ये बात मानती हूँ।
3: आपकी एनर्जी और आपका स्टेमिना इम्प्रूव हो जाता है, और आपकी नींद पूरी ना हो आप चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, और अगर अच्छा नींद पूरी ना हो उसके अलावा आपका रुझान मीठी चीज़ों की तरफ भी जाता है, लो एनर्जी भी, और आपकी कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, कई दफ़ा आप बात बार बार किसी से बात कर रहे होते हैं, हाँ क्या कहा आपने, अच्छा हाँ मैं समझ नहीं पाया, यानी मल्टीपल चीजें तो वो आपको इरिटेट भी करती हैं।
1: पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे, कहीं ऐसा अंदर से ठाक करके लगी है आपकी बातें मुझे।
3: तो इसलिए नहीं, माशाल्लाह अभी मैं मेरे ख्याल में ये सभा के साथ जो आपको प्रोग्राम है पहली मेरी कॉल लगी है या दूसरी लगी है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है।
2: और हम जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव लोग, इधर उधर के लोग, मशरिक़ व मग़रिब के एक साथ बैठते हैं और हमारा कुछ बन जाता है।
3: नहीं नहीं, अच्छा प्रोग्राम है। नहीं सफा अब बड़ी वो क्या कहना चाहिए, ज्ञानी हो गई है, बड़ी
1: अब रुलाएंगे। देखिए इतनी तारीफ नहीं की जाती, नहीं तो फिर लोग मगरूर हो जाते हैं।
3: अच्छा फिर तवज्जो दो भाई आपकी।
1: ये ऐसे सफा ऐसी चलती है, सफा को ना धक्का देना चाहिए
2: जो मैं देती रहती हूँ।
3: नहीं नहीं नहीं, बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो धक्का ले रही है पॉजिटिव।
2: हाँ नहीं, ये बात है। वैसे पता है क्या, मैं किसी और से ना, मेरी मजाल नहीं, मेरी जरूरत नहीं कि मैं किसी और को इतनी बातें सुना दूँ जितनी मैं सफ़ा को सुना देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है, क्योंकि मुझे पता होता है इस बेचारी ने माइंड करना ही नहीं है, तो इसलिए मैं आराम से जो भी होता ना मैं बोल देती हूँ।
3: यानी आपका क्या कहने का मकसद है, माइंडलेस है?
2: नहीं मैं ये
1: नहीं, ये घर की आवाम है ये जो ना।
2: नहीं वाकई मतलब मेरा और सफ़ा का ना इस तरह का बॉन्ड बन चुका है हमारा, मतलब पिछले 5-6 साल का एक बॉन्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल है, मैंने बहुत कम लोगों के साथ कंबाइन शोज किए हैं, सबसे ज़्यादा यही मेरे हिस्से में आते हैं,
1: सबर
2: तो मुझे फिर भुगतना पड़ता है।
3: ये मेरे हिस्से में आती है तो मैंने कॉम्प्रोमाइज़
2: कर लिया।
1: नहीं कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने नहीं किया, इनके पास कोई चारा नहीं है, ये जहाँ जहाँ से ऊपर से वही देखें, अब मैं क्या बोलूँ, और फिर बात करेंगे किसी दिन, इनके पास कोई चारा नहीं है।
3: और बाकी एनर्जी बचाने का और अपने आप को रखने का है कि कॉन्फ्लिक्ट से बचें, कॉन्फ्लिक्ट से. और आप जैसे आप कितना आप यू आर कंफर्टेबल इस स्टेज में आप एक घंटे का नहीं चार घंटे का कर लेंगे. और अगर आप इरिटेट हो रहे हैं ना तो आप घंटे में टाइम देख रहे होंगे ये मिनट ये सेकंड कब खत्म हो. तो वो आपकी तबीयत के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है और जो आपके साथ हैं उन लोगों पर भी है और घर का माहौल ऑफकोर्स. अच्छा एक एक एक अब खवातीन है प्लीज डोंट माइंड ना हम लोग मिलके चलते हैं ना. एक खवातीन एक बात अक्सर होती है नई शादी या होने वाली है इस तरह जो इनकी कमिटमेंट सब कुछ मानू सब कुछ मानूंगी से अब कुछ नहीं मानूंगी क्या मतलब सब्जेक्ट है ये ऐसी नौबत भी आ जाती है जहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होते हैं. हाँ ठीक है आप सब कुछ ना माने से अब कुछ नहीं मानोगी तक जो बात पहुँचती है इसको जरा गौर फिक्र कीजिएगा ये किस कॉन्टेस्ट में है यानी एक फैमिली कॉन्टेस्ट में बात हो रही है इसमें. और एक अपने आप को सोशल मीडिया पे देख के खुद साख्ता अपने ऊपर रहम करना या एक चीज को बहादुरी से मुकाबला करना कैसा सवाल है ये. ये मेरे मैं तरस खा रहा हूँ मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है तो वो तो होता रहेगा. तरस नहीं खाएंगे ना वो है. और एक आप उसको मैनेज करते हैं और एक आपका एक प्रोग्राम था कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें और हमें दी हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि आप अच्छे माहौल में रह रहे हैं. मैंने कहा ना हमारे यहाँ हमारे मुल्क में एक तो इस बात की खुशी है बिजली गई बिजली आ गई खुशी है पानी नहीं है पानी आ गया खुशी है गैस है तो इन इन खुशियों से भी हम लोग महरूम है. इसकी वजह से एक अकेले रह के ना एंग्जाइटी बढ़ जाती है. तो उसमें ऑफकोर्स लोनलीनेस यहाँ रहता है ये मैंने पूरा देखा है. डिप्रेशन या लोनलीनेस घर वाली खवातीन में ज्यादा है आपकी बनिस्बत. आपका एक सर्कल बन गया है आपसे एक बातें हैं आप हमसे बातें शेयर करती हैं दिल की बातें हमारी सुनती हैं आप एक इन चीज़ों में है. मैंने देखे जो घर में मेरे दोस्त भी हैं उनकी वाइफ साल में दो तीन दफा जाती है कहते हैं उसको एंग्जाइटी हो जाती है उसकी तबीयत इस तरह है तो वो बिल्कुल ना अब माशाल्लाह बच्चे उसके बड़े हो गए हैं देयर इज मल्टीपल एग्जाम्पल्स. तो ये मैंने नोटिस लिया जो घर में रहती है ना दे गेट मोर एंग्जाइटी. आपकी एक देखे सफा मिल गई दूसरे मिल गए और आपके कोलीग्स मिल गए आपकी एक बड़ी अच्छी कंपनी है ना.
2: एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल ऐसे ही. और जब जो जितने साल मैंने ज्यादा नहीं गुजारे खैर यहाँ पे मतलब डेढ़ से दो पौने दो साल मैंने गुजारे हैं यहाँ पे अकेले घर के अंदर जब बच्चे बिल्कुल छोटे थे तो वाकई वो वाला टाइम ना आपका गुजारना मुश्किल हो जाता था बिल्कुल. मतलब मैं ये बोलती भी हूँ कि अगर मैं घर पे ही रह रही होती क्योंकि एक बजे से पहले मैं सोकर ही नहीं उठती थी तो मैं एक बजे तक सोकर उठ रही हूँ उसके बाद फिर पूरे दिन बस काम हो रहे हैं साथ में मतलब फोन पे बातें करी मम्मी से और वक्त गुजरता नहीं था किसी तरीके से ना. तो ये वाकई होता है घर पे रहते हुए आपको एक डिप्रेशन और एक सारी जो चीज़ें ना वो होती हैं क्योंकि आप एक हॉल में बंद हो. और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरा बच्चा ना जब बिल्कुल छोटा वो नर्सरी में जाना शुरू हुआ था ना तो वो बस आती थी और हम लोग बस में कुछ खवातीन मिलकर खड़ी होती थी मोस्टली जो ना केरला से थी वो लोग तो वहाँ पर हम लोग खड़े होते थे पाँच छः खवातीन और उनसे ना हमारी थोड़ी बहुत बात होती थी क्योंकि मैं बहुत जल्दी ना इनिशिएट नहीं कर पाती बातों में. मैं सुनती थी उन लोगों की बातें और थोड़ी बहुत मैं करती थी तो वो बात करके पूरे दिन लिटरली मैं वो बातें सोचती थी. मेरे पास और कोई काम ही नहीं था मैं पूरे दिन वो बातें सोच रही होती थी कि उसने ये कहा था इसने ये कहा था. तो मैं अब मैं सोचती हूँ अपनी ज़हनी कैफियत तो मैं कहती हूँ यार मतलब मेरे पास और कुछ था ही नहीं मैं पूरे दिन उनकी बातें सोचती थी कि ये बात हुई थी आज और अगला दिन आ जाता था इसके साथ ही.
3: तो यही बात है. और अगर आप देखिए अभी मैंने लोकल छुट्टियां गुजारी हैं यकीन करो इतनी बोरिंग आप लेजी हो जाते हैं ना उठना बैठना खाना पीना. लेकिन आपने जब कोई काम किसी मिशन पे होते हैं ना तो आप हर काम करते हैं नहीं अब सोने का टाइम है अब खाने का टाइम है कुछ करने का टाइम है यू गेट एक्टिव. मैं एक्टिव रहता हूँ तो बड़ा बड़ा जी एनर्जी बचाएं और खुश रहें और खुश रखें सबसे बड़ी चीज़ है रिलैक्स रहें. अच्छा रिलैक्स खाली आप रह नहीं सकते लेकिन दूसरा भी आपके रिलैक्स आपको नहीं रहने देता ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है. दूसरों को भी ना चैन नहीं आता कि ये चैन और सुकून से क्यों है वो आपको बेचैन कर देता परेशान कर.
1: मैंने कहा ना ये आज कुछ अंतर्यामी कुछ ज्ञानी कुछ तो हुआ है कुछ ये बता दें आप डाटा शेयरिंग कहाँ से हो रही है ये.
3: बस ये जो है ना वायरलेस कम्युनिकेशन हो रही है
1: या कहीं आप भी तो उन्हीं मामलात के साथ डील नहीं कर रहे या कर चुके हैं.
3: ये दिल की आवाज है
2: ये दिल की आवाज
1: ये आपने बहुत गहराई से सुनी है
2: दिल की तारे मिल गई हैं सफा तुमसे
1: स्टेथोस्कोप लगाकर सुनी है उन्होंने आवाजें
2: जी. चलें जी जुल्कनैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया बहुत दिनों के बाद आपसे बात हुई और बहुत अच्छा लगा. थैंक यू जी. थैंक यू, अल्लाह हाफिज। रही जी तो हमारे साथ है जुल्कर्नैन साहब और इसी के साथ
1: छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सुनते
2: रहना तो बनता है,
1: सुनते रहें 107 दिल से देसी। सुन रहे हैं आप सफा और माविश के साथ यू मैटर।

0: में नहीं थे.
1: बिल्कुल,
0: आई थिंक दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू गेट इन रियल वर्ल्ड एक्सेप्ट यू नो गेटिंग आउट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड ऑल.
1: वेरी नाइस फलक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. वो पॉइंट भी आपका बड़ा मतलब वैलिड पॉइंट है वाकई, कि जितने ये मशीनी हमारे दौर हो गया ना, कि हर चीज़ के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ मिल गई, ईज आ गई हमारी ज़िंदगी में, उसके साथ ही हमारी जो मेंटल डिफिकल्टीज़ है ना वो बढ़ती चली जा रही है. मेंटल हेल्थ के हवाले से सभी लोग बात कर रहे होते हैं. सही फलक, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. बिल्कुल आखिर का वक्त रह गया, लेकिन हम चाहेंगे नेक्स्ट टाइम आप हमें कॉल ज़रूर करें, ठीक है?
0: इंशाल्लाह.
1: चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. अच्छा जी, अब जाते जाते एक दो मैसेजेस जो हैं वो शामिल कर देती हूँ जल्दी से. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग, मुझे तुम्हें यूसुफ भाई ने कहा है और कहते हैं जनाब ज़ुल्कुरैन साहब की बात से टोटली मुत्तफिक हूँ और अपनी पर्सनल एनर्जी के लिए वक्त पे सोइए, अच्छी आँख भर के नींद करें और ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली, राइट? और इसके साथ ही जी

0: बोला था, ये हमें नहीं बोला। और ये कहा, अरे महावर जी प्लीज हम ये टॉपिक किताब में पढ़ लेंगे।
1: क्यों भाई?
0: अच्छा ये कह रहे कि बिग रिक्वेस्ट, प्लीज वक्त की पाबंदी करें सब लोग, मतलब लंबी कॉल ना करें, तो वो फिर मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है, ऐसा वाला मामला है।
1: अच्छा।
0: और ये आसिफ थे, आसिफ आसिफ के की सी, ये जो नाम लिखते हैं। खैर जी, तो अब जो है सिलसिला ये है कि हमने जाना है और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है कल। और मुझे वैसे सबके ओपिनियन, जितने सब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू थे अपने अपने जो सब लोगों ने आके दी, फलक का मुझे अच्छा लगा, फलक की बात वाकई मतलब
1: है वो उनका भी अच्छा लगा। अपने
0: सफर तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया, नहीं हो सकता कुछ।
1: जुल्कर्णैन साहब मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने ये बताया, उन्होंने तरीका बताया था कि हाँ। आप कैसे एनर्जी अपनी जो ना आप बचा सकते हो, सेव करो अपने आप।
0: एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। तो थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इसी के साथ हमारा हो गया है वक्त तमाम, आपसे मिलते हैं कल इंशाल्लाह।
1: इंशाल्लाह सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।
0: दिल से देसी, अल्लाह हाफिज। Mixing in the house.

0: दिया बन सकती है।
1: सामने किराम, कभी हम समझते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए लहजा सख्त होना चाहिए। बच्चे को सुधारना है तो डांट जरूरी है। किसी की गलती दुरुस्त करनी है तो उसे सख्त अल्फाज में सुनाना जरूरी है। मुलाजिम से काम लेना है तो दबाव जरूरी है। किसी इख्तिलाफ में अपना मौकिफ वाज़े करना है तो आवाज बुलंद करना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सख्ती वाकई हर बार वो नतीजा देती है जो हम चाहते हैं? कभी हमारी बात दुरुस्त होती है मगर हमारा अंदाज उसके असर को खत्म कर देता है। इस सिलसिले में जरीर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को नरमी से महरूम कर दिया गया उसे खैर से महरूम कर दिया गया। जरा गौर कीजिए कि हदीस में जो बात आई है उसका मतलब ये बनता है कि गोया जहाँ नरमी आती है वहाँ खैर के दरवाजे खुलते हैं, और जहाँ इंसान हर मामले में सख्ती और दुरुस्ती का रवैया इख्तियार कर लेता है वह अपने हाथ से बहुत से भलाई के रास्ते बंद कर देता है। समनी कराम, रिफ्क का मतलब क्या है? रिफ्क एक पूरा रवैया है, और इस रवैये को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि किसी की गलती पर फौरी सख्त रद्दअमल न देना, ये रिफ्क है। दूसरे की बात मुकम्मल सुनना, ये रिफ्क है। इस्लाह करनी हो तो मुनासिब वक्त और मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करना, ये रिफ्क है। बच्चे को सिखाते हुए उसकी उम्र और सलाहियत का ख्याल रखना, ये भी रिफ्क है। यानी रिफ्क का मतलब ये बना कि आपका मकसद भी खैर हो और खैर तक पहुंचने का तरीका भी खैर वाला हो। समझने के नाम, जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी बात बिल्कुल दुरुस्त होती है मगर अंदाज गलत होता है। लहजा ऐसा है कि सामने वाला नसीहत नहीं सुनता, सिर्फ अपनी तोहीन महसूस करता है। अब मकसद तो सही है मगर गुस्सा इतना है कि बच्चा गलती समझने के बजाय हमसे डरना सीख लेता है। तो आज की रूह परवर सुन्नत हमें सिखाती है कि आप जो कह रहे हैं इसमें ये बात भी काफी अहम है कि आप कैसे कह रहे हैं। अब इस मौजू का एक दूसरा रुख भी है, वो ये कि बाज़ लोग नरमी को कमजोरी समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं नरम हो गया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, अगर मैंने माफ कर दिया तो लोग फायदा उठाएंगे, अगर मैंने आवाज बुलंद न की तो मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। अब समझने की बात यह है कि नरमी और कमजोरी एक चीज नहीं। कमजोरी यह है कि इंसान हक बात कहने की हिम्मत न रखे, और रिफ्क यानी नरमी यह है कि हक बात कहने की हिम्मत भी रखे मगर उसे हिकमत और मुनासिब अंदाज से कहे। सामिन इकराम, रिफ्क का सबसे पहला मैदान शायद हमारा अपना घर है। हम बाहर के लोगों से कितनी नरमी से बात करते हैं, रिफ्क की जरूरत और भी ज्यादा है। बच्चा सीख रहा है, वो गलती करेगा, कभी चीज गिराएगा, कभी सबक भूलेगा, और यही वालिदैन का इम्तिहान है। क्या हमारा मकसद बच्चे को सिखाना है या अपना गुस्सा निकालना? तो नरमी के साथ इस्लाह का मतलब ये है कि गलती दुरुस्त कीजिए मगर बच्चे का दिल भी न तोड़िए। अब वालिदैन की भी बात कर लें, जैसे जैसे वालिदैन उम्र रसीदा होते हैं कभी उनकी जरूरियात बढ़ती हैं, एक बात बार बार पूछ सकते हैं, चलने में वक्त लग सकता है, हम जल्दी में होते हैं और कभी लहजा सख्त हो सकता है। यहाँ रिफ्क हमें इस बात की याद दिलाता है कि जिस कमजोरी पर आज आप झंझला रहे हैं कभी इसी कमजोरी के साथ उन्होंने आपको संभाला था। आपने एक सवाल 10 मर्तबा पूछा होगा, उन्होंने 10 मर्तबा जवाब दिया, आप चल नहीं सकते थे, उन्होंने हाथ पकड़ा, आज वक्त बदल गया है, अब शायद हमारी बारी है कि हम उनके साथ सब्र, वसअत कल्ब और नरमी इख्तियार करें। इसी तरह सामिन किराम, काम की जगह पर रिफ्क, नसीहत में भी रिफ्क मतलूब है, इख्तिलाफ में रिफ्क, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जिंदगी के अज़ीम उसूल है, मन युहरम अर-रिफ्क युहरम अल-खैर, यानी जो नरमी से महरूम वो खैर से भी महरूम। अल्लाह ताला हमारे अखलाक को रिफ्क और नरमी से आरास्ता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपर व सुन्नत के आज के हल्के से तकनीकी मुआविन शकील अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, फायरवर्क्स या फायर क्रैकर्स को लाइसेंस के बगैर यूज करना या अपनी कस्टडी में रखना कानूनन मना है, और ये एक जुर्म है जो आर्टिकल नंबर 18 ऑफ लॉ नंबर 7 ऑफ 2020 ऑन फायरवर्क्स के तहत पनिशेबल है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स फायरवर्क्स को बिना इजाजत इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माना हत्ता के जेल तक की सजा लग सकती है। आपकी अवेयरनेस और कानून की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए भी बेहद अहम है। फायरवर्क्स जाहिरी तौर पर फन लगते हैं, लेकिन बिना कंट्रोल के वो पब्लिक सेफ्टी रिस्क भी बन सकते हैं, इसलिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्रॉपर लाइसेंस लेना लाजमी है। वजारत दाखला का कहना है कि कानून का एहतराम करना हम सब की जिम्मेदारी है ताकि हम अपनी कम्युनिटी को सेफ और रिस्पॉन्सिबल बना सकें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
1: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से 7:15 बजे से FM 107 पर दो हवाले कबीर के साथ।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू अनदर टेक अपडेट. ऑफ कोर्स जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज लॉन्च हो चुकी है, वो है एप्पल के फोन्स, वो लाइनअप जिसका इंतजार हर सितंबर में रहता है. तो जब हम शो को रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक फोन लॉन्च हो गए थे, तो वी कुडंट डू द रिव्यू ऑन टाइम. मगर अभी जिन्होंने नहीं लिया है और वो जानना चाहते हैं कि FM 107 पे ये कबीर का क्या टेक है इस पे, तो मैं वो सब कुछ आपको बताऊंगा. ये चार दिन जो आने वाले हैं इनमें हम इसके बारे में खुल के बात करेंगे. सबसे पहले मैं बात करूंगा आईफोन के उस फ्लैगशिप फोन की जिसका जिसे देख के सब हैरान हो गए, और वो है आईफोन डुओ फोल्ड. वो भी एप्पल में ये सोचा था लेकिन पता नहीं था कि एप्पल ये करेगा. मुझे ऑनेस्टली नहीं लगा था कि एप्पल ये करने वाला है. मुझे लगा था वो शायद फोल्ड से दूर रहेगा, थोड़ा और टाइम लेगा, थोड़ा और टाइम लेके बनाएगा. लेकिन एप्पल ने कर दिया लॉन्च. अब इसमें बहुत सारी अच्छी और कुछ ऐसी बातें भी हैं, तो मैं सबसे पहले अच्छी बातों पे बात कर लेता हूँ. डेफिनेटली डिजाइन बहुत अलग है, डिजाइन बहुत खास है. बैटरी में बहुत ज्यादा इन्होंने मेहनत करी ताकि बैटरी भी टॉप नॉच रहे, कोई मसला नहीं आएगा किसी को. फोन जो है बहुत स्मूथ काम कर रहा है. जो अलग अलग विंडोज दी है काम करने के लिए वो बहुत ज्यादा स्मूथ है. अभी हैंड्स ऑन मेरे हाथ में तो नहीं है, बट जहां तक मैंने इसको अच्छे से पढ़ा है, जाना है, उतना मैं आपको बता सकता हूँ. कुछ स्पेशल इस फोल्ड फोन के लिए केटर्ड ऐप जो हैं वो एप्पल ने डिजाइन करी हैं जो सिर्फ उस पर चलेंगी. और क्या बाकमाल डिजाइन है. जब इसको ओपन करो तो एक एक अलग किस्म का एक प्रीमियम रिफ्लेक्शन सामने आता है, विच इज ब्यूटिफुल. ऑफकोर्स इसके जो हिंजेस की बात आती है, जब भी हम फोल्ड की बात करते हैं तो हमें हिंजेस की प्रॉब्लम होती है कि भाई ये बीच में दरार ना पड़ जाए. तो जब तक आप उसे हाथ नहीं लगाएंगे तब तक आपको पता भी नहीं लगेगा कि उसमें हिंजेस में कोई हिंजेस पता भी लग रही हैं. दे हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इस बार काम करने के लिए फोल्ड पे, एंड डेफिनेटली उन्होंने बाकी फोन्स को बहुत अच्छे से

0: दिखाया जाना है कि हिंजेस कैसे भगाए जाए, तो एप्पल ने उसमें बहुत कामयाबी हासिल करी है. ऑफ कोर्स द फोन इज अराउंड $2,000 जो लॉन्च होते हमारे यहाँ आएगा, तो इंडिया में तो 3 लाख का है, तो यहाँ पे आप लगा लीजिए हिसाब तब कितने का होगा. इट इज ऑब्वियसली क्रॉसिंग ऑल द प्रीमियम फोल्ड फोन प्राइसेस, तो ये महंगा तो बहुत आने वाला है. इसके जो कुछ ड्रॉबैक्स हैं, डेफिनेटली अगर आप एक कैमरे की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको कैमरा नहीं मिलने वाला है इसमें. वो जो उन्होंने कैमरा दिए बस वो दे दिए, अब ऐसा था कि भाई अब देने ही पड़ेंगे, मजबूरी है, तो इसलिए इसमें कैमरा दे दिया है. आप उससे ये मत उम्मीद कीजिएगा कि प्रो लेवल तो होगा, भाई इतना महंगा फोन है तो कैमरा तो भाई एकदम सॉलिड होगा, ऐसा नहीं है. इट्स अ वेरी वेरी वेरी वेरी नॉर्मल कैमरा. यस द बैटरी लाइफ इज रियली रियली गुड, और इसमें जो इनकी उन्होंने नई चिप भी लगाई है तो वो भी डेफिनेटली इसे स्पीड अप करती है. एवरीथिंग इज नाइस अबाउट इट, बट डिज़ाइन में एक हल्की सी बात है और वो है इसकी जो कहते हैं उसकी जो विड्थ है. क्योंकि आप एक हाथ से अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पूरी तरह से इसकी स्क्रीन को यूज़ नहीं करवाएंगे, आपको थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ेगा, दूसरे हाथ की थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी. और इसमें जो सीरी का इंटीग्रेशन है वो भी बड़ा अजीब है, जिसका जो बटन है वो ऊपर की तरफ दिया हुआ है, विच इज़ वेरी हार्ड टू रीच. अगर अंटिल अनलेस सबके हाथ बहुत बड़े हैं, कानून के हाथ तो बात दूसरी है, पर बटन का जो पोजिशनिंग है वो थोड़ी सी अलग है. और जो डिज़ाइन है वो मुझे लगा था कि शायद थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा होगा, लेंथ ज़्यादा होगी देसी भाषा में बोलूँ, बट दे कैप द विड्थ मोर. आई डोंट नो किस से इंस्पायर्ड हुए, बिकॉज ऑफकोर्स ये इंस्पिरेशन तो बहुत पहले उन्होंने कहीं ना कहीं से लिया होगा. अभी सैमसंग ने वो अपना क्यूट सा फोन लॉन्च किया था, तो रिसेंट ये इंस्पिरेशन तो नहीं है, बट डेफिनेटली प्राइस एक बहुत बड़ा बैरियर है जो आपको ये लेने से रोकेगा. दूसरी चीज़ है कि आप इसको जोश जोश में आगे कि मैं शोबाजी के लिए ले लूँ, तो भाई शोबाजी हो पाएगी, लेकिन इसमें कैमरा नहीं है वैसा वाला जैसा आप उम्मीद करते हैं. सो इन केस आपको बहुत ज़्यादा सिर्फ शो ऑफ से मतलब है, तब तो ये फोन आपके मतलब का है, अदरवाइज आई वुड नॉट रिकमेंड. क्योंकि यहाँ पे कतर में आते आते इट विल बी द कॉस्टलीस्ट फोल्ड फोन एवर, इस बात की तो पूरी पूरी गारंटी है. आई रियली होप कि दिस नॉट बिकम्स द सेकंड प्रो विजन जो एप्पल ने लॉन्च किया था उसके आसपास ये पहुंचता मुझे नजर आ रहा है. ऐसी उम्मीद मैं करना नहीं चाहता, मगर मजबूर. रिव्यू हालांकि अच्छा है, मगर जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी खतरनाक वाले ड्रॉबैक्स हैं. दिस वाज द रिव्यू और दिस वाज द टेक अपडेट. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टेक अपडेट. टेक अपडेट.
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें.
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
5: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की.
6: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल.
5: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा. हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो दोस्तों सुनना न भूले शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नासिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से डीसी.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
4: FM 107
2: दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे मैं हूँ फजील और इस्तकबाल है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड से बचाने के लिए हर रोज मैं आपको अवेयर करता रहता हूँ कैसे ये नए फ्रॉड्स होते हैं और साथ ही साथ किस तरह से आप बच सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं इन फ्रॉड से बचने के, उस पर भी हम बात करते हैं। और आज हम जिस फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं, ये बड़े ही इमोशनल फ्रॉड भी है एक तरह से। आप बहुत ज्यादा टूट जाते हैं जब इस तरह का फ्रॉड आपके साथ होता है, और इस फ्रॉड का नाम है हाउस सिटर एंड पेट सिटर, यानी कि आपके इमोशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको लेकर भी एक्चुअली में आजकल फ्रॉड होने लगा है। कई लोग अपने पेट्स को बहुत ज्यादा करीब से चाहते हैं।

0: जानते हैं मानते हैं, और ऐसे ही जो हाउस सिटर होते हैं या घर की देखभाल करने वाले होते हैं या बच्ची की देखभाल करने वाले होते हैं, उनके नाम पर भी स्कैम शुरू हो गए। सबसे पहले ये स्कैम होते कैसे इन पर बात करते हैं और फिर सॉल्यूशन पर भी हम नजर डालेंगे। वेल, हाउस सिटर और पेट सिटर फ्रॉड हमारे सबसे बड़े ट्रस्ट जोन के अंदर होता है, इसलिए इसका दुख बहुत बड़ा होता है। ये स्कैम अक्सर किसी पड़ोसी, दूर के रिश्तेदार या किसी कैजुअल एक्वेंटेंसेस के जरिए किया जाता है जिसे आप एक अच्छा इंसान समझते हैं। जब आप फैमिली के साथ किसी लंबी वेकेशन या इंटरनेशनल ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं तो सबसे बड़ी फिक्र है घर की सुरक्षा, सिक्योरिटी, और पेट्स की केयर कौन करेगा। इस दौरान ये जान पहचान वाला इंसान बड़े ही मीठी बातों के साथ आपसे कहेगा कि आप फिक्र मत करें, आप घूम कर आए, आप पीछे बिल्कुल ना देखें, मैं आपके घर का या पेट्स का पूरा ध्यान रखूंगा। या कई बार आप सोशल मीडिया पे हाउस सिटर या पेट सिटर ढूंढते हैं, वो आपके कांटेक्ट में आते हैं, आप उन पर भरोसा करते हैं, आप उनको कुछ पैसे भी देंगे, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर आपके साथ होता है गड़बड़ या फ्रॉड। आप उन लोगों पर जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके करीबी हैं, या फिर आपने जिनको सोशल मीडिया पर ढूंढा है, आप उन पर ट्रस्ट करके उन्हें अपने घर की मेन कीज हैंड ओवर कर देते हैं, मेन चाबियां दे देते हैं, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करने के बजाय वो इंसान इस परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का एक क्रिमिनल माइंड की तरह फायदा उठाता है। जब आप शहर के बाहर होते हैं, देश के बाहर होते हैं और घर पर पूरी तरह सन्नाटा होता है, तब वो आपके वार्डरोब्स और सेफ लॉकर को चेक करता है। वो घर में रखी कीमती गोल्ड ज्वेलरी, लॉकर में रखा कैश, महंगे ब्रांड के लैपटॉप्स और कॉस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स चुरा लेता है। स्कैमर्स इतने शातिर होते हैं कि वो आपके मेन डोर और कपबोर्ड्स की चाबियां डुप्लीकेट करवा लेते हैं ताकि आपके आने के महीनों बाद दोबारा आसानी से चोरी भी की जा सके। पर कोई शक न करे, जब आप ट्रिप से लौट कर आते हैं तब आपको धीरे धीरे चीजें गायब मिलती हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन इस तरह के फ्रॉड से बचने के तीन आसान तरीके हैं। इन तीन तरीकों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उम्मीद है कि आपके साथ इस तरह का फ्रॉड कभी नहीं होगा। हायर ओनली सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स। जब भी आप कभी देश से बाहर जाएं, घूमने फिरने के लिए जाएं, किसी बड़े ट्रिप पर जाएं, तो हमेशा एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल को ही हायर करें। अपने पीछे घर की चाबी किसी भी कैजुअल दोस्तों को, पड़ोसियों को या सोशल मीडिया से किसी रैंडम को हायर करने के बजाय आप ऐसे शख्स को हायर करें जो प्रोफेशनल हो। उनको चाबियां ना दें जिनको अभी आपने कुछ दिन पहले ही जाना पहचाना है। हमेशा सिर्फ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, बैकग्राउंड वेरीफाइड, सर्टिफाइड और इंश्योर्ड पेट सिटिंग या हाउस सिटिंग एजेंसीज को ही कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करें। इन प्रोफेशनल एजेंसीज के पास लीगल लायबिलिटी होती है, अगर कुछ खोया तो कॉम्पनसेशन मिलता है। दूसरा सॉल्यूशन है डिप्लॉय स्मार्ट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। वेकेशन पर जाने से पहले अपने घर के हर एक कॉर्नर, लिविंग रूम और एंट्री पॉइंट्स पर हाई डेफिनेशन स्मार्ट वाईफाई सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल करें। इन कैमरास का लाइव एक्सेस अपने मोबाइल फोन पर एक्टिव रखें ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने से रियल टाइम में मॉनिटर कर सकें कि घर के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है। उसके अलावा तीसरा तरीका है लॉक वैल्यूएबल्स इन बैंक वॉल्ट्स। ये तो हर शख्स को करना ही चाहिए। जब भी आप लॉन्ग ट्रेवल पर जा रहे हो तो घर के लॉकर में ज्यादा कैश या गोल्ड ज्वेलरी छोड़कर बिल्कुल ना जाएं। भले ही आपका कोई बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी शख्स क्यों ना हो साथ में, या फिर आपने किसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल को ही क्यों ना हायर किया हो, घर के लॉकर में ज्यादा कैश नहीं रखना चाहिए, ना ही ज्यादा गोल्ड ज्वेलरीज भी रखनी चाहिए। उन सारी कीमती चीजों को टेम्परेरी पीरियड के लिए बैंक के सिक्योर सेफ्टी डिपॉजिट वॉल्ट में जमा कर दें। घर आने पर मेन डोर के लॉक्स को चेंज कर दें और अपने वाईफाई को हमेशा, जब आप घर से दूर रहें, तो ऑन रखें ताकि सीसीटीवी के जरिए आप देखते रहें कि घर में क्या कुछ हो रहा है। ये कुछ तरीके हैं ताकि डुप्लीकेट कीज का खतरा खत्म हो जाए, जैसे कि डोर के लॉक्स चेंज करवाना या फिर सीसीटीवी लगवाना। इन सब तरीकों से आप फ्रॉड आपके साथ जो होने वाला है उनसे बच सकते हैं। ऐसे के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में आपको अवेयर करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.
3: लड़ता है।

दोस्तों सोचिए आप अपने क्रिकेट करियर का पहला टेस्ट मैच खेल रहे हों, सामने दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज में से एक मौजूद हो और आप अपनी सिर्फ चौथी गेंद पर इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को आउट कर दें। कुछ ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान के नौजवान फास्ट बॉलर के साथ हाल ही में एजबास्टन में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 और स्पोर्ट्स हाईलाइट के साथ, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। अपनी जबरदस्त पेस, कॉन्फिडेंस और जो रूट की इंपॉर्टेंट विकेट के बाद रजाउल्लाह, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, उन्होंने अपने टेस्ट करियर का आगाज किया और क्रिकेट फैंस के साथ साथ कॉमेडी

हासिल कर लेता है। रजाउल्लाह के लिए ये सिर्फ एक विकेट नहीं थी, ये उनके इंटरनेशनल करियर के एक नए सफर का आगाज था। अब देखना यह कि पाकिस्तान का ये यंग स्पीड स्टार आने वाले वक्त में वकार यूनुस की तरह अपनी पेस और बॉलिंग से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या रजाउल्लाह पाकिस्तान का अगला पेस सेंसेशन बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहां हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतर की सकावत में तवाजो, सादगी और नरमी को बहुत अहमियत दी जाती है। तवाजो का मतलब है कि इंसान अपनी इज्जत कायम रखते हुए दूसरों के साथ खुले दिल से पेश आए। अपनी खूबियों पर फख्र जरूर हो, लेकिन रवैये में तकबर ना हो। रोजमर्रा जिंदगी में तवाजो छोटी छोटी बातों से जाहिर होती है। सलाम में पहल करना, मुस्कुराहट के साथ जवाब देना, दूसरों की बात सुनना और जरूरत पर मदद की पेशकश करना इसके खूबसूरत अंदाज हैं। ये रवैये मुलाकात को आसान और दिलकश बना देते हैं। कतरी माशरे में बुजुर्गों का एहतराम और छोटों के साथ शफकत तवाज़ो के अहम पहलू हैं। घर के बड़े बच्चों को सिखाते हैं कि हर शख्स के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। इज्जत सिर्फ किसी रुतबे या उम्र की बुनियाद पे नहीं होती।

0: जश्न के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: साइंस कैन बी फन ना साइंस विल बी फन क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थ्योरीज फैक्ट्स बनेंगी है ना तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 से एंड वेलकम टू जूनियर साइंटिस्ट एंड मैं भी जूनियर हूं सो प्लीज वेलकम मी एज वेल दरअसल क्या है कि स्कूल में कभी इतना इंटरेस्ट लिया नहीं लेकिन बड़े होते होते जब साइंस को समझने लगा और बहुत सारी कहानियां भी आपको सुनाई उससे जुड़ी हुई तो लगा यार काफी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा जा सकता है अभी एग्जाम देने का मेरे पास तो मौका है नहीं एंड गुड नहीं है मगर ये एग्जाम ही है कि मुझे ये शो मिला है और आपको मैं समझाऊं और आपको पढ़ाऊं और साथ में मैं भी सीखूं क्योंकि यहाँ पर टीचर पूरी तरह से ज्ञान वाला नहीं है आपके साथ ही ज्ञान ले रहा है और साइंस के अलग अलग चैप्टर को साथ में सीखने में जो मजा है वो किसी चीज़ में नहीं है ये बिल्कुल ग्रुप स्टडीज की तरह है और मुझे रादर देन कंसिडरिंग मी एज समवन हु इज टीचिंग यू कंसिडर मी एज एज समवन हु इज विद यू आपका दोस्त आपका भाई जो आपको सिखा रहा है या पढ़ा रहा है या आपके साथ साथ पढ़ रहा है कुछ चीज़ें आप बता दीजिएगा दो तीन चीज़ें मैं बता दूंगा मिलके भाई सब साइंस समझ लेंगे और आसान कर देंगे क्योंकि साइंस हर जगह है हमारे आसपास एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप ढूंढने निकलें और समझने की कोशिश करें तो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड साइंस थ्योरीज को भी आप आराम से समझ लेंगे बस आपको एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है जैसे आज हम बात करने वाले हैं जिस मुद्दे पे वो बड़ा कमाल का है वो लगता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है आई गिव यू एन एग्जांपल आपको कोई बोले कि भाई बलून को इन्फ्लेट करना है एक बलून को फुलाना है लेकिन आपने इसमें खुद हवा नहीं भरनी है और फुलाना है तो कैसे करेंगे आप अब ये एक्सपेरिमेंट आप करने निकलेंगे और आप किसी को चैलेंज करेंगे तो बोलेंगे हाँ हाँ सही है हमें मत सिखाओ हमें पता है तुम कैसे करोगे तुम मशीन यूज करोगे पर नहीं नहीं नहीं नहीं आपने किसी किस्म के पंप का यूज नहीं करना है और किसी किस्म के इन्फ्लेटिंग डिवाइस का यूज नहीं करना है मगर आपने इस बलून को फुलाना है तो आप कैसे फुलाएंगे यही तो साइंस है जैसे मैंने कहा साइंस इज हैपनिंग अराउंड अस ऑल द टाइम और आसपास के लिए आपको घर से बाहर नहीं जाना है इवन इन आवर किचन्स जहां पे बहुत सारी चीजें मिला के एक दूसरे से आप एक केमिकल रिएक्शन को जन्म देते हैं समथिंग न्यू हैपेंस और आज के एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे किस तरीके से बबल्स फिज एक बलून को इन्फ्लेट करने में बहुत बहुत मदद कर सकते हैं एंड इज ऑल बिकॉज ऑफ साइंस तो आज का मुद्दा यही है और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं आपसे कुछ ही देर में मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे ओनली ऑन जूनियर साइंटिस्ट एंड ओनली ऑन एफएम 107 सो स्टे

वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं दुहा वाला कबीर एफएम 107 से, एंड वेलकम टू जूनियर साइंटिस्ट। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट इस ऑडियो फॉर्मेट में, इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो फॉर्मेट में जल्दी ही सारे एक्सपेरिमेंट मिलेंगे। एंड शो का मकसद जान लीजिए, बड़ा ही सिंपल है। आपको ज्ञान देने का मकसद पहली मरतबा तो है नहीं, ये हटा दीजिए अपने दिमाग से। द होल पॉइंट इज टू लर्न साइंस। एंड आपके घर में अगर कोई ये क्यूरियोसिटी रखता है साइंस को लेकर, सो यू नेवर नो कि उसका फ्यूचर आप जरा जरा सी बातों से काफी चमका दें और फिर वो आपके नाम को भी रोशन कर दे। क्या लाइन है ये दिमाग में। सो आज बात करेंगे एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में। आज तीसरा एपिसोड है एंड आज का एक्सपेरिमेंट काफी काफी इंटरेस्टिंग है। तो सवाल क्या पूछा मैंने पहले, मैंने सवाल ये पूछा कि क्या आप किसी बलून को विदाउट ब्लोइंग एयर इन टू इट, क्या आप उसको फुला सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी डिवाइस, जो पंपिंग डिवाइसेस होती हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? पहला जवाब एक नॉर्मली जो आएगा वो है कि ना जी, ये तो पॉसिबल नहीं है। मगर ये पॉसिबल है जस्ट बाय मिक्सिंग फ्यू सब्सटेंसेस टुगेदर, बिकॉज देन दे विल गिव यू अ केमिकल रिएक्शन जो इस बलून को इन्फ्लेट कर सकता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, जब आप घर पे अपने बच्चों को करके दिखाएंगे या बच्चे खुद करेंगे, दे विल बी ब्लोन अवे। यार बढ़िया चीज है ये तो। तो ये एक्सपेरिमेंट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट जरा आप समझने की कोशिश करें। तो आपको चाहिए सबसे पहले विनेगर, एसिडिक लिक्विड है, तो इसलिए जरा प्लीज प्लीज कीप अ सेफ एनवायरनमेंट और माँ बाप से गुजारिश है उनके साथ में रहें। इसके साथ साथ बेकिंग सोडा चाहिए, बेसिक पाउडर, और इसके अलावा बलून चाहिए। आप जब एक्सपेरिमेंट में है गुब्बारा तो गुब्बारा तो चाहिए, और इसके साथ आपको चाहिए फिर एक एम्प्टी बॉटल चाहिए सिंपल, जो विनेगर को होल्ड करने में काम आएगी। ये सारे मटेरियल जो एक्सपेरिमेंट्स के लिए चाहिए बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, सारे घरों में मौजूद होंगे। पर इस बात का ध्यान रखें कि इनको मिक्स करते हुए जरा आपको एहतियात बरतना है, और जैसे मैंने कहा कि सेफ एनवायरनमेंट। जब ये मिक्स होंगे ये सारे एलिमेंट्स, ये मिक्स होने के बाद एक किस्म की गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये गैस जो प्रोड्यूस होती है ये डायरेक्टली बलून को गैस देती है जिससे वो फूल जाता है। सो क्या हो गया अगर विनेगर और बेकिंग सोडा आपस में मिल गए, तो इन दोनों की दोस्ती करा के आप एक केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। तो जो एसिड है विनेगर में जो एसिड है वो रिएक्ट करता है बेकिंग सोडा के बेस के साथ, एंड कबूम आपको मिलता है एक रिएक्शन, और ये रिएक्शन प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जैसे ही गैस बनती है उसको थोड़ा सा भाई जगह भी तो चाहिए बाहर निकलने के लिए, एक जगह थोड़ी फंसी रहेगी बेचारी। तो जब वो जगह बनाती है तो वो मूव करेगी, और मूव करेगी वो बॉटल पे ऊपर लगे बलून की तरफ, और जब उसकी तरफ जाएगी तो वो गैस उसके अंदर भरेगी एंड इट विल कॉज इन्फ्लेशन, और इस वजह से वो इन्फ्लेट हो पाएगा। दैट इज हाउ इट इज। मगर इसमें ऑब्जर्वेशन की बड़ी जरूरत है, थिंकिंग की बड़ी जरूरत है, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है। मगर आप इस एक्सपेरिमेंट को कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी आप डिटेल जरूर दीजिएगा, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स जो आप घर में कर सकते हैं। तमाम चीज़ें आपके घर में मौजूद है। अब आपको ऑब्जर्व करना है, देखिएगा फिजिंग और बबलिंग, और साथ में डिस्कस कीजिएगा बच्चों के साथ कि बलून किस तरीके से बड़ा हो रहा है। तो आपको एक एक पॉइंट करके आपको बताना है कि एक्सपेरिमेंट किस तरीके से गैस को मदद करता है टू टेक अप द स्पेस, वो जगह ले लेती है। इवन दो हम देख नहीं सकते हैं बट इट इज मूविंग एट फर्स्ट साइट, और क्लियरली उसका इफेक्ट आपके सामने आ जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, बॉटल चाहिए, विनेगर चाहिए, बेकिंग सोडा चाहिए, और आप बॉटल के बिल्कुल टॉप पे एक बलून लगा दीजिएगा, और आपने बच्चों से बलून उस पर बांधने से पहले सवाल पूछ लेना है कि भाई बताओ अगर मैं इस पर फूंक ना मारूं, कोई पंपिंग डिवाइस ना करूं यूज, तो क्या ये बलून इन्फ्लेट होगा, फूलेगा या नहीं।

भूलेगा, ये आपने सवाल पहले पूछना है, उसके बाद पूछना है कि अगर मैं बताऊं कि ऐसा हो सकता है कि बिना भुलाए बिना पंपिंग डिवाइस की ये इन्फ्लेट होगा तो कैसे होगा, एंड लेट देम थिंक व्हाइल यू प्रिपेयर फॉर द होल एक्सपेरिमेंट। तो ये जो बॉन्ड आप दो केमिकल्स के बीच में करा रहे हैं, सिर्फ बॉन्ड दो केमिकल्स का नहीं, आपके और बच्चों के बीच का भी एक बॉन्ड बनेगा, बिकॉज आप इंटरेस्ट लेंगे इन एक्टिविटीज में तो बच्चों के अंदर साइंस को लेके एक क्यूरोसिटी जागेगी और वो भी आने वाले वक्त के जूनियर साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो अब एनालॉजी पे बात कर लेते हैं। अब आप जो गैस जो है वो जो पैदा हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और सीधा बलून में जा रही है और उसे इन्फ्लेट कर रही है, सो यू हैव टू थिंक इस गैस को एक टाइनी इनविजिबल बलून समझ लीजिए जो कि वन बाय वन भरता चला जा रहा है। जैसे जैसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस होगी वैसे वैसे वो पुश होगी, वैसे वैसे वो बलून जो गुब्बारा आपने बांधा है उसकी वॉल की तरफ जाएगी। स्लोली स्लोली बलून बड़ा होता चला जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा और ये साइंस का एक्सपेरिमेंट आपके नजरों के सामने, यू कैन सी एंड ऑल्सो फील इट। तो ये आपको बहुत जरूरी है बच्चों को करके दिखाना, बिकॉज अंटिल अनलेस यू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। मगर सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जरूर पूछेगा कि बिना फूंक मारे क्या बलून को फुला सकते हैं बेटा। अब जरा सी डेप्थ में आ जाते हैं। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इज अ गैस, केमिकल रिएक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इस गैस को जन्म दे रहा है बिटवीन सोडा एंड विनेगर। जब ये रिलीज होगी तो प्रेशर प्रोड्यूस करेगी क्योंकि वो रह नहीं सकती ना एक जगह पे, तो उसको जगह चाहिए एक्सपेंड होने के लिए और वो आउटवर्ड पोजीशन की तरफ जाएगी। अब बॉटल में आउटवर्ड पोजीशन कहां पर है? ऊपर की तरफ। अगेन पहले एपिसोड में क्या पढ़ा था? बॉयंट फोर्स, उस तरह समझ लीजिए। लेकिन ये बॉयंट फोर्स नहीं है, इसमें गैस का प्रेशर है जो ऊपर की तरफ उसे धकेलेगा और वो जाएगी आउटवर्ड टूवर्ड्स द बलून और इसीलिए बलून इन्फ्लेट होगा विदाउट एनी एयर बींग ब्लोन इन टू इट। और सिंपल ये आंसर जब आप देंगे तो उसकी कई सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। स्टेप बाय स्टेप, विनेगर आप डालिएगा एक एम्प्टी बॉटल में, उसके बाद केयरफुली बहुत ही केयरफुली उसमें बेकिंग सोडा डालिएगा या फिर आप बलून में बेकिंग सोडा डाल सकते हैं यूजिंग अ फनल, और उसके बाद बलून को स्ट्रेच कर दीजिएगा और उसके माउथ को बॉटल पे विदाउट मिक्सिंग लगा दीजिएगा। सबसे बेस्ट ये कि विनेगर को डालने के बाद उसमें बेकिंग सोडा मत डालिएगा, रादर डू दिस, आपने सीधा जो बलून है उसमें फनल यूज करके उसके अंदर लगा देना है, उसके बाद लिफ्ट करना है बलून को, सो बेकिंग सोडा जो है वो गिरेगा सीधा विनेगर के अंदर और फिर एक फिज पैदा होगा। ये जो फिजिंग रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन है और उसके बाद ये जब फिज बढ़ता चला जाएगा तो वैसे ही बलून बड़ा होता चला जाएगा और ये ना सिर्फ केमिकल रिएक्शन को दिखाता है बल्कि पावर ऑफ गैस एक्सपेंशन को भी बच्चों को समझाने में बहुत बहुत कारगर साबित होगा। सो बहुत दो ही सिंपल से सब्सटेंसेस आपस में मिलके किस तरीके का पावरफुल रिएक्शन देते हैं ये आपको सिखा सकता है साइंस, एंड जूनियर साइंटिस्ट का ये एपिसोड इसी को लेकर है। मगर जाएगा नहीं, मैं आपके साथ बनाऊँ एंड अभी बहुत सारी बातें करनी है इसी बात को लेकर। तो अगर इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद हैं लेट अस नो, एंड इफ यू आर शूटिंग अ वीडियो ऑल्सो डू टैग अस FM 107 Qatar एंड स्टे ट्यून्ड।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 RJ फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: आप सुन रहे हैं FM 107।
5: FM 107
0: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check।
2: हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडियो की घड़ी में 1:31
3: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर, एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी,
4: जी दोस्तों अस्सलाम आदाब, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आर, पूरे एक घंटे हम दोनों आपके साथ रहने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो दिन है, बड़ा खास दिन है और इस दिन की शुरुआत हम एक दूसरे को थैंक यू करते हैं।
2: नादिया बहुत बहुत शुक्रिया
4: नादिया,
2: थैंक यू नादिया। मैं शुक्रगुजार हूं।
4: आज थैंक यू खा के आए हैं, थैंक यू घोल के इन्होंने पिया है।
2: मैं आपका बहुत शुक्रगुजार।

0: हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया नादिया, थैंक यू सो मच नादिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
1: और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आपको तीन बार थैंक यू ऐसे मुंडी घुमा के कहूँ, बट उसके लिए यू हैव टू एग्जिट।
0: मजा नहीं आया
1: एग्जिट करते ही, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू
0: नहीं कह पा रही, इसके बावजूद भी नहीं कह पा रही, इतनी बातचीत करके भी नहीं कह पा रही, इतना थैंक यू सुन के भी थैंक यू नहीं कह पा रही।
1: इतना मुझे शो से पहले ही सर्वर भाई ने समझाया, थैंक यू बोलने बोला
0: कम से कम, क्यों क्यों क्या वजह उसके पीछे चाहिए,
1: सब चीज में थैंक यू बोलिए थैंक यू, बट उसके बावजूद भी
0: नहीं निकलेगा मुझे पता
1: नहीं निकला, थैंक यू मैं निकल सकता
0: फंस गया है बड़ी मुश्किलों से, निकलता
1: आपके दरवाजे से निकलते ही निकल जाएगा। यहाँ पे एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गया।
0: चलिए साहब उनसे बातचीत के साथ ही आज का टॉपिक आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसे कि आज 21 सितंबर मनाया जाता है वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे, और इसका मतलब शुक्रगुजारी ही है, थैंक यू कहना ही है।
1: सही कहा, और ये दिन कहीं ना कहीं हमें और आपको याद दिलाता है कि हमारे आसपास कितने ऐसे लोग मौजूद हैं, कितनी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, कितने ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, नेमतें हैं जिनके हम शुक्रगुजार हो सकते हैं,
0: होना चाहिए बिल्कुल, और हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, उससे काम भी बनता है बात भी बनती है। यहाँ पर कोई हमारे साथ जुड़ गया है, पहले कॉलर आज के प्रोग्राम के, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: धन्यवाद
1: जी दोनों का। अरे गावा जी, हम लोगों ने आपको देखा कल वीडियो में, फाइनली माशाल्लाह माशाल्लाह।
2: नाजिया जी पता क्या बात है,
1: मैं सोच रही थी आप ऐसे कुछ टर्बन वगैरह आपके होगी सर पे, समथिंग समथिंग मेरे ऐसे था दिमाग में, बट मैंने आपको देखा
0: मतलब सरदार जी वाला,
1: हाँ हाँ वो मेरे दिमाग में था शायद, बट बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, और माशाल्लाह बहुत फिट है। हाँ माशाल्लाह
0: जो टीम मौजूद थी साथ में, और हमने मिस भी किया, अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मीट जब भी होगी तो हम दोनों भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों से मुलाकात करें। गावा भाई कैसा रहा अभी तक का दिन?
2: मैं बताता हूँ सरवर भाई, हमारे वहाँ पे ना जो बंदे मैरिज ब्यूरो वाले होते हैं ना, जिसने पैसे लेके मैरिज करानी है चलो उसका तो बिजनेस है,
0: ठीक है,
2: जो वैसे ही बंदा अपने दिल से दो परिवारों को आपस में जोड़ता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं उसको शादी में एज अ गेस्ट एज अ फैमिली मेंबर ही ट्रीट करते हैं, चाहे शादी हो चाहे शादी का कोई फंक्शन है चाहे एंगेजमेंट है, क्योंकि वो बंदा बहुत बड़ा काम करता है दो परिवारों को आपस में मिलाने का।
0: ये बात लोग समझें जबकि बात है, खैर अब हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं जो इसके बरक्स काम कर रहे हैं, इसके दूसरी तरफ काम कर रहे हैं,
1: तो वो क्यों कर रहे हैं, वो
0: घर में लड़ाइयां करवा रहे हैं, और मतलब एनी हाउ जी गाबा भाई कुछ कहना चाहते हैं इस बात
1: को मुताबिक, पहली बार नहीं,
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: नहीं, इनका
0: शुक्रगुजारी पे आ रहे हैं,
1: ये चौथी बार शुक्रगुजार होना चाहते थे तो वहां में मुझे रोकना पड़ा इन्हें,
0: अभी दूसरी बार तो होनी थी कम से कम। हां गाबा भाई क्या कह रहे थे?
2: तो सर्वर भाई मैं कंटिन्यू करता हूँ, देखिए उनका तो शुक्रगुजार बंदा होता ही होता है,
0: होता ही होता है,
2: ठीक है, और हमसे हम सबसे बड़े शुक्रगुजार यहाँ पे नाजिया जी के भी हैं जी।
0: अच्छा
1: देखा, वाह
2: रीजन ये है कि नाजिया जी ने देखिए हमें अननोन कॉलर्स या लिसनर्स उनको आपस में मिलाने का एक बहुत ही बड़ा काम किया,
0: एक बंधन में बांध दिया है।
1: देखा देखा सर आपका कितनी आपको खांसी आनी शुरू हो गई,
0: हाल खराब,
1: तबीयत खराब हुई आपकी,
0: ठीक है,
1: आपको हजम नहीं हो रही है।
0: तो ये शुक्रगुजारी का जो आज खास दिन है, तो आप नाजिया जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इसके ऊपर, ये कहने का मकसद है।
1: हाय कितनी प्यारी बात।
2: देखिए सरवर भाई मोस्टली पता क्या होता है, ज्यादातर बंदे को मजा आता है दो बंदों को आपस में लड़वा के, मगर यार सरवर भाई यकीन मानिए ये जो नाजिया जी हम लिसनर्स के बीच में दीवार ना बनके एक ब्रिज बने है ना,
0: अब नाजिया जी ग्रैंड इंशाल्लाह ताला पार्टी देंगी जिसमें सब लिस्टर साथ में होंगे और मैं हूंगा और नाजिया जी खुद होंगे,
1: सर्वर भाई खुद ऑर्गेनाइज करेंगे,
0: पैसे नहीं पैसे मैं नहीं दूंगा, पार्टी आपकी तरफ से हो रही है, लोग आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं जुड़ने के लिए, पैसे भी तो आप ही देंगी,
1: तो क्या हुआ आप थोड़े से दे देंगे तो आपके कम हो जाएंगे,
0: थोड़े दे दूंगा 3-4 रियाल उसके अंदर जितने का भी बुलाए कोई बात नहीं। तो गाबा भाई आज चलिए नादिया जी का तो शुक्रगुजार आप हैं ही हैं, इसके अलावा क्या कहते हैं
2: सरवर भाई थोड़ा सा जिक्र और करने दो।
0: अच्छा
1: इनको नहीं हजम होगा, इन्हें हो गई नहीं,
2: मैंने नादिया जी सबसे पहला इन्विटेशन इनको दिया था।
1: अच्छा
2: ये चलो आउट ऑफ ये
0: ऑर्डर थे,
1: आउट ऑफ
0: सर्वर थे
2: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहला इनविटेशन इन्हीं को था, और उसके बाद में जो इनिशिएट आपने
0: आपने नाजिया जी को क्यों इनविटेशन नहीं दिया, जबकि काम यही कर रही है।
2: भाई सबर करो ना भाई, रुको अच्छा, ना सबर
0: रुको
2: करो,
0: जरा सबर करो।
1: इनमें सबर तो नहीं है, सवाल पूछेंगे जवाब भी खुद ही तैयार रखते हैं।
0: काम ही यही है,
2: इसको कौन सा टैलेंट बोला जाए।
0: काम ही यही है भाई,
1: बड़े बोल
0: बड़े बोलते जी।
2: तो सरवर भाई यार यकीन मानिए उस दिन सभी से मिलके ना, क्योंकि हर बंदा अपने आप में एक सेलिब्रिटी है, हम सभी देखिए डिफरेंट प्लेसेस से और सभी का काम बिल्कुल अलग एक दूसरे से, मगर जब बंदा बंदे को मिलता है ना दूसरे बंदे को दिल से, यकीन मानिए नाजिया जी बहुत कुछ सीखने को मिलता
1: है। कुछ सीखने का, ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि ये सारी की टीम जो थी ये हम लोगों ने डिसाइड किया था जब मॉर्निंग शो करते थे, है ना, कि एक दिन आप सब मिलेंगे मिलेंगे, और वहां से ये बात शुरू हुई थी। एंड फाइनली चलिए आप लोग की मुलाकात हुई और हमने वीडियो देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा, और मैं तो बहुत कीन थी कि मैं देखूं गाबा जी कैसे हैं, तो मतलब बाकी सभी लोगों को देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
0: मुमताज भाई उसके अंदर देखे, अपने यूसुफ भाई देखे, वो आखिर में मटर में जो पोल खुलती है अच्छा चाचा आप वो दिखे, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चेहरे, इसमें स्मार्टनेस खूबसूरती में कहीं कमी नहीं है। मैं बता रहा हूँ मगर जो इमेजिन करते हैं
1: यूसुफ जी से तो मैं मिल चुकी,
0: बॉलीवुड वाले निकले यूसुफ भाई, मैं पहली बार देखा,
1: मैं तो देखा हुआ था,
0: बहुत ही जबरदस्त।
1: मैंने गाबा जी को बिल्कुल नहीं देखा था, एक जिनको देख के हम थोड़ा सा हम लोगों ने कहा अच्छा ये
0: यूसुफ भाई मुमताज भाई थे,
1: मुमताज जी थे। हाँ
0: मुमताज निकले
2: जी। पता क्या है, अगर सभी का नाम लेने लगे ना मेरे से कोई नाम हो जाए, सभी बहुत अच्छे बंदे थे जो मिले थे
0: और उसके अंदर मुगले आजम भी तो थे उसमें, अनारकली को चुनवा रहे थे खड़े हुए। चलिए भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया गाबा भाई, बहुत ही अच्छी बातें आपकी और शुक्रगुजारी भी आपकी बहुत अच्छी। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरीके से शुक्रगुजार होने की तौफीक अता फरमाए और हम दूसरों का शुक्रिया अदा करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया गाबा
2: भाई, बाकी बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं।
0: अच्छा इंशाल्लाह
2: ये चीज हो जाए, हाँ जी कामयाब, सभी सभी से मिलेंगे जी
0: इंशाल्लाह, जरूर जरूर, एक ग्रैंड होना चाहिए। बिल नाजिया जी पे कर देंगी जैसा मैंने बताया,
1: मैं तो कर दूंगी, डेफिनेटली पे कर दूंगी।
0: वेरी गुड,
1: आपको छोड़ के
2: क्रेडिट कार्ड लेके घूम रही हैं सर्वर भाई,
0: ऐसे वैसे थोड़ी भाई पर्स गिरा पड़ा, क्रेडिट कार्ड झक झक के कह रहे हैं मैडम मुझे इस्तेमाल करो, मुझे इस्तेमाल करो,
1: क्रेडिट कार्ड
0: नंबर नहीं आ रहा उनका,
1: गावा जी एक भी नहीं है, एक भी नहीं है,
0: पैसे भर रहे हैं अकाउंट से बाहर, अब
2: क्या कर रहे हैं। आपके पास डेबिट कार्ड पता कौन सा है,
1: कौन से वाला,
2: अंबानी साहब के पास है जो,
0: वाह वही तो छोड़ के जाते हैं इनके पास, ये इस्तेमाल करती है फिर वो इस्तेमाल करते हैं, पहले ये इस्तेमाल कर रही है।
2: थैंक यू,
0: ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इनकी
1: so
0: तारीफ
1: much.
0: तो पूरे दिन मैं कर सकता हूँ
1: और
0: बिना सांस लिए कर सकता
1: हूँ। पानी ले लीजिए साथ में,
0: यहाँ पर कुछ मैसेज,
1: क्या पता चिल्लू भर पानी,
0: और कॉलर को भी करेक्ट करेंगे। तौफीक भाई कहते हैं सर्वर एंड नाजिया अस्सलाम वालेकुम,
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: तौफीक अलवाकरा से वालेकुम अस्सलाम, एमबी भी हमारे साथ, यहाँ पर खूब सारी मैसेजेस वीडियोस और सलाम दुआ सभी को करते हुए सरवर जी, नाजिया को गुड आफ्टरनून, कदर आपको और तमाम लिसनर को एमबीबी सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वालेकुम सलाम,
1: ऐसा लग रहा है आप डांट रहे, सांस ले लीजिए पानी ले लीजिए,
0: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है यार नंबर, अच्छा यार ये नंबर चाहिए शाम भाई मुझे, और ये बाइक भी चाहिए जो आपके नंबर में, दोनों चीजें मेरी हुई।
1: अपनी बाइक से आपको
0: शुक्रगुजार हूँ मैं श्याम भाई का कि उन्होंने ये बाइक और ये नंबर मुझे दिया, श्याम भाई हमारे साथ सलाम करते हुए।
1: जो आपके पास रिक्शा है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है?
0: नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र है भाई, रोजी रोटी का इंतजाम कर रही है वो, बैटरी की गाड़ी हमारी। सरवर भाई और नादिया मैम टॉम एंड जेरी लग रहे हैं आप दोनों, ओसामा बिन शफीक। बिस्तर पे से जो उठ के आ जाते हैं सुबह सुबह चार पांच लोग, मेरा दिल करता की मैं जाऊँ और अपने हाथों से चाय बना के इनको पिलाऊं और इनकी आंखें खोलूं, वैसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नसीम भाई आप नहीं गए मिलने के लिए गाबा भाई एंड ऑल टीम से, आपका रब्ता नहीं हुआ अभी तक?
1: जुड़ेंगे
0: नहीं
1: हुआ। मैंने ये कुछ मॉर्निंग वाले थे लिसनर्स, ये सारे बड़े कंसिस्टेंट मॉर्निंग लिसनर्स थे।
0: अब जो ग्रैंड फिनाले होने जा रहा
1: है, जो पार्टी आपकी तरफ से होगी सरवर भाई की तरफ से, उसमें हम
0: बहुत बहुत शुक्रिया नादिया, आज मैं शुक्रिया अदा करता रहूंगा। तो क्या कहते हैं नसीम भाई, शुक्रगुजारी कितनी ज्यादा जरूरी है जिंदगी में, क्या आप दूसरों के शुक्रगुजार हैं और क्या आप शुक्रिया अदा करते हैं?
1: एक सवाल ये भी है कि मुंह से कहते हैं कि दिल से भी करते हैं?
0: नहीं नहीं बहुत जगह से करते हैं शुक्रगुजारी अभी
1: आप तो नहीं।
0: अच्छा नहीं, हाँ जी जेस्चर से भी किया जाती है।
1: सर मिर्जा देखा कितने में शुक्रगुजार
0: जी।

0: जैसे आपके कुछ बातें सुनकर भी मैं चाहते हुए शुक्रगुजारी करना पड़ता है कि शुक्रिया आपका।
1: अरे मेरा भाई कहता
2: कह रहे ना चाहते हुए भी
1: ना अच्छा ये कहा
2: लिहाज करना पड़ता है
1: ये तो बेइज्जती होगी भाई मैं तो शुक्रिया दे चलो खैर शुक्रिया तो कहा उन्होंने
2: शुक्रिया ले लिया बाकी तो एक तरह
1: अच्छा तो आप वाकई ऐसे हैं नसीम साहब कि आपको लगता है कि शुक्रगुजारी से काम भी बनता है और ये अदा करना जरूरी है थैंक यू कहना इज इम्पोर्टेंट
0: बिल्कुल शुक्रगुजारी करनी चाहिए अगर कोई किसी की मदद करे किसी भी तरह से
1: अच्छा
0: उसका शुक्र अदा करना चाहिए
1: आपको अपनी जिंदगी में कुछ इससे फायदे हुए
0: ये हमारा इस्लाम भी सिखाता है ना शुक्र
2: बिल्कुल बहुत अच्छी बात
1: क्या बात है क्या बात है बिल्कुल शुक्रगुजारी हर वक्त करनी चाहिए अल्लाह सुभान व तआला की और जितने भी लोग हमारे साथ हैं और हमारे लिए अपनी कहना चाहिए मोहब्बत बांटते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए आप चार पांच अर्ज काट दीजिए मैं तो कह रहा हूँ मीटरों में एक थान फाड़ दीजिए पूरा कोई मसला नहीं है जी इरशाद पढ़ रहे हैं अभी पीछे पर्ची गिर गई थी नीचे वो उठाने में टाइम लग गया जी
0: आज जिंदा है
1: कल
0: गुजर जाएंगे
1: अच्छा अभी हैं
2: कल गुजर जाएंगे
0: आज जिंदा है
1: कल गुजर जाएंगे
0: कौन जानता है
1: हम किधर
0: कब बिछड़ जाएंगे
1: आय हाय हाय हाय हाय आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी अनु मलिक वाला सुना दिया तो अच्छा रुको जरा सब्र करो
2: ये नहीं तो चैन ही नहीं है चुप रहिएगा बहुत देर तक
0: नाराज मत होना मेरी शरारतों से
1: ये मेरी तरफ से ना दिया आपको अच्छा लाए अच्छा मतलब अच्छा उठाया नाराज मत होना ना दिया मेरी शरारतों से
0: ये वो पल में जो ये वो पल है
1: इतना अच्छा उठाया मतलब यार फिर से एक बार नाराज मत होना नाजिया मेरी शरारतों से
0: ये वो पल है जो कल बहुत याद आए
1: हाय हाय हाय हाय हाय वाकई यार क्या बात है क्या कहने भाई सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कहीं मिलावट नहीं है अपना आदमी खुद लिख रहा है और सुना भी
2: मेरा
1: हाँ जैसे लिख रहे हैं उन्हीं को सुना भी रहे हैं आप देखिए वैसे सुन आप सोच रहे
2: हैं ऑडियंस
1: भी वैसे ही सरमर्दा नाजिया सबसे पहले ही आके इस्तेमाल करते हैं इन चेहरों का क्या बात है यार नसीम भाई
0: ये मेरा नहीं है
1: अच्छा
2: आपका नहीं है
1: वो जिनका था वो गुजर गए वो जो बता रहे थे ना मतलब शेर दे के गुजर गए नसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरीके से शुक्रिया अदा करते रहें जैसे आपने बताया हम सभी एक दूसरे का अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच
2: अल्लाह हाफिज़ एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर और चलिए इनसे बात करते हैं
1: गाना हो जाए इसी बात पे क्या कहती हैं
2: पहले गाना इस कॉल के बाद ले लेते हैं
1: बिल्कुल ले लेंगे आप क्या बात कर
3: अस्सलाम
1: वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु कौन है हमारे साथ
3: फजल भाई खिदमत हाजिर हैं
1: क्या बात
2: भाई
1: जल्दी से दो बिरयानी पकड़ के लाइए
2: जल्दी से दो बिजनेस बताइए
3: आपका टाइटल बहुत प्यारा है सबर के ये
1: प्यारा तो मैं हूँ फजल भाई
2: नहीं
3: सबर भी होना चाहिए
2: शुक्र के साथ
1: सबर होना चाहिए और वहीं सर्वर भी होना चाहिए
2: वो डाउन होना चाहिए
3: हर वो बंदे का जिसके साथ आपके कोई भी मामला हो चाहे पर्सनल हो चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो कुछ भी हो
1: क्या बात
2: लाइफ कोच
3: है उसका रीजन है सर देखिए शुक्र के साथ सबर को कॉम्बो करना पड़ेगा
2: एक के साथ
3: करना ही पड़ेगा हाँ वन प्लस वन लेना ही पड़ेगा क्योंकि देखिए शुक्र आपके अंदर कब आएगा मालूम जब आपके अंदर सबर आएगा अगर आप बेसब्रे हैं तो शुक्र नहीं आएगा
2: सरवर भाई बिल्कुल सही कहा आप बेसब्रे तो आप बहुत हैं अब आपको सबर भी इख्तियार करना है बहुत देर तक चुप रहना सब्र से बैठे रहिए
3: देखिए कोई भी काम हम कहते हैं ना कोई भी काम वक्त से पहले या वक्त के बाद नहीं होता तो उसका मतलब क्या है आपको सबर करना है उसको और जब हुआ जब वो काम हुआ तो आपने शुक्र भी करना है
2: बिल्कुल सही
3: ये जो कॉम्बो है ना ये जो कॉम्बो है सबर एंड शुक्र का ये आपको कुछ और दे ना दे जिंदगी में सुकून
1: से लंबा वाला अब खाली उससे हमसे नहीं ये बात ऐसी हुई है भाई क्या कहने यार
2: चलिए बहुत ही अच्छी बात थी फजल जी आपने जबरदस्त
1: फजल भाई हमेशा अच्छी बातें करते हैं
2: हमेशा ही
1: और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं मगर वक्त कम होता है इसलिए हम

0: ज्यादा सुन समझ नहीं पाते,
1: शॉर्ट में लेते हैं
0: जितनी बात है। अरे एलन बस एलन फजल साहब,
2: सब कॉलर को यही कहूंगा भाई, इसका कॉम्बो पकड़ लो, सब्र एंड शुक्र, दैट्स इट।
0: वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मैसेज फजल साहब,
1: जबरदस्त।
0: और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि इसको हम अपनी जिंदगी में,
1: आप तो खास करके सब्र थोड़ी देर अख्तियार कीजिए, सब्र का मतलब थोड़ा साइलेंस भी लीजिए बीच में।
0: बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया, जरा नवाजी का बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह। फिलहाल नाजिया फरहान और ऋतिक और अब है आपसे कुछ कह रहे हैं, ये भी कह रही
1: आपसे,
0: मैंने भी ये कहा था इनसे, समझी नहीं मेरी बात, मैं मोहतरमा से मुखातिब हूँ, कह रही ऐसा ना होए तेरी तेरे पैसे बड़ा ही अच्छा गाना है और ऐसे वक्त में ऐसे टाइम पे अच्छा और भी ज्यादा लगता है, तो एंजॉय कीजिए ट्रैक। इस वक्त सर्वर नादी आपके साथ हैं, ओनली ऑन FM 107, दिल से
1: देसी।

0: वाकई यार कम नहीं है भाई, सारी बातें सही है, मगर सेनोरिटा ने क्या क्या कह दिया इस गाने में समझ में नहीं आया नादिया।
1: सर भाई उसकी वजह ये थी कि आपका सर्वर डाउन रहा।
0: आदाब, बहुत शुक्रिया नादिया जरा नवाजी का। हाँ जी वेलकम बैक, अहलन व सहलन, आ गए हम दोनों आपकी खिदमत में हाजिर। और जहाँ बात चल रही है आज शुक्रगुजारी की, क्योंकि आज ऐसा खासम खास दिन है भाई कि दुनिया में मनाया जा रहा है शुक्रगुजार डे, वाकई वर्ल्ड ग्रेचिट्यूड डे। मगर उससे पहले आइए कुछ जान लेते हैं कि क्या कह रहा है वेदर का हाल। हाँ। और वेदर का हाल आपको बताने आ रही है साक शाक शार्क कहना चाहता था मैं, मगर थोड़ा आज थैंक यू डे नादिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
1: मैं आपके लिए

0: ब्यूटी कहने वाली थी, क्या मतलब होता है
1: शाउट।
0: अच्छा चलिए मौसम का हालचाल बता देते हैं। तो आज मौसम कैसा रहेगा, आज भी सनी रहेगा, गर्म रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा, मिनिमम रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस, बारिश के कोई दूर दूर तक चांसेस नहीं है। वहीं पर दिन में काफ़ी टेम्परेचर आपको ज़्यादा महसूस होगा, मे बी 45 डिग्री सेल्सियस तक, तो लिहाजा आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने हाइड्रेशन का खास ख्याल रखिए और शाम के वक्त थोड़ा सा मौसम बेहतर होगा। तो फिलहाल ह्यूमिडिटी देखी जाए तो इट्स 56% जो कि ठीक ठाक है, कि अभी ये वीक इसी तरह से मौसम रहेगा गर्म, तो बस अभी थोड़ा सा आपको हाइड्रेशन का ख्याल रखना है,
1: क्या अपना ख्याल रखना है। वेदर आज सनी रहने वाला है, ये 2.5 किलो का वेदर। QMD ने कहा है ये कि भाई 20 सितंबर से यानी कल से अल जुबरा सितारा जो है वो तो नजर तो आना शुरू हो गया है, और ये जो मौसम है अब जो ये आया है जुबरा के साथ साथ, और जुबरा का जो टाइम है वो हाँ। तकरीबन 13 दिनों तक का रहता है, 3 दिन का नहीं 13 दिनों तक का, और ये जो मौसम है या ये जो अब दिन आ रहे हैं ये सफरी मौसम का पहला मरहला भी कहलाते हैं, यहाँ से शुरू हो जाता है। और महकमे ने बताया है कि अल जुबरा जो है वो खजा के मौसम का दूसरा सितारा है और ये तकरीबन 13 दिन तक नजर आता है जैसे मैंने बताया। और इस दौर में रातें धीरे धीरे ठंडी होना शुरू हो जाती हैं जबकि दिन अभी भी गर्म रहते हैं जो हम देख रहे हैं, बट शुमारी हवाएं ज्यादा चलती हैं और मौसम में तब्दीली महसूस होने लगती है जो हमें हो रही है, जो दिन के वक्त हमें हो रही है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि ये जो मौसम अब बदल रहा है। और वो ये QMD ने इसके अलावा ये भी बताया है के सरसे में बारिश के कुछ इम्कान भी पैदा होते हैं। नाजिया कब तक इंतजार करेंगे,
0: आज के तो कोई चांस नहीं है और अभी कल भी ऐसा सच बहुत नहीं है। हाँ वेंसडे में थोड़ा सा क्लाउडी है।
1: एक चीज और है नाजिया कि इसमें दिन और रात बिल्कुल बराबरी पे आ जाते हैं, मतलब आधा आधा दिन जो है वो तकसीम हो जाता है इस दौरान। हाँ। और ये मौसम जो है ये फार्मिंग और एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन वगैरह के लिए भी बहुत मुनासिब समझा जाता है, और इस दौरान खजूर के जो दरख्त वगैरह हैं उनको भी बोया जाता है गल्फ में, और मुख्तलिफ सब्जियां जो हैं वो भी उगाई जाती है। नाजी आपके लिए अच्छी
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा। और इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर यहाँ जुड़ गए हैं, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो
1: जैज है हमारे साथ।
2: जी भाई
1: कैसे हैं जैज भाई, खैरियत से?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई।
1: कैसा रहा अभी तक का दिन आपका, कैसा गुजरा?
2: भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बहुत बढ़िया जाता है, हर दिन ही बढ़िया जाता है।
1: ये बात ये है, देखिए
0: कल आपकी बेटी की बर्थडे कैसे गुजरी,
1: शुक्रगुजारी का। हाँ ये भी अच्छा पॉइंट है यार, मैं तो भूल गया।
2: अल्हम्दुलिल्लाह बर्थडे भी बढ़िया गुजरा, रिलेटिव से छोटा मोटा फंक्शन था, कोई ज्यादा नहीं।
1: अच्छा तो हम तो नहीं थे,
2: हम नहीं
1: इतने हल्के से बोले,
2: हम नहीं है ना,
1: छोटा और मोटा भी बोला आपने। नहीं नहीं तो हम क्यों नहीं थे
2: सरवर भाई, सरवर भाई नहीं नहीं उधर नहीं जाना भाई,
1: तो हमें क्यों नहीं बुलाया आपने, ऐसा हुआ क्यों?
2: मैंने तो बोला था भाई, मैंने तो बोला था बताओ किधर आना है, मैं आ जाता हूँ भाई।
1: लजी ऐसा बोला था,
0: पता नहीं।
1: चलिए यार आपके बहुत शुक्र गुजार
2: हैं। नाजिया भाजी आपने खुद कहा था, वो तो खुद कह रहा है कि बताओ किधर आना है, आपने सुना था, आपने बोला भी था।
1: नाजिया भाजी को ना बता रही तुम सही
0: मैं क्यों बताऊँ, आप दोनों का मसला है, मैं क्यों बताऊँ, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता।
2: मतलब
1: मसला हमारा कर दिया, मतलब मैं नहीं ले रहा ये मसला, आप ही रखिए अपने पास में,
0: ये मतला उठा रहे हैं आप ही रखिए मसला छोड़ के।
1: जैस भाई क्या शुक्रगुजारी जिंदगी के लिए जरूरी है,
2: सबसे ज्यादा जरूरी है भाई, हर हाल में जरूरी।
1: वाह वाह वाह, मेरे ख्याल में तो अभी तक सबका यही कहना है कि भाई जरूरी है, कोई इस बात को मना नहीं कर रहा। नादिया आप ही मुझे लगता है शो के आखिर में कहेंगी कि जरूरी नहीं।
0: नहीं नहीं मैं तो खुद फायदे लिए बैठी हूँ बताने
1: क्या बात है, क्या बात है। चलिए साहब जैस साहब और भी कुछ शेयर करना चाहते हैं आपकी,
0: आपका नाम वैसे क्या है आप? नहीं मैं इनका नाम जानना चाहती हूँ,
1: जैसेब या शाहजेब? नहीं जैस कहाँ से होगा, अब्बा सीधा कर देते दो दिन में, जैस घर में नाम दे दिया जाता तो आप।
0: नहीं क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम
1: जाजेब
2: खान,
1: जासिम खान
2: जी।
1: अच्छा वो जसीम क्या हैदराबाद से हैं आप क्या?
2: नहीं नहीं भाई।
1: हाँ फिर
2: मुरादाबाद से भाई।
1: अच्छा अच्छा
0: है, आप
1: क्योंकि ये नवीद जसीम ये हमारे हैदराबाद की तरफ है, वरना हमारे यहाँ जो है इसको जरा सा ऊंचा करके लाउड नवीद एंड जासिम, तो मगर जासिम कह रहे हैं तो इट्स फाइन। तो जासिम
2: जसीम जो है ना, जसीम तो उधर है, जासिम जो है ना ज्यादातर इधर ही चलता है, जासिम इधर ही बोलते हैं, उधर अपनी साइड में नहीं बोलते।
1: सही सही सही।

0: बड़े भाई हैं,
1: बड़े हैं
2: कबीर भाई, बड़े हैं या मैं बड़ा भाई हूँ? कौन दादा अजीज है आज ये बता दो आप, खत्म करो। कबीर भाई अजीज है या मैं
0: भाई? दोनों मेरी
1: वो कह रहे नहीं, वो कह रहे कि दोनों भाई एक तरफ, बहन नाजिया बहन एक तरफ, वो सबसे अजीज है।
2: काला चश्मा नजरों, अभी वो आंखों से मिला रहे थे, कह रहे थे दोनों मेरी आंखों के ताने। अरे मेरा भाई, मेरा भाई कैसा,
1: आप तो पलकों पे बैठना आपका मुश्किल है, सर पे बैठिए आप।
2: वो भी मैं नहीं बैठा रहा, कौन बैठा रहा सर पे, क्या बातें कर रही नाजिया जी।
1: नहीं आंखें तो मैंने कहा झुकी झुकी इनकी लगेंगी, बैठा लेंगे।
0: उठाने वाला होना चाहिए नाजिया बाजी, उठाने वाला
2: नहीं, बिल्कुल नाजिया उठाने वाला होना चाहिए।
1: मैं सर से उठाऊंगी इनको।
2: चलिए भाई जैस भाई, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें हमेशा के लिए, और हमेशा की तरह ऐसी आप करते रहें, आप खुश रहें, और इसी तरह आपकी कल जो आपने खुशी देखी आप आगे भी इंशाल्लाह ताला देखते रहें, और शुक्रगुजार रही इंशाल्लाह हम सब के अंदर अल्लाह ताला भर भर के डाल दी। थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू सो मच।
2: बना दिया यहाँ पर कुछ मैसेजेस ले लेते हैं
1: प्लीज,
2: और वरना ऐसा होगा कि नाराजगी ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई और नाजिया जी।
1: वालेकुम अस्सलाम।
2: मैं 17 आलम ये कहना चाहते हैं या
1: सरवर नाजिया जी? मैं 17 आलम
2: है ना।
1: हाँ
2: तो ये
1: सदरी आलम
2: 17 लिखा है मेरे ख्याल में,
1: सदरी आलम।
2: ये 17 आलम भाई एक साथ हैं क्या लिखना चाहते मैसेज आया, यही बहुत है। अस्सलाम वालेकुम सरवर जी, कैसे हैं आप? सर जी आप ऐसा करें कि सारे लिसनर्स का एक ग्रुप बना लें, इस ग्रुप में सारे लिसनर्स और उनके फ्रेंड्स भी शामिल हों, फिर इसी ग्रुप से के जरिए प्रोग्राम्स भी अरेंज किए जा सकें और सब लोग पार्टिसिपेट भी कर सकें। क्या बात है, और आखिर में 28 तारीख को जब तनख्वाह आए तो नाजिया ये तनख्वाह भी आप इधर पहुंचा दिया करें। अरबाज खान हमारे साथ, क्या बात है अरबाज भाई, कपड़े नहीं अच्छा है ओके,
1: कपड़े नहीं,
2: हाँ नहीं वो बॉडी बिल्डर है गालबन अच्छा। तो ओके ते अच्छा, यहाँ पर कोई आ गया है हमारे साथ, क्या नाम है इनका, वफा खान, मैसेज पढ़ूं तो समझ में आएगा कि है या ही मतलब अच्छा। समझ नहीं। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई एंड नाजिया जी।
1: वालेकुम अस्सलाम।
2: मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ और इस वक्त पे ही क्यों आता है,
1: ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है सर भाई, आप इस वक्त क्यों आते हैं?
2: वफा नाराज़ाई तुझे हर जाए, यार ये हम कैसे बताएंगे वफा खान?
1: नहीं वो ये कहते हैं आप रात के,
2: बादशाह खान
1: आप सुबह के 3 बजे क्यों नहीं आते?
2: मैं तो आई ना हूँ यार, और कितना आऊंगा,
1: कब आ रहे हैं आप सुबह के?
2: नाजिया कम ऑन, अच्छा हमारे साथ कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई और नाजिया मैम, आई एम हनीफ फ्रॉम कानपुर। पहले जब मैं सरवर भाई को सुनता था तो लगता था कि भाई स्लिम ट्रिम होंगे, मगर जब 107 के इंस्टाग्राम पेज पे देखा तो वहाँ वहम टूट गया। खुश हो रही है, कम इसका नाम तो नाम तो लिख देते, कंपनी का नाम लिख।
1: कभी कभी होता है ना आप किसी की आवाज सुन के आप आइडिया ले रहे होते कि शायद ऐसा होगा, फिर वो कुछ और तरह से।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
1: वालेकुम सलाम,
0: कैसे हालत? طيب
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: अली वजदाद, अली वजदाद
0: सिंगर, अली वजदाद
2: सिंगर, आर यू सिंगर?
1: सिंगर, बॉलीवुड फैन, बॉलीवुड फैन आई रिमेंबर।
2: ओके कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर अस मिस्टर अली?
0: هذا
2: اوكي
0: نعم
2: وان سونغ فور اس
0: اوكي يعني اي موفي نو بروبلم
2: نو بروبلم اني
0: جانم دیکھ لو مٹ گئی دوریاں میں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں جانم ہر کسی مدد مجبوریاں
2: मजबूरियां ही हो गई वाकई,
0: मजबूर सिंगर।
2: ला ला ला ला, वेरी गुड मिस्टर अली, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गुड एंड होप यू आर आल्सो गुड मिस्टर अली।
0: هذا من نازيه ولا
2: هذا نازيه نازيه نازيه
0: انت يور نيم
2: نازيه
1: نازيه
2: مي مي مي
1: your name
0: you hero
1: hero
2: محمد سرور
0: محمد. انا دائما اسوي تليفون يعني دائما مشغول ما يحصل خط يا اخي
2: maybe
0: ثلاثة شهر والله
2: because the line is always busy and whenever we take the call it's random so we don't know that we which call is going
0: والله.
2: to connect
0: انا بي يعني اتصل بروجرام بس ما يحصل خط انا جي زعلان وايد والله ما يحصل خط اي والله دائما كول بيزي بيزي بيزي الحين 3 شهور الحين حصل خط
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله وي ويل

0: to connect to you, and you can message us also on WhatsApp. So we can call you.
1: بس
2: في واحد سؤال. هذا مسج سمسم نمبر ولا نمبر ثاني؟
0: لا نمبر في 666-22-107 666 2-2 واحد صفر سبا
2: 666-22
0: واحد صفر سبعة
2: واحد صفر سبعة. أيوة أنا أشوف دائما في مسج أنا بيطرش مسج بس ما أعرف أي رقم.
0: Okay. Inshallah, Tala, Hadi Rakam, you can send the message and we will call you and we will read the message also.
1: Inshallah.
0: Shukran, Ya Tikala.
1: Shukran,
2: Allah Yatikum Al Afiya.
0: Jazakum Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, देखिए ऐसा हो रहा है कि आशिकी में लोग
1: भाई आपने मैंडेटरी ब्रेक भी लेना
0: है. अच्छा ओ ये मैं भूल गया था. अच्छा आपने शुक्रगुजारी में अभी पता चला
1: कि
0: गद्दी ही उड़ जाती और आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं नादिया जी. ए छोटा सा ब्रेक भाई यूं गए और यूं वापस आए.

0: रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा पल, कोई ऐसा लम्हा नहीं जाता ना जहाँ शुक्रगुजार नहीं शामिल होता है। लाजिम शुक्रगुजार शामिल होना ही होना है, बिकॉज उसके बिना ना जिंदगी अधूरी है बिना शुक्र के। अगर हम जहाँ खड़े हैं और हम वहाँ जरा नीचे देखें तो अल्लाह का कितना बड़ा शुक्र है कि हम कहाँ खड़े हैं।
1: सर भाई आप कहाँ खड़े
0: आप कहाँ खड़े सरोवर भाई तो बैठे हुए माशाल्लाह।
1: ये कह रहे हैं कि मैं तो नाले के पास खड़ा हुआ, मैंने देखा नीचे
2: गैस बनाता हूँ।
0: जी जी, और तमाम हमारे लिसनर्स आए, आप लोगों को कैसा लगा?
1: हाँ बहुत अच्छा लगा, हमने देखा और हमें
2: अच्छा वीडियो। ओहो वेरी गुड भाई, हमें तो ये था कि ये बना कौन रहा है वीडियो, सारे लोग दिख रहे हैं, पर आखिर में आप एकदम सामने आए और हमारी आंखें चौंधी आ गई। हमने कहा
1: कितने लोग थे, आप लोग कितने थे टोटल?
2: 15-20 लोग तो थे कम से कम।
1: अच्छा इतने सारे थे?
0: 7 जन थे मेरे ख्याल से,
1: 6-7 ही थे। अभी आपको शहजादा जी, अभी आपको काम करना है और भी ज्यादा लोग बढ़ाने हैं इसमें ग्रुप में, ठीक है? जो और लिसनर्स हैं उन्हें भी ऐड करते जाइए, करते जाइए।
0: दौर की उसमें जो मैंने टी-शर्ट पहना था ना, जो टी-शर्ट मैंने पहना था वो चीज आपने गौर की है? वो टी शर्ट है 2019 में जब हमारा आइडियल स्कूल में टूर्नामेंट हुआ था ना, तो वही टी शर्ट है, वही मैंने बड़ी संभाल के रखता हूँ। अभी आज कैलकुलेशन करने कितने साल हो गए।
1: कितनी बड़ी बात है कि शहजादा जी आप उसी में फिट हो पा रहे हैं। माशाल्लाह देखिए,
2: हाँ ये बहुत अच्छी बात है।
1: बड़ी बात है कि आपने ना वजन बढ़ाया।
2: 2017 वाली तो मेरे हाथ में आ रही है टी शर्ट ने खाली।
0: 2019 में जो टी शर्ट मिली वही मैं निकाल के उसी टाइम आया। मैं खास मोमेंट पे निकालता हूँ वो टी शर्ट, बड़ी संभाल के रखिए, क्योंकि मुझे ना एक विरासत में एक बहुत बेहतरीन तोहफा मिला है 107 की तरफ से।
2: तो हम
0: हमेशा याद है, आप ना बार बार गौर करो उसको। और अभी मैंने रिसेंटली एक ना वीडियो भेजा है।
1: अच्छा।
0: और एक हमारे यूपी के एक शायर है, जरा जरूर आप उसको देखिए, वो उनका शायराना अंदाज। सरवर भाई आप तो बहुत देख के बहुत हो गए, और नाजिया मैम आप तो हंसते हंसते आपका पेट दुखेगा देखना।
2: चलिए बिल्कुल, नाजिया को तकलीफ होगी इस बात से इंशाल्लाह ताला, तो मैं जरूर देखूंगा ये वीडियो और उनको भी दिखाऊंगा। हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा तो कुछ तो फायदा हो वीडियो का। क्या बात है भाई, तो शुक्रगुजारी जरूरी है।
1: इस शख्स को ना पेट में दर्द कराने में खुशी मिल रही है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया शेखू भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू।
2: अल्लाह हाफिज। यार यहाँ पर एक दो मैसेज बहुत जरूरी लेने हैं वरना डांट पड़ जाएगी।
1: हमारे पास
2: कॉल भी लेंगे हम,
1: तो हम ले लेते हैं क्या?
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड आफ्टरनून नाजी जी और सरवर भाई, कैसे हैं आप दोनों? यूसुफ भाई हैं यहाँ पर सबको विश करते हुए, खूब सारे गुलदस्ते दिल, हैप्पी मंडे इवनिंग। रियली मैं सभी से मिलके मुझे भी बहुत खुशी हुई। सरवर भाई कल भी आपने कहा था कि कौन सी फिल्म का क्लाइमेक्स हुआ था, मैं नहीं समझ पाया था, सॉरी आप नहीं समझे तो अच्छा है।
1: मैं बता देती हूँ, मूवी थी खिलाड़ी, खिलाड़ी का एक
2: अनदर थिंग। प्लीज प्लीज जस्ट गिव सम मूवमेंट टू द लिसनर व्हेन दे कॉल, फर्स्ट लिसन केयरफुली। नादिया देखिए आप उनके बात नहीं करने देते, यूसुफ भाई कह रहे हैं, तो यूसुफ भाई आप तो कॉल ही नहीं करते, वो तो हमसे बात भी कर रहे हैं, तफरी भी कर रहे हैं,
1: आपको बोल रहे
2: हैं, सॉरी टू से और काइंडली रिक्वेस्ट प्लीज डोंट माइंड। नहीं आपकी ऐसी बात है ही नहीं कि हम माइंड करें यार, यूसुफ
1: माइंड ही नहीं
2: इन पे करने के लिए, होना भी तो चाहिए यूसुफ भाई, ये बात भी सही है। बहरहाल आप हमें बड़े अच्छे लगे देख के, हमें एक विलन की याद आ गई, वही हम जिक्र कर रहे थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं।
1: जी नहीं मैं मिल चुकी हूँ।
2: अच्छा मैं
1: जी
2: मैं।
1: जो है वो विलन की याद नहीं, हीरो की याद दिलाता
2: है। मतलब बड़े यार, शाहरुख खान इज आल्सो अ गुड विलन,
1: एक्टर।
2: हाँ ठीक है, मगर विलन बनते तो नहीं है यार। अस्सलाम वालेकुम सरोवर भाई, नाजिया मैम कैसे हैं आप दोनों? गुड आफ्टरनून, नाइस शो। नाजिया मैम सरोवर भाई दोनों का शुक्रगुजार, आप दोनों इतने अच्छे अच्छे लिसनर से मुलाकात करवाई, आप दोनों को तहे दिल से शुक्रिया। सरोवर भाई फ्राइडे के दिन एक मीटिंग भी हुआ है, शहजादा सलीम भाई बोल रहे थे, सरोवर भाई का एक टीम, नाजिया मैम का एक टीम, एक दिन क्रिकेट मैच होगा।
1: वेरी गुड, मैं तो अपनी टीम में चुन चुन के अच्छे प्लेयर्स रखूंगी।
2: मैं तो भाई
1: सर्वे हमारे सारे कॉलर बहुत देर से
2: कॉलर छोड़ गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू, एक मुख्तसर सी बात बोलना चाहूंगा।
2: हैं कौन हमारे साथ?
1: ये तो फजल जी लग रहे हैं।
3: माशाल्लाह पहचान लिया आपने, तो एक मुख्तसर सी बात बोलना चाहूंगा
1: जी, जी।
3: अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में शुक्र और सब्र का कॉम्बो आ जाए तो आप बराए करम मेहरबानी फजर की अजान से आधा घंटा पहले उठ जाएं, और उठ के क्या करना है आपको मालूम है।
1: सही, उन्होंने प्रैक्टिकल आपको दे दिया
3: और आप आपके अंदर इंशाल्लाह सब्र भी आ जाएगा, शुक्र भी आ जाएगा। मैं तहज्जुद सलात तहज्जुद की बात कर रहा हूँ।
2: अल्लाह ताला आपको खुश रखे भाई, बहुत अच्छी बात।
1: और सरवर भाई और हम सबको तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन।
2: तौफीक फ्रॉम अल्लाह
3: का हल है वहाँ पे, आपका पर्सनल हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, हर हर मसले का वहाँ हल है।
1: बहुत ही अच्छी बात, बिल्कुल सही।
3: देखिए इंशाल्लाह ना आपका एक लाख रियाल खर्च होगा ना एक रियाल खर्च होगा, सिर्फ वक्त लगाना है बस। और आपको कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं है, बोलते ना वर्क फ्रॉम होम, ये वर्क फ्रॉम होम।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और सुकून भी मिलेगा, और जब सुकून होगा तो जाहिर है आप जो है ज्यादा ग्रेटफुल भी होते हैं।
3: और एक मैं कैटलिस्ट ऐड कर देता हूँ कि आपको अगर खुद की रिएक्शन चाहिए तो आप सजदे में जाइए और ऐसे रोइए, ऐसे रोइए, ऐसे रोइए कि आपकी मौत आपके सामने खड़ी है। आप ऐसे रो के अल्लाह ताला से जो मांगे इंशाल्लाह आपको मिलेगा।
1: इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात कही, एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आप हमारे साथ वापस जुड़े ये बात कहने के लिए, और इतना अच्छा पैगाम, इतना अच्छा मैसेज आपने हमारे लिए पहुंचाया। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू,
2: मोस्ट वेलकम भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
1: एक और कॉलर,
2: कॉलर अभी ले रहे हैं, एक मैसेज और ले लेते हैं बीच में। यहाँ पर कहते हैं आओ टू बोथ ऑफ यू, आओ के सलाम का भी शॉर्ट फॉर्म आ गया भाई। आई रियली थैंक यू टुडे कॉज समवन सेंड मी दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान, और यहाँ पर कुछ उनको कुछ कुकीज वगैरह हैं गालबन पाकिस्तान से, कुछ आइटम आया है जो होते हैं छोटी छोटी चीजें। अब्दुल अहद हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम सर भाई, कैसे हैं आप?
1: वालेकुम अस्सलाम।
2: नहीं
1: क्या
2: उनका बात सुनिएगा आप। वो यूसुफ भाई ने जो अभी कहा कि उसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं यूसुफ भाई से, खैर मैं बिल्कुल यूसुफ भाई तक आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। वो कहते हैं कि भाई हमारा प्रोग्राम सभी को पसंद है और इसी तरीके से चलना चाहिए, इसमें कोई चेंज मत करिएगा। वो सोच रहे हैं कोई चेंज आने वाला है जो हम मैसेज पढ़ रहे थे।
1: अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गया।
2: सरवर भाई के सामने, सरवर भाई कबीर भाई के सामने, कबीर भाई पॉलिटिक्स अग्रीड करते हैं, ग्रुप बनाना चाहिए, पता चल रहा है जीसीसी की इंग्लिश। सरवर भाई की
1: क्या कहना चाहते हैं सर, मेरे तो समझ से बाहर हो गया
2: ये लिखा हुआ।
1: अच्छा चलिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए। हेलो
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
2: व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: जुल्कर्ण जी आप कहां-कहां चले जाते हैं?
4: माशाल्लाह नहीं, आपके लिसनर बड़े अच्छे हैं और मोर देन हाफ एन आवर आपकी कॉल नहीं मिल रही थी, अच्छी बात है।
2: जुल्कर्नैन साहब, क्या आप भी इस मीटिंग में मौजूद थे जो अभी हुई है पिछले दिनों लिसनर्स वाली?
4: मैं भी मौजूद था।
1: मुझे नहीं दिखा यार,
2: हमने देखे थे कल, हम
1: तो नहीं पहचान पाए थे, हमको दिखाइए वापस से।
2: मुझे याद आ रहा था इसी बारे में कि हमने देखा है दुर्गन्नन साहब
1: को। आप पहले भी देख चुके हैं क्या?
2: कैसी रही आपकी मीट?
4: हाँ अच्छी रही, बल्कि हम सैफ साहब से भी मुलाकात हुई
2: जी, पता चला मुझे जब आप लोग नमाज अदा करने गए थे।
4: सैफ साहब आए नहीं थे, हम गए थे उनके पास।
1: अच्छा आप उनके पास गए थे?
4: हम उनके पास गए थे क्योंकि वहाँ करीबी था पता चला, तो उनसे भी मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, उन्होंने हमसे बड़ा प्यार मोहब्बत का बर्ताव किया देखा। खैर इनसे सरवर साहब से भी मुलाकात और यहाँ तो होती रहती है, इनसे तो गले मिले थे, इन्होंने अपने परों तले में छुपा लिया था।
2: वाह वाह वाह वाह, क्या शेर सुनाया भाई।
1: सरवर भाई आप कब कब मिल रहे हैं लोगों से, कहाँ कहाँ जा जाके?
2: नहीं यहाँ तशरीफ लाए थे जुल्कर्नैन साहब, तो मुलाकात दो तीन बार हो चुकी है मेरी, एक ही बार नहीं दो तीन बार हो चुकी है। तो क्या कहते हैं जी?
4: वैसे तो आपका वो शुक्र गुजारी का आज लम्हा चल रहा है, और आपने जब शुक्र किया था वो वाक्य आपने नहीं सुनाया?
2: तो आप सुना दीजिए।
4: जब आप, हाँ तो वो जब स्कूल में आपके टीचर ने कहा था सर्वर कॉपी निकाल काम चेक करूं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, आपने कहा सर जी आज तो काम मुकम्मल कर ही लिया, मैंने दिखाओ ये क्या कॉपी में देखा था इसमें तो कुछ भी नहीं है, सर जी सवाल पढ़कर मन ही मन में जवाब लिखा है, यकीन करें सारी एक्सरसाइज करनी है। अब सुनते जाए अब लिखने ही वाला था कि आपने बुला लिया। ओ नहीं नहीं नहीं, ये तेरा नया बहाना है मार खाने के लिए, तैयार हो जा, एक दो तीन चार, कैसी रीट हड्डी हंसता जा रहा है, सर जी ख्याल करें हड्डी में कैल्शियम पानी है टूट ना जाए। ओहो ये कब पढ़ लिया तूने? वो मम्मी के साथ डॉक्टर के पास गया था, इसने कहा अपना वजन कम कर, हड्डियां लोहे की नहीं बनी है। अरे अरे सर वह इतनी बातें करने के बजाय कुछ पढ़ ले तो मारना ही ना पड़े सर जी, क्या बताऊं, पढ़ाई ने मेरा हाल ये हाल कर दिया है। जैसे ही पढ़ने बैठू

0: भूख लग जाती है, खाने के बाद नींद आ जाती है, इस वजह से वजन बढ़ गया है। उस्ताद बहुत बातें आती हैं, तुझे मजीद मरम्मत की जरूरत है, चल हाथ निकाल। पीरियड खत्म होने की घंटी बजी ना सर जी, आज का कार्यक्रम खत्म, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।
1: यार क्या पूरी नज्म लिख के लाया भाई, क्या बात है यार। यार ये मुझे सेंड करिएगा और
2: मुझे भी सेंड कीजिएगा, मैं आपके दोस्तों तक पहुंचा दूं।
1: नहीं मैं खुद पहुंचाऊंगा साहब,
2: मुझे लगता है ये मैं ही सुनाऊं
1: अपना भाई, तो इतनी मेहनत लगी होगी लिख के लाए और मुझे डेडिकेट करिए यार। यार मैं आपका शुक्रगुजार हूँ दुकान साहब के, आप आए और तशरीफ लाए और ये वाकई मैं
0: अदा किया कि बच गई,
1: मेरे दिल तक पहुंच गई मैं, ये वाकई
2: नहीं आपकी दिलो दिमाग की घंटी बजी, सही बजी घंटी।
1: नहीं यार ये वाकई मैं मुझे वाकई खुशी हुई, आप इसको सेंड कीजिएगा।
2: और ये मुझे इसलिए खुशी हुई कि ये किस्सा मिलता जुलता है सर्विस की बिल्कुल रियल लाइफ से।
1: नहीं और जो मेरा मिजाज है एक्चुअली, तो इसी तरीके की चीजें हम हमारे लिए लिसनर ला भी सकते हैं और मुझे खुशी भी होती है
2: कि आपकी सच्चाई धीरे धीरे बाहर तो आ रही है।
1: अभी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। तो पर्सनल लाइफ में क्या कहते हैं दुलखैर नैन भाई, कितने शुक्रगुजार हैं आप घर वालों के, अहलिया के, बच्चों के, अल्लाह सुभान व तआला के, तो हम सभी हैं और कितना होना चाहिए
2: माँ बाप।
0: वो अच्छा ही आपने बात की, हम उनके शुक्रगुजार हैं, वो हमारे शुक्रगुजार नहीं है, वो कहते हैं भाई जो हुआ है ये तो इसमें
1: तुम्हारा तो फर्ज है।
0: हाँ तुम्हारा तो फर्ज है हम पे तुम्हारा तो फर्ज है और बहुत सारा कर्ज है, वो अभी आपने अदा करना है,
1: और जो अल्लाह ने दिया वो हमने खाया, किसी ने लाके थोड़ी दिया
0: हाँ, ये बात सही है।
1: इस पे भी एक नज्म लिखिएगा जरूर बेचारा पापा उसका उनवान ही होना चाहिए बेचारा पापा।
2: पापा क्या अब्बा?
1: पापा
2: अच्छा। पापा से कोई और पापा ना ले ले
0: ये बात
1: जी दुलकनन साहब,
0: तो बाकी
1: बहुत शुक्रिया भाई।
0: ये जो आपकी बातें या आपके साथ ही जो प्रोग्राम में आप दोनों के साथ हैं, हम लोगों ने मिलके काफी इंजॉय किया और इसी की वजह से कभी कभी तहरीक या ऐसी होती है कि बस बैठी मेरे जेन में आया
1: तो मैं बहुत जबरदस्त
2: बहुत
1: रियली मुझे बहुत अच्छा लगा। और किसी ने पहली बार इस तरीके से मुझे, जैसा मैं हूँ, मेरा कैरेक्टर है, जैसा मेरा ह्यूमर है, उस हिसाब से ऐसी चीज जचती भी है, ये आप मुझे जरूर सेंड कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया,
2: आपकी सच्चाई भी,
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच,
2: थैंक यू,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है यार, देखिए अच्छों अच्छों को बिगाड़ दिया मैंने, दुलकरनैन साहब कितनी बातें मतलब वैसी करते थे, आज मैंने इनको मजाक में लगा दिया यार, थैंक यू सो मच सरवर मिर्जा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कुछ मैसेज कर लेते हैं, बिल्कुल हम कॉल अभी कनेक्ट कर रहे हैं, थोड़े से मैसेजेस यहाँ पर,
2: दो और कॉल, एक और कॉल भी आ रही है।
1: अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई और नाजिया जी, क्या हाल है आप दोनों का, अल्लाह खुश रखे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अननोन ही नाम है यार, नाम तो लिख देते भाई, हम आपका नाम भी ले लेते। कहते हैं 2.7 बस ये लिखा है यहाँ पर, सलमान है हमारे साथ, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी मैसेज भी पढ़ रहा हूँ। और आयशा आ गई है, वही अपनी छोटी हुई
2: नाइस, अब्बा
1: ने बना के भेजा है उनका, ये इकराम हसन साहब ने
2: फ्लायर है।
1: और अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा लग रहा है शो सुनकर, कौन है?
2: थैंक यू जी, बहुत
1: रहमान है हमारे साथ और बड़े ही चॉकलेटी से हैं रहमान भाई, एलन व सैलन। नाजिया जी
2: कोई बहुत देर से हमारे साथ जुड़ा हुआ है,
1: कनेक्टेड है, देखिए
2: तो वो बेचारी का इतनी देर से वेट कर रहा है ना,
1: वेट कितना है मेरे ख्याल में 70-77 तो होगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम,
2: 1965 में ग्रेटिट्यूड डे जो था वो आया।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, कौन है हमारे साथ?
2: आरिफ अंसारी।
1: कैसे आरिफ भाई?
3: अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, आप दोनों बताइए।
2: अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैरियत से। तो आज हमारा चल रहा है वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे, क्या कहना चाहेंगे? आज किसे थैंक यू बोलना चाहते हैं?
1: अब मेरे ख्याल में मशीन चल रही है, साथ ही साथ सिलाई चल रही है आरिफ भाई, सही कह रहा हूँ? पैर वाली मशीन है, पैर वाली
3: भाई, सिलाई मशीन नहीं है आपके लिए, क्या वो होता है ना, क्रेन लेके आ रहा हूँ,
1: क्रेन लेकर आ रहा हूँ
2: आपके लिए,
1: मेरे लिए कहाँ लेके जाना है भाई,
2: पिक एंड ड्रॉप सर,
3: लेके जाना है आपको, फिर बैठ के खाएंगे
1: क्या कह रहे भाई, मैंने पकड़ा अच्छा आरिफ भाई, वैसे दांत दो मेरी अकल की, कह रहे नहीं दूंगा,
2: कह रहे दांत दूंगा, दांत दूंगा, दांत दूंगा।
1: चलिए साहब आरिफ भाई, तो क्या कहते हैं शुक्रगुजारी के हवाले से?
3: शुक्रगुजारी के हवाले से वैसे तो शुक्रगुजार आप लोगों को, मैं हम लोग पूरा दिन का स्ट्रेस निकल जाता है, जितना टॉक्सिक जॉब है उस हिसाब से तो जितना भी थैंक यू आप लोगों को बोला जाए बहुत कम है।
2: हाय थैंक यू जी, हमें थैंक यू बोलना चाहिए आपका,
3: और
2: अच्छा अच्छा
3: कुछ भी छोटा मोटा कोई भी गार्ड हो ना कुछ ना भी करे बस वो हाथ मिला देता हूँ लास्ट आने का तुम थैंक यू बोल के आता
2: हूँ नाइस देखो हर एक से हाथ मिलाना है स्माइल करना और थैंक यू बोल के ही आना सर्वर भाई आखिर में कुछ याद कुछ आप भी याद कर लीजिए और लिख लीजिएगा इस बार किताब ऐसे दिमाग में याद करके मत रखिएगा सब कुछ
3: वैसे डेली जा जा के हम लोग कभी जान पहचान हो गया है पर जितने होते हैं रूटली बात करते हैं मैं खुद कहता हूँ हम लोग के साथ भी होता है पर अब उनके साथ भी हम लोग देखते हैं तो कोई तो उनके साथ अच्छा से थोड़ा बात कर ले या उनके साथ जो वो लोग काम कर रहे हैं उसके हवाले से उनको थैंक यू बोल सके
2: सही कहा आपने जब हम लोग इतना काम कर रहे होते हैं कोई बीच में आके कम से कम सिर्फ ये पूछ ले कि आप कैसे हैं और ठीक हैं थोड़ी सी खैरियत ले ली कर ली हालांकि बहुत ही कम टाइम लगता है इन चीज़ों में लेकिन हम लोग का दिल कितना अच्छा हो जाता है
3: उसमें से दो मिनट उन लोगों को दे देते हूँ तो उनका भी थोड़ा हो जाता होना क्या कोई तो है हाल चाल पूछ गया थोड़ा मेरा
2: सही बहुत ही अच्छी बात कही आपने और हम सबको ऐसा करना चाहिए थोड़ा सा टाइम निकाल के जो लोग कर रहे हैं हमारी हेल्प जो हमारे आसपास लोग हैं उनको थोड़ा सा टाइम निकाल के थैंक यू बोल देना चाहिए तो ये बहुत कहने को बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है दैट्स ट्रू
3: कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो हम लोग वो समझते हैं दूसरा का थोड़ा करोगे तो
2: बहुत खुशी होती है बहुत ही अच्छी बात थैंक यू सो मच आरिफ जी थैंक यू फॉर योर कॉल बहुत अच्छा लगा आज भी आपसे बात करके अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे हंसते मुस्कुराते और थैंकफुल रहिए सबके लिए थैंक यू जी ओके
3: सरवर भाई वो रेक्स कैट मिले तो थोड़ा मेरे को भी उसमें 50-50
2: रेक्स मिल जाए तो दे दीजिए
1: क्या मिल जाए
2: रेक्स कैट मिल जाए अरे ढूंढ लीजिए बिल्ली
1: मैं ये बात करना ही नहीं चाह रहा हूँ जितने लोगों को पता चलेगा उतने ढूंढने पहुंच जाएंगे उतना प्राइस बटेगा समझा करो यार
2: अरे कुछ लोग तो ऑलरेडी ढूंढ ढूंढ के डाल रहे हैं
1: उतना प्राइस मैं पूरे 1,00,000 मेरे थे जबरदस्ती में बस वो बट गए चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ अंसारी साहब अपना ख्याल रखिए और इंशाल्लाह ताला इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए थैंक यू सर
2: थैंक यू और एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ते हुए हेलो
4: हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम बरकातहू जी कैसे हैं आप
4: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बिल्कुल
2: अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हरी से तौफीक जी लग रहे हैं क्या
1: अभी ब्रश भी नहीं किया है अभी एकदम बस आके घुनी है यूं मल लगा असाले को ना जी जी कैसे
4: ट्रैवल ट्रैवल टू सऊदी मैं क्या करूं तुम खुद सऊदी चले गए ट्रैवल टू सऊदी
1: कैसे हैं तौफीक भाई खैरियत से हैं
2: क्या भाग गए थे आप
4: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया
2: कह रहे थे मौसम यहाँ नहीं लग रहा आभा में दिल लगेगा मेरा
1: हाँ भाई हमने आपकी फोटो देखी है पहले तो ये जानिए कि आपको देख के बहुत अच्छा लगा सब तमाम टीम के साथ
2: और अभी मैंने अब मैं पूछूंगी सर्वर से कौन कौन है क्या आपने मुझे अभी ग्रुप फोटो दिखाई इन्होंने ग्रुप फोटो पहचान नहीं पा रहे
1: उसमें सारे के सारे अमरीश पुरी हैं ओम पुरी हैं गुलशन ग्रोवर है रजा मुराद है प्रेम चोपड़ा है सारे हैं माशाल्लाह से एक साथ पहुंचे थे
4: आप गब्बर हो
1: वो तो सबसे ऊपर है सबसे ऊपर है उनका तो कोई जवाब ही नहीं है यार
2: तौफीक जी आप भी देगा आप तो गब्बर हो आगे तो पहुंचे हुए
1: तौफीक भाई क्या कहते हैं वक्त कम हो गया बहुत ये बताइए कि शुक्रगुजारी के लिए क्या कहते हैं शुक्रगुजार होना चाहिए
2: ये जो फायदे लिए बैठे हैं कब देंगे
1: अब ये तो हो गए
4: मेरे साथ सारा हेल्प उसमें हुआ शहजादा सलीम भाई का ज्यादा मतलब
1: शुक्रगुजार हूं भाई शहजादा सलीम साहब का उन्होंने सबको जोड़ा ये बहुत अच्छा मैसेज है बहुत बहुत शुक्रिया तौफीक भाई क्योंकि वक्त हुआ जाता है तो इजाजत लेंगे इंशाल्लाह ताला कल थोड़ा जल्दी तशरीफ लाइएगा
4: पार्टी करो पार्टी
1: पार्टी होगी पार्टी बिल्कुल होगी बिल्कुल जितनी आप कहेंगे उतनी अरेंज कर दूंगा बस बिल पे करिएगा ठीक है भूलिएगा नहीं
4: बिल आपने बिल के ही बोल रहा हूं
1: ओके तौफीक भाई शुक्रन जजीलन जजाकल्लाहु खैरन और यहां पर कुछ मैसेजेस
2: और बस ये भी हम बताना चाहेंगे पता है इसकी शुरुआत कब हुई थी 1965 में और शुरुआत इस चीज से हुई थी, किसी ने किसी की हेल्प की और उस हेल्प के बदले उसने कुछ नहीं कहा, जस्ट अ स्मॉल, एक छोटा सा स्माइल था एंड जस्ट दैट. तो वहां से इस पूरे दिन की शुरुआत हुई. श्री करके एक लीडर थे, उन्होंने कहा, वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे जिन्होंने इस चीज को बकायदा नोटिस किया और उन्हें थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील हुआ. एंड देन ही सेड कि एक वर्ड होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए ऐसा जहां हम लोगों को बताएं कि हम उनके लिए जो है वो अच्छा फील कर रहे हैं, उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको इजहार कर रहे हैं. तो वहाँ से इस दिन को सेलिब्रेट करने की शुरुआत हो गई. थैंक यू तो था वर्ल्ड, दुनिया में मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ शुरुआत हो गई वर्ल्ड ग्रैटिट्यूड डे की. और इस तरह से बस तब से लेकर आज तक इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है.
1: क्या बात है भाई. जीशान है हमारे साथ, आफरीदी है हमारे साथ, जुल्कर नैन भाई ने जो नज्म लिखी है मेरे लिए वो भेज दी है यहाँ पर, इनायतुल्ला है हमारे साथ, और इसके अलावा भी मोहम्मद रफ़ीक हैं हमारे साथ. और कौन है भाई ये जल्दी से, ये कौन साहब हैं, ये हैं, नाम नहीं लिखा इन्होंने अपना. तो अब फिलहाल मुझे लगता है कि वक्त हो गया आज के लिए हम इजाजत ले लें और इसी तरीके से,
2: और कोशिश कीजिए कि आज किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, जस्ट गो एंड से थैंक यू,
1: आज से शुरुआत करें. बाकी ठुमकते रहिए क्योंकि ये गाना आपको ठुमकाएगा. और कल तक के लिए मुझे नाजिया को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी. सुनते और देखते रहिए FM 107
2: दिल से.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, कभी हम समझते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए लहजा सख्त होना चाहिए। बच्चे को सुधारना है तो डांट जरूरी है, किसी की गलती दुरुस्त करनी है तो उसे सख्त अल्फाज में सुनाना जरूरी है, मुलाजिम से काम लेना है तो दबाव जरूरी है, किसी इख्तिलाफ में अपना मौकिफ वाज़े करना है तो आवाज बुलंद करना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सख्ती वाकई हर बार वो नतीजा देती है जो हम चाहते हैं? कभी हमारी बात दुरुस्त होती है मगर हमारा अंदाज उसके असर को खत्म कर देता है। इस सिलसिले में जरीर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को नरमी से महरूम कर दिया गया उसे खैर से महरूम कर दिया गया। जरा गौर कीजिए कि हदीस में जो बात आई है इसका मतलब ये बनता है कि गोया जहां नरमी आती है वहां खैर के दरवाजे खुलते हैं, और जहां इंसान हर मामले में सख्ती और दुरुस्ती का रवैया इख्तियार कर लेता है वो अपने हाथ से बहुत से भलाई के रास्ते बंद कर देता है। सामईन किराम, रिफ्क का मतलब क्या है? रिफ्क एक पूरा रवैया है और इस रवैये को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि किसी की गलती पर फौरी सख्त रद्द अमल न देना, ये रिफ्क है। दूसरे की बात मुकम्मल सुनना, ये रिफ्क है। इस्लाह करनी हो तो मुनासिब वक्त और मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करना, ये रिफ्क है। बच्चे को सिखाते हुए उसकी उम्र और सलाहियत का ख्याल रखना, ये भी रिफ्क है। यानी रिफ्क का मतलब ये बना कि आपका मकसद भी खैर हो और खैर तक पहुंचने का तरीका भी खैर वाला हो। सामईन किराम, जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी बात बिल्कुल दुरुस्त होती है मगर अंदाज गलत होता है, लहजा ऐसा है कि सामने वाला नसीहत नहीं सुनता, सिर्फ अपनी तौहीन महसूस करता है। अब मकसद तो सही है मगर गुस्सा इतना है कि बच्चा गलती समझने के बजाय हमसे डरना सीख लेता है। तो आज की रूह परवर सुन्नत हमें सिखाती है कि आप जो कह रहे हैं इसमें ये बात भी काफी अहम है कि आप कैसे कह रहे हैं। अब इस मौजू का एक दूसरा रुख भी है, वो ये कि बाज लोग नरमी को कमजोरी समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं नरम हो गया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, अगर मैंने माफ कर दिया तो लोग फायदा उठाएंगे, अगर मैंने आवाज बुलंद न की तो मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। अब समझने की बात यह है कि नरमी और कमजोरी एक चीज नहीं। कमजोरी यह है कि इंसान हक बात कहने की हिम्मत न रखे, और रिफ्क यानी नरमी यह है कि हक बात कहने की हिम्मत भी रखे मगर उसे हिकमत और मुनासिब अंदाज से कहे। सामईन किराम, रिफ्क का सबसे पहला मैदान शायद हमारा अपना घर है। हम बाहर के लोगों से कितनी नरमी से बात करते हैं, रिफ्क की जरूरत और भी ज्यादा है। बच्चा सीख रहा है, वो गलती करेगा, कभी चीज गिराएगा, कभी सबक भूलेगा, और यही वालिदैन का इम्तिहान है। क्या हमारा मकसद बच्चे को सिखाना है या अपना गुस्सा निकालना? तो नरमी के साथ इस्लाह का मतलब ये है कि गलती दुरुस्त कीजिए मगर बच्चे का दिल भी न तोड़िए। अब वालिदैन की भी बात कर लें, जैसे जैसे वालिदैन उम्र रसीदा होते हैं कभी उनकी जरूरियात बढ़ती हैं, एक बात बार बार पूछ सकते हैं, चलने में वक्त लग सकता है, हम जल्दी में होते हैं और कभी लहजा सख्त हो सकता है। यहाँ रिफ्क हमें इस बात की याद दिलाता है कि जिस कमजोरी पर आज आप झंझला रहे हैं कभी इसी कमजोरी के साथ उन्होंने आपको संभाला था। आपने एक सवाल 10 मरतबा पूछा होगा, उन्होंने 10 मरतबा जवाब दिया, आप चल नहीं सकते थे, उन्होंने हाथ पकड़ा, आज वक्त बदल गया है, अब शायद हमारी बारी है कि हम उनके साथ सब्र, वसअत कल्ब और नरमी इख्तियार करें। इसी तरह सामईन किराम, काम की जगह पर रिफ्क, नसीहत में भी रिफ्क मतलूब है, इख्तिलाफ में रिफ्क, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जिंदगी के अज़ीम उसूल है, मन युहरम अर-रिफ़्क युहरम अल-खैर, यानी जो नरमी से महरूम वो खैर से भी महरूम। अल्लाह ताला हमारे अखलाक को रिफ्क और नरमी से आरास्ता फरमाए, آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: آپ سن رہے ہیں FM 107
1: دل سے دیسی.

दोस्तों सोचिए आप अपने क्रिकेट करियर का पहला टेस्ट मैच खेल रहे हो, सामने दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज में से एक मौजूद हो और आप अपनी सिर्फ चौथी गेंद पर इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को आउट कर दें। कुछ ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान के नौजवान फास्ट बॉलर के साथ हाल ही में एजबास्टन में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। अपनी जबरदस्त पेस, कॉन्फिडेंस और जो रूट की इंपॉर्टेंट विकेट के बाद रजाउल्लाह, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। उन्होंने अपने टेस्ट करियर का आगाज किया और क्रिकेट फैंस के साथ साथ कमेंटेटर्स भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान के इस फास्ट बॉलर जिनका नाम शायद टेस्ट मैच से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन डेब्यू के चंद लम्हों में ही वो क्रिकेट की दुनिया में चर्चा का मरकज बन गया। रजाउल्लाह पाकिस्तान के उन प्रॉमिसिंग स्टार्स नहीं कहूंगा, प्रॉमिसिंग क्रिकेटर्स कहूंगा, जिन्हें लोग जानते भी नहीं थे, एक महीना पहले तक भी नहीं जानते थे और एजबास्टन टेस्ट से एक हफ्ता पहले तक तो दूर की बात है, नोबडी न्यू हु वाज रजाउल्लाह। हाँ, ट्रेनिंग कैंप में थे नेशनल क्रिकेट एकेडमी, लेकिन नोबडी न्यू दैट ही इज गोइंग टू ब्लॉसम इनटू अ फ्यूचर स्टार। और खास बात यह है कि रजाउल्लाह अपनी बॉलिंग के लिए पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर वकार यूनुस को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं और वो अपने इंटरव्यू में कहते भी हैं कि वो वकार यूनुस को फॉलो करते हैं और पहले से उन्हें देखते हैं और फॉलो करते करते आज इस मकाम तक वो पहुंच चुके हैं। और उनका ये कहना भी है कि वो कोशिश करेंगे कि उन्हीं की तरह वो बने और आखिर तक फॉलो वो करता रहेगा। दैट इज द सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन जो वकार यूनुस को देखने के बाद रजाउल्लाह ने अपने आप को ढाला उस नूनी के स्टाइल में, बॉलिंग स्टाइल में उन्होंने उनको कॉपी किया, कॉपी तो नहीं कहूँगा बल्कि थोड़ा सा इनकरेज हुए, इंस्पायर्ड हुए। और ये अल्फाज बताते हैं कि पाकिस्तान के इस नौजवान फास्ट बॉलर के लिए वकार यूनुस सिर्फ एक लेजेंडरी क्रिकेटर नहीं बल्कि एक रोल मॉडल भी हैं। लेकिन रजाउल्लाह का क्रिकेट तक का जो सफ़र वो जो है ना, वो भी कम दिलचस्प नहीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि करियर के शुरुआती दिनों में उनके वालिद को भी नहीं पता था कि वो क्रिकेट खेलते हैं, छुप छुप खेलते थे। रजाउल्लाह के मुताबिक वो अपने वालिद से छुप कर क्रिकेट खेला करते थे और इस सफ़र में उनकी वालदा ने और उनके भाइयों ने उनका बहुत बहुत मदद की। यानी जिस खिलाड़ी को आज क्रिकेट फैंस एक टेस्ट डेब्यूटेंट के तौर पर देख रहे हैं, उसके पीछे सालों की मेहनत, फैमिली का सपोर्ट और एक बड़ा ख्वाब छुपा हुआ है। लेकिन रजाउल्लाह को खुद भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि उनका टेस्ट डेब्यू इतनी जल्द ही होने वाला है। उन्होंने ये भी बताया कि वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी NCA में थे जहां स्पीड गन ट्रायल्स हो रहे थे, यानी बॉलर्स को तरबियत दी जा रही थी एंड द NCA कैंप। एक हफ्ते बाद जब वो घर वापस गए तो रात को अचानक फोन आया, उन्हें कहा गया कि फौरन NCA वापस जाओ। रजाउल्लाह को ये नहीं बताया गया था कि वो टेस्ट मैच के लिए जा रहे हैं। जब वो NCA पहुंचे तब उन्हें पता चला कि उनका सिलेक्शन टेस्ट मैच के लिए हो गया है। ये तीन मैचों के टेस्ट सीरीज जो इंग्लैंड के अगेंस्ट में हुआ था, उसका आखिरी टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 7 क्रिकेटर्स को वापस बुलाया और 7 न्यू क्रिकेटर्स को वहां भेजा गया था, जिनमें रजाउल्लाह वाज वन ऑफ देम। सोचिए, एक तरफ आप घर पर हैं और दूसरी तरफ अचानक आपको पता चलता है कि आप अब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। व्हाट अ मिनट, आई मीन दिस इज सम काइंड ऑफ एन एक्साइटमेंट दैट कुड हैपन टू एनी यंगस्टर। और फिर आया वो लम्हा जिसने रजाउल्लाह के करियर को एक यादगार शुरुआत दे दी। टेस्ट के पहले दिन रजाउल्लाह की स्पीड स्क्रीन पर 90 माइल्स पर आवर दिखाई गई। उन्होंने सोचा कि शायद वो 135 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें बताया गया कि उनकी स्पीड असल में 145 किलोमीटर पर आवर थी। और इतनी रफ्तार के साथ जब सामने इंग्लैंड के कप्तान जो रूट जैसा बल्लेबाज हो तो चैलेंज और भी बड़ा हो जाता है। रजाउल्लाह रन अप लेते हैं, क्रीज के करीब पहुंचते हैं और गेंद जो रूट की तरफ, रूट गेंद की डायरेक्शन को समझने में नाकाम रहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से अपील होती है और अंपायर की उंगली उठती है और जो रूट LBW। रजाउल्लाह ने अपने टेस्ट करियर की सिर्फ चौथी गेंद पर इंग्लैंड के कप्तान को अपना
निशाना बना लिया और स्टेडियम में शोर मच गया और कमेंटेटर के अल्फाज थे व्हाट अ स्टार्ट टू हिज करियर और वाकई इससे बेहतर स्टार्ट का तसव्वुर करना मुश्किल है रज़ाउल्लाह का कहना है कि वो जिंदगी एंजॉय करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं शायद यही सोच उनके करियर की सबसे खूबसूरत बात है एक नौजवान बॉलर जो अपने आइडल वकार यूनुस को फॉलो करता है जो कभी अपने वालिद से छुपकर क्रिकेट खेला करता था और जिसे अचानक टेस्ट कॉल अप मिलता है और फिर अपने डेब्यू पर 145 किलोमीटर पर आर के रफ्तार से बॉलिंग करते हुए इंग्लैंड के कप्तान जो रूट की विकेट हासिल कर लेता है रज़ाउल्लाह के लिए ये सिर्फ एक विकेट नहीं थी ये उनके इंटरनेशनल करियर के एक नए सफर का आगाज था अब देखना यह कि पाकिस्तान का ये यंग स्पीड स्टार आने वाले वक्त में वकार यूनुस की तरह अपनी पेस और बॉलिंग से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है या नहीं आपको क्या लगता है क्या रज़ाउल्लाह पाकिस्तान का अगला पेस सेंसेशन बन सकते हैं अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं मैं मिलता हूं आपसे अगली एपिसोड में तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़

0: अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू अनदर टेक अपडेट. ऑफ कोर्स जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज लॉन्च हो चुकी है, वो है एप्पल के फोन्स. वो लाइनअप जिसका इंतजार हर सितंबर में रहता है. तो जब हम शो को रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक फोन लॉन्च हो गए थे, तो वी कुडंट डू द रिव्यू ऑन टाइम. मगर अभी जिन्होंने नहीं लिया और वो जानना चाहते हैं कि FM 107 पे ये कबीर का क्या टेक है इस पे, तो मैं वो सब कुछ आपको बताऊंगा. ये चार दिन जो आने वाले हैं इनमें हम इसके बारे में खुल के बात करेंगे. सबसे पहले मैं बात करूंगा आईफोन के उस फ्लैगशिप फोन की जिसका जिसे देख के सब हैरान हो गए, और वो है आईफोन डुओ फोल्ड. वो भी एप्पल में ये सोचा था लेकिन पता नहीं था कि एप्पल ये करेगा. मुझे ऑनेस्टली नहीं लगा था कि एप्पल ये करने वाला है. मुझे लगा था वो शायद फोल्ड से दूर रहेगा, थोड़ा और टाइम लेगा, थोड़ा और टाइम लेके बनाएगा. लेकिन एप्पल ने कर दिया लॉन्च. अब इसमें बहुत सारी अच्छी और कुछ ऐसी बातें भी हैं. तो मैं सबसे पहले अच्छी बातों पे बात कर लेता हूँ. डेफिनेटली डिजाइन बहुत अलग है, डिजाइन बहुत खास है. बैटरी में बहुत ज्यादा इन्होंने मेहनत करी ताकि बैटरी भी टॉप नॉच रहे, कोई मसला नहीं आएगा किसी को. फोन जो है बहुत स्मूथ काम कर रहा है. जो अलग अलग विंडोज दी है काम करने के लिए वो बहुत ज्यादा स्मूथ है. अभी हैंड्स ऑन मेरे हाथ में तो नहीं है, बट जहां तक मैंने इसको अच्छे से पढ़ा है, जाना है, उतना मैं आपको बता सकता हूँ. कुछ स्पेशल इस फोल्ड फोन के लिए केटर्ड ऐप्स जो हैं वो एप्पल ने डिजाइन करी हैं जो सिर्फ उस पर चलेंगे. और क्या बाकमाल डिजाइन है. जब इसको ओपन करो तो एक एक अलग किस्म का एक प्रीमियम रिफ्लेक्शन सामने आता है, विच इज ब्यूटिफुल. ऑफकोर्स इसके जो हिंजेस की बात आती है, जब भी हम फोल्ड की बात करते हैं तो हमें हिंजेस की प्रॉब्लम होती है कि भाई ये बीच में दरार ना पड़ जाए. तो जब तक आप उसे हाथ नहीं लगाएंगे तब तक आपको पता भी नहीं लगेगा कि उसमें हिंजेस में कोई हिंजेस पता भी लग रही हैं. दे हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इस बार काम करने के लिए फोल्ड पे. एंड डेफिनेटली उन्होंने बाकी फोन्स को बहुत अच्छे से परखाया जाना है कि हिंजेस कैसे भगाए जाए. तो एप्पल ने उसमें बहुत कामयाबी हासिल करी है. ऑफकोर्स द फोन इज अराउंड $2,000 जो लॉन्च होते होते हमारे यहाँ आएगा. तो इंडिया में तो 3 लाख का है, तो यहाँ पे आप लगा लीजिए हिसाब तब कितने का होगा. इट इज ऑब्वियसली क्रॉसिंग ऑल द प्रीमियम फोल्ड फोन प्राइसेस. तो ये महंगा तो बहुत आने वाला है. इसके जो कुछ ड्रॉबैक्स हैं, डेफिनेटली अगर आप एक कैमरे की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको कैमरा नहीं मिलने वाला है इसमें. वो जो उन्होंने कैमरा दिए बस वो दे दिए हैं. अब ऐसा था कि भाई अब देने ही पड़ेंगे, मजबूरी है, तो इसलिए इसमें कैमरा दे दिया है. आप उससे ये मत उम्मीद कीजिएगा कि प्रो लेवल तो होगा, भाई इतना महंगा फोन है तो कैमरा तो भाई एकदम सॉलिड होगा, ऐसा नहीं है. इट्स अ वेरी वेरी वेरी वेरी नॉर्मल कैमरा. यस द बैटरी लाइफ इज रियली रियली गुड. और इसमें जो इनकी उन्होंने नई चिप भी लगाई है तो वो भी डेफिनेटली इसे स्पीड अप करती है. एवरीथिंग इज नाइस अबाउट इट. बट डिजाइन में एक हल्की सी बात है और वो है इसकी जो क्या कहते हैं उसकी जो विड्थ है. क्योंकि आप एक हाथ से अगर फोन यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पूरी तरह से इसकी स्क्रीन को यूज नहीं कर पाएंगे. आपको थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ेगा, दूसरे हाथ की थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी. और इसमें जो सीरी का इंटीग्रेशन है वो भी बड़ा अजीब है. जिसका जो बटन है वो ऊपर की तरफ दिया हुआ है, विच इज वेरी हार्ड टू रीच. अगर अनटिल अनलेस सबके हाथ बहुत बड़े हैं, कानून के हाथ तो बात दूसरी है. पर बटन का जो पोजिशनिंग है वो थोड़ी सी अलग है. और जो डिजाइन है वो मुझे लगा था कि शायद थोड़ा सा लंबाई में ज्यादा होगा, लेंथ ज्यादा होगी देसी भाषा में बोलूं, बट दे कैप द विड्थ मोर. आई डोंट नो किस से इंस्पायर्ड हुए, बिकॉज ऑफकोर्स ये इंस्पिरेशन तो बहुत पहले उन्होंने कहीं ना कहीं से लिया होगा. अभी सैमसंग ने वो अपना क्यूट सा फोन लॉन्च किया था, तो रिसेंट ये इंस्पिरेशन तो नहीं है. बट डेफिनेटली प्राइस एक बहुत बड़ा बैरियर है जो आपको ये लेने से रोकेगा. दूसरी चीज है कि आप इसको जोश जोश में आगे कि मैं शोबाजी के लिए ले लूं, तो भाई शोबाजी हो पाएगी, लेकिन इसमें कैमरा नहीं है वैसा वाला जैसा आप उम्मीद करते हैं. सो इन केस आपको बहुत ज्यादा सिर्फ शो ऑफ से मतलब है तब तो ये फोन आपके मतलब का है, अदरवाइज आई वुड नॉट रिकमेंड. क्योंकि यहाँ पे कतर में आते आते इट विल बी द कॉस्टलीस्ट फोल्ड फोन एवर. इस बात की तो पूरी पूरी गारंटी है. आई रियली होप कि दिस नॉट बिकम्स द सेकंड प्रोविजन जो एप्पल ने लॉन्च किया था उसके आसपास ये पहुंचता मुझे नजर आ रहा है. ऐसी उम्मीद मैं करना नहीं चाहता मगर मजबूर. रिव्यू हालांकि अच्छा है मगर जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी खतरनाक वाले ड्रॉबैक्स हैं. दिस वॉज द रिव्यू और दिस वॉज द टेक अपडेट. Stay tuned for more. Tech update. Tech update.
1: आप सुन रहे हैं FM 107.
2: दिल से देसी.
3: Scam alert.
2: अस्सलाम वालेकुम, एफएम 107 पे मैं हूँ फजील और इस्तकबाल है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड से बचाने के लिए हर रोज मैं आपको अवेयर करता रहता हूं कैसे ये नए फ्रॉड्स होते हैं और साथ ही साथ किस तरह से आप बच सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं इन फ्रॉड से बचने के, उस पर भी हम बात करते हैं। और आज हम जिस फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं, ये बड़े ही इमोशनल फ्रॉड भी है एक तरह से। आप बहुत ज्यादा टूट जाते हैं जब इस तरह का फ्रॉड आपके साथ होता है, और इस फ्रॉड का नाम है हाउस सिटर एंड पेट सिटर, यानी कि आपके इमोशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको लेकर भी एक्चुअली में आजकल फ्रॉड होने लगा है। कई लोग अपने पेट्स को बहुत ज़्यादा करीब से चाहते हैं, जानते हैं, मानते हैं, और ऐसे ही जो हाउस सिटर होते हैं या घर की देखभाल करने वाले होते हैं या बच्ची की देखभाल करने वाले होते हैं, उनके नाम पर भी स्कैम शुरू हो गए। सबसे पहले ये स्कैम होते कैसे, इन पर बात करते हैं और फिर सॉल्यूशन पर भी हम नज़र डालेंगे। वेल, हाउस सिटर और पेट सिटर फ्रॉड हमारे सबसे बड़े ट्रस्ट जोन के अंदर होता है, इसलिए इसका दुख बहुत बड़ा होता है। ये स्कैम अक्सर किसी पड़ोसी, दूर के रिश्तेदार या किसी कैजुअल एक्वेंटेंसेस के जरिए किया जाता है जिसे आप एक अच्छा इंसान समझते हैं। जब आप फैमिली के साथ किसी लंबी वेकेशन या इंटरनेशनल ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं तो सबसे बड़ी फिक्र है घर की सुरक्षा, सिक्योरिटी, और पेट्स की केयर कौन करेगा। इस दौरान ये जान पहचान वाला इंसान बड़े ही मीठी बातों के साथ आपसे कहेगा कि आप फिक्र मत करें, आप घूम कर आए, आप पीछे बिल्कुल ना देखें, मैं आपके घर का या पेट्स का पूरा ध्यान रखूंगा। या कई बार आप सोशल मीडिया पे हाउस सिटर या पेट सिटर ढूंढते हैं, वो आपके कांटेक्ट में आते हैं, आप उन पर भरोसा करते हैं, आप उनको कुछ पैसे भी देंगे, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर आपके साथ होता है गड़बड़ या फ्रॉड। आप उन लोगों पर जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके करीबी हैं, या फिर आपने जिनको सोशल मीडिया पर ढूंढा है, आप उन पर ट्रस्ट करके उन्हें अपने घर की मेन कीज हैंड ओवर कर देते हैं, मेन चाबियां दे देते हैं, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करने के बजाय वो इंसान इस परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का एक क्रिमिनल माइंड की तरह फायदा उठाता है। जब आप शहर के बाहर होते हैं, देश के बाहर होते हैं और घर पर पूरी तरह सन्नाटा होता है, तब वो आपके वार्डरोब्स और सेफ लॉकर को चेक करता है। वो घर में रखी कीमती गोल्ड ज्वेलरी, लॉकर में रखा कैश, महंगे ब्रांड के लैपटॉप्स और कॉस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स चुरा लेता है। स्कैमर्स इतने शातिर होते हैं कि वो आपके मेन डोर और कपबोर्ड्स की चाबियां डुप्लीकेट करवा लेते हैं ताकि आपके आने के महीनों बाद दोबारा आसानी से चोरी भी की जा सके। पर कोई शक न करे, जब आप ट्रिप से लौट कर आते हैं तब आपको धीरे धीरे चीजें गायब मिलती हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन इस तरह के फ्रॉड से बचने के तीन आसान तरीके हैं। इन तीन तरीकों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उम्मीद है कि आपके साथ इस तरह का फ्रॉड कभी नहीं होगा। हायर ओनली सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स। जब भी आप कभी देश से बाहर जाएं, घूमने फिरने के लिए जाएं, किसी बड़े ट्रिप पर जाएं, तो हमेशा एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल को ही हायर करें। अपने पीछे घर की चाबी किसी भी कैजुअल दोस्तों को, पड़ोसियों को या सोशल मीडिया से किसी रैंडम को हायर करने के बजाय आप ऐसे शख्स को हायर करें जो प्रोफेशनल हो। उनको चाबियां ना दें जिनको अभी आपने कुछ दिन पहले ही जाना पहचाना है। हमेशा सिर्फ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, बैकग्राउंड वेरीफाइड, सर्टिफाइड और इंश्योर्ड पेट सिटिंग या हाउस सिटिंग एजेंसीज को ही कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करें। इन प्रोफेशनल एजेंसीज के पास लीगल लायबिलिटी होती है, अगर कुछ खोया तो कॉम्पनसेशन मिलता है। दूसरा सॉल्यूशन है डिप्लॉय स्मार्ट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। वेकेशन पर जाने से पहले अपने घर के हर एक कॉर्नर, लिविंग रूम और एंट्री पॉइंट्स पर हाई डेफिनेशन स्मार्ट वाईफाई, सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमराज इंस्टॉल करें। इन कैमराज का लाइव एक्सेस अपने मोबाइल फोन पर एक्टिव रखें ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने से रियल टाइम में मॉनिटर कर सकें कि घर के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है। उसके अलावा तीसरा तरीका है लॉक वैल्यूएबल्स इन बैंक वॉल्ट्स। ये तो हर शख्स को करना ही चाहिए। जब भी आप लॉन्ग ट्रेवल पर जा रहे हो तो घर के लॉकर में ज्यादा कैश या गोल्ड ज्वेलरी छोड़कर बिल्कुल ना जाएं, भले ही आपका कोई बहुत ज्यादा ट्रस्ट

0: वर्दी शख्स क्यों ना हो साथ में, या फिर आपने किसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल को ही क्यों ना हायर किया हो। घर के लॉकर में ज्यादा कैश नहीं रखना चाहिए, ना ही ज्यादा गोल्ड ज्वेलरीज भी रखनी चाहिए। उन सारी कीमती चीजों को टेम्परेरी पीरियड के लिए बैंक के सिक्योर सेफ्टी डिपॉजिट वॉल्ट में जमा कर दें। घर आने पर मेन डोर के लॉक्स को चेंज कर दें और अपने वाईफाई को हमेशा जब आप घर से दूर रहें तो ऑन रखें, ताकि सीसीटीवी के जरिए आप देखते रहें कि घर में क्या कुछ हो रहा है। ये कुछ तरीके हैं ताकि डुप्लीकेट कीज का खतरा खत्म हो जाए, जैसे कि डोर के लॉक्स चेंज करवाना या फिर सीसीटीवी लगवाना। इन सब तरीकों से आप फ्रॉड आपके साथ जो होने वाला है उनसे बच सकते हैं। ऐसे के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में आपको अवेयर करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
2: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है,
3: चले तो कट ही जाएगा सफर,
2: तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
1: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ। दोहा वाले कबीर के साथ।
4: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 Qatar। दिल से देसी।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107
2: दिल से देसी
3: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं ये अल्लाह का कलाम है यह हमें बताता है क्या सही है कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है बचपन से हमने कुरान पढ़ा तिलावत की लफ्ज दोहराए लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए इसलिए एफएम 107 लाया है एक ऐसा शो जहां बच्चे कुरान को बेहतर तरीके से समझ सकें तो सुनिए कुरान फॉर किड्स आरजे तलहा के साथ
4: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहु प्यारे बच्चों हमारे साथ सुनने वाली तमाम प्यारी अम्मियों अब्बों और घर के तमाम बड़ों को तहे

0: हे दिल से हमारे इस प्रोग्राम में मुबारकबाद। तहा अशरफ उज़्ज़मान की मेज़बानी में आप सुनते हैं ये वो प्रोग्राम जहां हम कुरान पाक को मोहब्बत और सुकून के साथ बच्चों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं, बच्चों से हम कलाम होते हैं। तो नन्हे दोस्तों, हम कुरान करीम की जिस आयत की तरफ रुख कर रहे हैं या आयत आज के प्रोग्राम में हम जिस आयत पर गुफ्तगू करने वाले हैं, इस आयत के मौजू पर थोड़ा बहुत उसकी तफसील वजाहत पेश करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा एक लम्हे के लिए सोचो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में लोग कितने मुख्तलिफ होते हैं। कोई बहुत ज़हीन होता है, कोई सादा सा, कोई ताकतवर होता है और कोई कमज़ोर, कोई अमीर होता है तो कोई गरीब। लेकिन क्या तुम जानते हो ये सब फ़र्क अल्लाह की हिकमत से है। अल्लाह जिसे चाहे बगैर गिनती के रिज्क देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें यहाँ एक बहुत ही बड़ी बात समझ में आती है, वो ये कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमें हर लम्हा अल्लाह की मदद की जरूरत होती है। अब जरा खुद बच्चों अपने दिल ही से पूछ लो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई काम किया और दिल में सोचा हो मैंने ये सब खुद कर लिया है? कई सारे ऐसे हैं जो इस तरह सोचते हैं, लेकिन कुरान क्या बताता है? कुरान हमें इसी सोच को नरमी से दुरुस्त करने की बात कहता है। हमारी आज की आयत है, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, यानी मैं जो भी अच्छा कर पाता हूँ, जो भी कामयाबी मिलती है, वो सब अल्लाह की मदद से होती है। बताइए आयत किसके हवाले से है, किसने ये अल्फाज अपने जुबान से निकाले थे अल्लाह ही के इशारे से? वो थे शुएब अलैहिस्सलाम। शुएब अलैहिस्सलाम ने कही थी ये बात ताकि लोग समझें कि तमाम तर तौफीक तो अल्लाह ही की तरफ से है, बंदा अपनी कोशिश से कुछ नहीं कर सकता जब तक ना अल्लाह की तौफीक भी शामिल हाल ना हो जाए। तो सवाल ये है कि हम और आप अल्लाह के बगैर कैसे कामयाब हो सकते हैं? ये तो कोई सवाल ही नहीं है। इसीलिए आज के प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि दरअसल कामयाबी क्या होती है, अल्लाह की मदद क्यों ज़रूरी है, और हम कैसे हर काम में अल्लाह पर भरोसा करना सीखे। तो इसके लिए एक अहम बात तो ये है कि हमें अपने गुरूर को बाहर रख देना है, यानी बाहर छोड़ के आना है। अब हम स्टूडियो रूम में हैं, गुरूर को बाहर छोड़ के आ जाएं, क्योंकि गुरूर अगर साथ में हो तो फिर आप अपने दिल को तसल्ली नहीं दे सकते हैं। दिल में वो इत्मीनान, दिल में ये बात उतर आना कि नहीं, सब अल्लाह की तरफ से है, फैसला है, वही तय करने वाला है और उसी की तौफीक से हम कुछ कर सकते हैं, तो ये वाली बात अगर हम अपने दिल में उतारना चाहते हैं तो फिर पहले हमें अपने गुरूर को अपने से दूर करना होगा। और आज हम जो सीखने वाले हैं हमारे इस प्रोग्राम में कि असल ताकत हम में नहीं बल्कि अल्लाह के साथ होने में है। हाँ जी, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक की मुलाकात होती है, ब्रेक के उस पार जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए।
0: हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल बताओ, प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, अब जरा सुकून से बैठो और हमारी जो आयत है आज की इसको एक मरतबा दोबारा सुनने की, दिल से सुनने की कोशिश करो, ठीक है? तो ये आयत एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है कि हमें हर लम्हा अल्लाह की मदद जरूरी होती है, यहाँ तक कि पलक झपकने जितनी देर के लिए भी क्यों ना हो। बच्चों, कभी ऐसा होता है ना कि जो बहुत ज़हीन होता है वो भी गलती कर बैठता है और जो सादा सा होता है वही सही रास्ता पा लेता है। कभी ऐसा होता है कि गरीब इंसान अल्लाह की मदद से आगे बढ़ जाता है और अमीर इंसान सब कुछ होते हुए भी रास्ता खो बैठता है। कभी ताकतवर इंसान हार जाता है और कमजोर अल्लाह के सहारे कामयाब हो जाता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह बेहतर जानते हैं कि कौन सीधे रास्ते पर है और किसके दिल को हिदायत की जरूरत है। तो बच्चों, मुद्दा क्या है, खुलासा क्या है? हिदायत और कामयाबी हमारी होशियारी से नहीं बल्कि अल्लाह के फजल से होती है। अगर अल्लाह का फजल ना हो, अगर अल्लाह की रहमत ना हो, तो हम में से कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। एक मरतबा फिर गौर से हमारी इस आयत का वो हिस्सा सुनो, एक नबी ने अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कही थी, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। एक बार आहिस्ता आहिस्ता सुनो इसी आयत को, मैं जरा रुक रुक के पढ़ता हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस आयत को दोहराओ।

0: माशाल्लाह। जी बच्चों, तो ये आयत हमें आजिज़ी सिखाती है, हमें ये याद दिलाती है कि हम जो भी अच्छा करते हैं, जो भी सीखते हैं, जो भी कामयाबी पाते हैं, वो सब अल्लाह की मदद से होता है। तो दोस्तों, अगर दिल चाहे, अगर तुम्हें बात समझ में आए तो हाँ जी, इस आयत को अब दिल में बसा लो। इस तरह तुम आयत की एक एक टुकड़ी को अगर इस तरह दिल में बसा लोगे तो तुम्हारे पास एक बड़ा सा ख़जाना जमा हो जाएगा, कुरानी आयत के, अरबी अल्फाज के। तो यहाँ बैक वक्त दीन की बात भी है, यहाँ तक कि अरबियत भी आपके लिए आसान हो जाएगी। तो हाँ जी, याद रखो, अल्लाह के बग़ैर कुछ भी मुमकिन नहीं। अब ज़रा चंद लम्हे खामोश रहो, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जुड़े रहो हमारे साथ।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है, और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है, जो सिर्फ पढ़ा नहीं, समझा भी जाना चाहिए।
0: वेलकम बैक हमारे नन्हे सामीन, प्यारे बच्चों, आज जैसे कि हमने तुम्हें जो आयत सुनाई थी, वो आयत तो दरअसल कोई किसी नबी, कौन से नबी के बारे में हमने बताया था, वो तो थे शुएब अलैहिस्सलाम। शुएब अलैहिस्सलाम को मकूला था, उन्होंने अपने कौम से खिताब करते हुए ये मकूला कहा था, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। तो चलो पहले तुम्हें ये बता देता हूँ कि दरअसल ये नबी कौन थे, जिनकी बातें इतनी प्यारी थीं, जिनकी जबान सच, नरमी और हिकमत से भरी हुई थी। उनका नाम था शुएब अलैहिस्सलाम। बच्चों, शुएब का नाम कुरान पाक में कई बार आया है, यहाँ तक कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अंबिया का बेहतरीन खतीब कहा है, यानी बड़े वो बेहतरीन खतीब थे। वो बात करना जानते थे, लोगों को समझाना जानते थे, हक बात किस तरह कहनी चाहिए वो पूरी की पूरी सही से उसे उस बातों को पेश करने की सलाहियत रखते थे। अच्छा जी, अब शुएब अलैहिस्सलाम एक ऐसी कौम की तरफ भेजे गए जो नापतोल में कमी करती थी, लोगों का हक मारती थी और गलत कामों में डूबी हुई थी। लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने की कोशिश की सच और नरमी से। बच्चों, यहाँ सबसे बड़ी खूबसूरत जो बात है शुएब अलैहिस्सलाम की, वो तो ये है कि वो कभी ये नहीं कहते थे कि मैं बहुत बड़ा नबी हूँ, बल्कि उनकी ज़बान पर ये वाला मकूला जारी था, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, मेरी भी कामयाबी, मेरी तौफीक

0: की मदद से है। अलैहि तवक्कलत व इलैहि अनीब, उसी पर हमने भरोसा किया और उसी की तरफ हम रुजू करते हैं। तो इस तरह सामने कराम, अगर कोई बच्चा ये कहे कि मैंने खुद ये किया है, मैंने अपने हाथों ये वह काम किया है, ये ड्राइंग बनाई है, तो हमें उसे ये बात समझानी चाहिए कि भाई हाँ माशाल्लाह तुमने बहुत अच्छा किया है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन ज़रा ये भी बताओ कि ये हाथ किसने दिए। अब बच्चा सोचेगा और कहेगा अल्लाह ने। और इस तरह फिर हम उनसे सवाल करें कि फिर सोचने की ताकत किसने दी, अकल किसने दी। इस तरह बच्चा और भी एतराफ में ये बात कहने लगेगा कि हाँ वो भी तो अल्लाह ने दिया, ये भी अल्लाह ने दिया, ये भी। तो इस तरह उनके दिल में ये यकीन रासिख हो जाता है कि नहीं, अल्लाह ही की तौफीक से हम तमाम उमूर को अंजाम दे सकते हैं। जैसा कि हमारी इस आयत में है आज की, वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला, हम जो कुछ भी अच्छा करते हैं वो अल्लाह की मदद से करते हैं। तो बच्चों, शुएब अलैहिस्सलाम हमें ये सिखाते हैं कि कामयाबी पर गुरूर नहीं करना, अपनी समझ पर नाज नहीं करना, बल्कि हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना है। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को भी यही सिखाया कि सच बोलना, हक देना और अल्लाह पर भरोसा करना। बच्चों, ज़रा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो तो ज़रा, अगर इम्तिहान अच्छा हो जाए, दौड़ में तुम आगे निकल जाओ, तो क्या कहोगे? हाँ मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ, बहुत बड़ा ताकतवर हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, इस तरह की बात कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो कहना ही चाहिए कि अल्लाह ने मदद की, अल्लाह की मदद से ही हमें निजात मिली है या मामला हल हुआ है। ये जुमला अल्लाह ने मदद की, अल्लाह की तौफीक से हुई है, तो ये जो जुमला है ना, ये गुरूर को रोकता है, दिल को साफ रखता है और अल्लाह को खुश करता है। तो दोस्तों, जो बच्चा अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह उस बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ते। शुएब अलैहिस्सलाम की इस बात को हमेशा याद रखना, वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला, यानी मेरी हर कामयाबी मेरे रब की मदद से है। मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुक कर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है, जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए।
0: वेलकम बैक सामीन, अब हम एक बहुत ही खास बात सीखने वाले हैं कि अच्छी बात कैसे कही जाती है और हक बात नरमी से कैसे समझाई जाती है। ये आज हमें कौन सिखाएंगे? हमें सिखाएंगे नबीउल्लाह शुएब अलैहिस्सलाम। शुएब अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से बात करते थे तो वो छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं थे, असल बात किया करते थे। उन्होंने सबसे पहले अपनी कौम से क्या कहा? उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और किसी को उसका शरीक न बनाओ, यानी दिल का रास्ता पहले दुरुस्त करो। फिर उन्होंने कहा, नाप तोल में कमी न करो, लोगों का हक पूरा दो और जमीन में फसाद न फैलाओ। बच्चों, ये तो बहुत ही बड़ी अहम बात है और इन बातों में कहीं आपको कोई गुस्सा नहीं नजर आएगा। शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें गुस्से से नहीं कहा, वो हर बात बड़े प्यार से किया करते थे। वो बार बार अपनी कौम को या कौम कहकर पुकारते थे, यानी ए मेरे लोगों, ए मेरे अपने लोगों। तो ये लफ्ज़ दरअसल, इस तरह जब अपनी कौम को आप उनका नाम लेकर इस तरह खिताब कर रहे हैं, तो ये लफ्ज़ दिल जोड़ने के लिए होता है, न कि तोड़ने के लिए। ज़रा तसव्वुर करो, हम अगर यही अंदाज अपने घरों में इस्तेमाल करें, अगर कोई बाबा अब्बू अपने बेटे से कहता है, बेटा ज़रा इधर आओ ना, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। अच्छा, बच्चा दौड़ता हुआ

0: मुश्किल आए तो दुआ और हर हाल में गुरूर से बचने की कोशिश करना, यही है कुरान का तरीका और यही है अंबिया का रास्ता। तो अगले हल्के में बिन्नल्लाह ताला मजीद एक और खूबसूरत आयत लेकर हाजिर खिदमत होगा। तब तक के लिए साउंड डिजाइनर शहबाज और मुझे तलहा शफजमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मासलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट की। इन्वेस्टमेंट्स में, इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, रिस्क मैनेजमेंट से मुराद वो प्रोसेस है जिसमें इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक रिस्क को पहचानता है, उनका जायजा लेता है और उन्हें कम करने के लिए मुनासिब स्ट्रेटजी बनाता है। इसका मकसद ये है कि पैसा ज्यादा महफूज रहे और अगर मार्केट में नुकसान हो जाए तो उसका असर कम से कम हो। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट को इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा समझा जाता है क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना कुछ तो रिस्क जरूर इन्वॉल्व होता है। अगर मैं और आसान लफ्जों में आपको समझाऊं तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप सिर्फ मुनाफा देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिस्क को नजरअंदाज कर देते हैं तो आप बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। जी हाँ, रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स को पहले से तैयार करता है ताकि वो मुश्किल हालात में भी अपनी फाइनेंशियल पोजिशन को संभाल सके। देखिये, रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत क्यों है? अब अगर रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत को वैल्यूएट किया जाए तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू मार्केट के उतरने चढ़ने, इकोनॉमिक सिचुएशन, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और कंपनी की परफॉर्मेंस से ये फैक्टर्स जो हैं वो मुतासिर होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का काम इन तमाम फैक्टर्स को समझना है और उनके असरात को कम करना है। इससे इन्वेस्टर्स अपने फाइनेंशियल गोल्स हासिल करने के करीब रहते हैं और जज्बाती फैसले करने से बच जाते हैं। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट की कुछ अहम टेक्निक्स भी हैं, जैसे डाइवर्सिफिकेशन। अपना सारा पैसा एक ही कंपनी या एक ही एसेट में लगाने की बजाय मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स में तकसीम करना डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास मान लेते हैं कि 100,000 रुपीज है और आप सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं तो उस कंपनी के नुकसान की सूरत में आपका ज्यादा पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर आप उसी रकम को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में तकसीम कर देते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट के नुकसान को दूसरे इन्वेस्टमेंट का जो मुनाफा है वो कवर कर सकता है। वहीं दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है एसेट एलोकेशन। देखिए दोस्तों, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगी। मान लेते हैं एक बंदा है फरहान, और फरहान ने अपनी सेविंग्स का सारा पैसा एक टेक कंपनी के स्टॉक मार्केट में लगा दिया। कुछ महीनों बाद कंपनी को नुकसान हुआ और स्टॉक की कीमत 40% गिर गई। फरहान को बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। दूसरी तरफ अली ने अपना पैसा स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और गोल्ड्स में तकसीम किया। जब स्टॉक नीचे गिरा तो गोल्ड की कीमत बढ़ गई और बॉन्ड्स ने एक स्टेबल रिटर्न दिया। इस तरह से अली का ओवरऑल नुकसान बहुत कम हुआ और ये रिस्क मैनेजमेंट की कामयाब मिसाल है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट का एक बुनियादी हिस्सा है। इसका मतलब रिस्क को खत्म करना नहीं है बल्कि उसे समझना और कंट्रोल करना है। उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन है, एसेट एलोकेशंस है और डिसिप्लिन प्लानिंग के जरिए इन्वेस्टर्स अपने पैसे को बेहतर तरीके से महफूज रख सकते हैं। जो इन्वेस्टर रिस्क मैनेजमेंट को समझकर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए लंबी मुद्दत तक फाइनेंशियल गोल्स हासिल करने में आसानी होती है। तो बस आज हमने आपको समझाया कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। वापस आएंगे कल तो एक और नए टॉपिक के साथ। आपको समझाएंगे बताएंगे कि ये टॉपिक क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. अभी तो मैं नहीं आपको बताने वाली हूँ कि कल मैं किस टॉपिक पे बात करूँगी. फिलहाल अभी के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो 103.7 FM दिल से देसी.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dilse Desi.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: यस वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। भाई द रिक्वेस्ट शो चल रहा है और शो की क्या शुरुआत हुई है, मतलब बेबो द ब्यूटीफुल ट्रैक एंड डेडिकेटेड टू द वन एंड ओनली करीना कपूर, जो कि आज 46 इयर्स की हो चुकी है। वैसे दो डेकेड से ज्यादा हो चुका है उनको फिल्म इंडस्ट्री में, और देखा जाए तो आज भी उनका वो स्टाइल, उनका स्वैग और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस एकदम अनमैच्ड है बॉस। तो चलो आज उनका बर्थडे हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं उन्हीं के फिल्मों के गाने डेडिकेट करते हुए, सुनते हुए। वैसे हमारे लिसनर्स शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारे कुछ लिसनर्स अपने पसंद के गाने बताते जा रहे हैं जो कि करीना कपूर के नहीं हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज का थीम इज करीना कपूर, तो उन्हीं की फिल्मों के गाने आज द रिक्वेस्ट शो पर प्ले होने वाले हैं। तो ज़रूर हमसे शेयर करें उनकी फिल्मों के गाने जो आपको बहुत पसंद हैं। 666-22-107 666-22-107 पर। और अभी सबसे पहली रिक्वेस्ट

आई है मोहम्मद इकबाल की, जो कि सुनना चाहते हैं। क्या बात है, ये इस गाने के बिना तो मुझे लगता है कि करीना कपूर का बर्थडे मन ही नहीं सकता है कि नहीं। कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये आइकॉनिक सॉन्ग, एंड यू नो समथिंग, इस गाने की शूटिंग एक दो दिन में नहीं पूरे 9 दिन में हुई थी। ओए होए, चलो बोले चूड़िया ये गाना पूरा पूरा मैं आपको सुनाने वाली हूँ। और उसके बाद जो रिक्वेस्ट आई है दैट इज़ ऑफ जमील, और इस पर्टिकुलर गाने में, इनफैक्ट इस पर्टिकुलर फिल्म में ही जो करीना कपूर थी वो एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह थी, लेकिन उनकी छाप बहुत ज्यादा थी। एंड द मूवी वॉज गब्बर इज बैक, एंड द सॉन्ग इज तेरी मेरी कहानी, अरिजीत सिंह, पलक मुच्छल की आवाज। व्हाट अ रोमांटिक लवली सॉन्ग। तो ये गाना भी पूरा पूरा आप इंजॉय करने वाले, तो आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
1: फुटबॉल का असली रंग, असली जज्बा और असली धमाका लेकर आ रहा है मोहम्मद अमीन. It's a goal show. जहां हर मैच की हर किक होगी लाइव, हर गोल बनेगा एक सेलिब्रेशन.
2: हाइलाइट्स, कमेंट्री और स्पोर्टी वाइब्स का फुल पैकेज. अगर फुटबॉल है आपका पैशन तो ये शो है आपका अल्टीमेट मजा. डोंट मिस इट. इट्स अ गोल शो विद मोहम्मद अमीन एवरी संडे एंड थर्सडे एट 1 PM लाइव ऑन FM 107. दिल से देसी.
3: सेहत की बात हो तो आत्मा चाहिए माहिरीन की राय पर. माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात. स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक. सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी. याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत.
4: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
5: वेलकम वंस अगेन FM 107. सुन रहे हैं, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. और आज द रिक्वेस्ट शो टोटली डेडिकेटेड है हमारी ब्यूटीफुल गॉर्जियस सी लेडी, दैट इज करीना कपूर. हाँ जी, फिल्मी दुनिया का बहुत बड़ा नाम. आज 46 इयर्स की हो चुकी है और उनके गाने आज हम प्ले कर रहे हैं. कुछ खास बातें भी उनके गानों के पीछे की बता रहे हैं. सो अभी हमें अरबाज का मैसेज आया एंड ही वॉन्ट्स टू लिसन टू द सॉन्ग. धुन से तो समझ गए होगे कौन सा गाना है. बताओ

0: हाँ क्या ट्रेंडिंग गाना था भाई. मतलब जब ये रिलीज हुआ था, एक तो इस गाने का वीडियो स्विस लोकेशन इतनी एग्जॉटिक, और उसके बाद इस गाने के पीछे की आवाज. दिस इज सुनिधि चौहान फर्स्ट एवर लव सॉन्ग. हाँ जी, तो इस गाने की खासियत तो है, और ये गाना पूरा पूरा आपको मैं सुनाऊंगी. और उसके बाद हैदर अली की रिक्वेस्ट पर उफ उदित नारायण की आवाज. एंड द सॉन्ग इज
1: दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है.
0: क्या बात है, क्या बात है. मतलब मूवी है बेवफा, एंड अक्षय कुमार एंड करीना कपूर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत ही खूबसूरत दिखाई गई है. हाँ, तो ये गाना 2005 का सुपर डुपर हिट गाना है, जो कि हम पूरा पूरा आपको सुनाने वाले हैं. और जनाब, आपका फेवरेट गाना कौन सा है जो कि करीना कपूर की फिल्म का है, ज़रूर शेयर करें. उसके पीछे की कहानी भी बता सकते हैं, और किसी खास को अगर डेडिकेट करना है तो वो भी करें. 666-22-107, 666-22-107. और अभी चलिए जानते हैं कि आप और मैं दोस्त हैं या अजनबी. जस्ट टीजिंग. चलिए सुनते हैं गाना. स्टे ट्यून्ड.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
4: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर,
5: यू मैटर
4: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी।
6: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है,
7: चले तो कट ही जाएगा सफर,
6: तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
8: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से,
9: 7:15 बजे से
8: FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ।
0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
10: हाँ जनाब, वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप। क्या कहना द रिक्वेस्ट शो पर, क्या कमाल कमाल की रिक्वेस्ट कर रहे हो बॉस। मतलब करीना कपूर की फिल्मों के वो खूबसूरत गाने जो मेरे भी ऑल टाइम फेवरेट रहे, वाओ आई सो लव्ड इट। वेल फारूक साहब की रिक्वेस्ट है, ये श और स में थोड़ा अंतर नहीं हो पाया। एनीवे, सो फारूक साहब की रिक्वेस्ट है और वो सुनना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्या बात है, यादें फिल्म का ये ब्यूटीफुल ट्रैक और क्या ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी भाई। मतलब वो कहते ना, इलेक्ट्रिफाइंग पेयरिंग थी ऋतिक रोशन एंड करीना कपूर की, और इस पर्टिकुलर पेयरिंग ने ही इस गाने को सुपर डुपर हिट कर दिया। एट द सेम टाइम इसके वो जो बीच डांस था, प्लस वो स्टाइलिश आउटफिट्स, ओह माय गुडनेस। मतलब 2000 में ये ट्रेंड इस पर्टिकुलर गाने ने सेट किया था कि जहाँ पर हर कोई बीच परफॉर्मेंसेस करता था। सो यस, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक जो कि पूरा मैं आपको आगे सुनाने वाली हूँ। एंड देन सैयद अतहर की रिक्वेस्ट पर हम प्ले करने वाले हैं। सो रियल लाइफ कपल करीना कपूर एंड सैफ अली खान उस टाइम पर एंगेज थे, एंड देन इस फिल्म में उन्होंने काम किया साथ में, और सच में मतलब उनको देखकर लग रहा था कि वो जो केमिस्ट्री है ना वो बहुत नेचुरली आ रही है। सो ब्यूटीफुल ट्रैक्स बस आपकी राहों में आ रहे हैं, और आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं करीना कपूर की फिल्मों का जो आपके दिल को हमेशा छू जाता है।

0: फेवरेट. मैसेज कीजिए 666-222-107 पर और अभी के लिए बने रहिए FM 107 पर दिल से देसी.
1: तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले जब दिल मिले तब गुल खिले जब दिल मिले तब दिल मिले.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन, एफएम 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपकी फरमीदा द रिक्वेस्ट शो पर। अब एकदम वक्त भागे जा रहा है एंड आई मेक श्योर कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके पसंद के गाने स्पेशली करीना कपूर थीम, क्योंकि आज उनका 46th बर्थडे है, उनके मैं प्ले कर सकूं। लेकिन अभी इट्स अ टाइम फॉर क्वेस्ट टाइम।
0: क्वेस्ट टाइम।
1: तो अभी मैं आपको एक ऐसा गाना बीच से सुनाने वाली हूँ, आपको पहचानना है कि ये गाना कौन सा है। और ये गाना जब रिलीज़ हुआ था तब शाहिद कपूर एंड करीना कपूर की जोड़ी सुपर डुपर हिट हो गई थी।
2: आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी।
1: सोचिए सोचिए कौन सा गाना है। इस गाने का नाम अपने नाम के साथ लिख के भेजें 6622107 पर, 6622107। और अभी आफ्ताब की रिक्वेस्ट पर हम प्ले करेंगे रब्बा मेरे रब्बा रब्बा फ्रॉम द मूवी मुझे कुछ कहना है, जिसमें तुषार कपूर ने अपना डेब्यू किया था ऑपोजिट करीना कपूर। सो इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, आप सुनेंगे। और उसके बाद एक और गाना है जिसकी दो लोगों ने रिक्वेस्ट की है और दीपक कुंवर और जीशान सुनना चाहते हैं, तेरी मेरी प्रेम कहानी। हाँ जी, तो इसका रिमिक्स वर्जन हम आपको आगे सुनाएंगे, सो गेट रेडी फॉर इट, स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।

0: एग्जैक्टली और आपके ख्यालों के चलते ही द रिक्वेस्ट शो हमने बनाया है.
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
0: So yes, my guys, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी A for Amita. द रिक्वेस्ट शो बिल्कुल अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है और आज जो थीम थी वो थी करीना कपूर के ऊपर, बिकॉज आज उनका 46th बर्थडे. उन्हीं की फिल्मों के गाने हमने इन्जॉय किए, उनके फिल्मों के गानों की खासियत को भी हमने जाना और हमारे काफ़ी सारे लिसनर्स हैं जिनके हम कुछ गाने अभी प्ले नहीं कर पाएंगे. बट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि कल फिर शाम 4 बजे आपकी मेरी मुलाकात होगी. तो द रिक्वेस्ट शो का ये सिलसिला जो कि आपका अपना पर्सनल, वो कहते हैं ना, म्यूजिकल प्लेलिस्ट है, वो चलता रहेगा. फिलहाल मैंने आपको क्विज टाइम पर एक गाना बीच से सुनाया था और कहा था कि गाना पहचानो. वेल, मोहित चौहान की आवाज एंड इस पर्टिकुलर गाने ने मोहित चौहान की पॉपुलैरिटी को बिल्कुल बढ़ा दिया था और उनके करियर का ये टर्निंग पॉइंट था. और करीना कपूर की फिल्म जब वी मेट का ये गाना है. यस, तुमसे ही दिन होता है और इसे सही गैस किया दीपक, अकबर, रिजवान, मोहम्मद यूसुफ खान और एडी ने. सो डेफिनेटली ये गाना डेडिकेटेड टू यू ऑल. और इसी के साथ मैं कहूंगी वक्त हो गया है मेरे जाने का, तो मुझे जाना होगा. आपने क्या करना है, हमारे FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है और फिर आपकी मेरी मुलाकात कल होने वाली है. तो जाते जाते कह दो जनाब, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक। राइट दोस्तों, टाइम फॉर द टाइम चेक। और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 5:01।
2: आप सुन रहे हैं विमेन वेलनेस आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
1: हाँ जी, सलाम आदाब और आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद इस शो में जिसका नाम है विमेन वेलनेस। एक ऐसा शो जो खास करके हम डेडिकेट करते हैं तमाम खूबसूरत प्यारी प्यारी फीमेल्स के लिए। यहाँ पर हमारी भरपूर कोशिश होती है कि हम उन टॉपिक्स पर बात करें जो आपकी सेहत से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और कई बार आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा झिझकती हैं, रिलक्टेंट हो जाती हैं, बात नहीं खुल के कर पाती। तो हमने कहा बस इस शो के जरिए उन सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, वो चीज़ जो आप जानना चाहती हैं आप तक पहुंचाई जाएगी, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी मालूमात। और आज भी आज के शो में हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल इस बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं, जिनसे अब से थोड़ी देर बाद हम जो है वो अपनी बातचीत का सिलसिला बढ़ाने वाले हैं आगे और टॉपिक क्या है उस पर भी बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले गाने से आज के शो की शुरुआत करेंगे। और जैसे अभी तक आप सुन ही रहे थे कि अमिता ने आपको बताया कि भाई आज जो है ना वो करीना मैम का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो मैंने भी ढूंढ ढांढ के एक गाना तो करीना मैम के बर्थडे के लिए निकाल ही लिया। अब चलिए फिलहाल इस गाने से शो का आगाज करते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें होने वाली हैं, सो स्टे हुक टू एफएम 107 कहते हुए दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं विमेन वेलनेस आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं शो विमेन वेलनेस, मैं हूं नासिया आपके साथ। और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने के लिए डॉक्टर समरीन जफर। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहूंगी एफएम 107 पे, कैसी हैं आप?
2: थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं नासिया?
1: वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इन द सेंस कि मुझे लगता है जितनी फीमेल्स इस वक्त हमें सुन रही हैं उन सब के लिए बड़ा यूजफुल भी होने वाला है। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस पर। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये एंडोमेट्रियोसिस एक्चुअली है क्या?
2: तो नादिया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम तकरीबन रिप्रोडक्टिव एज में हर लड़की जो है वो किसी ना किसी टाइम के ऊपर, लड़की खातून जो हमारी बहनें हैं, पीरियड्स पेन के साथ गुजरती हैं कि पीरियड्स का पेन इज वेरी वेरी वेरी कॉमन। एंडोमेट्रियोसिस इज़ नॉट अ सिंपल पीरियड्स पेन, इट्स अ कॉम्प्लेक्स डिजीज़ के जिसको अर्ली डायग्नोज करना, अर्ली मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली ख़वातीन अगर तो यंग एज के अंदर ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं। अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो एंडोमेट्रियोसिस ये होता है कि जो हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, जिसे बच्चेदानी की झिल्ली कहते हैं, यूजुअली क्या होती है, वो मोटी होती है, जब हार्मोन के इफेक्ट के अंदर वो ख़त्म होते हैं वो झिल्ली टूटती है, ब्लीडिंग होती है, जिसको हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। एंडोमेट्रियोसिस में ये जो एंडोमेट्रियम के खुलिए होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यूट्रस के बाहर निकल के चिपक जाते हैं, इसको मैं इसी तरह से कहूँगी अटैच हो जाते हैं, यूट्रस ओवरीज के ऊपर आ जाते हैं, जो फिलोपियन ट्यूब्स के ऊपर आ जाते हैं, यूट्रस की सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। तो अब जब पीरियड्स का नॉर्मल हार्मोनल साइकिल चलता है हमारी बॉडी के अंदर, तो जहाँ वो असरअंदाज होता है रहम की झिल्ली के ऊपर, वहीं पर जहाँ जहाँ ये खुलिए मौजूद होते हैं वो भी इन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, अफेक्ट में आ जाते हैं।
1: सही,
2: यूट्रस पे तो हुआ, ब्लीडिंग हुई, ख़त्म हो गई, लेकिन

0: उनकी मेहनत, उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है। पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं, और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप तक। ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल, तो सुनिएगा जरूर। एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: दोस्तों एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं शो वेमेन वेलनेस, मैं हूं नाजिया आपके साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समरीन। एक बार वापस से डॉक्टर आपको वेलकम कहना चाहूंगी। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस, और अभी तक हमने ये समझा कि जो नॉर्मल पेन है या जो पीरियड्स का पेन है जिसे हम नॉर्मल भी समझते हैं, वो कई बार जो है वो हो सकता है एक धोखा हो, और हमें किस तरह से डॉक्टर के साथ जो है वो रुजू करने की ज़रूरत है, कब करने की ज़रूरत है, कौन कौन से मेजर सिम्टम्स हैं जो डॉक्टर ने बताए उन पर हमें गौर करना चाहिए। और अब मैं डॉक्टर से ये जानना चाहूँगी कि हमें आप बताइए कि इसके कौन कौन से टेस्ट हैं जो करवा लेने चाहिए, एंड देन आगे ये भी बताइए कि इसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं।
2: सो डायग्नोसिस के लिए नाजिया सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस सिर्फ टेस्ट के ऊपर बेस्ड नहीं करती या सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर बेस्ड नहीं करती। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो इसकी कंप्लीट एवेलुएशन जो है उसके अंदर आपकी कंप्लीट हिस्ट्री अलामत कि उनको एक्सप्लोर करना है क्या, इस उसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों ख़वातीन का लड़कियों का। उसके बाद फिर बारी आती है ब्लड टेस्ट की, कुछ ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद इमेजिंग, जिसमें पहली जो बेसलाइन है वो अल्ट्रासाउंड पेल्विस ज़रूरी होता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो MRI भी हम एडवाइस करते हैं ये देखने के लिए कि अगर ये डिज़ीज़ है तो उसकी एक्सटेंट क्या है। सो ये सब स्टेप्स जो हैं वो हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, MRI, ये सब जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस की तरफ हमें लेके जाने के लिए। लेकिन जो ये एक बात है कि एग्जैक्ट मालूम हो कि एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं, उसका सिर्फ एक गोल्ड स्टैंडर्ड, आप उसको टेस्ट कह लें, आप उसको सर्जरी, वो लेप्रोस्कोपी है। लेप्रोस्कोपी होती है कि हम एक कैमरे के थ्रू टमी के अंदर वो सारा जाके पेल्विस को रिव्यू करते हैं। दैट इज़ द ओनली गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट या सर्जरी या डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसमें कि ये कन्फर्म होता है कि दिस पर्टिकुलर लेडी इज़ सफरिंग फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस। और इस लेप्रोस्कोपी का फ़ायदा ये होता है कि उसी वक्त वो उसकी एक्सटेंट भी हम किसी हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक उस एंडोमेट्रियोसिस की एक्सटेंट को वैल्यूएट कर लेते हैं, और उसी टाइम हम इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट भी शुरू कर सकते हैं कि अगर सिस्ट हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, या कहीं स्पॉट्स हैं उनकी एब्लेशंस हो सकती हैं, वो जो फिर डिफरेंट आगे मोर्टालिटीज़ हो जाती हैं। तो लेप्रोस्कोपी जो है दिस इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन डायग्नोजिंग द एंडोमेट्रियोसिस। एट द सेम टाइम इसी लेप्रोस्कोपी के टाइम पे हम उसकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। सो ये तो बात हो गई कि डायग्नोज कैसा हुआ और ट्रीट कैसा हुआ। अगर किसी ख़वातीन को, यानी अगर किसी खातून को लेप्रोस्कोपी तक जाने की ज़रूरत नहीं पेश आती और अर्ली एवेलुएशन में ही कन्फर्म हो जाता है, या बच्चियाँ हैं, या बहुत दफ़ा यूजली मदर्स अलाउ नहीं करती एकदम से एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट लेके जाने के लिए, तो नो प्रॉब्लम, दिस इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। लेकिन होता ये है कि फिर हमें मैनेजमेंट तो बहरहाल उसकी शुरू करनी है, डिपेंड्स ऑन द क्लिनिकल फाइंडिंग्स, डिपेंड्स ऑन द अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग, इवन MRI फाइंडिंग्स। तो एक तो उसमें सबसे पहला पेन रिलीफ, पेशेंट आया ही पेन के साथ है, तो पेन रिलीफ इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। उसके बाद डिजीज़ की एक्सटेंट पे डिपेंड करता है, हार्मोनल मैनेजमेंट है, हार्मोन्स में टेबलेट्स भी आती हैं, हार्मोन में इंजेक्शन भी आते हैं। अगर मैरिड ख़वातीन हैं और उनकी फर्टिलिटी फ़िलहाल 2-3 बच्चे हैं और फ़िलहाल प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रही हैं, तो हम वो हार्मोनल कोयल, माइरीना का नाम सुना होगा, हार्मोनल कोयल इंजर्ट की जा सकती है, इंजेक्शन का मैंने जिक्र किया। और फिर दूसरी ऑप्शन जो है वो सर्जिकल ऑप्शन है, एक मैंने कहा लेप्रोस्कोपी की जा सकती है, डिपेंड क्या एक्सटेंट है, मेजर प्रोसीजर्स भी किए जा सकते हैं। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, डायग्नोसिस कैसे होता है, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस, अल्ट्रासाउंड, MRI एंड लेप्रोस्कोपी। और ट्रीटमेंट ऑप्शन जो हमारे पास हैं, पेन मैनेजमेंट, हार्मोनल ट्रीटमेंट, हार्मोनल ट्रीटमेंट में है मेडिसिंस भी आती हैं, इंजेक्शंस भी आते हैं, कोयल हार्मोनल कोयल भी आता है, और तीसरी बात आती है सर्जिकल ऑप्शन जो कि है या लेप्रोस्कोपी या दूसरे जिसको हम लेप्रोटमी कहते हैं।
1: सही, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर, कई बार ये भी होता है कि एंडोमेट्रियोसिस की जो डायग्नोसिस है वो बहुत लेट हो जाती है, तो इसकी वजह क्या है?
2: उसकी वजह ये है कि हम बहुत अरसे तक पीरियड्स के पेन को नॉर्मल पेन समझते रहते हैं। हमारी अम्माएं कहती हैं नहीं ये तो हमें भी होता था, ये सबको होता है, इसलिए अमूमन स्पेशली यंग गर्ल्स के अंदर एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस उस वक्त तक डिले हो जाती है जब तक दे डिडंट गेट मैरिड, और जब वो मैरिड होती हैं कंसेप्शन नहीं हो पाती, तब जब आकर हॉस्पिटल जाना जाना शुरू होता है और वैल्यूएशन शुरू होती है तो पता लगता है कि बेसलाइन इशू ही एंडोमेट्रियोसिस का चल रहा है। तो बेसिक वजह यह है कि इसकी प्रेजेंटेशन नॉर्मल पीरियड्स पेन के साथ बहुत ज़्यादा मिमिक करती है, एक जैसी होती है, दैट इज़ द रीज़न इसकी डायग्नोसिस इज अ बिट लेट
1: हो जाती है। अच्छा क्या डॉक्टर, जो इसका पेन है एंडोमेट्रियोसिस का पेन, वो पीरियड्स के ही साइकिल के दौरान होता है या उसके अलावा दूसरे साइकिल में भी हो सकता है?
2: मैक्सिमम या मोर सवियर तो डेफिनेटली ड्यूरिंग पीरियड्स ही होता है, लेकिन जब एंडोमेट्रियोसिस बहुत क्रॉनिक हो जाए, यानी जब बहुत लंबा लंबा लंबी चलनी शुरू हो जाए विदाउट मैनेजमेंट विदाउट ट्रीटमेंट, तो फिर खातून को हर वक्त एक डल बॉडी एक्स रहते हैं, स्पेशली कमर के निचले हिस्से में, स्पेशली पेट के निचले हिस्से में बहुत हर वक्त ईंधन सा महसूस होती है, और अगर एंडोमेट्रियोसिस की एक्सटेंड ज़्यादा आगे दूसरे ऑर्गन तक फैल जाए तो बहुत दफ़े ऐसा भी होता है कि ख़वातीन जब यूरिन पास करती हैं इट्स स्टार्टेड बिकमिंग पेनफुल एट टाइम्स, एंड एट टाइम्स इवन स्टूल पास करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये मैक्सिमम होता है पीरियड्स के दौरान में। सो दीज आर द अदर सिम्टम्स, और दीज आर द सिम्टम्स अदर द मेंस्ट्रुअल साइकिल अ पेशेंट कैन सफर एज वेल।
1: सही। सो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव टॉक जो है वो हो रही है ऑन द टॉपिक कॉल एंडोमेट्रियोसिस। अगर आपको भी कुछ पूछना है या जानना चाहते हैं तो कनेक्ट हो सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारा नंबर है 666-22107। फिलहाल यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।
0: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी गेम चेंजर सीजन 2।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं विमेन वेलनेस आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: Right guys, एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं शो वुमेन वेलनेस, मैं हूं नाजिया आपके साथ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समरीन। डॉक्टर, आपको भी वापस से हम इस शो में वेलकम कहेंगे।
2: थैंक यू नाजिया।
1: आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वैसे तो देखा जाए ऑलमोस्ट हमने बहुत सारी चीज़ें जो थी वो कवर कर ली, बहुत कुछ पूछ लिया डॉक्टर से। जैसे आपने कहा भी था कि हमने जब फर्टिलिटी पर बात की थी तो थोड़ा सा डिटेल में और जानेंगे इस टॉपिक को, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। तो आपसे मैं वापस से जानना चाहूंगी कि क्या एंडोमेट्रियोसिस जो है वो प्रेगनेंसी को भी अफेक्ट करती है और किस तरह करती है?
2: किस तरह करती है एंडोमेट्रियोसिस? प्रेगनेंसी को अफेक्ट नहीं करती, खातून को प्रेग्नेंट होने में मुश्किलात का सामना कर पड़ सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी स्मूथ चलती है। अच्छा, अब क्या वजह होती है कि कंसेप्शन में मुश्किल होती है? जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये जो एंडोमेट्रियोटिक सेल्स होते हैं ये बच्चादानी से बाहर आते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं ओवरीज के ऊपर, फिलोपियन ट्यूब्स के ऊपर और यूट्रस की सरफेस के ऊपर और पेल्विस में मुख्तलिफ जगह पर। अब अगर हम इसको बेसिक से देखें तो होता यह है कि जब ओवरीज का फंक्शन अफेक्ट होना शुरू होता है, लो क्वालिटी ओवम्स आना शुरू होते हैं, कंसेप्शन में मुश्किल होती है। जब फिलोपियन ट्यूब्स के ऊपर एंडोमेट्रियोसिस होती है या इवन ओवेरियन टिश्यूज के ऊपर होती है, हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है। अब जब फिलोपियन ट्यूब्स के ऊपर एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स बनते हैं तो क्या होता है कि जो जो फिलोपियन ट्यूब जो है, जो कि रास्ता है ओवरी और यूट्रस के दरमियान का, जिससे गुजर के ओवम ने आना है और वहाँ पर कंसेप्शन होनी है, वहाँ पर सॉरी ओवम और स्पर्म ने मिलना है और कंसेप्शन यूट्रस में होनी है, तो उस वहाँ पर जब फिलोपियन ट्यूब्स के टिश्यू अपना काम पूरी तरह नहीं कर पाते तो होता क्या है कि वो ओवम और स्पर्म की जो है वो जहाँ पर उन्होंने मिलना होता है वहाँ वो नहीं मिल सकते और डिले होता है, एज अ रिज़ल्ट कंसेप्शन नहीं हो पाती। तो ये बेसिकली बहुत बेसिक मैकेनिज्म होता है कि इसको हम ये कह सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस के अंदर ओवरीज, फिलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस के थोड़ी बहुत स्ट्रक्चरल एब्डोमेलिटीज़ शुरू हो जाती हैं और वो स्ट्रक्चरल एब्डोमेलिटीज़ जो हैं वो फंक्शनल इफेक्ट के ऊपर असर डालती हैं और इन रिटर्न सोजिश हो जाती है, दर्द रहता है और कंसेप्शन मुश्किल होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर अगर अगर आप ये समझें कि जी जिन ख्वातीन को एंडोमेट्रियोसिस है वो उनमें प्रेगनेंसी कभी नहीं हो सकती, ये बात बिल्कुल गलत है। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि टू सम एक्सटेंट एंडोमेट्रियोसिस मौजूद होती है और ख़ातून को प्रेग्नेंट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रेगनेंसी बड़े आराम से हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि डिज़ीज़, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि किस एक्सटेंट के ऊपर है। लेकिन उसमें मैं ये कहूँगी कि अगर आपका अर्ली डायग्नोज हो गया कि जी एंडोमेट्रियोसिस है या एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं या आपकी अवैल्यूएशन चल रही है, मीनवाइल यू गेट मैरिड एंड बाय सिक्स मंथ्स यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम, गो टू द गायनेकोलॉजिस्ट फॉर अवैल्यूएशन।
1: सही, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, ज़बरदस्त। यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो पूछनी है, इस टॉपिक को भी कंक्लूड करेंगे। और यहाँ पर जो मेरे पास सवाल है वो वही है सिम्टम्स के हवाले से, मुझे पूछा है किसी लिसनर ने, तो आई थिंक अभी हम लास्ट में एक बार थोड़ा सा वापस से
2: एक रिकैप
1: कर लेंगे तो बता देंगे आपको। लेकिन फिलहाल यहाँ पर छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials, ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल, आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
6: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक,
7: जनरेशन टॉक
6: विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूसडे एट 3 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
7: दोस्तों,
6: ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल आपको, आपके घर वालों को और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। अपने मोबाइल को हमेशा साइड पर रखें ताकि अपने साथ साथ दूसरों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सके। आपकी ये आदत और एहतियात किसी की जान बचा सकती है। महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि पूरी तवज्जो सिर्फ रोड पर हो और हर किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए। अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए ड्राइविंग के वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें और किसी की जिंदगी को रिस्क में ना डालें। ड्राइव करते वक्त पूरी तवज्जो रोड पर रखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है। ये भी याद रखिए कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी की हिफाजत भी है। वजारत दाखिला का कहना है कि ये छोटी छोटी एहतियात आपको और आपके आसपास के लोगों को महफूज रखती हैं। जिम्मेदार फर्द होने के फर्ज को अदा करते हुए बहुत ही एहतियात और ख्याल से ड्राइविंग कीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: समीन, अरबी जबान की कहावत है, यवद्दु मजनूनक ला यजीक अजन मिन्ना। इस कहावत का मतलब बताने से पहले मैं ये बता दूं कि ये कहावत किसके लिए कही जाती है। उन लोगों के लिए ये कहावत बोली जाती है जो किसी ऐसे हाल या शख्स को छोड़ना चाहते हैं जिसकी खामियां उन्हें मालूम हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ नया लेने जा रहे हैं जिसका अंजाम शायद और भी बुरा निकले। इस कहावत का मतलब ये है कि अपने मौजूद पागल को थामे रखो, कहीं ऐसा ना हो कि उससे भी ज्यादा पागल हाथ लग जाए। गोया ये अकलमंदों की नसीहत है कि नामालूम मुसीबत से बेहतर है मालूम मुश्किल ही को बर्दाश्त कर लेना। कहते हैं ना कि दिखा हुआ दुश्मन बेहतर है छुपा हुआ नहीं। जिसके नक्स और शर आपको मालूम है वो ज्यादा काबिले बर्दाश्त है बनिस्बत उसके जिसका कुछ पता ही नहीं। दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर जल्दबाजी में नए तजुर्बे की तलाश करते हैं, मगर इस कहावत को याद रखें, यवद मजनूनक ला यजीक अजन मिन्ना, यानी जो दिखाई दे रहा है उसके नक्स आप जानते हैं मगर जो अनदेखा है उसके अंजाम का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसलिए कभी कभी मालूम मुश्किल ही नामालूम मुसीबत से बेहतर होती है।

0: कंप्लेंट्स हॉटलाइन नंबर 3361-8627 पर कॉल करके या मैत्राश ऐप का इस्तेमाल करके भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ये टिप्स आपकी चैरिटी को सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद देंगी और आपको फ्रॉडस्टर्स के जाल में नहीं आने देंगी। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं विमेन वेलनेस आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: राइट दोस्तों, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शो विमेन वेलनेस, मैं हूं नासिया आपके साथ। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर समरीन। आज हमने जो है इस टॉपिक पे बात की, ये टॉपिक था एंडोमेट्रियोसिस। अब फाइनली हम डॉक्टर से चाहेंगे कि वो इस टॉपिक को कंक्लूड करें और अपने कंक्लूडिंग रिमार्क में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर।
3: सो एंडोमेट्रियोसिस जिस पे आज हमने डिस्कशन की, इट्स अ प्रिटी कॉमन प्रॉब्लम ख़वातीन में। हर मैं अगर इसको अगर शरह के हिसाब कहा जाए तो हर 10 में से एक खातून जो कि रिप्रोडक्टिव लाइफ में होती है किसी ना किसी टाइम के ऊपर इससे गुजरती ज़रूर है। बेसिकली जो अलामात जो ज़ाहिर होती हैं वो ये कि पीरियड्स का सवियर पेन जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ ज़्यादा ही होता चला जाता है। तो अगर आपको लगे कि आपके पीरियड्स का पेन ज़्यादा होता चला जा रहा है, पेन किलर्स के बावजूद असर नहीं होता और बढ़ते वक्त के साथ आपकी रेगुलर लाइफस्टाइल को, आपके वर्क को अफेक्ट कर रहा है, आपको छुट्टी लेनी पड़ी है, बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं और फिर भी दर्द से, तो दिस इज़ नॉट समथिंग नॉर्मल। आपने अपने लिए सोचना है और आपने डॉक्टर को चेक करवाना है ताकि अगर किसी पॉइंट पर लगे कि आप किसी पॉइंट के ऊपर एंडोमेट्रियोसिस डेवलप कर रही हैं तो उसको एवेल्युएट किया जा सके, उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि अपने लिए वक्त निकालें, अपनी जिस्म की आवाज़ को सुनें, अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें। अगर दर्द है तो क्यों हो रहा है, आपने सिर्फ उसको बर्दाश्त नहीं करना, आपने उसको एवेल्युएट कराना है और दिखाना है कि क्या वजह चल रही है। इंशाल्लाह अगर कुछ नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, वेरी वेल एंड वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर है तो उसका बाकायदा ट्रीटमेंट, अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत ज़रूरी है।
2: सही, बहुत ही अच्छी बात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएं और आपने इतनी कीमती मालूमात हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
3: बहुत शुक्रिया नाजिया आपने बुलाया और हमने इस पे टॉपिक पे डिस्कस की। आई होप कि हमारे ऑडियंस को कुछ फ़ायदा हुआ होगा इस डिस्कशन का।
2: इंशाल्लाह बहुत कुछ। और जाते जाते दोस्तों बस यही आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप या आप किसी को भी आसपास जानती हैं ऐसी फीमेल है, ऐसी बच्ची है जिन्हें शदीद पीरियड पेन, पेल्विक पेन या दूसरे सिम्टम्स जो हैं वो उनके सामने आ रहे हैं तो काइंडली उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। फौरी तौर पर जो है वो मेडिकल एडवाइस जो है वो ज़रूर हासिल कीजिए क्योंकि आपका सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप अपनी फैमिली को भी अच्छे से टाइम दे सकें। तो बस अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और आपकी हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर इसी शो में जिसका नाम है विमेन वेलनेस। वेल, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
4: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर, हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से RJ सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। देसी
5: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है,
6: चले तो कट ही जाएगा सफर।
5: तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
0: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ

तवज्जो रोड पर रखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है। ये भी याद रखिए कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी की हिफाजत भी है। वजारत दाखिला का कहना है कि ये छोटी छोटी एहतियात आपको और आपके आसपास के लोगों को महफूज रखती हैं। जिम्मेदार फर्द होने के फर्ज को अदा करते हुए बहुत ही एहतियात और ख्याल से ड्राइविंग कीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शूव प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक
2: स्टूडियो की घड़ी में 6:02
3: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
4: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
2: भाई साहब रात को तो जान जो है वो अब निकल नहीं रही है अब अपनी जान बच रही है ये तो मैं कल देख चुका हूँ कल रात को थोड़ा टहलने घूमने निकले तो मौसम सही हो गया भाई साहब सबसे बेस्ट बात मौसम सही है और उसके अलावा सूरज कितना मस्त दिखता है यार आज बड़े दिनों के बाद मैं 5 बजे ऐसा ऑफिस से थोड़ा सा ऐसा बाहर एक राउंड लगा के जब आया है ना तो क्या बेहतरीन मौसम है भाई साहब ऐसा लगता है कि सूरज को देखते रहो लेकिन काम ऐसा है कि आपको ऑफिस में रहना पड़ता है आपको वो खूबसूरत जो शाम है वो देखने को नहीं मिल पाती है और यही यकीन मानो यार जब ये लंबे सफर पर निकलो ना हाईवे पे रहो और वो ढलता हुआ सूरज दिखे जिसकी रोशनी आपको आंखों पे परेशान ना कर रही हो मजा आ जाता और कल भी बहुत अच्छा था यार तो आप 5:30-5 बजे के आसपास जब डूबता हुआ सूरज देखते हैं तब ऐसा लगता है कि हाँ यार दिन की जितनी थकान है ना वो उतर गई है क्योंकि दिल आपका खुश हो जाता है ऐसे खूबसूरत से मौसम या वो मौसम तो नहीं ऐसे खूबसूरत से सनसेट को देखते हुए तो इस्तकबाल है आप सभी का FM 107 में 6:03 अभी से लेकर 7 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा और इस बीच सवाल जो है वो हर रोज की तरह बड़ा इंटरेस्टिंग और आज का सवाल जो है वो हम कतर की लॉ पर जो है वो पूछ रहे हैं मुझे लगता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कई लोगों की जॉब जो है वो चली गई है अच्छा कुछ ऐसी जॉब होती है ना जिस जॉब में आपको पैसे नहीं मिलते लेकिन उस जॉब में मज़ा बहुत आता है तो जैसे अभी आप जो जॉब कर रहे हैं कभी कभार क्या मज़ा आता है आपको जॉब करने में कभी कभी मन नहीं करता है ना कभी कभार आपको पता है कि यार जॉब करेंगे तभी पैसा मिलेगा तो इसलिए आप करते हैं और फिर मन लगा लेते हैं लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि इसमें पता है पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन मजा आता है भाई साहब और वो है बुराइयां या र्यूमर्स फैलाने वाली जॉब है किसी की नेगेटिविटी सुन ले कान में तो दिल में सुकून मिल जाता नहीं तो है नहीं होता है वो दादी नानी बैठी हुई हो और एकदम से खाला आए और फिर वो घर के बगल वाली औरत के बारे में बात करने ऐसा दादा दादी और नाना नानी का कितना ज़्यादा ऐसा पता चल जाता कि हाँ अरे ये तो अब टॉपिक है इस पर बैठा जा सकता है फिर आपकी कोई बहन आती है और वो किसी और के बारे में बताती है अपने नंद के बारे में बताती है तो कितना मज़ा आता नहीं भाई लेकिन ये वाले जॉब में आपको

पता है पैसा नहीं मिलेगा, आपको मजा बड़ा आता है। तो र्यूमर्स जो है वो लोग बहुत ज्यादा फैलाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना, यू नो, सच बात होती है किसी के बारे में और घर पे बैठ के लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं, र्यूमर्स में लोगों को बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन कतर का एक लॉ है, उसमें क्या है कि र्यूमर्स फैलाने वाले को, चाहे वो सच ही क्यों ना हो, उनके लिए रूल जो है वो सेट कर दिया गया है, और इसके तहत आपको जेल भी हो सकती है, आपको फाइन भी हो सकता है, है ना। और कतर में अगर आपने ये काम किया तो लंबा फटका पड़ेगा। तो आज मैंने सोचा इसी पर एक मजेदार सवाल हो जाए बाबू। बाकी अब आपको 666-22107 पे इसका जवाब देना है। वेल, कई ऐसे ईमानदार दिल के बड़े ही साफ लोग होते हैं जो इन र्यूमर से दूर रहते हैं, उनको वो जरा भी नहीं पसंद है। मेरे ऐसे कई जानने वाले लोग हैं जो असल में ना, जब बुराइयां होती हैं या फिर इधर उधर की बात करते हैं तो वो थोड़ा किनारा कर लेते हैं या फिर वो कुछ और बात कर देते हैं, वो टोकने लग जाते हैं। ऐसा डायरेक्ट भी नहीं टोकना आता है उनको, लेकिन वो मस्त तरीके से बात घुमा लेते हैं। और मैं वो कला सीख रहा हूँ, क्या है, मैं मना नहीं कर पाता था किसी को, बट मैं वो कला सीख रहा हूँ अपने कुछ दोस्तों से। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ बैठना, जो जैसी बुराइयां होने लगे ना, एक तो होता है भाई, मैं ये नहीं कहूँगा कि दूसरे जेंडर को, लेकिन मर्दों में थोड़ा कम होता है होता मर्दों में भी है, मजा उनको भी बहुत आ रहा होता भाई। लेकिन क्या है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको ज्यादा मजा आता है, जबकि दो महिलाएं अगर बात कर रही होंगी तो वो घुस घुस के पूछता कि हाँ क्या क्या क्या बता रहे थे फला के बारे में, अच्छा ऐसा, रुको मैं बताता हूँ फिर क्या वो उस दिन, तो ये वो करते हैं। लेकिन आप क्या काम करते हैं ऐसे नेगेटिव लोगों को हैंडल करने के लिए, आप क्या तरीका ढूंढते हैं ऐसे लोगों को हैंडल करने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग नेगेटिव बात बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, आपके नेबर हों, आपके कोवर्कर हों, आप उनको कैसे हैंडल करते हैं, क्या आप दूरी बनाते हैं या आपको भी मजा तो आ रहा है फजील भाई, रुको दो जरा तो जो र्यूमर्स फैलाते हैं, है ना, र्यूमर्स फैलाने वालों को आप किस तरह से हैंडल करते हैं, एक छोटा सा कोई तो तरीका होगा आपका, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते हैं इस मामले में कि उनको सुननी नहीं है इधर उधर की बातें, वो अपना लेफ्ट राइट हो जाते हैं। कुछ लोगों को मज़ा आता है, वो एक बाकायदा जोन होता है हमारे ऑफिसेज में, वो जोन में चले जाते हैं कि आइए चलिए बगल में चल के बातें करते हैं। कुछ लोग घर पे बाकायदा बुलाते हैं, अरे रुको रुको बहन, अभी फ़ोन पर पूरी बात मत बताओ, आओ घर आओ तुम आज शाम, हाँ दावत भी हो जाएगी, हाँ हाँ मैंने हस्बैंड से बात कर ली है, हम लोग बारबेक्यू मंगा के खाएंगे, ठीक है ठीक है बहन, ठीक है तुम आज, ठीक है इंशाल्लाह, अभी आ जाओ, हाँ अभी आ जाओ, फिर अपने हस्बैंड को भी बुला लेना ऑफिस, वो भी डायरेक्ट आ जाएंगे। तो ये वाले लोग भी होते हैं जो बाकायदा बैठकर ये र्यूमर्स फैलाते हैं। बट आप इन बातों को किस तरह से हैंडल करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली, कि उन अनोइंग लोगों को आप कैसे हैंडल करते हैं और आपको लगता है बहुत इनक्रेडिबल तरीका है वो, ठीक है। आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके कोवर्कर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपकी बहनें हो सकती हैं, हूएवर, ठीक है, वो आप बताओ। नंबर है 666-22107, 666-22107। एक तरीका तो जानना यार देखो बनता है, इसका जवाब व्हाट्सएप पर देना है। बाकी हम तो बैठे हुए हैं, सलाम आने लग गया है, यूसुफ भाई का सलाम आया, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ, और अनप्लग्ड इवनिंग दिल से देसी, हैप्पी मंडे इवनिंग, हैप्पी मंडे इवनिंग मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग फजील भाई, आपको इवनिंग में, आपको इवनिंग में क्यों गए मुमताज़ यार, ऐसा तो है नहीं कि तुम पहली बार इवनिंग में सुन रहे हो, आप तो रेगुलर ही हैं। अच्छा, 4 से 5 वाले में आपका ये था, तो यार क्या है, लाइफ में चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। और तुम ना ये सब बातें इधर उधर की मत करो, तुम मेरे से बुराई सुन लोगे फिर ना फिर कहो फजील भाई जो टॉपिक लेकर आए थे आप तो खुद ही करने लग गए, मेरे को भी मज़ा आने लगता कभी कभी, तो प्लीज़ मेरे को धीरे धीरे इन सब चीज़ों से दूर रहना है। बाकी एक मैसेज है, सवाल छोड़ें, ये बताएं कंप्लेन किधर करनी है अभी रूल पर भी आएंगे, मतलब उस पर वो क्या है, उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बड़ा तो अपन ज़रूर आपको बताएंगे। मुबशिर मुबीन यार, ये देखो लोगों के अंदर जो क्यूरियोसिटी है ना, कि मेरे बारे में अगर किसी ने कुछ कहा है, कंप्लेन किधर करनी ये बताओ, बड़े तेज हो रहे हो भाई साहब। और लिखा है, और मैं ज़्यादातर ऐसा करता हूँ कि उनकी ही मन क्या उन

की ही हां में हां मिला के साइड पे हो जाता हूं, फर्क ही नहीं पड़ता। अरे भाई ये भी बहुत सही तरीका है, पता है असल में ये तरीका सही है जहां पर हां हां हां सही कह रहा, हां हां हां एक मिनट रुकिए, कॉल आ रही है। तो आप हां में हां मिला के आप अच्छे भी बन जाते हैं कि यार वो देखो उसने फला की बुराई पे हां कहा और देखा वो फला आदमी गलत है, और आप साइड में आ जाते। लेकिन इसमें सबसे बुरी चीज ये है कि अगर खुदा ना खास्ता वो आदमी जिसकी बुराई कर रहा है वो दो साथ में हो गए तो आपका लग जाएगा भाई केस, केस आपके ऊपर लग जाएगा केस, ठीक है। तो हाँ में हाँ मिलाना भी बड़ा गलत है, लेकिन ठीक है, मतलब आप हटना चाहते हैं तो हाँ हाँ एक मिनट वो वाला एक अलग हाँ है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो सर कहते हैं रहेगा बिल्ला बजा के। हाँ कुछ लोग होते हैं वो पीछे पड़े रहते हैं भाई साहब, वो गटैया पकड़ लेते हैं, क्या रे सुनो, और आप मुंह फेरते हैं वो रोक रोक के। मेरा एक दोस्त था मैंडी उसका नाम है भाई, कानपुर में आज भी उसको सुन लोगे तो वो बहुत टेढ़ा आदमी था भाई। कई बार होता है ना आप तीन लोगों के साथ खड़े होते हैं तो दो लोग बात कर रहे होते हैं तो आप जानबूझ के कॉन्वर्जेशन को काटते हैं ताकि आप दूसरे बंदे से या तीसरे बंदे से कुछ और बात कह दें ताकि फला बात कट जाए। अरे यार ये आदमी वो बात काट के फिर से वही बात रिपीट करता था यार कि अरे नहीं नहीं सुनो सुनो सुनो कर्णिका ने क्या कहा पता है, अरे हाँ लेकिन मैं इधर उधर बात कर रहा हूँ, अरे हाँ हाँ सुनो नो ए भाई कर्णिका ने फला माँ। यार वो आदमी बहुत ही ज्यादा नाश कर देता था। फिर उसके बाद एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रिजवान साहब का मैसेज है, वालेकुम अस्सलाम भाई। फिर उसके बाद भाई आपने डैश डैश के साथ इजहार अफसोस किया, क्या यार ये कैसे इधर उधर की बातें मत करो एमडी हुसैन साहब, इस शो के बारे में बात करो फिर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई मैं आंखें रोल कर देता हूँ। आए आए क्या बात है, इतना रोल खा लिया कि आंखें रोल कर देते हो, ये भी कोई तरीका है किसी को बुरा फील कराना हो, ये भी एक तरीका भाई। लेकिन ये वाली कला मेरे अंदर अभी आई नहीं है, इस कला को एंट्री देने के लिए मुझे मोमोज खाने पड़ेंगे अब ये वाली बात जो समझ रहा है वो समझ रहा है, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये सो भाई कहते हैं फजील आजकल ये बहुत आम हो गया है, चाहे रिश्तेदार हो या कलीग पहले सामने वाले की बात को गौर से सुनना चाहिए और पूरा सुनने के बाद इग्नोर कर दें, जो भी बोले हैं जो भी बोले हैं उसको सीरियस ना लें, जस्ट गो अहेड। मेरे आजू बाजू ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग यही करता हूँ मैं, तो यही करता हूँ। ठीक है, मतलब ये तरीका है कि आप सुन लें लेकिन उसके आगे कन्वे ना करें। अगर किसी की बात आपने अगर सुन ली है या गलत बात भी है सच बात भी अगर आपने किसी की सुन ली है तो उससे आगे कन्वे ना करें, ये यूसुफ भाई का कहना है। ये भी सही तरीका है। आप दोनों चाहते क्या हो, लगता है मारपीट करा दोगे। अरे यार काहे के लिए यार ये सब इधर उधर की बातें नहीं, आप टॉपिक पे रहिए ओके भाई आपस की बात है, आपको मोमोज पसंद है अशफाक मियां सही कह रहे हो आप। देखो मोमोज आमतौर पे तो सोसाइटी को पसंद है, आप मोमोज को ना नहीं कर सकते, आप मोमोज को ना कर दी इस लाइक के फीमेल ने नेगेटिविटी को ना कर दिया। आई मीन रूमर्स नहीं फैलाना है दोस्तों, ठीक है गलत बात है। बाकी एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, अनीश और सरकार की आवाज में एक बेहतरीन सा ट्रैक आ रहा है अनप्लग्ड इवनिंग शो और अनप्लग्ड गाने। ये गाना सुनिए और सवाल एक बार फिर से रिपीट कर देते कि आपके आसपास बड़े अनोइंग लोग रहते हैं, र्यूमर्स फैलाते हैं, गलत बातें करते हैं, तो आप ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे ऐसे अनोइंग लोगों को हैंडल करते हैं वो आपको बताना। नंबर है 666-22-107 666-22-107।

0: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। Game Changer
1: Season 2। हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। Stories of Prophets, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
2: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल आदतें। इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
4: तो ये जानने के लिए सुनिएगा Generation Talk, Generation Talk with RJ Kabir and RJ Safa every Tuesday at 3 PM, at 3 PM. Only on FM 107, Dil Se Desi.
5: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
6: कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है, उनकी मेहनत, उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है। पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं, और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप तक। ये बातें होंगी थोड़ी सी

0: प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल, तो सुनिएगा जरूर एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
2: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: हाँ जी हबीबी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। 6:30 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। और आज का सवाल जो है बड़ा ही सिंपल, और हमने सोचा कि यार वो वाला सवाल क्यों ना हो जो कतर में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। और एक ये रूल है, रूल के मुताबिक अगर आपने किसी के बारे में सच्ची बात ही क्यों नहीं, लेकिन अगर आपने र्यूमर्स फैलाए तो आपको 5,000 कतरी रियाल तक फाइन देना पड़ सकता है और 1 साल की जेल भी हो सकती है, या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 331 ये QPC यानी कतरी पिनल कोड का लॉ है। तो मैंने सोचा कि इसी बार एक सवाल हो जाता तो मज़ा आता भाई साहब, और उल्टा तो लोगों ने जवाब भी दिया, क्या ही बातें हैं। सवाल ये था कि कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है लोगों की बुराई करने में, है ना, और ऐसे कई अनोइंग लोग हमारे साथ होते ही होते हैं, चाहे वो ऑफिस की बात हो, चाहे वो आपके साथ आपके बहुत ही करीबी दोस्त हो। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, आदत है, लेकिन इसको सही करना भी हमारे दिमाग पर ही है कि हम कितना ही मुंह बंद कर लेंगे तो बातें आगे नहीं पहुंचेंगी। तो लोगों की आदत होती है नेगेटिव बात को, र्यूमर्स को आगे फैलाने की, लोगों के अंदर 4 लोगों को बैठा कर बात करने की आदत होती है। तो ऐसे लोगों को आप कैसे हैंडल करते हैं, ये मैंने पूछा था। तो कई लोगों ने काफ़ी जवाब दे दिया है और कुछ बाकी है। इनमें से एक जवाब क्या लिखा है शायद रिजवान साहब ने, फजील भाई ये आदत पहले डैश लोगों में थी लेकिन आजकल लड़के लड़कियों को भी ये आदत हो गई है और छोड़ गए हैं। लास्ट रूम बे इसकी वजह से छोड़ा था। अच्छा, लास्ट रूम भी आपने इसी की वजह से छोड़ा था क्योंकि अब लोगों में भी हो, लड़कों में भी ये हो गया। अच्छा, मैं ये मैंने देखा यार कि आमतौर पर ये पहले कहीं और डाइवर्ट हुआ करती थी क्योंकि लोगों के पास इतना ज़्यादा काम नहीं होता था। तो बाहर मर्द काम करने निकलते थे ना, तो वो सब काम करते थे, वो इन फालतू बातों में नहीं रहते थे। अभी क्या है कि अभी लड़कों को भी मज़ा आए क्योंकि इनके पास भी थोड़ा सा फ्री टाइम तो हो गया है, मर्दों के पास भी फ्री टाइम तो हो गया, ये बात तो मानना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आजकल मर्दों के अंदर भी ये बहुत ही ज़्यादा लोगों में आ गया। और एक ज़माने में अगर आपको याद हो, र्यूमर्स ही था ये, वो मुँह नचवा करके नहीं बहुत ज़्यादा फैल गई थी ये बात, और ये बात सच थी भी नहीं, लेकिन मोहल्ले में ये इतना आम कर दिया गया था कि किसी भी कीड़े को वो मार लाते थे और कहते थे कि ये मुनोचवा ऐसा होता है कि जैसे ऐसे उड़ता है ये बड़ा होता जाता है। ये कौन सा मुनोचवा है भाई, ये कौन सा जानवर है कि जैसे ऐसे उड़ता है वो और बड़ा होता जा रहा है, ये कैसा बैटमैन है भाई जो बड़ा हो रहा है यार, उसके अंदर ऐसा कौन सा वायरस आ गया यार। और फिर ना हमारे मोहल्ले के लोग मारकर किसी भी जानवर को मार लेते थे, एक चमगादड़ को मारकर, और फिर फोटो क्लिक करके भेज दिया करते थे लोगों के मोबाइल पे, और वो उस वक्त ब्लूटूथ चला करता था तो ब्लूटूथ से शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के मोबाइल में, और लोग जो है आके देख रहे हैं, अरे यही वाला है वो जानवर मुनोचवा, जितना उड़ता जाता है उतना फैलता जाता है ये। मरे एक और र्यूमर्स अगर आपको याद हो, पता नहीं आप तो हो सकता उस दौरान में, क्योंकि बहुत लंबी बात नहीं है ये तो यहीं की बात है, अभी शायद मेरे ख्याल से 8-10 साल की पहले की बात, वो था कि चोटी गैंग कोई घूम रहा है जो रात में चोटी काट रहा भाई। अमा भाई ये कौन सा, ये कितना सेंट्रिक र्यूमर है, है ना, वीमेन सेंट्रिक र्यूमर्स है ये। इसमें देखो मर्द के साथ कुछ नहीं हो रहा है अनलेस उसके लंबे बाल हो, लेकिन अगर इसमें आप देखें तो जितनी महिलाएं थी वो घर के बाहर सोना छोड़ चुकी थी, तो गांव वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था, कोई बाहर सो नहीं रहा था, और इतनी अफवाहें फैली हुई थी कि अगर आप बाहर सो गए अगली सुबह उठ रहे हैं तो आपकी चोटी गायब मिल रही है भाई। बच्चे घर के अंदर भी अगर सो रहे हैं तो ताला आला बंद करे ले रहे हैं, मतलब एक तो मेन गेट का ताला होता है, फिर उसके बाद रूम, और उसके अंदर भी एक रूम है उसमें जो है ताला बंद करके अंदर से सो रहे हैं, उसके अलावा वो अपना पूरा स्काफ से अपने आप को लपेटे ले रहा है भाई। ये चोटी गैंग जो निकली थी चोटी काट रही, ऐसे र्यूमर्स भाई कौन फैला रहा है, और ये सब अपने उधर ही हो रहा है भाई, इधर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इधर भी एक बात है, अब पता नहीं ये रूमर्स है कितने रूमर्स है या नहीं है, कितनी सच बात है इसमें पता नहीं, लोग बिल्ली ढूंढ रहे हैं आजकल

पता नहीं तुमने ढूंढने की नहीं, अल रियान पहुंच जाओ भाई, ढूंढ लोगे तो अच्छे खासे कतरी रियाल मिल जाएंगे। बट आई डोंट नो कितना सर्च है कितना नहीं, क्योंकि एक जगह से चला और फिर ये इतना ज्यादा चल गया कि लोग कह रहे हैं, बट इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है दोस्तों। इस बात से आपको दूर रहना है, ठीक है। फिर उसके बाद मुबीन साहब का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर उसके बाद एक ऑडियो है, अब ऑडियो तो असलम अली का मैं नहीं सुन सकता हूँ, लेकिन अगर लिखा होता तो मैं सुनता। मैं कुछ देर में भी इसका रिप्लाई करूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, ऐसे नेगेटिव लोगों को, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आम तरीका ये है कि जगह से चले जाएं। अबे भाई कितना ऑकवर्ड लगेगा, सोचो आपके चार दोस्त बैठे हुए हैं, आप ये हैंडल करना थोड़ी हुआ फिर, कि आपने ये सोचा कि यार रूमर कहीं फैल रहे हैं, कहीं पर नेगेटिव बातें हो रही हैं, आप उठे वहां से और चल दिए, ऐसा थोड़ी हो सकता है, मतलब आप तो इस पर कुछ कर भी नहीं सकते। फिर उसके बाद एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, लेकिन नाम क्या था भाई पिछले वाले का, अब्दुल नाम है इनका, ओके। फिर एक और ये मैसेज है, और खान साहब लिखा, खान लिखा, मैं साहब पढ़ रहा हूँ। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, ये मर्दों में आदत नहीं है, मैं इस बारे में तो कह ही नहीं सकता भाई, मर्दों में भी ये आदत बहुत आ गई है ना, वो बहुत बोरिंग बातें करते हैं इधर उधर की, नेगेटिविटी उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा भरी हुई है, उनके साथ बैठ जाओ, मर्दों के साथ बैठ जाओ तो एक तो अच्छा क्या है, दूसरे लोग क्या है नेगेटिव बातें करते हैं उसमें इंटरेस्ट होता है भाई, मर्द एक तो नेगेटिव बातें करेगा उसमें से बोरिंग। मर्द वो मसाला लेकर आ नहीं पा रहा है भाई। ये जो अफवाह थी ना कि वो मुनचवा उड़ता है और वो लंबा बड़ा होता चला जाता है, ये मर्द का फैलाया नहीं है, ये इतनी इंटरेस्टिंग बात कोई अगर बता सकता है तो बस दूसरे वाले लोग, ठीक है। ओके, दूसरे का मैसेज, ओके। अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई। वालेकुम अस्सलाम फजील साहब, कैसे हैं, काफी दिनों बाद। और इसका जवाब है कि उससे सामने से बात करें और नेगेटिविटी मना करें फैलाने को, अच्छा नेगेटिविटी यानी कि नेगेटिव बातों को फैलाने के लिए डायरेक्ट आप मना कर दें। हाँ मतलब ये एक आसान तरीका है, और जब आप मुंह पर कोई बात बोलते हैं ना तो एक बार के लिए नहीं, वो बात हमेशा के लिए रजिस्टर्ड कर जाती है सामने वाले के दिमाग में कि यार फला आदमी जो है ना इधर उधर की बातें नहीं सुनेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आपके पास किसी की कोई बात है, व्हाट्सअप कर दो, नहीं मतलब अगर किसी की कोई बात है मत फैलाओ, 5,000 रियाल का फाइन है और 1 साल की जेल, और या दोनों हो सकता है। तो किसी के लिए भी र्यूमर्स अगर आपके पास है तो एक तो फैलाओ मत, गलत बात है। उसके अलावा अगर आपके पास पहुंच भी जाती है कहीं से तो आगे कन्वे ना करना, ये आपके ऊपर है पूरी तरह से। लोगों का जवाब 666-22-107 पे आ गया। एक सवाल ये भी है कि अगर र्यूमर्स फैलाने के पैसे मिलते तो तुम अमीर होते कि ना होते। एक दिन ये भी सवाल करूंगा। खैर, इतना बुरा आदमी नहीं हो, ये सवाल नहीं बनता है दोस्तों। 6:38 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, अब वक्त आ गया कि एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना खत लिखा जाए, और आज का ये खत उनके लिए होना चाहिए जो र्यूमर्स बहुत ही मसाला लगाकर फैलाते हैं, एक तो फैलाते हैं उनके लिए भी, और जो बहुत ही ज्यादा मसाला, मिर्च मसाला तड़का लगाकर लोगों तक बात पहुंचाते हैं और उनको जरा सी भी शर्म नहीं है, तो ऐसे लोगों को लिखो डियर बेशरम। आज बेशरम आना चाहिए लफ्ज में, लेटर में डियर के बाद बेशरम आना चाहिए, नाम मुझे किसी का नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुमने नाम बता दिया तो ये भी तो र्यूमर है, और मेरे को 5,000 रियाल का फाइन भरना नहीं है क्योंकि मेरे अकाउंट में इतना है नहीं, तो मेरे को जेल ही भेजे। मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरे को सिर्फ डियर के बाद बेशरम लिखो, और उसके बाद आप जो भी लिखना चाहते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो नेगेटिविटी फैलाते हैं और र्यूमर्स फैलाते हैं, गलत बात एक दूसरे के बारे में फैलाते हैं, चाहे वो कोवर्कर्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, रिलेटिव्स हो, या फिर कोई भी हो, है ना, आप ये भी लिख सकते हैं डियर बेशरम कोवर्कर, डियर बेशरम रिलेटिव, ऐसा करके। नंबर है 666-22-107, 666-22-107, और उसामा अहमद खान की आवाज में एक बेहतरीन सा सॉन्ग सुनते हैं, बाकी आप गेट खुलकर आज सो सकते हैं, कोई चमगादड़ नहीं आ रहा भाई, कोई मुंह नोचवा नहीं है, और यहां तो चोटी गैंग है ही नहीं। अरे कोई बनियान चोर भी था ना।

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.
2: Whoa.

गल्फ में मेहनत करके ईमानदारी से कमाता हूँ, उल्टे सीधे काम नहीं। अरे हाँ, ये भी एक लालचन लगता है ना, जो गल्फ में अच्छा काम करके अपना घर बनवा ले। अरे दो नंबर ही काम कर रहा, खुदा जाने ये क्या कर रहा है, इसको बहुत गुनाह मिलेगा। अब उनको क्या पता भाई, यहाँ मेहनत कर रहे हैं। बाकी आगे लिखा है, उल्टे सीधे काम नहीं, ऐसे लोगों को जुबान संभालना चाहिए। मैं यकीन मानो, मेरे पास होता तो मैं इनके चेहरे मुंह नचवा छोड़ देता इनके घरों में, बता रहा हूँ मैं। उस्मान साहब कहते हैं, डियर बेशर्मो, बुराइयां वही करता है जो बराबरी नहीं कर सकता। ओ रे बॉय, ये इस पर तो बनता है। जलो मत, बुराइयां मत करो, बराबरी करो। जलो मत, बराबरी करो। ये ऐसे ऐसे लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कितने ईमानदारी से कहते हैं कि बराबरी करो, जलो मत, जल कुकड़ो। फिर सलाम का ये मैसेज है, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, आपने नाम नहीं बताया, नाम बता देते, खैर कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम। अब हमारे स्टूडियो की घड़ी में बात करते करते 6:51 कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। इसी के साथ ये शो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आय हाय, एक तो उर्दू बहुत अच्छी हो रही है मेरी भाई, आज कूड़े वाले भैया से बात ही नहीं हुई थी, पानी पीने निकल गए थे, मैं स्टूडियो में आया देखा वो है ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, खैर अब अपना यहाँ से निकलने का वक्त हो गया, ये शो अपने अख्तिताम को पहुंचने वाला है। कुछ ही देर में आप न्यूज बुलेटिन सुनेंगे FM 107 पर, और ये न्यूज बुलेटिन आपको कतर की तमाम खबरों से रूबरू कराएगा। फिलहाल अरिजीत सिंह की आवाज में आवारापन, ये गाना है, ये आवारापन गाना है, ये गाना सुनिए FM 107 पे। कल शाम मुलाकात होगी 6 बजे FM 107, दिल से देसी।

हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: حکیم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم کے نام تعزیتی طور روانہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے مالٹا کے وزیر اعظم ڈاکٹر روبرٹ ابیلا اور آرمینیا کی وزیر اعظم نکول پاشینیان کے نام دونوں ممالک کی یوم آزادی کی مناسبت سے تہنیتی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے دوحہ فار انویسٹمنٹ کے نام سے ایک نئی سرمایہ کاری پلیٹ فارم کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ وزیر پلیٹ فارم قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے اندرونی سرمایہ کاری پورٹ فولیو کے انتظام اور اس کی ترقی کے لیے مختص ہے، جس کا مقصد قطری معیشت میں طویل مدتی بنیادوں پر قدر پیدا کرنے کے عمل کو تیز کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر منعقدہ قطر اکنامک فورم بلومبرگ کے ایک سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم وزیر خارجہ نے کہا کہ قطر کو ماضی میں متعدد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے، تاہم ہر بار وہ ان چیلنجز سے مزید مضبوط ہو کر نکلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں جاری موجودہ بحران کے دوران قطر کے سلامتی اور رست کے نظام سمیت بنیادی ڈھانچے کو آزمایا گیا اور یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ نظام مضبوط اور مستحکم ہے۔ واضح اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ نے بلومبرگ میڈیا گروپ کے بانی مائیکل بلومبرگ اور بین الاقوامی ادارے پرائس واٹر ہاؤس کے عالمی چیئرمین محمد کندی سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ نے جی سی سی کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے ایک رابطہ اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس کے دوران جی سی سی کے رکن ممالک کے درمیان تعاون اور مشترکہ رابطہ کاری کو مزید فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ خطے کی تازہ ترین صورتحال بالخصوص کشیدگی میں کمی اور خطے میں امن استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے قطر اور انٹرنیشنل پیس انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے منعقدہ اعلیٰ سطح کے وزارتی اشائیے میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر خطے کی تازہ ترین صورتحال اور علاقائی و عالمی سطح پر امن و استحکام کے فروغ کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیویارک میں شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمہوریہ سیرالیون کے صدر ڈاکٹر جولیس مادا بایو سے بھی ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مستحکم کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ قطر اور جبوتی نے آج اوقاف و اسلامی امور کے شعبے میں تعاون اور ادارہ جاتی تجربات کے تبادلے کو فروغ دینے کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ قطر کی جانب سے اس مفاہمتی یادداشت پر وزیر اوقاف و اسلامی امور غانم بن شاہین بن غانم الغانم نے، جبکہ جبوتی کی جانب سے وزیر اسلامی و امور و اوقاف ڈاکٹر مومن حسن بری نے دستخط کیے۔ واضح اس مفاہمتی یادداشت کا مقصد ایک پائیدار ادارہ جاتی فریم ورک تشکیل دینا ہے، جس کے ذریعے شراکت داری کے دائرۂ کار کو وسعت دی جا سکے اور اوقاف کے کام کو فروغ دینے کے لیے کامیاب تجربات اور طریقۂ کار کا تبادلہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس کے تحت مشترکہ اقدامات اور پروگرام بھی نافذ کیے جائیں گے، جو اسلامی اقدار کی فروغ اور معاشرے کی خدمت میں معاون ثابت ہوں گے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر عدل و وزیر مملکت برائے کابینہ امور ابراہیم بن علی المہندی نے آج قطر کے دورے پر آئے ہوئے صومالیہ کی وفاقی جمہوریہ کے وزیر عدل و آئینی امور حسن محمود شیخ علی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان قانونی شعبے میں تعاون کے مختلف پہلوؤں اور اسے مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان قانونی تعاون کے حوالے سے طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کو فعال بنانے اور قطر کی وزارت عدل کے قانونی و عدالتی مطالعات مرکز اور صومالیہ کی وزارت عدل و آئینی امور کی عدالتی تربیتی ادارے کے درمیان تعاون کو فروغ دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بن تعلی بن ناصر المسند نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 21ویں اجلاس کے موقع پر عالمی خوراک پروگرام کے قائم مقام ایگزیکٹو ڈائریکٹر کارل سکاو سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قطر اور عالمی خوراک پروگرام کے درمیان غذائی تحفظ اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی کارروائیوں کے شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ ضرورت مند ترین معاشروں تک امداد کی رسائی یقینی بنانے کے لیے شراکت داریوں کو مزید مستحکم کرنے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون نے اس موقع پر کہا کہ انسانی ہمدردی پر مبنی سفارتکاری قطر کی خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی کوششوں کا ایک بنیادی ستون ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بحرانوں اور تنازعات کے دوران مؤثر امدادی کارروائیوں کو تقویت دینے میں انسانی سفارتکاری کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ دوسری جانب نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 21ویں اجلاس کے موقع پر قطر اور بین الاقوامی کمیٹی برائے ریڈ کراس نے ثالثی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام اور بین الاقوامی انسانی قانون کے شعبوں میں تعاون کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ قطر کی جانب سے مفاہمتی یادداشت پر وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بن تعلی بن ناصر المسند نے، جبکہ بین الاقوامی کمیٹی برائے ریڈ کراس کی جانب سے کمیٹی کے صدر میریانا سپولیو ریچ نے دستخط کیے ہیں۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے آج قطر میں انڈونیشیا کے سفیر شہدا غور والا نکاح اور سویڈن کی سفیر جوزفین سیموسن برودن سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ دونوں ملاقاتوں کے دوران قطر اور ان دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون پر مبنی تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سامعین، نشرے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کل بروز منگل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے، جس میں علاقائی و بین الاقوامی امور، امن، ترقی اور عالمی شراکت داری کے حوالے سے قطر کا موقف پیش کریں گے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے نیویارک میں جی سی سی کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے رابطہ اجلاس میں شرکت کی ہے، جس میں مشترکہ تعاون، علاقائی صورتحال، کشیدگی میں کمی اور امن و استحکام کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بن تعلی المسند نے عالمی خوراک پروگرام کے قائم مقام ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے ملاقات میں غذائی تحفظ، انسانی امداد اور ضرورت مندوں تک امداد کی رسائی یقینی بنانے کے لیے تعاون اور شراکت داری کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیل بنارہ اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔
2: Absolute cinema.
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं,
2: पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं
3: और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। But don't worry,
2: भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग
3: हर थर्सडे रात 9 बजे से RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
4: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
5: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है, कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं
4: नए करियर्स फ्यूचर स्किल्स चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए
6: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आप सुन रहे हैं फ्यूचर करियर और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मावशकान ये वो शो है जहां हम उन करियर्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे मुस्तकबिल की दुनिया को शेप कर रहे हैं और स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स को समझने में मदद करते हैं कि कल की अपॉर्चुनिटीज के लिए आज से किस तरह तैयारी की जा सकती है मैं हूं आपकी आरजे मावश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फील्ड की जो शायद नजर नहीं आती लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का लगभग हर हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है जरा सोचिए आप अपना टीवी या मोबाइल खोलते हैं और आपको कुछ मूवीज और ड्रामास रिकमेंड किए जाते हैं जो शायद आपको पसंद आ सकते हैं आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ आपको वो प्रोडक्ट्स नजर आते हैं जो आपकी प्रीवियस सर्चेस या परचेजेस से मिलते जुलती होती हैं। आप कोई वीडियो देखते हैं और उसके बाद सिस्टम आपको उस तरह की मजीद वीडियो सजेस्ट करता है या फिर आप गूगल मैप या किसी नेविगेशन ऐप का इस्तेमाल करते हैं और वो आपको बताता है कि किस रूट पर ट्रैफिक कम है लेकिन सवाल ये है कि इन सिस्टम्स को कैसे पता चलता है कि हमें क्या पसंद आ सकता है इस सवाल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जवाब है डेटा आज के डिजिटल जमाने में डेटा हमारी इकोनॉमी और डिसीजन मेकिंग का एक बहुत कीमती रिसोर्स बन चुका है इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि डेटा इज द न्यू ऑयल लेकिन डेटा अपने आप में डिसीजंस नहीं लेता सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना काफी नहीं होता असल चैलेंज ये है कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन में से यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाए पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाएं, फ्यूचर ट्रेंड्स कैसे समझे जाएं, और सबसे इम्पोर्टेंट इस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकल डिसीशंस में कैसे कन्वर्ट किया जाए यहाँ से डेटा साइंस का रोल शुरू होता है डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को कंबाइन करता है और इस फील्ड में काम करने वाले प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशंस को ये समझने में मदद देते हैं कि डेटा उन्हें क्या बता रहा है आज हर दिन हम अपनी एक्टिविटीज के जरिए डेटा जनरेट कर रहे हैं हम क्या सर्च करते हैं क्या परचेज करते हैं किस लोकेशन पर जाते हैं कितनी देर किसी वेबसाइट या वीडियो पर स्पेंड करते हैं किस सर्विस को यूज करते हैं ये सब इंफॉर्मेशन किसी ना किसी फॉर्म में डेटा बन सकती है इसी वजह से कंपनीज के साथ साथ गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल्स यूनिवर्सिटीज बैंक्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को भी ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो डेटा को समझ सकें और उससे मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सकें और यही वजह है कि डेटा साइंस को फ्यूचर करियर्स में एक इम्पोर्टेंट फील्ड समझा जा रहा है आज दुनिया भर में ऑर्गेनाइजेशंस पहले से कई ज्यादा डेटा जनरेट कर रही हैं लेकिन डेटा की क्वांटिटी बढ़ना और डेटा का यूजफुल होना दोनों एक जैसी बात नहीं एक कंपनी के पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं लेकिन अगर वो उन रिकॉर्ड्स को समझ नहीं सकती तो वो इंफॉर्मेशन उस कंपनी के लिए उतनी यूजफुल नहीं होगी डेटा प्रोफेशनल्स इसी गैप को फिल करते हैं वो रॉ इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं पैटर्न्स ढूंढते हैं ट्रेंड समझते हैं और डिसीजन मेकर्स को एविडेंस बेस्ड डिसीजंस लेने में सपोर्ट करते हैं तो अब आ जाता है हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप ऐसी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं जहां आपको काम गेस्ट वर्क के बजाय डेटा और एविडेंस की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करना हो सोचिए क्या आपको नंबर में पैटर्न ढूंढना इंटरेस्टिंग लगता है क्या आपको पजल्स और प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है क्या आप टेक्नोलॉजी के साथ काम करना चाहते हैं या फिर आपको बिजनेस हेल्थ केयर बैंकिंग या किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है और आप टेक्नोलॉजी को उसके साथ कंबाइन करना चाहते हैं अगर आपका जवाब हाँ है तो हो सकता है कि डेटा साइंस आपके लिए एक इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन हो। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि डेटा साइंस में कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लेवल पर किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का कनेक्शन क्या है, और कतर में इस फील्ड के यंग प्रोफेशनल्स के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही हैं। तो अगर आप फ्यूचर के करियर पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिए, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं डेटा साइंस करियर और बिग डेटा की ताकत। अब वक्त आ गया है हमारे सेगमेंट जॉब्स फॉर टुमारो का। अब वक्त है हमारे प्रोग्राम के उस सेगमेंट का जहां हम फ्यूचर के उन करियर्स को एक्सप्लोर करते हैं जो यंग पीपल के लिए नए डोर्स ओपन कर रहे हैं, और आज का फोकस है डेटा साइंस करियर। जैसा कि हमने पहले सेगमेंट में बात की, हम में से हर शख्स रोजाना डेटा क्रिएट करता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। जब हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सोशल मीडिया ब्राउज करते हैं, वीडियोस देखते हैं, जीपीएस यूज करते हैं या किसी वेबसाइट पर सर्च करते हैं, तो हमारी एक्टिविटीज से इंफॉर्मेशन जनरेट होती रहती है। अब सवाल ये है कि इस इंफॉर्मेशन का क्या किया जाए। कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए असल वैल्यू सिर्फ डेटा कलेक्ट करने में नहीं बल्कि उस डेटा को समझने में है, और इसीलिए डेटा साइंस रिलेटेड करियर की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। सबसे पहले आ जाता है जो जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो है डेटा साइंटिस्ट की। डेटा साइंटिस्ट को आप डिजिटल दुनिया का डिटेक्टिव भी कह सकते हैं। एक डिटेक्टिव डिफरेंट क्लूज को कलेक्ट करता है, उनका कनेक्शन समझता है और फिर किसी कंक्लूजन तक पहुंचता है। बिल्कुल इसी तरह डेटा साइंटिस्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करता है और उसमें पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स ढूंढता है। डेटा साइंटिस्ट का काम सिर्फ नंबर्स देखना नहीं होता, वो डेटा कलेक्ट कर सकता है, उसे क्लीन और ऑर्गेनाइज कर सकता है, ट्रेंड्स एनालाइज करता है और प्रिडिक्शन मॉडल्स डेवलप कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक सुपरमार्केट ये समझना चाहती है कि ईद या फिर किसी हॉलिडे सीजन में कस्टमर्स कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा परचेज करेंगे। डेटा साइंटिस्ट पुराने सेल्स डेटा और कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करके ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर डिमांड का अंदाजा लगाने में हेल्प कर सकता है। इसी तरह हेल्थ केयर में डेटा साइंस पेशेंट इंफॉर्मेशन और मेडिकल डेटा को एनालाइज करने में सपोर्ट कर सकती है ताकि हॉस्पिटल्स बेटर प्लानिंग और पेशेंट केयर कर सकें। और अब बात करते हैं डेटा एनालिस्ट की। डेटा एनालिस्ट का प्राइमरी फोकस इंफॉर्मेशन को समझना और उसे यूजफुल इंसाइट्स में कन्वर्ट करना होता है। उनका काम डेटा को ऑर्गेनाइज करना, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना और चार्ट्स और डैशबोर्ड्स क्रिएट करना हो सकता है। सोचिए, एक कंपनी के मैनेजर के पास हजारों सेल्स रिकॉर्ड्स हैं। मैनेजर के लिए हर सिंगल रिकॉर्ड को मैनुअली देखना मुश्किल होगा। डेटा एनालिस्ट उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर बता सकता है कि कौन से प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं, किस मंथ में सेल्स कम हुई और कस्टमर्स के बिहेवियर में क्या चेंजेस आए। यानी डेटा एनालिस्ट नंबर्स को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकता है। अगला करियर है बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट। ये रोल बिजनेस और टेक्नोलॉजी के बीच एक ब्रिज का काम करता है। बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटजिक डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। वो क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, किस सर्विस में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कंपनी के लिए फ्यूचर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं। इस रोल में टेक्निकल नॉलेज के साथ बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट को डेटा मिलता कहाँ से है। यहाँ रोल आता है डेटा इंजीनियर का। डेटा इंजीनियर वो सिस्टम्स डेवलप और मेंटेन करते हैं जहाँ डेटा कलेक्ट स्टोर और ऑर्गेनाइज होता है। वो डेटाबेसेस, डेटा पाइपलाइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं। अगर डेटा प्रॉपरली कलेक्ट और ऑर्गेनाइज ना हो तो डेटा साइंटिस्ट के लिए एक्यूरेट एनालिसिस करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए डेटा इंजीनियर भी डेटा इकोसिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आज मार्केटिंग भी डेटा के बगैर इमेजिन करना मुश्किल है। मार्केटिंग डेटा स्पेशलिस्ट कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। वो देखते हैं कि कस्टमर्स किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन सी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा इफेक्टिव है और किस टाइप के कंटेंट को लोगों की ज्यादा अटेंशन मिल रही है। इस इंफॉर्मेशन की मदद से कंपनीज अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करती हैं। और अब एक ऐसा करियर जो टेक्नोलॉजी को हेल्थ केयर के साथ कनेक्ट करता है, हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट। हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस के पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके पेशेंट केयर, हॉस्पिटल एफिशिएंसी, रिसोर्स प्लानिंग और रिसर्च को सपोर्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपको हेल्थ केयर भी पसंद है और टेक्नोलॉजी भी, तो ये एक इंटरेस्टिंग करियर पाथवे हो सकता है। लिस्टनर्स, डेटा साइंस की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ एक इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं। बैंकिंग हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, स्पोर्ट्स हो, एनर्जी सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज, हर जगह डेटा का रोल बढ़ रहा है। और जब डेटा बढ़ता है तो उस डेटा को समझने वाले स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत भी बढ़ती है। इसलिए अगर आप टेक्नोलॉजी, नंबर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो डेटा साइंस को अपनी फ्यूचर करियर लिस्ट में जरूर कंसिडर करें, क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ डेटा कलेक्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। फ्यूचर उन लोगों का होगा जो डेटा को समझकर उसे नॉलेज और एक्शन में कन्वर्ट कर सकें।
4: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
5: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
4: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। अपने करियर का अगला कदम समझकर उठाइए।
6: अब आ जाते हैं अपने शो के उस सेगमेंट की तरफ जिसको हम कहते हैं करियर टू कैंपस। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर करियर। आज हम डेटा साइंस की दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने देखा कि डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट जैसे प्रोफेशनल्स किस तरह ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, अगर आप स्टूडेंट हैं और फ्यूचर में डेटा साइंस में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको आज से क्या करना पड़ेगा? किस सब्जेक्ट पर फोकस करें, यूनिवर्सिटी में क्या स्टडी करें और कौन सी स्किल्स डेवलप करें? तो चलिए इस सेगमेंट में इसी जर्नी को समझते हैं। डेटा साइंस में जाने का एक पॉपुलर पाथवे है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग, डेटाबेसेस, एल्गोरिथम्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे स्किल्स सीखते हैं। ये स्किल्स डेटा साइंस के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोडिंग इंटरेस्टिंग लगती है और आप टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद करते हैं तो कंप्यूटर साइंस आपके लिए एक यूजफुल एकेडमिक पाथवे हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि डेटा साइंस में जाने के लिए हर स्टूडेंट को सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही स्टडी करनी पड़े। डेटा साइंस के कई डिफरेंट पाथवेज हैं। आजकल यूनिवर्सिटीज में डेडिकेटेड डेटा साइंस डिग्री प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। इन प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स को स्टेट्स, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और डेटा मैनेजमेंट जैसे एरियाज का एक्सपोजर मिल सकता है। यहाँ स्टूडेंट्स सीखते हैं कि लार्ज डेटा सेट्स को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए और उनसे यूजफुल कंक्लूजंस कैसे निकाला जाए। अगर आपको मैथमेटिक्स और नंबर्स पसंद हैं, तो मैथमेटिक्स या स्टेट्स भी डेटा साइंस की तरफ जाने का स्ट्रॉन्ग पाथवे हो सकती है। डेटा साइंस में स्टैटिस्टिकल थिंकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सिर्फ ये नहीं देखना होता कि नंबर्स क्या है, بلکہ یہ بھی سمجھنا ہوتا ہے کہ ان نمبرز کے میننگ کیا ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کمپنی کی سیلز انکریز ہوئی ہیں تو ایک ڈیٹا پروفیشنل کو یہ بھی انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا کہ سیلز کیوں انکریز ہوئی ہیں، کیا کسٹمرز کی ڈیمانڈ بڑھی، کیا ایڈورٹائزمنٹ سکسیسفل تھی، کیا پرائزز چینج ہوئے یا کوئی سیزنل فیکٹر تھا۔ یہاں اسٹیٹس اور انالیٹیکل تھنکنگ کا رول سامنے آتا ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ پاتھ وے ہے بزنس انالیٹک۔ یہ فیلڈ بزنس انڈرسٹینڈنگ کو ڈیٹا انالیسس کے ساتھ کمبائن کرتی ہے۔ اگر آپ کو بزنس اور ٹیکنالوجی دونوں میں انٹرسٹ ہے تو بزنس انالیٹکس آپ کے لیے یوزفل آپشن ہو سکتا ہے۔ اس فیلڈ میں اسٹوڈینٹ سیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کو یوز کر کے ریئل بزنس پرابلمس کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے۔ ڈگری کے ساتھ اسکلس ڈیولپ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے آتی ہیں ٹیکنیکل اسکلس۔ اسٹوڈینٹس کو بیسک ڈیٹا انالیسس سیکھنا چاہیے۔ ایکسل ایک ایکسلنٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈینٹس پائتھون اور ایس کیو ایل جیسی ٹیکنالوجیز ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ پائتھون ڈیٹا سائنس اور پروگرامنگ میں وائڈلی یوزڈ لینگویج ہے، جبکہ ایس کیو ایل ڈیٹا بیسز سے انفارمیشن ریٹریو اور مینج کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ڈیٹا ویژولائزیشن بھی سیکھنا یوزفل ہے۔ نمبرز کو صرف سمجھنا کافی نہیں ہوتا، کبھی کبھی آپ کو اپنی فائنڈنگز کو چارٹس، گرافز یا ڈیش بورڈ کے ذریعے دوسروں کو سمجھانا ہوتا ہے۔ لیکن ڈیٹا سائنس صرف ٹیکنیکل اسکلز کا نام نہیں، آپ کو کریٹیکل تھنکنگ بھی چاہیے، آپ کو کوئسچنز پوچھنا آنا چاہیے، پرابلم کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا آنا چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ اپنی فائنڈنگ کو کلیئرلی کمیونیکیٹ کرنا آنا چاہیے۔ آپ کتنے بھی ایکسلنٹ انالیسس کر لیں، اگر آپ اپنے ریزلٹ کو سمپل لینگویج میں ایکسپلین نہیں کر سکتے تو دوسروں کے لیے اس انالیسس کا بینیفٹ لینا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے کمیونیکیشن، پریزنٹیشن اسکلز، ٹیم ورک اور پرابلم سالونگ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ اسٹوڈینٹس کے لیے پریکٹیکل ایکسپیرئنس بھی بہت ویلیوبل ہے۔ اگر اپرچونیٹی ملے تو انٹرنشپ ایکسپلور کریں۔ بینکس، ٹیکنالوجی کمپنیز، ریسرچ سینٹرز، ہیلتھ کیئر آرگنائزیشنز اور گورنمنٹ ایجنسیز میں ڈیٹا ریلیٹڈ ایکسپوجر فیوچر اپلیکیشن میں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں۔ یونیورسٹی کے دوران ریئل ورلڈ پروجیکٹ پر کام کرنا آپ کو کلاس روم نالج کو پریکٹیکل ایکسپیرئنس میں کنورٹ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اور اگر آپ ابھی اسکول میں ہیں تو یہ مت سوچیں کہ آپ کو سب کچھ ایک ساتھ سیکھنا ہے۔ آپ اسمال اسٹیپ سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ بیسک ایکسل سیکھیں، سمپل ڈیٹا سیٹس کے ساتھ پریکٹس کریں، فری آن لائن ایکسپوجر کریں، پائتھون کے بیسک سمجھیں، چھوٹے پروجیکٹس بنائیں، اور اگر ڈیٹا کمپٹیشنز یا اسکول پروجیکٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملے تو ضرور ٹرائی کریں۔ ہر پروجیکٹ آپ کو کچھ نیا سکھاتا ہے اور ہر اسکل آپ کو فیوچر کے لیے تھوڑا اور پریپیئرڈ بناتی ہے۔ یاد رکھیے، کریئر ایک دن میں بلٹ نہیں ہوتا، کریئر ایک جرنی ہے، اور ڈیٹا سائنس کی جرنی بھی لرننگ، پریکٹس اور کیوریوسٹی سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ فیوچر میں ڈیٹا سائنس کو کریئر بنانا چاہتے ہیں، آج کا ایک اسمال اسٹیپ کل کی بڑی اپرچونیٹی بن سکتا ہے۔ اب ملتے ہیں آپ سے ہمارے سیگمنٹ اے آئی اینڈ ورک میں۔ ویلکم بیک ٹو فیوچر کریئر۔ آج ہم ڈیٹا سائنس کے کریئر آپشنز اور اسٹوڈینٹس کے لیے ایجوکیشنل پاتھ ویز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب ہم اپنے ایپیسوڈ کے ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس کا کنیکشن۔ آج کل جب بھی ٹیکنالوجی اور فیوچر کریئرز کی بات ہوتی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ لیکن ایک سوال بیسک ہے، اے آئی کا ڈیٹا کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ جواب ہے بہت گہرا کنیکشن۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹمز کو سیکھنے، پیٹرنز آئیڈینٹیفائی کرنے اور پریڈکشنز کرنے کے لیے ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اسے ایک سمپل ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں۔ एक बच्चा जब दुनिया को समझना शुरू करता है तो वो अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करता है, वो लोगों को देखता है, डिफरेंट साउंड सुनता है, चीजों को आइडेंटिफाई करता है और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। इसी तरह AI सिस्टम्स भी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा से पैटर्न सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक AI सिस्टम को बहुत ज्यादा एग्जांपल्स दिए जाएं, तो वो इन एग्जांपल्स में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना सीख सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, हर डेटा यूजफुल डेटा नहीं होता, डेटा की क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है। अगर डेटा इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट या फिर बाइस्ड हो तो AI सिस्टम के रिजल्ट्स भी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। इसीलिए डेटा साइंस प्रोफेशनल्स का रोल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। डेटा साइंस और AI को आप एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड फील्ड समझ सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट डेटा को कलेक्ट और एनालाइज करते हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं और प्रिडिक्टिव मॉडल्स डेवलप कर सकते हैं। AI सिस्टम्स इन मॉडल्स और डेटा ड्राइवन टेक्निक्स को डिफरेंट टास्क के लिए यूज कर सकते हैं। आज हम AI और डेटा की एप्लीकेशंस अपनी डेली लाइफ में देख रहे हैं। स्पीच रिकॉग्निशन इसका एक एग्जांपल है। जब आप किसी डिजिटल असिस्टेंट से बात करते हैं और वो आपकी वॉइस को अंडरस्टैंड करता है, तो उसके पीछे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी और लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा का रोल होता है। रिकमेंडेशन सिस्टम्स भी एक एग्जांपल है। जब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आपको मूवीज या फिर प्रोग्राम सजेस्ट करता है या शॉपिंग प्लेटफॉर्म आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता है, तो डेटा और एल्गोरिथम्स दोनों का रोल हो सकता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी AI और डेटा के कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। इसी तरह हेल्थ केयर में AI बेस्ड सिस्टम्स मेडिकल प्रोफेशनल्स को इंफॉर्मेशन एनालाइज करने और कुछ सिचुएशंस में डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने में हेल्प कर सकती हैं। बिजनेसेस भी AI और डेटा को रैपिडली अडॉप्ट कर रहे हैं। कंपनीज कस्टमर बिहेवियर को समझने के लिए डेटा यूज करती हैं। वो प्रेडिक्ट करना चाहती हैं कि कस्टमर्स फ्यूचर में किस प्रोडक्ट या सर्विस पे इंटरेस्ट ले सकते हैं। AI और डेटा की मदद से कंपनीज सेल्स फोरकास्टिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर सर्विस और ऑपरेशनल प्लानिंग जैसे एरियाज में इम्प्रूवमेंट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर बैंकिंग सेक्टर में अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए डेटा एनालिसिस और ऑटोमेटेड सिस्टम्स का यूज किया जा सकता है। रिटेल कंपनीज कस्टमर डिमांड का फोरकास्ट कर सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपनी ऑपरेशंस और इक्विपमेंट परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकती हैं। यानी AI और डेटा सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज तक लिमिटेड नहीं रहे। लेकिन क्या AI ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा? ये सवाल आज बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में है। अगर AI इतना कुछ कर सकता है तो फ्यूचर में ह्यूमन प्रोफेशनल्स का रोल क्या होगा? रियलिटी ये है कि AI पावरफुल टूल है, लेकिन ह्यूमन जजमेंट अब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। AI इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से एनालाइज कर सकती है, लेकिन ह्यूमंस को ये डिसाइड करना होता है कि सही क्वेश्चन क्या है, रिजल्ट्स का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या इंफॉर्मेशन रिलायबल है और किसी डिसीजन के इथिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। एक डेटा साइंटिस्ट को सिर्फ कंप्यूटर से आंसर लेना नहीं होता, उसे ये भी समझना होता है कि आंसर का मीनिंग क्या है और ऑर्गेनाइजेशन को उस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करना चाहिए। इसीलिए फ्यूचर वर्कप्लेस में टेक्निकल स्किल्स के साथ ह्यूमन स्किल्स की इम्पोर्टेंस भी बढ़ेगी। क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एथिकल जजमेंट और टीम वर्क। अगर आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं और साथ ही लॉजिकली सोच सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपने आइडियाज कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आप फ्यूचर वर्कप्लेस में वैल्यूएबल बन सकते हैं। फ्यूचर में डेटा साइंस और AI के दरमियान कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ कोडिंग सीखने पर फोकस नहीं करना चाहिए, उन्हें डेटा को समझना, साइंटिफिक स्टडीज, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और इनोवेशन के डिफरेंट एरियाज में डेटा का यूज करते हैं अगर आपको रिसर्च पसंद है और आप टेक्नोलॉजी और एनालिसिस में इंटरेस्ट रखते हैं तो एकेडमिक और रिसर्च एनवायरनमेंट भी आपके लिए एक पॉसिबली पाथवे हो सकता है। कतर में स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? अगर आप कतर में स्कूल या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो आपको अभी से अपनी स्किल्स डेवलप करना शुरू करना चाहिए। सबसे पहले डिजिटल स्किल्स पर फोकस करें, बेसिक कोडिंग एक्सप्लोर करें, एक्सेल और डेटा एनालिसिस सीखें, लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को फॉलो करें और सबसे इम्पोर्टेंट क्यूरियस रहें। अगर स्कूल, यूनिवर्सिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंटर्नशिप, वर्कशॉप, रिसर्च प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो उसे सीरियसली कंसिडर करें। हर एक्सपीरियंस आपको रियल वर्कप्लेस को समझने में हेल्प कर सकता है। और एक बात याद रखिए, आपको अपना कंप्लीट करियर प्लान स्कूल के पहले दिन से डिसाइड करने की जरूरत नहीं। करियर एक्सप्लोरेशन का मतलब ही ये है कि आप डिफरेंट फील्ड्स को समझें, अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करें और फिर ग्रेजुअली अपनी डायरेक्शन चूज करें। अगर आपको नंबर्स पसंद हैं, टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग लगती है, प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है और आप एविडेंस की बुनियाद पर कंक्लूजन निकालना पसंद करते हैं तो डेटा साइंस डेफिनेटली एक्सप्लोर करने के लाइक फील्ड है। कतर हो या दुनिया का कोई भी और हिस्सा, फ्यूचर की इकोनॉमी में एक स्किल इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट होती जा रही है, इंफॉर्मेशन को समझना और उसे यूजफुल नॉलेज में कन्वर्ट करना। और शायद इसी वजह से डेटा साइंस को फ्यूचर करियर्स की लिस्ट में एक इम्पोर्टेंट जगह मिल रही है। तो यंग लिसनर्स, अपनी क्यूरियोसिटी को अलाइव रखें, टेक्नोलॉजी सीखें, क्वेश्चंस पूछें, स्किल्स डेवलप कीजिए और अपॉर्चुनिटीज के इंतजार के बजाय उनके लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं लोगों का होता है जो चेंज को समझने और उसके साथ ग्रो करने के लिए तैयार होते हैं। तो लिसनर्स, आज के फ्यूचर करियर की एपिसोड में हमने डेटा साइंस की दुनिया को एक्सप्लोर किया। हमने देखा कि हमारी एवरीडे लाइफ में डेटा कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। असल इम्पोर्टेंस इस बात की है कि हम उस डेटा को कैसे समझते हैं और उसमें से कैसे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मुख्तलिफ करियर्स के बारे में भी जाना, मैंने आपको बताया डेटा साइंटिस्ट के बारे में, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंट एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और इसके अलावा बहुत कुछ। इससे हमें एक इम्पोर्टेंट बात समझ में आती है कि डेटा साइंस सिर्फ एक जॉब नहीं, ये स्किल्स का एक ब्रॉड कॉम्बिनेशन है जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अप्लाई हो सकता है। और अब वक्त आ गया है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को दोबारा याद करने का। क्या आप ऐसे करियर में इंटरेस्ट रखते हैं जहां आपको काम गेस्ट वर्क के बजाय डेटा और एविडेंस की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करना हो? शायद आपका जवाब अब एपिसोड के शुरू से डिफरेंट हो सकता है पहले डेटा साइंस आपको सिर्फ नंबर्स और कंप्यूटर्स की फील्ड लगती हो, लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि डेटा साइंस असल में प्रॉब्लम्स को समझने, क्वेश्चंस पूछने, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने और इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल डिसीजंस में कन्वर्ट करने का नाम भी है। याद रखिए, फ्यूचर उन स्टूडेंट्स का नहीं जो हर आंसर आज ही जानते हैं, फ्यूचर उन स्टूडेंट्स का है जो सीखने के लिए तैयार रहते हैं। के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
7: नया जमाना और अनप्लग गाने, दिल खोल के होंगी आपके खत की बातें, छोटी सी कहानी हो या तरक्की के किस्से, ये शो फजील के साथ आपके हिस्से।
5: सुनिए अनप्लग इवनिंग विद आरजे फजील, संडे टू थर्सडे 6 PM to 7 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
8: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Hello and welcome to our segment called Smart Money. Main hoon aapki dost, aapki host, Nasia. दोस्तों आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट की इन्वेस्टमेंट्स में. इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए रिस्क मैनेजमेंट से मुराद वो प्रोसेस है जिसमें इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक रिस्क को पहचानता है, उनका जायजा लेता है और उन्हें कम करने के लिए मुनासिब स्ट्रेटजी बनाता है. इसका मकसद ये है कि पैसा ज्यादा महफूज रहे और अगर मार्केट में

से कम। देखिए रिस्क मैनेजमेंट को इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा समझा जाता है क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना कुछ तो रिस्क जरूर इन्वॉल्व होता है। अगर मैं और आसान लफ्जों में आपको समझाऊं तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप सिर्फ मुनाफा देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिस्क को नजरअंदाज कर देते हैं तो आप बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। डियर रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स को पहले से तैयार करता है ताकि वो मुश्किल हालात में भी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को संभाल सके। देखिए रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत क्यों है। अब अगर रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत को वैल्यूएट किया जाए तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू मार्केट के उतरने चढ़ने, इकोनॉमिक सिचुएशन, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और कंपनी की परफॉर्मेंस से ये फैक्टर्स जो हैं वो मुतासिर होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का काम इन तमाम फैक्टर्स को समझना है और उनके असरात को कम करना है। इससे इन्वेस्टर्स अपने फाइनेंशियल गोल्स हासिल करने के करीब रहते हैं और जज्बाती फैसले करने से बच जाते हैं। देखिए रिस्क मैनेजमेंट की कुछ अहम टेक्निक्स भी हैं, जैसे डाइवर्सिफिकेशन। अपना सारा पैसा एक ही कंपनी या एक ही एसेट में लगाने की बजाय मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स में तकसीम करना डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास मान लेते हैं कि 100,000 rupees हैं और आप सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं तो उस कंपनी के नुकसान की सूरत में आपका ज्यादा पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर आप उसी रकम को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में तकसीम कर देते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट के नुकसान को दूसरे इन्वेस्टमेंट का जो मुनाफा है वो कवर कर सकता है। वहीं दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है एसेट एलोकेशन। देखिए दोस्तों, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगी। मान लेते हैं एक बंदा है फरहान और फरहान ने अपनी सेविंग्स का सारा पैसा एक टेक कंपनी के स्टॉक मार्केट में लगा दिया। कुछ महीनों बाद कंपनी को नुकसान हुआ और स्टॉक की कीमत 40% गिर गई। फरहान को बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। दूसरी तरफ अली ने अपना पैसा स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और गोल्ड्स में तकसीम किया। जब स्टॉक नीचे गिरा तो गोल्ड की कीमत बढ़ गई और बॉन्ड्स ने एक स्टेबल रिटर्न दिया। इस तरह से अली का ओवरऑल नुकसान बहुत कम हुआ और ये रिस्क मैनेजमेंट की कामयाब मिसाल है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट का एक बुनियादी हिस्सा है। इसका मतलब रिस्क को खत्म करना नहीं है बल्कि उसे समझना और कंट्रोल करना है। उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन है, एसेट एलोकेशंस है और डिसिप्लिन प्लानिंग के जरिए इन्वेस्टर्स अपने पैसे को बेहतर तरीके से महफूज रख सकते हैं। जो इन्वेस्टर रिस्क मैनेजमेंट को समझकर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए लंबी मुद्दत तक फाइनेंशियल गोल्स हासिल करने में आसानी होती है। तो बस आज हमने आपको समझाया कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। वापस आएंगे कल तो एक और नए टॉपिक के साथ, आपको समझाएंगे, बताएंगे कि ये टॉपिक क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अभी तो मैं नहीं आपको बताने वाली हूँ कि कल मैं किस टॉपिक पे बात करूंगी। फिलहाल अभी के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107।

अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू अनदर टेक अपडेट. ऑफ कोर्स जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज लॉन्च हो चुकी है, वो है एप्पल के फोन्स. वो लाइनअप जिसका इंतजार हर सितंबर में रहता है. तो जब हम शो को रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक फोन लॉन्च हो गए थे, तो वी कुडंट डू द रिव्यू ऑन टाइम. मगर अभी जिन्होंने नहीं लिया और वो जानना चाहते हैं कि FM 107 पे ये कबीर का क्या टेक है इस पे, तो मैं वो सब कुछ आपको बताऊंगा. ये चार दिन जो आने वाले हैं इनमें हम इसके बारे में खुल के बात करेंगे. सबसे पहले मैं बात करूंगा आईफोन के उस फ्लैगशिप फोन की जिसका जिसे देख के सब हैरान हो गए, और वो है आईफोन डुओ फोल्ड. वो भी एप्पल में ये सोचा था लेकिन पता नहीं था कि एप्पल ये करेगा. मुझे ऑनेस्टली नहीं लगा था कि एप्पल ये करने वाला है. मुझे लगा था वो शायद फोल्ड से दूर रहेगा, थोड़ा और टाइम लेगा, थोड़ा और टाइम लेके बनाएगा. लेकिन एप्पल ने कर दिया लॉन्च. अब इसमें बहुत सारी अच्छी और कुछ ऐसी बातें भी हैं. तो मैं सबसे पहले अच्छी बातों पे बात कर लेता हूँ. डेफिनेटली डिजाइन बहुत अलग है, डिजाइन बहुत खास है. बैटरी में बहुत ज्यादा इन्होंने

0: बात करी ताकि बैटरी भी टॉप नॉच रहे, कोई मसला नहीं आएगा किसी को। फोन जो है बहुत स्मूथ काम कर रहा है, जो अलग अलग विंडोज दी है काम करने के लिए वो बहुत ज्यादा स्मूथ है। अभी हैंड्स ऑन मेरे हाथ में तो नहीं है, बट जहां तक मैंने इसको अच्छे से पढ़ा है, जाना है, उतना मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ स्पेशल इस फोल्ड फोन के लिए केटर्ड ऐप जो है वो एप्पल ने डिजाइन करी है, जो सिर्फ उस पर चलेंगी, और क्या बाकमाल डिजाइन है। जब इसको ओपन करो तो एक एक अलग किस्म का एक प्रीमियम रिफ्लेक्शन सामने आता है, विच इज ब्यूटिफुल। ऑफकोर्स इसके जो हिंजेस की बात आती है, जब भी हम फोल्ड की बात करते हैं तो हमें हिंजेस की प्रॉब्लम होती है कि भाई ये बीच में दरार ना पड़ जाए, तो जब तक आप उसे हाथ नहीं लगाएंगे तब तक आपको पता भी नहीं लगेगा कि उसमें हिंजेस में कोई हिंजेस पता भी लग रही है। दे हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इस बार काम करने के लिए फोल्ड पे, एंड डेफिनेटली उन्होंने बाकी फोन्स को बहुत अच्छे से परखाया जाना है कि हिंजेस कैसे भगाए जाए, तो एप्पल ने उसमें बहुत कामयाबी हासिल करी है। ऑफ कोर्स द फोन इज अराउंड $2,000 जो लॉन्च होते हमारे यहाँ आएगा, तो इंडिया में तो 3 लाख का है, तो यहाँ पे आप लगा लीजिए हिसाब किताब कितने का होगा। इट इज ऑब्वियसली क्रॉसिंग ऑल द प्रीमियम फोल्ड फोन प्राइसेस, तो ये महंगा तो बहुत आने वाला है। इसके जो कुछ ड्रॉबैक्स हैं, डेफिनेटली अगर आप एक कैमरे की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको कैमरा नहीं मिलने वाला है इसमें। वो जो उन्होंने कैमरा दिए बस वो दे दिए, अब ऐसा था कि भाई अब देने ही पड़ेंगे, मजबूरी है, तो इसलिए इसमें कैमरा दे दिया है। आप उससे ये मत उम्मीद कीजिएगा कि प्रो लेवल तो होगा, भाई इतना महंगा फोन है तो कैमरा तो भाई एकदम सॉलिड होगा, ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी वेरी वेरी नॉर्मल कैमरा। यस, द बैटरी लाइफ इज रियली रियली गुड, और इसमें जो इनकी उन्होंने नई चिप भी लगाई है तो वो भी डेफिनेटली इसे स्पीड अप करती है। एवरीथिंग इज नाइस अबाउट इट, बट डिजाइन में एक हल्की सी बात है और वो है इसकी जो क्या कहते हैं उसके जो विड्थ है, क्योंकि आप एक हाथ से अगर फोन यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पूरी तरह से इसकी स्क्रीन को यूज नहीं करवाएंगे, आपको थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ेगा, दूसरे हाथ की थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी। और इसमें जो सीरी का इंटीग्रेशन है वो भी बड़ा अजीब है, जो उसका जो बटन है वो ऊपर की तरफ दिया हुआ है, विच इज वेरी हार्ड टू रीच। अगर अंटिल अनलेस सबके हाथ बहुत बड़े हैं, कानून के हाथ तो बात दूसरी है, पर बटन का जो पोजिशनिंग है वो थोड़ी सी अलग है। और जो डिजाइन है वो मुझे लगा था कि शायद थोड़ा सा लंबाई में ज्यादा होगा, लेंथ ज्यादा होगी, देसी भाषा में बोलूं, बट दे कैप्ट द विड्थ मोर। आई डोंट नो वो किस से इंस्पायर्ड हुए, बिकॉज ऑफकोर्स ये इंस्पिरेशन तो बहुत पहले उन्होंने कहीं ना कहीं से लिया होगा। अभी सैमसंग ने वो अपना क्यूट सा फोन लॉन्च किया था, तो रिसेंट ये इंस्पिरेशन तो नहीं है, बट डेफिनेटली प्राइस एक बहुत बड़ा बैरियर है जो आपको ये लेने से रोकेगा। दूसरी चीज है कि आप इसको जोश जोश में आगे कि मैं शोबाजी के लिए ले लूं, तो भाई शोबाजी हो पाएगी, लेकिन इसमें कैमरा नहीं है वैसा वाला जैसा आप उम्मीद करते हैं। सो इन केस आपको बहुत ज्यादा सिर्फ शो ऑफ से मतलब है, तब तो ये फोन आपके मतलब का है, अदरवाइज आई वुड नॉट रिकमेंड, क्योंकि यहाँ पे कतर में आते आते इट विल बी द कॉस्टलीस्ट फोल्ड फोन एवर, इस बात की तो पूरी पूरी गारंटी है। आई रियली होप कि दिस नॉट बिकम्स द सेकंड प्रोविजन जो एप्पल ने लॉन्च किया था, उसके आसपास ये पहुंचता मुझे नजर आ रहा है। ऐसी उम्मीद मैं करना नहीं चाहता, मगर मजबूर। रिव्यू हालांकि अच्छा है, मगर जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी खतरनाक वाले ड्रॉबैक्स हैं। दिस वॉज द रिव्यू और दिस वॉज द टेक अपडेट। Stay tuned for more. Tech update. Tech update.
1: Maximum music. Maximum fun. On FM 107. Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे मैं हूँ फजील और इस्तकबाल है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस, जहाँ पर नए जमाने के नए फ्रॉड से बचाने के लिए हर रोज मैं आपको अवेयर करता रहता हूँ कैसे ये नए फ्रॉड्स होते हैं और साथ ही साथ किस तरह से आप बच सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं इन फ्रॉड से बचने के, उस पर भी हम बात करते हैं। और आज हम जिस फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं, ये बड़े ही इमोशनल फ्रॉड भी है एक तरह से। आप बहुत ज्यादा टूट जाते हैं जब इस तरह का फ्रॉड आपके साथ होता है, और इस फ्रॉड का नाम है हाउस सिटर एंड पेट सिटर, यानी कि आपके इमोशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको लेकर भी एक्चुअली में आजकल फ्रॉड होने लगा है। कई लोग अपने पेट्स को बहुत ज़्यादा करीब से चाहते हैं, जानते हैं, मानते हैं, और ऐसे ही जो हाउस सिटर होते हैं या घर की देखभाल करने वाले होते हैं या बच्ची की देखभाल करने वाले होते हैं, उनके नाम पर भी स्कैम शुरू हो गए। सबसे पहले ये स्कैम होते कैसे, इन पर बात करते हैं और फिर सॉल्यूशन पर भी हम नज़र डालेंगे। वेल, हाउस सिटर और पेट सिटर फ्रॉड हमारे सबसे बड़े ट्रस्ट जोन के अंदर होता है, इसलिए इसका दुख बहुत बड़ा होता है। ये स्कैम अक्सर किसी पड़ोसी, दूर के रिश्तेदार या किसी कैजुअल एक्वेंटेंसेस के जरिए किया जाता है जिसे आप एक अच्छा इंसान समझते हैं। जब आप फैमिली के साथ किसी लंबी वेकेशन या इंटरनेशनल ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं तो सबसे बड़ी फिक्र है घर की सुरक्षा, सिक्योरिटी, और पेट्स की केयर कौन करेगा। इस दौरान ये जान पहचान वाला इंसान बड़े ही मीठी बातों के साथ आपसे कहेगा कि आप फिक्र मत करें, आप घूम कर आए, आप पीछे बिल्कुल ना देखें, मैं आपके घर का या पेट्स का पूरा ध्यान रखूंगा। या कई बार आप सोशल मीडिया पे हाउस सिटर या पेट सिटर ढूंढते हैं, वो आपके कॉन्टेक्ट में आते हैं, आप उन पर भरोसा करते हैं, आप उनको कुछ पैसे भी देंगे, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर आपके साथ होता है गड़बड़ या फ्रॉड। आप उन लोगों पर जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके करीबी हैं, या फिर आपने जिनको सोशल मीडिया पर ढूंढा है, आप उन पर ट्रस्ट करके उन्हें अपने घर की मेन कीज हैंड ओवर कर देते हैं, मेन चाबियां दे देते हैं, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करने के बजाय वो इंसान इस परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का एक क्रिमिनल माइंड की तरह फायदा उठाता है। जब आप शहर के बाहर होते हैं, देश के बाहर होते हैं और घर पर पूरी तरह सन्नाटा होता है, तब वो आपके वार्डरोब्स और सेफ लॉकर को चेक करता है। वो घर में रखी कीमती गोल्ड ज्वेलरी, लॉकर में रखा कैश, महंगे ब्रांड के लैपटॉप्स और कॉस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स चुरा लेता है। स्कैमर्स इतने शातिर होते हैं कि वो आपके मेन डोर और कपबोर्ड्स की चाबियां डुप्लीकेट करवा लेते हैं ताकि आपके आने के महीनों बाद दोबारा आसानी से चोरी भी की जा सके। पर कोई शक न करे, जब आप ट्रिप से लौट कर आते हैं तब आपको धीरे धीरे चीजें गायब मिलती हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन इस तरह के फ्रॉड से बचने के तीन आसान तरीके हैं। इन तीन तरीकों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उम्मीद है कि आपके साथ इस तरह का फ्रॉड कभी नहीं होगा। हायर ओनली सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स। जब भी आप कभी देश से बाहर जाएं, घूमने फिरने के लिए जाएं, किसी बड़े ट्रिप पर जाएं, तो हमेशा एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल को ही हायर करें। अपने पीछे घर की चाबी किसी भी कैजुअल दोस्तों को, पड़ोसियों को या सोशल मीडिया से किसी रैंडम को हायर करने के बजाय आप ऐसे शख्स को हायर करें जो प्रोफेशनल हो। उनको चाबियां ना दें जिनको अभी आपने कुछ दिन पहले ही जाना पहचाना है। हमेशा सिर्फ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, बैकग्राउंड वेरीफाइड, सर्टिफाइड और इंश्योर्ड पेट सिटिंग या हाउस सिटिंग एजेंसीज को ही कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करें। इन प्रोफेशनल एजेंसीज के पास लीगल लायबिलिटी होती है, अगर कुछ खोया तो कॉम्पनसेशन मिलता है।

0: दूसरा सॉल्यूशन है डिप्लॉय स्मार्ट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। वेकेशन पर जाने से पहले अपने घर के हर एक कॉर्नर, लिविंग रूम और एंट्री पॉइंट्स पर हाई डेफिनेशन स्मार्ट वाईफाई सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल करें। इन कैमरास का लाइव एक्सेस अपने मोबाइल फोन पर एक्टिव रखें ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने से रियल टाइम में मॉनिटर कर सकें कि घर के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है। उसके अलावा तीसरा तरीका है लॉक वैल्यूएबल्स इन बैंक वॉल्स। ये तो हर शख्स को करना ही चाहिए। जब भी आप लॉन्ग ट्रेवल पर जा रहे हो तो घर के लॉकर में ज्यादा कैश या गोल्ड ज्वेलरी छोड़कर बिल्कुल ना जाए। भले ही आपका कोई बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी शख्स क्यों ना हो साथ में, या फिर आपने किसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल को ही क्यों ना हायर किया हो, घर के लॉकर में ज्यादा कैश नहीं रखना चाहिए, ना ही ज्यादा गोल्ड ज्वेलरीज भी रखनी चाहिए। उन सारी कीमती चीजों को टेम्परेरी पीरियड के लिए बैंक के सिक्योर सेफ्टी डिपॉजिट वॉल्ट में जमा कर दें। घर आने पर मेन डोर के लॉक्स को चेंज कर दें और अपने वाईफाई को हमेशा जब आप घर से दूर रहें तो ऑन रखें ताकि सीसीटीवी के जरिए आप देखते रहें कि घर में क्या कुछ हो रहा है। ये कुछ तरीके हैं ताकि डुप्लीकेट कीज का खतरा खत्म हो जाए, जैसे कि डोर के लॉक्स चेंज करवाना या फिर सीसीटीवी लगवाना। इन सब तरीकों से आप फ्रॉड आपके साथ जो होने वाला है उनसे बच सकते हैं। ऐसे के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में आपको अवेयर करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतर की सकाफत में तवाज़ो, सादगी और नरमी को बहुत अहमियत दी जाती है। तवाज़ो का मतलब है कि इंसान अपनी इज्जत कायम रखते हुए दूसरों के साथ खुले दिल से पेश आए। अपनी खूबियों पर फख्र जरूर हो, लेकिन रवैये में तकब्बुर ना हो। रोजमर्रा जिंदगी में तवाज़ो छोटी छोटी बातों से जाहिर होती है। सलाम में पहल करना, मुस्कुराहट के साथ जवाब देना, दूसरों की बात सुनना और जरूरत पर मदद की पेशकश करना इसके खूबसूरत अंदाज हैं। ये रवैये मुलाकात को आसान और दिलकश बना देते हैं। कतरी माशरे में बुजुर्गों का एहतराम और छोटों के साथ शफकत तवाज़ो के अहम पहलू हैं। घर के बड़े बच्चों को सिखाते हैं कि हर शख्स के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। इज्जत सिर्फ किसी रुतबे या उम्र की बुनियाद पे नहीं होती, बल्कि इंसानी कदर के एतराफ में होती है। सादगी का मतलब ये नहीं कि चीजों की खूबसूरती को नजरअंदाज किया जाए। इसका मतलब है कि जिंदगी में मुनासबत, सलीका और एतदाल को तरजीह दी जाए। सादा अल्फाज, साफ लिबास और पुरखलूस रवैया अक्सर इंसान की शख्सियत को नुमाया कर देते हैं। कतरी मेहमान नवाजी में भी सादगी और तवाज़ो देखी जा सकती है। मेहमान के लिए कहवा, खजूर या खाना पेश करना इज्जत का इजहार होता है। मेजबान कोशिश करता है कि मेहमान आराम महसूस करे। ये जरूरी नहीं कि पेशकश बहुत ज्यादा हो। असल अहमियत दिल से की गई खातिर तवाज़ो की होती है। मजलिस का माहौल भी तवाज़ो की मिसाल पेश करता है। लोग एक दूसरे के साथ बैठते, गुफ्तगू करते और अपने तजुर्बे शेयर करते हैं। इस महफिल में सुनने का सलीका भी इतना ही अहम होता है जितना बात करना। दूसरों की तवज्जो देना और उनकी बात की कदर करना अच्छे रवैये की अलामत है। तवाज़ो इंसान को ये समझने में मदद देती है कि हर शख्स के पास कुछ सीखने और सिखाने के लिए होता है। नई नस्ल बुजुर्गों से रिवायत और तजुर्बा सीख सकती है, जबकि बुजुर्ग नई नस्ल की तालीम, टेक्नोलॉजी और जदीद

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को

दुनिया भर की दौलत, दुनिया भर की आसाइश, दुनिया भर की शोहरत अगर एक तरफ रख दी जाए और अल्लाह की रहमत और जन्नत दूसरी तरफ, तो अल्लाह की रहमत ही बेहतर है। इसीलिए सालेहीन कहा करते थे, दुनिया की कोई नेमत माना नहीं रखती अगर उसके बाद जहन्नम हो, और दुनिया की कोई तकलीफ नुकसान नहीं देती अगर उसके बाद जन्नत हो। तो बात वही है कि दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है, उसकी लज्जतें वक्ती हैं, उसकी खुशियाँ बदलती रहती हैं। आज सेहत है, कल बीमारी आ सकती है, लाकद्दर अल्लाह, खुदा न खास्ता। आज जवानी है, कल बुढ़ापा है। आज इज्जत है, कल लोग भूल सकते हैं। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, अद्दुनिया सा फजअलहा ताअ, दुनिया एक घड़ी है, उसे इताअत बना दो। यानी ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे गुनाह, गफलत, जुल्म, लालच और तकब्बुर में ज़ाय न करो, उसे अल्लाह की बंदगी में लगा दो। एक शायर ने ज़िंदगी की हकीकत को बहुत गहरे अंदाज में बयान किया है। वो कहता है, अगर कोई नौजवान 1000 साल जिंदा रहे, उसके पास बादशाहत हो, इज्जत हो, माल हो, ताकत हो, कभी बीमारी ना आए, कभी गम ना आए, कभी परेशानी ना आए, फिर भी ये सब कुछ कब्र की पहली रात के मुकाबले में कुछ नहीं। ये मजमून मैंने उसी अरबी शेर का खुलासा के तौर पर आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ज़रा सोचिए इस शेर के मजमून पर, 1000 साल के ऐशो इशरत भी अगर आखिरत की तैयारी के बगैर हो, तो कब्र की पहली रात के सामने बेकीमत हो जाती है। इसीलिए असल सवाल ये नहीं कि हमारे पास कितना माल है, असल सवाल ये है कि हमारे पास अल्लाह के सामने पेश करने के लिए क्या है। सामने कराम, फ़कर की एक और हकीकत भी आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं कि हर फ़कर बुरा नहीं और हर मालदारी अच्छा नहीं। कभी फ़कर इंसान को अल्लाह के करीब करता है, कभी गिना इंसान को शुक्रगुजार बनाता है, कभी फ़कर इंसान को बेसब्री, बदगुमानी और गुनाह की तरफ ले जाता है, और कभी गिना बेनियाजी इंसान को तकब्बुर, गफलत और तुग़यान में मुबतला कर देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में भी ये मज़मून आता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फ़क़्रिन युंसीनी व गिनन युतग़ीनी। ए अल्लाह, मैं उस फ़क़्र से तेरी पनाह मांगता हूँ जो मुझे भुला दे, और उस गिना से भी, बेनियाजी से भी, जो मुझे सरकश बना दे। मसला सिर्फ माल की कमी या ज़्यादती नहीं, मसला ये है कि दिल का क्या हाल है। फ़क़्र ऐसा ना हो कि इंसान अल्लाह को भूल जाए, गिना बेनियाजी ऐसा ना हो कि इंसान खुद अल्लाह से बेनियाज समझने लगे अपने आप को। सामिने किराम, अल्लाह ताला फरमाता है, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अर्राहु इस्तगना, हरगिज नहीं इंसान सरकशी करता है जब वो खुद को बेनियाज समझता है। तो असल बीमारी माल की नहीं, असल बीमारी बेनियाजी का एहसास है। जब बंदा ये समझने लगे कि मैं खुद काफ़ी हूँ, मुझे अल्लाह की ज़रूरत नहीं, मेरे पास माल है, ताकत है, ताल्लुकात हैं, मनसब हैं, तो यही तुग़यान की इब्तिदा है। और उसके मुकाबले में असल बंदगी ये है कि इंसान हर हाल में कहे, अल्लाह मैं तेरा मोहताज हूँ, माल हो तब भी मोहताज, सेहत हो तब भी मोहताज, बंदा हर हाल में बंदा है और रब हर हाल में रब है। सामने कराम, फ़क़्र की एक किस्म फ़क़्र माल है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक फ़क़्र है फ़क़्र नफ्स, यानी दिल का फ़कीर होना। एक शख्स के पास लाखों करोड़ों हों, मगर दिल में हिर्स ख़त्म ना हो, कनात ना हो, शुक्र ना हो, हर वक्त कमी का एहसास हो, तो हकीकत में फ़कीर है। और एक शख्स के पास माल कम हो, मगर दिल मुतमईन हो, अल्लाह पर एतमाद हो, कनात हो, शुक्र हो, तो वह हकीकत में गनी है, मालदार है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, गिना माल की कसरत का नाम नहीं, असल गिना तो दिल का गिना है, वलाकिन अल-गिना गिना नफ्स। सामने कराम, आज दुनिया में बहुत से लोग मालदार हैं लेकिन बेचैन हैं, घर बड़े हैं मगर दिल तंग है, आमदनी ज़्यादा है मगर सुकून नहीं, आसाइशें हैं इत्मीनान नहीं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास दुनिया कम है मगर दिल अल्लाह से भरे हुए हैं, वो कम में भी खुश हैं, तंगी में भी साबिर हैं, नेमत में भी शाकिर हैं, यही दिल की बेनियाजी है। फ़क़्र की एक और ख़तरनाक किस्म है हसनात का फ़क़्र, यानी इंसान दुनिया में मालदार हो सकता है लेकिन आखिरत में खाली हाथ हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुफलिस की तारीफ़ बयान करते हुए फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़्यामत के दिन नमाज, रोज़ा और ज़कात लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा, फिर उसकी नेकियाँ एक एक करके मजलूमों को दे दी जाएंगी, यहाँ तक कि उसके पास कुछ बाकी न रहेगा, फिर दूसरों के

0: गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सामने करम, यही असल फकर है, इफलास है। दुनिया का फकर कभी ख़त्म हो सकता है, आज फकीर कल गनी हो सकता है, लेकिन क़यामत के दिन हसनात का फकर ये बहुत ख़तरनाक है। इसलिए हमें सिर्फ माल जमा करने की फिक्र नहीं करनी चाहिए बल्कि नेकियां बचाने की भी फिक्र करनी चाहिए। नमाज पढ़ें, ज़कात दें, सदका करें, हज करें, लेकिन साथ ही ज़बान की हिफाजत करें, लोगों के हुकूक अदा करें, गीबत से बचें, जुल्म से बचें, किसी का माल न खाएं, किसी की इज्जत न उछालें, क्योंकि नेकी करना एक चीज़ है, नेकी को क़यामत तक महफूज रखना दूसरी चीज़ है। अल्लाहु अकबर। इसी तरह कुछ लोग दुनिया में ज़िंदगी गुजार देते हैं मगर आखिरत के लिए कुछ जमा नहीं करते। नमाज का मौका मिला ज़ाय कर दिया, सदका का मौका मिला रोक लिया, इल्म का मौका मिला गफलत की, खिदमत का मौका मिला टाल दिया, तौबा का दरवाज़ा खुला था लेकिन देर करते रहे। फिर क़यामत के दिन जब अमाल का मीज़ान सामने आएगा तो मालूम होगा कि हाथ खाली हैं। ये भी फ़क्र है बल्कि सबसे बड़ा फ़क्र है। इसलिए आज की गुफ्तगू का पैगाम यही है सामने किराम, कि माल की कमी से ज़्यादा दिल की कमी से डरना चाहिए, फ़क्र माल से ज़्यादा फ़क्र ईमान से डरना चाहिए, दुनिया के खसारे से ज़्यादा आखिरत के खसारे से डरना चाहिए। अगर माल कम है मगर ईमान है, सब्र है, शुक्र है, हलाल है, इज़्ज़त नफ्स है, तो इंसान कामयाब हो सकता है। लेकिन अगर माल बहुत है मगर दिल खाली, आखिरत की तैयारी नहीं, नेकियां ज़ाय हो रही हैं, लोगों के हुकूक पामाल हो रहे हैं, तो ये गिना नहीं, ये खसारा है। आइए अपने दिल से पूछें, क्या हम रिज़्क को अल्लाह की अमानत समझते हैं या अपनी मिल्कियत? क्या हम दुनिया के फ़ख्र से ज़्यादा आखिरत के फ़ख्र से डरते हैं या नहीं? हम अक्सर बड़े अमाल की तरफ देखते हैं और छोटे अमाल को मामूली समझ लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि खैर के रास्ते बेशुमार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु बिदउ व सबउन शुबा, ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं, इनमें सबसे आला ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है और सबसे निचली शाख रास्ते से तकलीफ दह चीज़ हटा देना है। तो सोचिए, रास्ते से एक पत्थर हटा देना, एक कांटा दूर कर देना, एक रुकावट ख़त्म कर देना भी अल्लाह के नज़दीक अजर का सबब बन सकता है। मजीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबस्सुमुक फी वजहि अखीक सदका, अपने भाई के चेहरे पर मुस्करा देना भी सदका है। तो इसी तरह उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तक़ुन नार वलो बिशक्क़ तमरा, जहन्नम से बचो अगर खजूर के एक टुकड़े के जरिए ही क्यों ना हो। इन्हीं अल्लाह ताला के हाँ छोटा अमल भी ज़ाय नहीं होता। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा लफ्ज़ है वो भी सदका है, एक अच्छी सच्ची नसीहत है वो भी सदका है, अगर तुम किसी के लिए दुआ करते हो ये भी खैर है, अगर तुम किसी को रास्ता बता देते हो तो इसमें भी जवाब है। ओवरऑल ज़िंदगी की हकीकत यही है कि एक दिन जवानी ढल जाएगी, ताकत कम हो जाएगी, उस दिन इंसान को अपने जिस्म की ताकत पर नहीं अपने आमाल की ताकत पर फ़ख्र होगा जब वो अपने रब के सामने हाजिर होगा। उस दिन माल साथ नहीं जाएगा लेकिन सच्चा कलमा साथ जाएगा, वो मुस्कराहट भी साथ जाएगी जो अल्लाह की रज़ा के लिए थी। इसलिए अक्लमंदी यही है कि हम अपनी सेहत, अपनी कुव्वत, अपनी जवानी, अपनी समाअत और अपनी बसारत को अल्लाह की अमानत समझें और उसे उसके दीन की खिदमत में सर्व करें। अल्लाह सुबहान तआला हमें अपनी समाअत की हिफाजत की तौफीक अता फरमाएं, अपनी बसारत को हक देखने वाला बनाए, अपनी कुव्वत को नेकी के कामों में इस्तेमाल करने की तौफीक दे और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक ईमान, सेहत और आफियत के साथ उसकी इबादत करने की तौफीक और नसीब अता फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। इन्हीं दुआओं के साथ प्रोग्राम की तकनीकी मुआविन शकीब अहमद और मेज़बान तलहा अशरफ उस्मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मअस्सलामा।
1: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है, पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महवेश के साथ ओनली ऑन एफएम 107.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स. हजरत नूह अलैहि सलाम की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि एक ऐसी अजीम दास्तान है जो हमें जिंदगी

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन, आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान, बनिए कल का चेहरा आज ही। सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर। दिल से देसी।
2: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
4: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

दावा। असल जिंदगी का घर तो दारे आखिरत है, काश ये लोग जानते। जब ये लोग कश्ती पर सवार होते हैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उससे दुआ मांगते हैं। फिर जब उन्हें बचाकर खुशकी पर ले आता है तो यकायक ये शिर्क करने लगते हैं, ताकि अल्लाह की दी हुई नजात पर उसका कुफरान नेमत करें और हयात दुनिया के मजे लूटें। अच्छा, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। क्या ये देखते नहीं हैं कि हमने एक पुरअमन हरम बना दिया है, हालांकि इनके गिर्दोपेश लोग उचक लिए जाते हैं? क्या फिर भी ये लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह की नेमत का कुफरान करते हैं? उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या हक को झुठलाए जबकि वो उसके सामने आ चुका हो? क्या ऐसे काफिरों का ठिकाना जहन्नम ही नहीं है? जो लोग हमारी खातिर मुजाहिदा करेंगे उन्हें हम अपने रास्ते दिखाएंगे, और यकीनन अल्लाह नेकोकारों ही के साथ है।